नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हरपल ऋषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानुंग जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानुंग जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानुंग जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्रकृतिक का साथ चलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है? जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती है।
1: YouTube का द्वारा कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बच जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कालिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार, बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना सौर के जितना कत्ता चीज नींबू आमला इमली और तेंगा रबक तेंगा तेतली तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कत्ता फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कालिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बनने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कालिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाएगा।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की काट बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओलुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस ये सूता हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट। और ये ड्रमिस्टिक का सिरका लेना है, ड्रमिस्टिक सजना। और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है, वो भी गलत है। और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये। और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीव हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री। और ये हिली का बोलता है बेहरा, ये भी गलत है। और ये लिकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक ही शिपिया हमारा आदि में, ये भी गलत है। और ये मेहंदी का पत्ता असामिस में जेतु का बोलता है, ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमोहलेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती है। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग जमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग जमोलेगो पर्पल विजन।
0: यानुंग जमोलेगो को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके, कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग जमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो ये है कि यानुंग जमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती है।
4: 2 साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के, वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग जमोलेगो बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग जमोलेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जबो लेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेओ के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
5: जड़ी बूटी का बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का फोकलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन टेम्पल पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ ये बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्तर भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेओ के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमो लेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
6: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमो लेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: द The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's heat up your routine with couples games, massage oils, and 20% off Cal Exotic toys. Start exploring at your local Cirilla's or online at Cirilla's.com.
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
9: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात सावन की तैयारियों से जुड़ी हुई। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व अब शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी सावन से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यहां हर साल लाखों भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव के चरणों में चढ़ावा अर्पित करते हैं। सावन से पहले मंदिर में 18 दान पात्रों को खोला गया।

0: सावन आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। कंधे पर कावड़, मन में विश्वास और जुबा पर भोले बाबा का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ने की तैयारी में है। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि शिव भक्ति किसी एक महीने या किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती, भोलेनाथ के प्रति आस्था ही भक्तों को उनकी चौखट तक खींच लाती है। झारखंड का देवघर, जहां विराजते हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ। सावन शुरू होते ही यहां आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई राज्यों से कांवड़िए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। गंगा जल लेकर लंबी यात्रा तय करने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन शुरू होने से पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान को चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। भक्तों की इसी श्रद्धा का प्रमाण बाबा मंदिर में रखे दान पात्रों से भी मिला है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को खोला गया। मंदिर प्रशासन की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दान राशि को प्रशासनिक भवन में ले जाकर उसकी गिनती की गई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। 24 जुलाई को बाबा मंदिर परिसर में रखे सभी दान पात्र मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोले गए। दान पात्रों से प्राप्त राशि की गिनती प्रशासनिक भवन में की गई। गिनती पूरी होने के बाद कुल 17,67,086 रुपए के अलावा 1,630 नेपाली रुपए, $21 और 17 रियाल प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कराया। सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण का पर्व है। आने वाले दिनों में देवघर की गलियां कांवड़ियों के जयकारों से गूंजेगी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय होगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
2: and new discoveries.
3: That's so much more than a history. Wake up!
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: You and

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: करगिल विजय दिवस की आज 27वीं वर्षगांठ, द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को किया नमन, ऑपरेशन विजय की याद करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर, प्रहलाद जोशी को सौंपा गया शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को बिल लाएगी सरकार। पुरी में भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से हुआ श्रृंगार, सोना विश्व परंपरा के दौरान दर्शन को उमड़े लाखों भक्त, आज विधि विधान से होगा धरपाना अनुष्ठान। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शिरडी साईं मंदिर में दिखा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं को बांटा गया 16 टन साबूदाना खिचड़ी का महाप्रसाद, 75,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्त ने दिल खोलकर किया दान, भगवान को 10.25 बीघा जमीन के साथ भेंट किया 2 मंजिला मकान, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु का किया सम्मान। की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20 क्रिकेट सीरीज, हरारे में हुए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाति काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस काराबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया, 80 से ज़्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे पर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। आप अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज़्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
2: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक इसी सीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका इसी सीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुके हैं। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वही एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्रेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5-4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की Mark-1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि Mark-2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र Mark-2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
4: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
5: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
5: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है, साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
7: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: देखिए, आज की दुनिया में तकनीक हर दिन नई उड़ान भर रही है और अब बारी है इंसानों के सफर को बदलने की। देखिए, जिस फ्लाइंग टैक्सी को अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा जाता था, उसने अब हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार बिना पायलट उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी ने सफल प्रदर्शन किया है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि आने वाले समय के स्मार्ट और तेज

0: कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार ऐसी फ्लाइंग टैक्सी ने उड़ान भरी जिसने आने वाले कल की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। बिना पायलट, पूरी तरह आधुनिक तकनीक के भरोसे, इस उड़ान ने भविष्य के परिवहन को नई दिशा दिखा दी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के आसमान में पहली बार बड़े इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी EVTOL एयरक्राफ्ट ने सफल डेमो उड़ान पूरी की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: करगिल विजय दिवस की आज 27वीं वर्षगांठ, द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को किया नमन, ऑपरेशन विजय की याद करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर, प्रहलाद जोशी को सौंपा गया शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को बिल लाएगी सरकार। पुरी में भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से हुआ श्रृंगार, सोना विश्व परंपरा के दौरान दर्शन को उमड़े लाखों भक्त, आज विधि विधान से होगा धर्पाना अनुष्ठान। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शिरडी साईं मंदिर में दिखा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं को बांटा गया 16 टन साबूदाना खिचड़ी का महाप्रसाद, 75,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्त ने दिल खोलकर किया दान, भगवान को 10.25 बीघा जमीन के साथ भेंट किया 2 मंजिला मकान, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु का किया सम्मान। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20 क्रिकेट सीरीज, हरारे में हुए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानुम जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानुम जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानुम जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान, धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही है, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्राकृतिक का साथ सलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग का स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोह लेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती हैं।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं अब लोग को कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बांट जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमो लेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कालिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना छोड़ के जितना कत्तासीस नींबू आमला इमली और तेंगा रबा तेंगा चटनी तेंगा कोल्डो स्टर फ्रूट एनी खट्टा फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बढ़ने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस हो जाता है।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमो लेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की कार्ड बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमो लेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओलुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस सूता हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रामिस्टिक का सिरका लेना है ड्रामिस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये ल्यूकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक ही सीपियत हमारा आदि में ये भी गलत है, और ये मेहंदी का पत्ता असामिस में जेतु का बोलता है ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमो लेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती है। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग चमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग चमोलेओ हर्बल कृषि।
0: यानुंग चमोलेओ को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग चमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था, वो खाने वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ये 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो ये है कि यानुंग चमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती है।
4: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। और मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ है। तो मेरा हमको पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के, वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग चमोलेओ बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा चमोलेओ खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग चमोलेओ बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जबोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेगो के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
5: जड़ी बूटी का बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन तोर पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ यह बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से साथ मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों, किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेगो के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
6: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: Tune in to How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, और अब बात सावन की तैयारियों से जुड़ी हुई। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व अब शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी सावन से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यहां हर साल लाखों भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव के चरणों में चढ़ावा अर्पित करते हैं। सावन से पहले मंदिर में 18 दान पात्रों को खोला गया।

0: सावन आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। कंधे पर कावड़, मन में विश्वास और जुबा पर भोले बाबा का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ने की तैयारी में है। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि शिव भक्ति किसी एक महीने या किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती, भोलेनाथ के प्रति आस्था ही भक्तों को उनकी चौखट तक खींच लाती है। झारखंड का देवघर, जहां विराजते हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ। सावन शुरू होते ही यहां आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई राज्यों से कांवड़िए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। गंगा जल लेकर लंबी यात्रा तय करने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन शुरू होने से पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान को चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। भक्तों की इसी श्रद्धा का प्रमाण बाबा मंदिर में रखे दान पात्रों से भी मिला है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को खोला गया। मंदिर प्रशासन की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दान राशि को प्रशासनिक भवन में ले जाकर उसकी गिनती की गई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। 24 जुलाई को बाबा मंदिर परिसर में रखे सभी दान पात्र मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोले गए। दान पात्रों से प्राप्त राशि की गिनती प्रशासनिक भवन में की गई। गिनती पूरी होने के बाद कुल 17,67,086 रुपए के अलावा 1,630 नेपाली रुपए, $21 और 17 रियाल प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा कराया। सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण का पर्व है। आने वाले दिनों में देवघर की गलियां कांवड़ियों के जयकारों से गूंजेगी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय होगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: आपके पैर हिलाने से आपका कौन सा ग्रह बिगड़ जाता है? अगर आप भोजन थाली में छोड़ देते हैं तो उससे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आप अपने सामान अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं तो जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है? आपकी आदतों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: ओडिशा के पुरी धाम में बह रही है आस्था की बयार। रथ पर बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है महाप्रभु जगन्नाथ। आज निभाई जाएगी ये अधर पाना की रस्म। आस्था और श्रद्धा में डूबा महाराष्ट्र का जलगांव। धूमधाम से पारंपरिक रथ उत्सव का आयोजन। भगवान का रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ। द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल। 1999 में 60 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान पर विजय हासिल कर लिखी थी अदम्य शौर्य की गाथा। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बीच सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने दिखाया दमखम। अहमदाबाद में पानी में डूबे गैलॉप्स इंडस्ट्रियल पार्क से करीब 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आज लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड पीएम मोदी करेंगे संबोधित। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से वर्चुअली करेंगे बातचीत। कनाडा के ओंटारियो में अनाहत सिंह ने रचा इतिहास। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 से मुकाबला। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

बताइए बड़े भाव से दो मिनट कीर्तन डालो पागलो सीताराम। अरे पागलो जोर से बोलो साधु जी साधु जी साधु जी साधु जी सीता राम जय सीता।

0: ये दूध कम कर रात जाना चलो मैंने छतरी के बड़े ऊंचा चंदा हम अच्छो बढ़िया की गंगा रहे तो बीच में गधा बनना अरे आज मंगल धाम लौट के उल्लू घर को आए 4 जुलाई का बर्थडे मनाने गए थे दिल्ली वहां ऐसी भीड़ हो गई कि हम आओ बर्थडे का मरंडे मनक मना तो बच गए वो वहां बहुत भीड़ थी तो बड़ी मुश्किल से 4 जुलाई का कार्यक्रम वहां पूरा हुआ दिल्ली में उसी दिन हमने कान पकड़ लिए कि अपना धाम है सबसे प्यारा देख लिया हमने जग सारा अब लौट के बाहर बर्थडे कट्टे नहीं मनाएंगे इसीलिए अब 4 जुलाई वाला बर्थडे कल यहाँ पे रखा है तो यहीं पे बढ़िया मनाएंगे वहां जहां 3 शहर है वहां वही बर्थडे मनाएंगे एक एक करके लाइन से सबको मिलेंगे और कल सुबह से यही चलेगा कि कल सुबह से लाइन से एक एक करके सबको मिलेंगे और शाम को फिर ऑनलाइन हवन यहीं पर करवाया जाएगा इसके बाद में परसों हम हैदराबाद जा रहे हैं जलवा देखो जहां 7% से ज्यादा रहते हैं वहां भी अपनी कथा हो रही है देखो तो हनुमान जी के जलवा इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं खासकर भारत के मुसलमान उनको ये बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे ये सही समय है घर वापसी करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता घर वापसी का यही सही समय है घर वापसी करो बढ़िया अपने पूर्वजों को याद करो तुम्हारे पूर्वज भी तुमको आशीर्वाद देंगे और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन वो हमारी सुनते ही सबको उनको लगता कि हम थोड़ा उल्टे हैं नहीं हम तुम्हारा भला चाहते हम तुम्हारी फिर से मूल विचारधारा में जोड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदू है और भारत हिंदू राष्ट्र है अब वो बात अलग है कोई अपने बाप को बाप ना बोले वो बात अलग है भाई बच्चे में ही खामी है बच्चे में ही कमी है तो भगवान की अनुकंपा से हम वहां वहां जा रहे जहां जहां सनातन धर्म की और हिंदुओं की आवश्यकता है हमें बहुत लोगों ने कहा मत जाओ कथा मत करो हमने कहा हम नहीं जाएंगे हम नहीं कथा करेंगे तो क्या एलियन आएंगे कौन करेगा है हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ सनातन के प्रचार के लिए हिंदुत्व के विचार के लिए बालाजी की अर्जी के लिए प्रभु की मर्जी के लिए खुलेगा पर्चा होगी चारों तरफ हनुमान जी की चर्चा खुलेगा पर्चा होगी बालाजी की चारों तरफ चर्चा और फ्री फंड में ना लगेगा कोई खर्चा ध्यान, पूजा पाठ, परंपरा, प्रैक्टिकल लाइफ को जीना उन्होंने ऐसे सिखाया, क्या कहना। भारत की ऐसी दिव्य विभूति महापुरुष पूज्य श्री ईसा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु जी, तो वो बागेश्वर धाम आए थे एक दो महीना पहले, अब हम भी उनके धाम जा रहे हैं। तो हैदराबाद के बगल में ही है, तो अलग से नहीं जाना पड़ेगा, तो वहां उनके यहाँ कोयम्बटूर जाएंगे, वहां से वापस यहाँ आएंगे। तो जो 22 तारीख से भागवत थी वो 23 तारीख से हो गई है। 22 को कलश यात्रा, 23 से भागवत प्रारंभ, 23 से ही गुरु दीक्षा समारोह, 25 तक और 26, 27, 28 हम चेलों को मिलेंगे। 29 तारीख को वो 5 फिट ऊंची 8 पीरों वाली भूत प्रेतों को निपटाने की शिला का दर्शन सबको होगा। कितनी तारीख को बोलो बोलो बोलो, 29 तारीख को। कब? ये संपूर्ण सूचना है, जो पीछे खड़े बैठ जाओ, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम। अरे आपने हमारा बर्थडे देखा टीवी पे? देखा मोबाइल पे? तो देखा होगा यूट्यूब पे। हमने इस जन्मोत्सव पर बहुत बड़ा संकल्प लिया है, अब तुम लोगों को पूरा करना है, सबको हमको मिलके सबको। 365 दिन होते हैं एक साल में, कितने होते हैं 365 दिन में। अब बागेश्वर धाम से 365 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, मतलब आज भी एक बेटी का कन्यादान का संकल्प पूरा होगा। अब भारत का अद्भुत स्थान बागेश्वर बालाजी का बन गया, जहां 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह होता, जहां 365 दिन में 365 दिन दोनों समय निशुल्क अन्नपूर्णा चलती, जहां 365 दिन में 365 दिन हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। देखो बालाजी की महिमा हिंदुओं सनातनियों से, और हम लोगों की महिमा बालाजी से। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात हिटारो बेली हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। नाम क्या? कबीर दास जी एक बहुत अच्छी बात कहते, कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। आया समझ में? पहली बार हमें भी नहीं आया, फिर से सुनो तुम्हें समझ आएगा। कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। अब आ गया समझ में? कबीर दास जी कहते हम राम जी के कुत्ता हैं।
1: आपके पैर हिलाने से आपका कौन सा ग्रह बिगड़ जाता है? अगर आप भोजन थाली में छोड़ देते हैं तो उससे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आप अपने सामान अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं तो जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है? आपकी आदतों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: श्रीमती यानु जमो लेगो हर्बल कृषि।
2: जब नाकाम हो जाता है मेडिकल साइंस का तंत्र, उम्मीद की लौ जगाता है हर्बल क्वीन का मंत्र। चरक सुश्रुत्र की परंपरा की युगीन देवी, अरुणाचल की यानुंग की चमत्कार की कहानी। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद खोले गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सभी स्टेशन, इंटरनेट सेवा भी बहाल। कनाडा के ओंटारियो में अनाज सिंह ने रचा इतिहास। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ। द्रास में सजा करगिल वॉर मेमोरियल। शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म। बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त। दिख रहा है उत्साह। महाराष्ट्र के जलगांव में भी धूमधाम से हो रहा है पारंपरिक रथ उत्सव का आयोजन। भगवान का रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 से मुकाबला। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर

से निभाई गई सुनावेशा की भव्य और पवित्र परंपरा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुनावेशा यानी सोने के आभूषणों से भगवान का शानदार श्रृंगार, इस दौरान दर्शन के लिए उमड़े लाखों भक्त। 208 किलोग्राम से ज्यादा भारी स्वर्ण आभूषणों से हुई सजावट, भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा का भी भव्य श्रृंगार। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर आयोजित अलौकिक उत्सव, रथों के ऊपर ही भगवान का भव्य स्वर्ण श्रृंगार और दर्शन। बहुड़ा यात्रा के बाद से श्री मंदिर के बाहर ही खड़े हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के रथ। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले निभाई जाती है कई खास रस्में। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के जलगांव में पारंपरिक रथोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सुसज्जित रथ पर सवार होकर निकले भगवान, रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में लगी होड़। आस्था और श्रद्धा में डूबा जलगांव, शहर के कई इलाकों में गुजरी रथ यात्रा। मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर से जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का 19वां जत्था जम्मू से हुआ रवाना। बालटाल रूट से पवित्र गुफा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का 19वां जत्था, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रिस्टोरेशन के काम का रिव्यू किया, कैंप के अधिकारियों के साथ बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्की करने और माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने का निर्देश दिया, यात्रियों के साथ मौसम का रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहा। यूपी के बांदा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगाई रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं, ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। सहारनपुर में कांवड़ रूट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी, खाने की चीजों की गुणवत्ता और साफ सफाई पर रहेगी नजर। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शिरडी साईं मंदिर में दिखा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं को बांटा गया 16 टन साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद। श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद, एकादशी के पर्व पर देश विदेश से आए 75,000 से ज्यादा भक्तों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। आषाढ़ी एकादशी पर शिरडी के साईं बाबा को साक्षात विठल भगवान स्वरूप मानकर लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, साईं बाबा समाधि के चबूतरे पर दिन भर रखी जाती है विठल भगवान की प्रतिमा। रोजाना लाखों की संख्या में साईं दरबार में भक्त टेकते हैं माथा, लेकिन आषाढ़ी एकादशी पर दर्शनों का खास महत्व। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पंढरपुर पहुंचे, आषाढ़ी एकादशी पर श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में महापूजा की। महाराष्ट्र में पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया आषाढ़ी एकादशी का पर्व, अमरावती जिले के पवित्र तीर्थ कौंडेयपुर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त, भजन कीर्तन और विठल विठल के जय घोष के साथ गूंजा मंदिर परिसर। जो श्रद्धालु पंढरपुर नहीं पहुंच पाते वे यहां दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। पंढरपुर में भगवान विठल और रुक्मिणी के दर्शन के लिए पहुंचे लाखों वारकरी, मान्यता है कि यही है माता रुक्मिणी का मायका और भगवान विठल का ससुराल। मान्यता है कि एक महीने पहले अपने मायके कौंडेयपुर से भगवान विठल से मिलने के लिए पंढरपुर की ओर रवाना होती हैं माता रुक्मिणी की पालकी। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठल और माता रुक्मिणी का दिव्य मिलन होता है। इस साल हेमकुंड साहिब यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। जुलाई में भी नहीं रुकी श्रद्धालुओं की आमद,
पहले जुलाई में यात्रियों की संख्या कम हो जाती थी, लेकिन इस बार जुलाई में

0: बढ़ी संख्या। मॉनसून की तेज बारिश में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं कर पाई। दूर दूर से गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए 19 किलोमीटर की करनी पड़ती है कठिन पैदल चढ़ाई। इसके बाद पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं श्रद्धालु। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। इस साल यात्रा बना रही है नए रिकॉर्ड। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को किया याद। जोजला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में 60 दिनों तक चला था कारगिल युद्ध। 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजयी हुआ। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों ने दिल खोल कर दान किया। 10.25 बीघा जमीन के साथ भेंट की 2 मंजिला मकान भगवान को दान किया। भगवान श्री सांवरिया सेठ के चरणों में इस अनूठी भेंट के लिए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया, जताया आभार। देशभर से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद राशि, सोना चांदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं करते हैं अर्पित। यह अनोखी भेंट भी अब उसी कड़ी का हिस्सा है। 6 दिन के इंतजार के बाद फिर गूंजे माता के जयकारे। शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, फिर खुले भवन के कपाट। खराब मौसम के कारण 18 तारीख की रात से बंद कर दी गई थी यात्रा। भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया था फैसला। स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने रचा इतिहास। भारत को दिलाया पहला विश्व जूनियर स्क्वॉश का खिताब। कनाडा के ओंटारियो में हुए फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए आई खुशखबरी। दुनिया की सबसे सफल और लोकप्रिय फुटबॉल टीम्स में शुमार ब्राजील। जल्द कर सकती है भारत का दौरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा इंटरनेशनल विंडो के दौरान कोलकाता में ब्राजील का एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मुकाबला कराने की चल रही है तैयारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने जीता दूसरा T20 मैच। जिम्बाब्वे को 90 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन बनाकर ऑल आउट। ईशान किशन ने खेली 44 गेंदों की पारी तो वहीं 81 रनों की शानदार पारी खेली, लगाए 9 चौके और 2 छक्के। तिलक वर्मा ने बनाए 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन, पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा को मिले 3 विकेट। यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने झटके 2-2 विकेट। सितंबर अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने जा रही 3 मैचेस की वनडे सीरीज में बिना स्टार खिलाड़ियों के उतरेगी टीम इंडिया, तो वहीं बीसीसीआई चुनेगी अलग टीम। कुल 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध। इस सूची में श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, नक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। लगभग एक ही समय आयोजित हो रहे 2 टूर्नामेंट 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत वेस्ट इंडीज सीरीज। एशियन गेम्स में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी क्रिकेट प्रतियोगिता। T20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला खास निमंत्रण। हरारे के इंडिया हाउस में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्मा कुमार से की टीम ने खास मुलाकात। मुलाकात के दौरान कैप्टन श्रेयस अय्यर और अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण को किया गया सम्मानित। बीसीसीआई ने इस खास मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। पीएम मोदी ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से बात की, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति बनी तो वहीं सुधार के संकेत भी देखने को मिले। प्रशासन प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिव सागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत शिविरों का दौरा किया। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पीने के पानी और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से पीर की गली और पोशाना के बीच मुगल रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद। गुजरात के डांग जिले में हुई मूसलाधार बारिश, सापुतारा हिल स्टेशन पर घटा मार्ग पर सुरक्षा दीवार गिरने से कुछ देर के लिए यातायात रुका। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश बनी आफत। अहमदाबाद के चांगोदर के पास गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह पानी में डूबा। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर काम कर रहे 400 से ज्यादा कर्मचारी बाढ़ में पानी में फंसे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला। बारिश के साथ ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने से इंडस्ट्रियल पार्क में तेजी से पानी भर गया। कई फैक्ट्रियां और वेयरहाउस जलमग्न हो गए। पार्क में कई फार्मास्यूटिकल्स और मल्टीनेशनल कंपनीज की यूनिट है। बिहार के सीएम के रूप में सम्राट चौधरी ने 100 दिन पूरे किए। इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए बनी बड़ी सहारा। तो वहीं पीलीभीत में कई जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली। दिल्ली में आज और कल हल्की बारिश की संभावना, 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शोपियां में उफनती धाराओं ने बागों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच महिलाओं और बुजुर्गों को मदद में लगातार जुटी हुई है सेना। कई लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आज लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। इसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांव होंगे शामिल। झेलम नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने से कश्मीर घाटी में लोगों ने राहत की सांस ली। हालात सामान्य होने से पर्यटन गतिविधियों को फिर से रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ी। श्रीनगर में झेलम का जलस्तर कम होने से बाढ़ की भी घटी आशंका। हालात लगातार हो रहे हैं बेहतर। रियासी में हुई झमाझम बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए। बारिश के बाद और भी खूबसूरत नजर आए पहाड़। यहां की हरियाली के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा दिए। सुहाने मौसम का स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। बारिश के चलते मौसम खुशगवार। भारत के लिए गौरव का पल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की आधिकारिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सारनाथ को मिले सम्मान पर पीएम ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, यह सम्मान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: आपके पैर हिलाने से आपका कौन सा ग्रह बिगड़ जाता है? अगर आप भोजन थाली में छोड़ देते हैं तो उससे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आप अपने सामान अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं तो जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है? आपकी आदतों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि शनि देव की कृपा पाने के लिए जीवन से शनि की बाधा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और क्या उसका सही तरीका है, क्या दान करें जिससे शनि की बाधाएं दूर हो जाएं। अब जान लेते हैं दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के दान के बारे में। शनि की वस्तुओं का दान कब करना चाहिए और किस व्यक्ति को शनि का दान करना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर आपके जीवन में शनि की वजह से आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता हो या जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ रहा हो तो शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर शनि के कारण आपके रोजगार में समस्या हो, आपके नौकरी में या आपके व्यापार में, तो शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर शनि के कारण लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हों, लंबे समय से बीमारी आपको परेशान कर रही हो, तब भी शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। समाज का जो निर्बल तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको शनि की वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा जो पद में, स्थिति में, आर्थिक जीवन में आपसे कमजोर हो, आप उसको भी दान कर सकते हैं। शनि के लिए प्रकाश का दान किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, अंधकार के समय ही प्रकाश का दान करना चाहिए। और शनि के लिए अगर छाया का दान कर रहे हैं तो किसी स्त्री को शनि का छाया दान करना ज्यादा बेहतर होगा। शनि के दान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि शनि ग्रह के लिए दान सामान्यतः किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि लाभकारी हो, शनि फायदा पहुंचा सकता हो, ऐसे लोगों को शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि हो,
जिनका जीवन शनि के ऊपर निर्भर करता हो उनको भी शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का, पेट्रोल का या काली चीज का काम करते हैं, स्वाभाविक बात है कि उनका शनि शुभ होगा। ऐसे लोगों को भी शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को सामान्य स्थितियों में शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। किसी दबाव में, प्रेशर में आकर के या बिना मन के भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। जब आप शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो किस नियम का पालन करेंगे? शनि की वस्तुओं का दान शनिवार को करिए, सूर्यास्त के बाद जब अंधकार होने लगे। दान अच्छी वस्तुओं का करिएगा, घटिया और खराब चीजों का दान मत करिएगा। पहले दान की वस्तु को अपने सामने रख करके शनि मंत्र का जप करिएगा, कम से कम 27 बार या 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः ये मंत्र पढ़िएगा। इसके बाद शनि देव से मन में प्रार्थना करिए कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, कृपा की प्रार्थना करते हुए दान करिएगा। शनि के लिए कौन सी चीजों का दान किया जाए ये आगे आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आप शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन से शनि के अशुभ प्रभावों को, शनि की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो क्या दान करना चाहिए? स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल का दान करिएगा, इसको छाया दान कहा जाता है। धन प्राप्त करने के लिए और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए शनिवार को काले कपड़ों का, काले कंबल का, काली दरी का दान करिएगा। दुर्घटनाओं से अगर आप रक्षा चाहते हैं तो शनिवार को काले चने का या काली उड़द की दाल का दान करना अच्छा रहेगा। अगर जीवन में बदनामी से, अपयश से बचना चाहते हैं तो प्रकाश का दान करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोजगार की समस्याओं से अगर छुटकारा चाहते हैं तो लोहे की वस्तुओं का, लोहे की कड़ाही, तवा, चिमटा, इसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शनि देव के दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको स्वास्थ्य में निरंतर समस्या रहती हो तो ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो
और उस घर में जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आता हो उसी कमरे में रहने और सोने का प्रयास करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद खोले गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन सभी, तो वहीं इंटरनेट सेवाएं भी बहाल। कनाडा के ओंटारियो में अनाज सिंह ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म, बड़ी संख्या में इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त, दिख रहा उत्साह। महाराष्ट्र के जलगांव में भी धूमधाम से हो रहा पारंपरिक रथ उत्सव का आयोजन, भगवान का रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से मुकाबला, 3 मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: तो देखिए, कहते हैं कि आदतें ही इंसान को बनाती हैं, कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो कुछ आदतें बुरी होती हैं। तो देखिए, छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना हमारी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैर बहुत हिलाते हैं, कुछ लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ लोग अपने घर को हमेशा अस्त व्यस्त रखते हैं, तो क्या ये छोटी छोटी आदत आपके जीवन पर असर डालता है और आपके भाग्य को बदलता है? आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज का गुड लक मंत्र जान लेते हैं।
6: अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका जीवन बेहतर हो, तो रोज शाम को जब आप पूजा कर लेते हैं या पूजा कर लेती हैं, तो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख करके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, बच्चों के संस्कार और स्वभाव में सुधार होगा।
4: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 26 जुलाई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
6: दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:57 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:34

0: मिनट तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:34 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी छोटी छोटी आदतों के बारे में। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं। तो पंडित जी, किस तरीके से जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो हमारे भाग्य पर असर डालती हैं, इसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, लगभग वैसी ही आदतें आपके जीवन में देखी जाती हैं। और जब आपके अंदर कोई खास आदत आती है तो कुंडली का कोई खास ग्रह प्रभावित हो जाता है। आदत आपके भाग्य से जुड़ी हुई हैं। कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार आपकी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। आप देखिए, किसी की बुध की दशा चलने वाली हो, अचानक से उसको खुशबू का शौक पैदा हो जाएगा, उसको सुगंध की तरफ जाने की इच्छा ऑटोमेटिकली करने लगेगी। शनि ज्यादा प्रभावशाली हो, बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बाल लंबे होते जाएंगे। तो बेसिकली जिस तरह की आपकी आदतें हैं वो दरअसल आपके ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप जैसी आदतें अपने जीवन में बनाते हैं उसके हिसाब से आपके ग्रह कमजोर या मजबूत होते जाते हैं आपकी आदतों के अनुसार। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे बड़े अच्छे ग्रह, हमारे बड़े मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए। जब आप कमजोर ग्रहों को बेहतर करने की आदतें अपनाएंगे तो वो ग्रह बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मजबूत होने शुरू हो जाएंगे।
1: तो पंडित जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, तो ऐसे में ये उनके भाग्य और जीवन पर किस तरीके से असर डालता है, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, बैठे हुए जो भी पैर हिलाते हों, कितने भी ऊंचाई पे हों, कितने भी नीचे हों, कहीं भी रहते हों, बैठे बैठे पैर हिलाने की जो आदत है वो स्पष्ट बताती है कि जो व्यक्ति बैठे हुए लगातार पैर हिलाता रहता है उसका चंद्रमा कमजोर है। कॉन्सेंट्रेशन कमजोर होगा कि आप अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाते। जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं सामान्यतः उनका ध्यान एक जगह पर नहीं होता और वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। और इनको बेवजह में अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। अब आप इस बात को देखिए कि अगर आप ज्यादा टेंशन पालते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहते हों, या कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे झूलते रहते हों। अगर ऐसा हमेशा करते हैं तो इसका मतलब चंद्रमा गड़बड़ है। तो इस आदत को छोड़ दीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अपने शरीर को काबू कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, हाथ पैर हिलाना बंद कर देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, चंद्रमा स्थिर होगा, चंद्रमा ताकतवर होगा। और अगर चंद्रमा ताकतवर होगा तो आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम होता चला जाएगा।
1: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, लेकिन काम बहुत रहेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नाखून चबाने की आदत होती है, ऐसे में उसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, बचपन में तो बहुत सारे बच्चे नाखून चबाते हैं, उनको समझाने बुझाने से वो नाखून चबाना छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो नाखून चबाते हैं और नाखून चबाने की आदत उनके अंदर होती है। इसका कारण क्या है और इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या है? जो लोग नाखून चबाते हैं, आप निश्चित मानकर चलिए उनका सूर्य कमजोर होगा, और नाखून चबाने से आपके सूर्य को तो नुकसान पहुंचेगा ही, आपको भी आंखों की समस्या होगी। जो लोग नाखून चबाते रहते हैं बिना कारण के, उनको अपयश मिलता है, बिना वजह के उनको बदनामी मिलती है। अगर आप नाखून चबाना छोड़ दें तो इस आदत को छोड़ देने से मान सम्मान बढ़ता है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है। और नाखून चबाना अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसा देखा गया है कि आदमी के अंदर थोड़ा धैर्य आता है, थोड़ी स्थिरता आती है। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है, ऐसे लोग भी नाखून बहुत चबाते हैं। तो अगर ये आदत आप छोड़ें तो सूर्य को फायदा होगा, आपके आत्मविश्वास को फायदा होगा, आपका धैर्य और स्थिरता की स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न उदिता ने हमें लिखा है और उदिता हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1990। जन्म का समय शाम के 6:51। जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि 2 साल पहले ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन अब अलगाव की नौबत आ गई है, तो मेरा डिवोर्स कब तक होगा और क्या आगे मेरी दूसरी शादी होगी, जिंदगी बेहतर रहेगी? उदिता, आपकी कुंडली में डिवोर्स का समय फिलहाल चल रहा है और साल 2027 के शुरुआत तक आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स अवश्य हो जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना दिखाई दे रही है कि साल 2028 में आप दूसरा विवाह करेंगी और आपका दूसरा विवाह सफल रहेगा। उदिता, अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंता मत करिए, जो आपने लिखा है, स्वास्थ्य आपका कुल मिला के बेहतर रहेगा। ज्यादातर स्थिति मानसिक तनाव की दिख रही है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-13 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने गले में धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, साथ ही में अपने प्रश्न लिख करके इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब पंडित जी जरूर देंगे। तो चलिए, अब बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न हमें राहुल जी ने लिखा है। राहुल जी ने हमें अहमदाबाद से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 31 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है अहमदाबाद। राहुल कह रहे हैं कि मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं। मैनेजमेंट की पढ़ाई मेरे लिए कैसी रहेगी और क्या मैं आगे पढ़ाई के बाद व्यापार में जाऊं? मेरे लिए व्यापार में जाना बेहतर होगा? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करके नौकरी करिए उम्र के 36 वर्ष तक। अभी भी आप ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी के साथ चाहें तो साइड में MBA भी कर लें, लेकिन जब आप उम्र के 36 वर्ष पूरे करेंगे तब आप व्यापार में जाने के बारे में सोचिएगा। उसके पहले आपका नौकरी करना ही कुल मिला जुला के बेहतर है। आप ऐसा करिए, अपने फोकस के लिए, एकाग्रता और जीवन को बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कुछ लोग उससे बिल्कुल विपरीत यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। घर में जो कपड़े होते हैं और जूते चप्पल, उसे हमेशा बिखेर कर रखना पसंद करते हैं। ऐसे में ये आदत उनके भाग्य पर किस तरीके से असर डालते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: अपने घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को बिखेर कर रखना एक बात तो बताता है कि आप बिल्कुल मैनेज्ड आदमी नहीं हैं, और ये आदत बताती है कि आपका शनि खराब है। शनि का अर्थ क्या होता है? शनि मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। पॉजिटिव शनि का मतलब अनुशासन होता है। और घर में क्लटर इकट्ठा करना, सामान इधर उधर फेंकना, व्यवस्थित न रखना, तो शनि भी खराब है और राहु का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव पैदा होता है। अगर ये आदत आपके अंदर है, आप आजमा कर देखिए, करियर में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा। और ऐसे लोगों के घर में सामान गायब होना, चोरी होना, सामान ना मिलना, ये बार बार होता है। भाई, आप सामान संभाल के नहीं रखेंगे तो उसका गायब होना, चोरी होना बहुत सामान्य सी बात है। इस आदत को छोड़ देने से रोजगार और करियर में स्थायित्व आ जाता है। अपने जूते, अपने कपड़े, अपनी आलमारी, कॉपी किताब, पेन, घड़ियां, अंगूठी, सब कुछ बिल्कुल तरीके से सहेज कर, समेट कर, ऑर्गेनाइज तरीके से रखना शुरू करिए। आपको खुद दिखाई देगा कि जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि शनि पॉजिटिव हो गया है और ये आपके रोजगार और करियर को बहुत बेहतर बना देगा। और घर में अगर सामान व्यवस्थित रखेंगे तो घर के बच्चों की शरारतें कम हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आप अपने घर में चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखें तो आपके रोजगार के लिए बढ़िया है और आपके घर के बच्चों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि जो आदत वो बचपन से अपने माता पिता को करते देखेंगे, भविष्य में वही आदत वो एडॉप्ट करेंगे। ये बात समझ लीजिए।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन से शुभ आदतें हैं जिनको अपनाने से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, और वो ग्रह जो मजबूत होते हैं वो कौन से हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं।
0: देखिए, आपकी अच्छी आदतें अगर जीवन में आएंगी तो आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे? अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। अगर माता पिता के साथ नहीं रहते तो उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करिए। और महिलाओं को बता दूं कि अपने माता पिता का भी ध्यान करिए, सास ससुर भी माता पिता ही हैं, उनका चरण स्पर्श भी करिएगा। ऐसा करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबल होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखते हैं तो आपका शनि मजबूत होता है। और शनि अगर बेहतर होगा आपके अनुशासन में रहने पर, तो याद रखिए जीवन में आपका संघर्ष कम होगा। अपने शयन कक्ष को, बेडरूम को और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। और शुक्र मजबूत होगा तो आप जीवन में चैन से, सुकून से रह पाएंगे। पेड़ पौधों में, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वृक्षों में, पौधों में अगर आप जल डालें और पशु पक्षियों को दाना डालें तो इससे आपका बुध मजबूत होगा। चंद्र पर भी फर्क पड़ेगा और बुध भी आपका बेहतर होगा। अगर आप साल में 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त दान करते हैं या दवा का दान करते हैं तो मंगल मजबूत होता है। चोट चपेट, दुर्घटना, मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलता है। बुजुर्गों की सेवा करें या नियमित रूप से धर्म स्थान में जाएं, मंदिर में जाएं, मंदिर की सफाई करें, मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा करें तो बृहस्पति प्रबल होगा। और बृहस्पति प्रबल होगा इसका मतलब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अपनी थाली का पूरा खाना खाने से और खुद थाली उठाकर रखने से राहु अच्छा होता है। जो लोग थाली में खाना छोड़ते हैं या खाना बर्बाद करते हैं, उनको आगे चलकर पेट की गंभीर बीमारियों से गुजरना पड़ता है। रात में सोने के पहले प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन मेरा बेहतर बीता, आगे के समय में भी अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर प्रार्थना करके आप रात में सोएं तो हर तरह के ग्रहों की समस्या दूर हो जाएगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।

0: नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न शिव प्रकाश जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। इनके जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1955, जन्म का समय सुबह के 10 बजे, जन्म का स्थान है कानपुर। शिव प्रकाश जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है और तमाम तरीके की स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे हो गई हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर रहे। सबसे पहले बता दें शिव प्रकाश जी कि परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय तो देखिए आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेहत के मामले में भी, और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको हो। आप घबरा ज्यादा गए हैं, परेशान ज्यादा हो गए हैं। केवल हड्डियों का ध्यान दीजिए और डॉक्टर जो परामर्श आपको देते हैं डॉक्टर की बात मानिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का आखिरी प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है और वसुधा जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1981, जन्म का समय सुबह के 8 बजे, जन्म स्थान है पंचकुला, हरियाणा। वसुधा जी कह रही हैं कि मैं अभी दिल्ली में नौकरी करती हूं, लेकिन मैं वापस पंचकुला हरियाणा में जा करके अपना कोई व्यापार करना चाहती हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा। वसुधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से

0: अगर आप एजुकेशन सेक्टर का, शिक्षा क्षेत्र का कोई काम करें, शिक्षा से संबंधित स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, कोचिंग सेंटर खोलें या करियर काउंसलिंग जैसा कोई काम करें, तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं और अगले साल आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, तो अप्रैल 2027 के बाद आप अपनी इस योजना पर काम कर सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस समय, उसके लिए आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 26 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या संतान का सुख मिलना या न मिलना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। देखिए, कुंडली में संतान और पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य और कर्म एक ही स्थान से देखे जाते हैं। संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से मिलने वाला सुख, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलता है। आपके संतान का सुख या संतान से सुख, दोनों आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुभ पहर कौन सा है और उसके उपाय क्या हैं।
0: दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें, आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 26 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किन ग्रहों की वस्तुओं का दान करने से लाभ होगा। आज की गुडलक राशि है मीन। इनको बुध और शुक्र ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी, इन समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आपने तमाम उपाय करके देख लिए, आपका समय नहीं बदल रहा है, तो क्या करेंगे? एक अच्छी सी घड़ी खरीदिए, चाहे दीवार घड़ी हो, चाहे रिस्ट वॉच हो, कलाई घड़ी हो, जो भी आप खरीद सकें, इसको किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार में दीजिए जिसका समय अच्छा चल रहा हो, और उस व्यक्ति को कहिए कि घड़ी का प्रयोग करते रहे। जैसे जैसे वो घड़ी का प्रयोग करेगा, आपके समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बात यह है कि बहुत सारे लोग घड़ी उपहार में लेते भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक दीवार घड़ी खरीद करके मंदिर में दे आइए। ऐसा करने से भी आपका बुरा वक्त बदलना शुरू हो जाएगा।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: श्रीमती यानुंग जमोह लेगो हर्बल कृषि।
1: जब नाकाम हो जाता है मेडिकल साइंस का तंत्र, उम्मीद की लौ जगाता है हर्बल क्वीन का मंत्र। चरक सुश्रुत की परंपरा की युगीन देवी, अरुणाचल की यानुंग की चमत्कार की कहानी। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। मौसम के साफ होते ही एक बार फिर से श्री अमरनाथ यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, बारिश और खराब मौसम के चलते रोके गए श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,000 से ज्यादा भक्तों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल के लिए रवाना कर दिया गया है।
8: मौसम के साफ होते ही बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पिछले 6 दिनों से रुकी हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक बार फिर पूरे जयकारों के साथ शुरू हो चुकी है। बारिश और खराब मौसम के चलते रोके गए श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले 6 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ तो श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था का समंदर हिलोरे मारने लगा।
9: 4-5 दिनों से भगवान की मेहरबानी रही कि उन्होंने यहाँ रोक के रखा, इसके बहाने आप सब भक्तों के दर्शन हुए, भगवान का प्रसाद नित्य निमित्त पाने को मिला और शिव शक्ति सेवा मंडल दिल्ली वालों की जो सेवा का भाव है, मतलब बहुत ही शानदार अभिभूत है। हम भी इसमें कैसे सहभागी और सहयोगी बन सके, इसके लिए आप अगले वर्ष अगर हमको याद करेंगे तो सोचेंगे ये भी एक भगवान का हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। सभी भक्त 4-5 दिन से यहाँ ठहरे हुए थे, आज बाबा जी की कृपा से सबकी यात्रा सफल हो, यही भोले भंडारी से प्रार्थना है। बोल बम बम बम।
8: जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से 6,000 से ज्यादा भक्तों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल के लिए रवाना किया गया है। छह दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब यात्रा शुरू हुई तो पूरा माहौल जय भोले के नारों से गूंज उठा।
10: 5 दिनों से जो यात्रा बंद थी, आज आप देख सकते हैं यात्रा जो सुचारू रूप से चला दी गई है और भोलेनाथ जी भी ऊपर से बस आ रहे हैं यात्रियों के ऊपर। लेकिन हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा तेज बारिश मत करना, क्योंकि आगे जो है श्रद्धालु को दिक्कत ना हो और ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। हम भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं।
8: 19 जुलाई से रोकी गई इस यात्रा को आखिरकार शनिवार तड़के हरी झंडी दिखाई गई। इस 18वें जत्थे में कुल 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और साधु संत भी पूरे जोश के साथ रवाना हुए। 223 गाड़ियों के इस विशाल काफिले को बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में बालटाल रूट के लिए रवाना किया गया। दरअसल लगातार बारिश और उधमपुर रामबन स्ट्रेच पर हुए भूस्खलन के कारण एहतियातन यात्रा रोकनी पड़ी थी। अब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाद यात्रा दोबारा पटरी पर लौटी है। इस साल अब तक लगभग 4 लाख से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समापन से पहले हर कोई इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने को आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात करते हैं केदारनाथ धाम की, जहां इन दिनों कुदरत और आस्था का एक अनूठा और अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। एक तरफ केदारनाथ धाम का मौसम कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। कभी बारिश है तो कभी घने कोहरे की चादर, कभी धूप तो कभी ठंड, लेकिन मौसम के इस मिजाज पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। तमाम रुकावटों के बावजूद भक्त बड़ी तादाद में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
8: समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा बाबा केदारनाथ का भव्य धाम, जहां इन दिनों कुदरत का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कभी मूसलाधार बारिश के कारण ठंड बढ़ रही है तो कभी पूरी केदार नगरी घने कोहरे की सफेद चादर में सिमट जाती है, लेकिन कुदरत के इन इम्तहानों के बीच बाबा के भक्तों की आस्था भारी पड़ती दिख रही है। मौसम की ये अनिश्चितता और हिमालय की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन जब दिल में बाबा केदार के दर्शन की आस हो तो हर चुनौती बौनी साबित होती है। कड़ाके की ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम न थमे हैं और न ही डगमगाए हैं। जुबा पर हर हर महादेव का जाप है और आंखों में भोलेनाथ के दीदार की ललक। आस्था का ये सैलाब हर बाधा को पार कर रहा है। अब तक करीब 14,15,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के पावन दरबार में दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा बल भी मुस्तैद है, ताकि खराब मौसम के बीच भी भक्तों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
11: जुलाई और अगस्त का जो माह है ये मानसून से भरा रहता है, और लगभग इस मध्य हमारे मध्य विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों को किस प्रकार से हम कर रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा इसमें व्यापक रूप से मॉनिटरिंग की गई है। लगातार आपदा प्रबंधन की टीमें, NDRF, SDRF, ITBP, तमाम पुलिस के जितने भी जवान हैं, सभी के द्वारा और जितने भी आधिकारिक जो टीमें हैं प्रशासन की ओर से, समस्त विभागों द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं, और विभिन्न प्रकार से सबके द्वारा अलग अलग दिशा में मॉक ड्रिल की तैयारी भी कर दी गई है। और लगभग यदि मैं बात करूं श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति परिवार की ओर से, मंदिर समिति परिवार की ओर से भी जितने भी श्रद्धालुगण श्रावण के इस पवित्र माह में, इस मानसून के पर्व में भी श्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, सभी के द्वारा विभिन्न स्तर से सभी श्रद्धालुओं को किस प्रकार से हम लोग एक अच्छे दर्शन और सब एक दर्शन की जो मनोभाव है, उस मनोभाव से किस प्रकार से हम लोग व्यापक तैयारियां कर सकें, सब वो पूर्ण तैयारियां कर दी गई हैं।
8: केदार घाटी में मौसम भले ही हर मिनट अपना मिजाज बदल रहा हो, लेकिन बाबा के भक्तों का मिजाज और उनका हुजूम एक पल के लिए भी कम नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि हर साल बाबा केदार के दर पर भक्तों की भीड़ रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात करते हैं सावन की तैयारियों से जुड़ी हुई। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व अब शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी सावन से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यहां हर साल लाखों भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव के चरणों में चढ़ावा अर्पित करते हैं। सावन से पहले मंदिर में 18 दान पात्रों को खोला गया।

0: सावन आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। कंधे पर कावड़, मन में विश्वास और जुबा पर भोले बाबा का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ने की तैयारी में है। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि शिव भक्ति किसी एक महीने या किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती, भोलेनाथ के प्रति आस्था ही भक्तों को उनकी चौखट तक खींच लाती है। झारखंड का देवघर, जहां विराजते हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ। सावन शुरू होते ही यहां आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई राज्यों से कांवड़िए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। गंगा जल लेकर लंबी यात्रा तय करने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन शुरू होने से पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान को चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। भक्तों की इसी श्रद्धा का प्रमाण बाबा मंदिर में रखे दान पात्रों से भी मिला है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को खोला गया। मंदिर प्रशासन की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दान राशि को प्रशासनिक भवन में ले जाकर उसकी गिनती की गई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। 24 जुलाई को बाबा मंदिर परिसर में रखे सभी दान पात्र मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोले गए। दान पात्रों से प्राप्त राशि की गिनती प्रशासनिक भवन में की गई। गिनती पूरी होने के बाद कुल 17,67,086 रुपए के अलावा 1,630 नेपाली रुपए, $21 और 17 रियाल प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा कराया। सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण का पर्व है। आने वाले दिनों में देवघर की गलियां कांवड़ियों के जयकारों से गूंजेगी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय होगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: श्रीमती यानुंग जमो लेगो हर्बल कृषि।
3: जब नाकाम हो जाता है मेडिकल साइंस का तंत्र, उम्मीद की लौ जगाता है हर्बल क्वीन का मंत्र। चरक सुश्रुत की परंपरा की युगीन देवी, अरुणाचल की यानुंग की चमत्कार की कहानी। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, इंटरनेट सेवा भी बहाल, हटाई गई बैरिकेडिंग, सफाई का काम हुआ शुरू। कनाडा के ओंटारियो में अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी,
6: फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त, दिख रहा है उत्साह। महाराष्ट्र के जलगांव में भी धूमधाम से हो रहा है पारंपरिक रथ उत्सव का आयोजन, भगवान का रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में, शाम 4:30 बजे से मुकाबला। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपको बता दें, करोड़ों शिव भक्तों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार है, अब दिन वो आने वाला है। अब भक्तों की नजर सावन के पावन महीने पर टिकी हुई है और मान्यता है कि सावन का हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। लेकिन इस बार सावन की शुरुआत की तारीख को लेकर भक्तों के बीच उलझन है। सावन 30 जुलाई से शुरू होगा या 31 जुलाई से, आज इसी उलझन को दूर करेंगे और बताएंगे सावन की सही शुरुआत की तारीख और उसका धार्मिक महत्व।
7: सावन यही वो महीना है जब शिवालयों की घंटियां लगातार बजती हैं, ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, कांवड़ यात्रा पूरे शिखर पर होती है और हर भक्त की जुबान पर बस एक ही नाम होता है, हर हर महादेव, बम बम भोले। लेकिन इस बार सावन की शुरुआत को लेकर लोगों के मन में एक सवाल है। सवाल ये कि सावन 30 जुलाई से शुरू होगा या 31 जुलाई से? आखिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख क्यों बताई जा रही है?
8: लाहौरी मेला जैसे हमारे यहाँ शुरू से ही बंगला के हिसाब से भी और पूर्णिमा के हिसाब से भी चलता है, वो बंगला के हिसाब से 17 तारीख से बंगाली लोग का, बंगाल और आसाम नेपाल इन लोगों का 17 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा संक्रांति से, और पूर्णिमा के हिसाब से जो है 30 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ होगा।
9: श्रावण 17 जुलाई से बंगला के हिसाब से शुरू है और हिंदी के हिसाब से 30 जुलाई से श्रावण स्टार्ट है। तैयारी हम बड़ा बेजोड़ तौर से प्रशासन भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी कर रही है, अग्रिम प्रशासन भी कर रही है और पंडा जी लोग भी अपने मुस्तैद हैं।
7: उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है जिसमें महीने की शुरुआत पूर्णिमा के बाद से होती है, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में अमावस्यांत पंचांग माना गया है जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होती है। इस कारण सावन महीने की शुरुआत को लेकर अलग अलग तिथि सामने आ रही हैं। कई बार पंचांग के अनुसार तिथि किसी दिन की मध्य रात्रि से लगती है, लेकिन उदया तिथि को आधार मानने की परंपरा के कारण व्रत और त्योहारों की तारीखें बदल जाती हैं।
10: कहीं कहीं पर 30 और 31 तारीख में मतभेद की स्थिति दिख रही है दृक् पंचांगों में। दृक् पंचांग वो पंचांग है जिसमें जो ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों के परिवर्तन को देख करके ये देखा जाता है कि वह ग्रह वास्तव में किस राशि में है, जबकि जो प्राचीन पंचांग है उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन तिथियों को लेकर के कहीं कहीं प्राप्त होता है।
7: काशी के पंचांग को देश में सबसे प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार इस साल सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। तो 30 जुलाई से भक्ति के महासागर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी दिन से उत्तर भारत में महादेव की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है।
10: इस वर्ष श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार से हो रहा है। उदयकालिक अवस्था में अगर देखा जाए तो श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार से हो रहा है, परंतु निर्विवाद रूप से काशी के पंचांगों में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई को ही दिया गया है और इसी दिन से श्रावण मास का आरंभ भी हो रहा है, क्योंकि श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ एक दिन पहले 29 जुलाई दिन बुधवार को रात में 7:25 से ही प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। तो उदयकालिक अवस्था में निश्चित तौर पर श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि प्राप्त होने के कारण श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को ही होगा।
7: इस बार का सावन सिर्फ तारीखों की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इस बार सावन में ऐसे दुर्लभ शुभ योग और महासंयोग बन रहे हैं जो सदियों में एकाध बार ही देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सावन यानी भक्ति का उत्सव, आस्था का महासंगम और शिव कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर। मान्यता है कि इस महीने में किया गया जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत, जप और दान कई गुना ज्यादा फल देता है और इस बार सावन सिर्फ शिव भक्ति का महीना नहीं बल्कि दुर्लभ और शुभ ज्योतिषीय संयोगों का भी साक्षी बनने जा रहा है।

0: महीना श्रद्धा का उत्सव है, भक्ति का पर्व है, सन्मय का संदेश है और शिव से जुड़ने का सबसे पावन अवसर है। इस महीने में पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है, इस कारण इसे श्रावण कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने की महिमा को सुनने से ही सिद्धि मिल जाती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण और सोमवार का संबंध अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के सभी सोमवार को देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पूजन सामग्री अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस साल सावन 30 जुलाई से शुरू होगा। इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 2026 में सावन के महीने में कुल 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को और चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा।
1: शास्त्रों में श्रावण मास का ही महत्व बताया गया है विशेष रूप से, जिसमें श्रावण के सोमवार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण के सोमवार का व्रत करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माताएं, बहनें, भाई लोग भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। इस वर्ष कुल 4 सोमवार व्रत किए जाएंगे, 2 कृष्ण पक्ष में और 2 शुक्ल पक्ष में।
0: ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को कई अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं। ये दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस दिन उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही सुकर्मा योग और तृतीय योग का भी निर्माण हो रहा है, जो शुभता और पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देता है। इससे शिव पूजा, रुद्राभिषेक, जप, दान और व्रत का महत्व और बढ़ जाता है।
1: इस वर्ष श्रावण मास में कुछ ऐसे योग हैं जो हमारे शुभ कर्मों को, हमारे कर्मों को, हमारे पूजा पाठ को बड़े ही शुभकारक रूप से प्रदान करने वाले हैं हम सबके जीवन को। पहला है गुरु आदित्य नामक राजयोग। गुरु आदित्य नामक राजयोग सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, पिता के स्वास्थ्य में सुधार के दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभकारक माना जाता है। राजनीति के लिए बड़ा ही शुभकारक होता है। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क में विद्यमान होंगे, शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है बृहस्पति के उच्च रहने से। बुधादित्य नामक योग भी प्राप्त होगा श्रावण मास में, यह भी एक शुभकारक योग है, यह भी बहुत अच्छा योग होगा।
0: प्रदोष व्रत, नाग पंचमी और मासिक शिवरात्रि जैसे पर्व भी इस महीने की आध्यात्मिक महिमा को कई गुना बढ़ा देते हैं। सावन शिवरात्रि का दिन महाशिवरात्रि के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। इस बार सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को है। माना जाता है कि इस दिन की गई शिव साधना और जलाभिषेक का पुण्य साल भर मिलता है। इस दिन कांवड़िये भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और कांवड़ यात्रा का समापन होता है। सावन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:54 से शुरू होगा। श्रद्धालु देर रात 1:52 तक शिवलिंग पर जल चढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन का नाम आते ही सबसे पहले सोमवार और भगवान भोलेनाथ की आराधना का स्मरण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन महीने में मंगलवार का महत्व भी उतना ही विशेष माना गया है। अगर सावन का सोमवार शिव की आराधना का दिन है तो मंगलवार माता पार्वती की उपासना का महापर्व है। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है।

0: सावन में सोमवार की तरह मंगलवार का भी विशेष महत्व बताया गया है। जहां एक तरफ सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, वहीं सावन का हर मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। माँ मंगला गौरी का ये व्रत हर सुहागिन के विश्वास और अखंड सौभाग्य का महापर्व है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और अटूट भक्ति की थी। उनकी उसी तपस्या, धैर्य और समर्पण की याद में मंगला गौरी व्रत किया जाता है। जिस तरह भगवान शिव की कृपा से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, उसी तरह माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार में समृद्धि लेकर आता है।
1: श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का जो व्रत होता है, माता गौरी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। विवाहित महिलाएं दाम्पत्य जीवन की शुभता, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं, तथा कुमारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं।
0: इस बार सावन में चार सोमवार के साथ साथ चार मंगला गौरी व्रत भी होंगे, जो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 25 अगस्त को है। सावन का सोमवार अगर शिव की भक्ति का द्वार है, तो सावन का मंगलवार शक्ति की असीम कृपा का आधार है। जब महिलाएं माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करती हैं, तो माँ गौरी प्रसन्न होकर भक्तों की झोली खुशियों से भर देती है। सावन के इस महीने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ शिव और शक्ति को अलग अलग करके नहीं देखा जाता। सोमवार को आशुतोष भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और ठीक अगले दिन मंगलवार को माता मंगला गौरी का वंदन, ये क्रम भक्तों को जीवन जीने का संतुलन सिखाता है। शास्त्रों के मुताबिक शिव जब शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं, तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। सावन का पवित्र महीना इसी परम सत्य और शिव पार्वती के अलौकिक पुनर्मिलन का साक्षात गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन में सड़कों पर हर कदम पर बोल भम और हर हर महादेव का जय घोष गूंजेगा। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक का संकल्प लेकर करोड़ों शिव भक्त अपनी पवित्र यात्रा पर निकलेंगे और इस बार हरिद्वार से लेकर देवघर तक तैयारियां तेज हैं। कहीं कांवड़ियों के लिए नए सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, तो कहीं आस्था के साथ अनुशासन का संदेश दिया जा रहा है।

0: सावन का महीना शुरू होते ही देश की सड़कें गेरुआ रंग में रंग जाती हैं। हर रास्ता बोलबम के जय घोष से गूंज उठता है। कंधों पर सजी धजी कावड़, होठों पर हर हर महादेव और आंखों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन की आस। कावड़ यात्रा श्रद्धा, तप और त्याग का ऐसा महापर्व है जो हर साल करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में बांध देता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को पवित्र नदियों का जल अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि हर साल सावन में लाखों कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पैदल यात्रा करते हैं और महादेव का जल अभिषेक करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, गर्मी से उनका शरीर जलने लगा, तब गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तभी से सावन में शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
1: तब प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने धारण कर लिया कंठ में, तो भगवान के कंठ में वो भगवान को अति पीड़ा देने लगा। तो जब भगवान को पीड़ा देने लगा तो भगवान के भक्तों ने उनके प्रसन्नता के लिए, उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया। उनको जल की जो शीतलता है भगवान के विष को थोड़ा शांत देती है, तो भगवान उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान का जलाभिषेक करता है।
0: हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाला कांवड़ मेला सकुशल हो सके इसके लिए श्री अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस विशेष अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने नियमों वाला एक पोस्टर भी जारी किया। इसमें कांवड़ियों को कांवड़ उठाने के नियम बताए गए हैं। कांवड़ियों से कांवड़ उठाने के नियमों का पालन करने के साथ वजनी कांवड़ नहीं उठाने का आग्रह किया गया है।
2: शिव भक्तों का आगमन होने वाला हरिद्वार में, जो हर वर्ष हम पूजा करते हैं, माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, शिव भक्तों पर अपना आशीष बना के रखे। और जो हमारा मेला सावन का मेला है, प्रशासन सभी द्वारा मेला सफल हो, कुशल से हमारा मेला संबंध हो, ये हमने माँ गंगा जी से प्रार्थना की है। क्योंकि शिव भक्त दूर दूर से आते हैं। ये 16 नेम का हमने एक पोस्टर बनाया है, हर बार हम लॉन्च करते हैं कि नेम के अनुसार कांवड़ उठानी चाहिए। कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट देकर वजनी कांवड़ ले जा रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में नहीं है। वजन कांवड़ ले जाना ठीक नहीं है।
0: श्रद्धालुओं को बड़े बड़े डीजे लेकर आने से बचने की सलाह भी दी गई है, ताकि उसकी तेज आवाज और धमक से किसी को किसी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
3: ये कावड़ के नियम तो 4 ही कावड़ बताई गई हैं। मेरा शास्त्रों के अनुसार और मेरा अपना मानना है कि जिसके माता पिता जिंदा हो तो उन्हें कावड़ लेके ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कावड़ तो उनके घर है। जो अपने माता पिता को यहाँ आकर के स्नान करा देते हैं तो उनकी कावड़ से ज्यादा उनको महत्व मिलता है, उसके ज्यादा उनको उसका फल प्राप्त होगा। दूसरा नंबर, जो 4 कावड़ों का विधान है उसी के विधान से कावड़ अगर कोई लेके जाता है तो अच्छा होता है। अगर माता पिता जिंदा है फिर भी वो अगर कावड़ लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले वो कावड़ यहाँ से लेके जाए, कावड़ ले जाकर के पहले अपने माता पिता को उस जल से स्नान कराए, उसके बाद फिर शिव का अभिषेक करे तो उसका फल ज्यादा प्राप्त होता है। जाते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। दूसरा नंबर, ये डाक कावड़ और जो बड़े बड़े डीजे आते हैं जिनकी धमक दम दम दम होती है, जो हमारी हार्ट बीट को बढ़ाती है, हमारी किसी आस्था से, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं है, ना हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं जो बड़े डीजे हैं वो नहीं आने चाहिए।
0: उत्तराखंड में इस बार कांवड़ यात्रा में रोड बाइंडिंग और एलिवेटेड ट्रैक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए वाटर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। गंगा घाट और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी ड्रोन कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।
4: उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
0: झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला 2026 की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित 22 मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है। सावन का ये मेला पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से अपने कावड़ में गंगा जल भरकर बोलभम का जय घोष करते हुए बाबा बैद्यनाथ की नगरी पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन के शुरू होने से पहले ही काशी शिव भक्ति के रंग में सराबोर है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। भीड़ प्रबंधन से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त सहज, सुरक्षित और दिव्य दर्शन का अनुभव कर सके।

0: जो सावन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। उस सावन के स्वागत के लिए ये काशी की तैयारी है। काशी केवल एक धाम भर नहीं है, ये शिवत्व का संपूर्ण संस्कार है। सावन में केवल काशी ही शिव के रंग में नहीं रंगती, बल्कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु शिवमय नजर आता है। सावन में हर हर महादेव की गूंज काशी में साधना बन जाती है और ये शिव का लोक और भी अलौकिक नजर आता है। अनुमान है कि सावन में काशी विश्वनाथ धाम में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए इस बार 7 एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। पूरे सावन वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। ऑनलाइन लाइव दर्शन की सुविधा जारी रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। कतारों में लगे श्रद्धालुओं के लिए इंडस्ट्रियल एयर कूलर लगाए जाएंगे। जगह जगह ठंडे पेयजल और ओआरएस की व्यवस्था होगी। धाम परिसर में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
1: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी।
0: मंदिर प्रशासन का कहना है कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। जो श्रद्धालु काशी नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए मंदिर की वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और प्रसारण माध्यमों पर बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने सावन में काशी आने वाले लोगों से अपील की है कि वो निर्देशों का ध्यान रखें।
2: तो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें। भगवान शिव आनंद के देवता हैं, आप आनंद में रहें, आनंद पूर्वक यहाँ पर आएं। धाम की तरफ से यहाँ पर ग्लूकोज की, ओआरएस की, पानी की, पेयजल की, सूक्ष्म जलपान की सारी व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की सारी व्यवस्था की जाएगी। परंतु बहुत बड़ी भीड़ के दृष्टिगत उस समय बैगेज काउंटर हमारे यहाँ बिल्कुल संचालित नहीं होते, तो जो भी आपकी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, पेन है, चाबी का छल्ला है, इस प्रकार की धातु की वस्तुएं हैं, नुकीली वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं अपने ठहरने के स्थान पर, अपने लॉज में, अपने गेस्ट हाउस में, अपने होटल में, अपने आवास पर, रिश्तेदार के यहाँ जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ छोड़ कर आएँ, उन्हें लेकर यहाँ पर ना। एक परिवार के लोग जब आ रहे हैं तो एक तरह की पहचान अपने साथ रखें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें। हालांकि खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन कोई असुविधा उत्पन्न ना आए, इस नाते हम लोग पहले से यह अनुरोध करके रखते हैं।

0: में श्रद्धा भी बहे और व्यवस्था भी सुचारू रहे।
1: सबसे खास बात यह है कि इस बार किसी भी प्रकार का स्पर्श दर्शन, वीआईपी दर्शन या विशेष आग्रह दर्शन पूरी तरह से सावन के दौरान रुका रहेगा और ये रोक, ये प्रतिबंध पूरे सावन पर्यंत तक चलती रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूर वीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त, दिख रहा उत्साह। कनाडा के ओंटारियो में अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, खत्म होने के बाद खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, इंटरनेट सेवा भी बहाल, हटाई गई बैरिकेडिंग, सफाई का काम शुरू। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरार में शाम 4:30 से मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानू जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानू जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानू जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही है, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ प्रकृतिक का साथ सलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का गाय गोरु का बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर डायबिटीज शुगर प्रेशर यूरिक एसिड कुछ भी बीमार आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है वेस्टर्न कंट्री वो लोग स्टाइल रहन सहन खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती हैं।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं अब लोग को कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बांट जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कालिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बर बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना छोड़ के जितना कच्चा चीज नींबू आमला इमली और तेंगा रबक तेंगा चटनी तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कच्चा फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बढ़ने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस हो जाएगा।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की काट बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओलुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस है, सूता हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट। और ये ड्रमस्टिक का सिरका लेना है, ड्रमस्टिक सजना। और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है, वो भी गलत है। और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये। और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीव हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री। और ये हिली का बोलता है बेहरा, ये भी गलत है। और ये लिकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक हमारा आदि में ये भी गलत है। और ये मेहंदी का पत्ता असमिश में जेतु का बोलता है ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमोहलेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं, जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती है। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग जमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग जमोलेगो हर्बल कृषि।
0: यानुंग जमोलेगो को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके, कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग जमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था वो खाने वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो यह है कि यानुंग जमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती हैं।
4: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के, वो गैल्ब्रेडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए, दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग जमोलेगो बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग जमोलेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जबोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेओ के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
5: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन तंत्र पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ ये बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्तर भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेओ के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
6: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: शनि की बाधाओं से मुक्ति के लिए क्या दान करना चाहिए, शनि की वस्तुओं का दान किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या है शनि ग्रह के दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
15: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधरपाना की रस्म, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त, दिख रहा उत्साह। कनाडा के ओंटारियो में अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनी, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई, हटाई गई बैरिकेडिंग, सफाई का काम हुआ शुरू। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि शनि देव की कृपा पाने के लिए जीवन से शनि की बाधा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और क्या उसका सही तरीका है, क्या दान करें जिससे शनि की बाधाएं दूर हो जाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:57 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:34 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:34 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के दान के बारे में। शनि की वस्तुओं का दान कब करना चाहिए और किस व्यक्ति को शनि का दान करना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर आपके जीवन में शनि की वजह से आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता हो या जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ रहा हो तो शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर शनि के कारण आपके रोजगार में समस्या हो, आपके नौकरी में या आपके व्यापार में, तो शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर शनि के कारण लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हों, लंबे समय से बीमारी आपको परेशान कर रही हो, तब भी शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। समाज का जो निर्बल तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको शनि की वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा जो पद में, स्थिति में, आर्थिक जीवन में आपसे कमजोर हो,
आप उसको भी दान कर सकते हैं। शनि के लिए प्रकाश का दान किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, अंधकार के समय ही प्रकाश का दान करना चाहिए। और शनि के लिए अगर छाया का दान कर रहे हैं तो किसी स्त्री को शनि का छाया दान करना ज्यादा बेहतर होगा। शनि के दान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शनि ग्रह के लिए दान सामान्यतः किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि लाभकारी हो, शनि फायदा पहुंचा सकता हो, ऐसे लोगों को शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि हो, जिनका जीवन शनि के ऊपर निर्भर करता हो, उनको भी शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का, पेट्रोल का या काली चीज का काम करते हैं, स्वाभाविक बात है कि उनका शनि शुभ होगा। ऐसे लोगों को भी शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को सामान्य स्थितियों में शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। किसी दबाव में, प्रेशर में आकर के या बिना मन के भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। जब आप शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो किस नियम का पालन करेंगे? शनि की वस्तुओं का दान शनिवार को करिए, सूर्यास्त के बाद जब अंधकार होने लगे।
दान अच्छी वस्तुओं का करिएगा, घटिया और खराब चीजों का दान मत करिएगा। पहले दान की वस्तु को अपने सामने रख करके शनि मंत्र का जप करिएगा, कम से कम 27 बार या 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः ये मंत्र पढ़िएगा। इसके बाद शनिदेव से मन में प्रार्थना करिए कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, कृपा की प्रार्थना करते हुए दान करिएगा। शनि के लिए कौन सी चीजों का दान किया जाए ये आगे आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, सूर्य देव को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन से शनि के अशुभ प्रभावों को, शनि की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो क्या दान करना चाहिए? स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल का दान करिएगा, इसको छाया दान कहा जाता है। धन प्राप्त करने के लिए और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए शनिवार को काले कपड़ों का, काले कंबल का, काली दरी का दान करिएगा। दुर्घटनाओं से अगर आप रक्षा चाहते हैं तो शनिवार को काले चने का या काली उड़द की दाल का दान करना अच्छा रहेगा। अगर जीवन में बदनामी से, अपयश से बचना चाहते हैं तो प्रकाश का दान करें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोजगार की समस्याओं से अगर छुटकारा चाहते हैं तो लोहे की वस्तुओं का, लोहे की कड़ाही, तवा, चिमटा, इसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शनि देव के दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको स्वास्थ्य में निरंतर समस्या रहती हो तो ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो, और उस घर में जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आता हो उसी कमरे में रहने और सोने का प्रयास करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

Yeah.

आगे इसको उठा के पीछे तो ले जाओ छटरी के बढ़िया, ये भूत कम कर रात जाना चलो छटरी के बड़े ऊंचा चंदा हम अच्छा बढ़िया की गंगा रहे तो बीच में

बोलो बालाजी महाराज की, बोलो चमिका वाले बाबा की, बोलो समाधि वाले बाबा की, बोलो सच्चे संतों की, बोलो अपने अपने गुरु और गोविंद की, बोलो अपने अपने मताई बाप की, बोलो सीताराम राम भगवान की, बोलो भाई प्रेमनाथ सरकार की, बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद की, आज के आनंद की हमारी जय, जो हम टाइम पे बाहर आ गए। सीताराम पागलो, हम तिरुपति बालाजी और दिल्ली की यात्रा करते हुए वापस बागेश्वर धाम लौट के उल्लू घर को आए। 4 जुलाई का बर्थडे मनाने गए थे दिल्ली, वहां ऐसी भीड़ हो गई कि हम और बर्थडे का मरंडे मनक मनाते हुए बच गए। वो वहां बहुत भीड़ थी, तो बड़ी मुश्किल से 4 जुलाई का कार्यक्रम वहां पूरा हुआ दिल्ली में। उसी दिन हमने कान पकड़ लिए कि अपना धाम है सबसे प्यारा, देख लिया हमने जग सारा, अब लौट के बाहर बर्थडे कट्टे नहीं मनाएंगे। इसीलिए अब 4 जुलाई वाला बर्थडे कल यहाँ पे रखा है, यहीं पे बढ़िया मनाएंगे। वहां जान 3 शहर है, वहां वही बर्थडे मनाएंगे। एक एक करके लाइन से सबको मिलेंगे। कल सुबह से यही चलेगा कि कल सुबह से लाइन से एक एक करके सबको मिलेंगे और शाम को फिर ऑनलाइन हवन यहीं पर करवाया जाएगा। इसके बाद में परसों हम हैदराबाद जा रहे हैं, जलवा देखो जहां 7% से ज्यादा रहते हैं वहां भी अपनी कथा हो रही है। देखो तो हनुमान जी के जलवा। इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं, खासकर भारत के मुसलमान, उनको ये बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, ये सही समय है घर वापसी करने का। इससे बेहतर समय नहीं हो सकता घर वापसी का, यही सही समय है। घर वापसी करो, बढ़िया अपने पूर्वजों को याद करो, तुम्हारे पूर्वज भी तुमको आशीर्वाद देंगे और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वो हमारी सुनते ही सब कुंभ लगता कि हम थोड़ा उल्टे हैं। नहीं, हम तुम्हारा भला चाहते, हम तुम्हारी फिर से मूल विचारधारा में जोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदू है और भारत हिंदू राष्ट्र है। अब वो बात अलग है, कोई अपने बाप को बाप ना बोले, वो बात अलग है। भाई बच्चे में ही खामी है, बच्चे में ही कमी है, तो भगवान की अनुकंपा से हम वहां वहां जा रहे जहां जहां सनातन धर्म की और हिंदुओं की आवश्यकता है। हमें बहुत लोगों ने कहा मत जाओ, कथा मत करो। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कथा करेंगे, तो क्या एलियन आएंगे, कौन करेगा है? हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ सनातन के प्रचार के लिए, हिंदुत्व के विचार के लिए, बालाजी की अर्जी के लिए, प्रभु की मर्जी के लिए। खुलेगा पर्चा, होगी चारों तरफ हनुमान जी की चर्चा। खुलेगा पर्चा, होगी बालाजी की चारों तरफ चर्चा, और फिर फंकना ना लगेगा कोई खर्चा। देखो कितना बढ़िया बन गया। तो हैदराबाद जा रहे हैं 3 दिन कथा सुनाने। एक विशेष सूचना

चीना उन्होंने ऐसे सिखाया, क्या कहना, भारत की ऐसी दिव्य विभूति महापुरुष पूज्य श्री ईसा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु जी, तो वो बागेश्वर धाम आए थे एक दो महीना पहले, अब हम भी उनके धाम जा रहे हैं। तो हैदराबाद के बगल में ही है, तो अलग से नहीं जाना पड़ेगा, तो वहां उनके यहाँ कोयंबटूर जाएंगे, वहां से वापस यहाँ आएंगे। तो जो 22 तारीख से भागवत थी वो 23 तारीख से हो गई है। 22 को कलश यात्रा, 23 से भागवत प्रारंभ, 23 से ही गुरु दीक्षा समारोह है, 25 तक, और 26, 27, 28 हम चेलों को मिलेंगे। 29 तारीख को वो 5 फीट ऊंची 8 पीरों वाली भूत प्रेतों को निपटाने की शिला का दर्शन सबको होगा। कितनी तारीख को, बोलो बोलो बोलो, 29 तारीख को। कब? ये संपूर्ण सूचना है, जो पीछे खड़े बैठ जाओ, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम। अरे आपने हमारा बर्थडे देखा, टीवी पे देखा, मोबाइल पे तो देखा होगा, यूट्यूब पे। हमने इस जन्मोत्सव पर बहुत बड़ा संकल्प लिया है, अब तुम लोगों को पूरा करना है, सबको, हमको मिलके सबको। 365 दिन होते हैं एक साल, कितने होते हैं 365 दिन में, अब बागेश्वर धाम से 365 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। मतलब आज भी एक बेटी का कन्यादान का संकल्प पूरा होगा। अब भारत का अद्भुत स्थान बागेश्वर बालाजी का बन गया, जहां 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह होता, जहां 365 दिन में 365 दिन दोनों समय निशुल्क अन्नपूर्णा चलती, जहां 365 दिन में 365 दिन हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। देखो बालाजी की महिमा हिंदुओं सनातनियों से, और हम लोगों की महिमा बालाजी से। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, जात हितारो बेली हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम क्या। कबीर दास जी बहुत अच्छी बात कहते, कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। आया समझ में? पहली बार हमें भी नहीं आया, फिर से सुनो तुम्हें समझ आएगा। कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। अब आ गया समझ में? कबीर दास जी कहते हम राम जी के कुत्ता हैं, अगर कुत्ता दरवाजे दरवाजे पर घूमेगा तो सब गुटकारेंगे, लेकिन यदि वो एक ही दरवाजे पर रहेगा तो भोजन भी मिलेगा और गुटकार भी नहीं सहनी पड़ेगी। वही हम तुमसे कहना चाहते, पागलो हम भी तुम्हारी तरह भटकते थे, हम भी तुम्हारी तरह जगह जगह जाते थे, हम भी तुम्हारी तरह बालाजी के लिए, भक्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी के प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए दर दर भटकते थे। भैया कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जब से इनके चरण पकड़ लिए, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए, एक दर के हो गए, तो सब अपने हो गए। क्या देश, क्या विदेश, क्या नेता।
क्या अभिनेता, क्या राजा, क्या प्रजा, इनके जब से हुए सब अपने हो गए। वरना जब इनके नहीं थे तो हमें कौन पूछता था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। इसलिए भटको मत, बालाजी के चरणों में अटको। बहुत भटक लिया आपने, बहुत धक्के खा लिए, काय को बेइज्जती करवा रहे, काय को बेफजूल। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, यहाँ तुम हमारे चक्कर में मत आओ, यहाँ तुम प्रचार के चक्कर में मत आओ, बागेश्वर धाम पर बालाजी के चक्कर में आओ। इनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। इन्होंने सबकी सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। दिनों को सहारा दिया, तुमको भी देंगे। पागल, उन्हें सब कुछ सुनाई देता। हमारे सन्यासी बाबा बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारी सब जानते हैं। वही तो हमें बता देते, हम तुम्हें बता देते। तुम्हें लगता हमें पता चल जाता? नहीं, सन्यासी बाबा हमें बताते, हम तुम्हें बता देते। वो सन्यासी बाबा बालाजी ही है, उनके ही भगत है। इसलिए हम कहेंगे तुम हमारे चरण मत पकड़ो। हम तो उल्लू आदमी है, गाँव के पढ़े लिखे है नहीं है, हम ऐसे सीधे सीधे साधे हैं। हमारे मुंह से कब क्या निकल जाए कोई ठिकाना नहीं, ब्रेक है नहीं हमारी गाड़ी में। तो हमारे चक्कर में ना पड़ो, पागल आदमी। तुम एक काम करो, हम जिनके चक्कर में है तुम उन्हीं बालाजी के चक्कर में हो जाओ। हम तुम्हें दावे के साथ कह रहे, जो तुम पर हंस रहे उनके मुंह पर तमाचा ना लग जाए तो कहना। हाँ, जो तुम्हारे मजाक बना रहे उनको जवाब ना मिले तो कहना, तुम्हारी जिंदगी ना बन जाए तो कहना। यहाँ से लाखों लोगों की खाली झोली भरी है बागेश्वर बालाजी से। तुम भटकना बंद कर दो। और भैया, तुम बाबाओं के चक्कर में भी मत पड़ो, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग तुम्हारे भूत भगाने के चक्कर में अपने भूत भगा लेते। हाँ, समझ रहे हम क्या कहना चाहे। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो कई लोगों को पेट खराब हो जाता है। और कह भी दे तो कौन सा, हमने खा लिया पर उसने जाना। इसलिए साफ बात यही कहना। अच्छा, कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहेगा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहेगा, कौन कौन बालाजी का अनुभव करना चाहेगा, शक्तियों का अनुभव करना चाहेंगे, सन्यासी बाबा को देखना चाहेंगे, उनकी ताकत देखना चाहेंगे। पेट खराब हो जाएगा, ताकत नहीं होगी। हाँ, लेकिन जीवन भर बालाजी का होना चाहेंगे। हाँ, बताओ, बोलो, पक्का पक्का, बदलोगे तो नहीं, बिगड़ोगे तो नहीं? ठीक है, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी तब तक सुबह शाम दरबार लगा लगा करके उनसे प्रार्थना करेंगे।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
7: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
15: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेदिक आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
20: Schwarber to right field, and it will leave.
19: From the first pitch of the season to the stretch run,
20: that's the ball game.
19: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
23: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त
0: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। ओडिशा के पुरी धाम में आज निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं भक्त, दिख रहा है उत्साह।

0: पहली भारतीय खिलाड़ी बनी फाइनल में, मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, इंटरनेट सेवा भी बहाल, हटाई गई बैरिकेडिंग, सफाई का काम हुआ शुरू। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से मुकाबला। 3 मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BBR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाति काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर उनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस कारबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। अब अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ही साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
2: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक ईसीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका ईसीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकराकर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: अब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्स प्लस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरे मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, वो उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने Sea Harrier जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5-4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजरायल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा।
4: डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की Mk-1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि Mk-2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र Mk-2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है।
0: आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है।
4: डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
5: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
4: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है। साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
7: जाती है। Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
8: March ki soch dikhati hai, to kuch dikhati hai vikas ki tasveer. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर

0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, दरअसल ये एक ऐसी सूची है जिसके तहत भारत स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद एक पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिसमें भारत खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा, फिर चाहे वो हमारे फाइटर जेट्स हो, ड्रोन्स हो या फिर दूसरे सैनिक साजो सामान, हर चीज भारत अपने यहाँ आत्मनिर्भर भारत बनते हुए इसे बनाएगा। अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 4,666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, L&T, भारत फोर्स और MSME को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। FDI में छूट, डिफेंस में 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें IDEX और TDF स्कीम्स से स्टार्टअप्स और MSMEs को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में TDF के लिए 60 करोड़ रुपए और IDEX प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए।
2: हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में, डिफेंस प्रोडक्शन में होना पड़ेगा। तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एमनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है।
1: प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
2: सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो PSUs हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं, टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही कॉरिडोर हैं। डिफेंस कॉरिडोर, दरअसल ये एक ऐसे विशेष क्षेत्र है जहां पर

0: हथियारों से लेकर सेना के तमाम साजो सामान को बनाया जाता है। यहीं पर रिसर्च भी होती है। सरल भाषा में और सरल शब्दों में अगर इसको समझाना पड़े तो सेना की हर जरूरत का सामान आपको इस डिफेंस कॉरिडोर में मिल जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर का मकसद है कि भारत अब हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान और उनके जरूरी पार्ट्स विदेशों से न मंगाए बल्कि खुद बनाए और दूसरे देशों को भी निर्यात करे। इनमें सबसे खास है टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम रिमेल्टिंग यूनिट में से एक बताया जा रहा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के इंजन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और यहाँ तक कि नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों में होता है। ये मटेरियल हल्के होते हैं मगर बेहद मजबूत और हीट रेजिस्टिंग भी होते हैं। इस प्लांट से भारत तेजस, AMCA, नए जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और एडवांस ड्रोन के लिए जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाएगा।
1: प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जो मेजर प्राइवेट प्लेयर हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, महिंद्राज हैं, कल्याणी ग्रुप हैं, L&T हैं, अडानी एरो सिस्टम है, तमाम लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। जब जिसमें कि जो हमारा जो एडवांस टोर्ड गन सिस्टम है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर ने बनाया हुआ, तो एक तरीके की खुली छूट है और साथ में डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उनको एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम नाउ सर हिंदुस्तान की आर्मी के लिए डिफेंस का प्रोडक्शन ना करके एक उनको मल्टी फेरियस आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन प्राइवेट प्लेयर्स को जो हिंदुस्तान की नीड को पूरा करने के बाद बाहर के भी मार्केट उनके लिए उपलब्ध है।
0: कॉरिडोर से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए हथियार की सप्लाई से लेकर उसकी मरम्मत सब कुछ आसान होगा। राजस्थान में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। अभी तक अगर पाकिस्तान से युद्ध होता था तो हम तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बने डिफेंस कॉरिडोर पर ही निर्भर थे, यानी हथियारों की सप्लाई, मरम्मत से लेकर तमाम चीजों के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पर निर्भरता, जिसमें काफी समय लगता है, संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड ने राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनाने से पाकिस्तानी सीमा पर हथियारों की सप्लाई बेहद आसान हो जाएगी। आज भारत दुनिया में अपनी रक्षा क्षमताओं के मामले में कई इलीट ग्रुप्स का सदस्य है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है बल्कि उन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। भारत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2004 से 2014 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 4312 करोड़ रुपए था, वो साल 2014 से 24 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 की ही बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 12.04% की बढ़ोतरी। भारत का लक्ष्य है साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना।
1: डिफेंस कॉरिडोर है वो इनवाइट करता है तमाम डिफेंस का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक जमीन मुहैया कराने और वो टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेके आए, एक उनको एक कॉरिडोर, एक जगह मिली हुई प्रोडक्शन के लिए जिसके तहत वो टाइटेनियम या सुपर अलॉय बना सकते हैं। ये टाइटेनियम देखिए एक ऐसा स्ट्रांग धातु है जिसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके तमाम फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट हो। इसी तरह सुपर अलॉय जब आप बनाते हैं तो वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आयरन का सुपर अलॉय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जा रहा है, क्या वो एवियोनिक्स के लिए जा रहा है, क्या वो गन सिस्टम में यूज होना है। इन सारी चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करते हैं और हाई क्वालिटी का इस तरीके का अलॉय या टाइटेनियम बनाते हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है।
0: आत्मनिर्भरता की यात्रा में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और इस वक्त कई ऐसे देश हैं जो रक्षा के मामलों में काफी तक भारत पर डिपेंड भी हैं, भरोसा भी कर रहे हैं और 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे देशों को रक्षा उत्पाद भेज रही हैं। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 225,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई जंगें देखी और इन जंगों से सबक भी लिया और सबक लेते हुए किसी और देश पर निर्भर ना होते हुए खुद को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और ये बात दिखाती है कि किस तरीके से न सिर्फ भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि कई देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा भी कर रहा है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं के बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था। यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में ही देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही दो प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स। भारतीय आयुध कारखाना दरअसल 41 निर्माण इकाइयों का एक समूह है जहां पर भारतीय सेना के लिए हर तरह के साजो सामान को तैयार किया जाता है। गोला बारूद से लेकर बड़े हथियारों तक सब कुछ यहां बनते हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि क्वालिटी के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज न।
2: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है।
0: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दरअसल ये सेना की वो ब्रांच है जहां पर गोला बारूद, हथियार, यहां तक कि सेना की पहनने की तमाम ड्रेसेस भी और साथ ही साथ दूसरे उपकरण भी यहां पर बनाए जाते हैं और यहीं से सेना को सप्लाई भी किए जाते हैं।
3: ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं, जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। हमारी जो पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं।
2: आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था, सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।
3: DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी, और DRDO ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। DRDO ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं, और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो DRDO ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की है।
2: साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया।
0: तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नींव रखी। हालांकि इससे पहले 1954 में BEL और 1958 में DRDO की स्थापना हो चुकी थी। हमारे पास 1962 युद्ध की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हथियार, फाइटर प्लेन, मिसाइल तो है ही, अब हम परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं।
2: के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये GDP के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में GDP के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया और इसके तहत भारत ने MiG-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। DRDO ने भी विकास किया। इसके बाद DRDO, BEL, BDL ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया।
3: इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी, और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था, और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलाबरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलाबरेशन हो, या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलाबरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना।
2: भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।

0: साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ चार ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लॉन्स मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था।
1: मिसाइल प्रोग्राम को लेकर दरअसल भारत में सुगबुगाहट 70 के दशक में शुरू हुई। 1970 में डीए यानी डिफेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पीएमओ को एक खत लिखा और बताया कि चीन 1000 मील तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है और अगर भारत ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो हम पीछे रह सकते हैं।
0: उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी जिसका नाम रखा गया था नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी।
1: बालासोर की टेस्ट रेंज निर्माणाधीन थी और इसीलिए यह तय किया गया कि स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए इसे श्रीहरिकोटा से टेस्ट किया जाएगा। 25 फरवरी 1988 को सतह से सतह पर मार करने वाली पहली पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
0: पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश ही खड़े थे। अगले 4 दशक में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं।
1: प्रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get the Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, रक्षा मंत्री ने किया नमन, शूरवीरों का आभार जताने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कारगिल के वीर शहीदों को याद किया, वाटर कंजर्वेशन पर भी बात की, खेलों में भारत के युवाओं के प्रदर्शन को सराहा। कनाडा के ओंटारियो में अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। बारिश के बाद पहलगाम मार्ग प्रभावित, अस्थायी रूप से बंद किया गया, मरम्मत का काम जारी, बालटाल मार्ग से जारी है यात्रा। सीकर में खाटू श्याम मेले में जुट रही भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं का दिख रहा उत्साह, बाबा श्याम का हुआ अलौकिक श्रृंगार। धनबाद के आईआईटी आईएसएम के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, औद्योगिक कचरे से बिना सीमेंट के बनेगा हाई स्ट्रेंथ पावर ब्लॉक, मिला पेटेंट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हं।

काल भैरवाय नमः। मंत्र बड़े बारीकी से नोट करिए, ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। अगर आप जीवन में किसी बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, या कोई स्वास्थ्य की भयंकर समस्या है, या तंत्र मंत्र की समस्याओं से परेशान है, तो इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए भगवान भैरव के चित्र के सामने। काल भैरव भगवान का चित्र या मूर्ति रखिए, उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ये मंत्र रोज शाम को कम से कम 108 बार यानी एक माला या कम से कम 3 माला इस मंत्र का जप करिए। समय लगेगा, आराम से करिएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे आपका बड़े से बड़ा संकट कट जाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों का विवाह होता है, कुछ लोगों का विवाह असफल हो जाता है, नहीं चल पाता, कुछ लोग अपने विवाह को झेलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और कुछ लोगों का विवाह सफल होता है। तो आखिर विवाह की सफलता आती कैसे है? कौन से ग्रह आपके विवाह को अच्छा और सफल बनाते हैं? देखिए, विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दोनों आचार्य जिम्मेदार हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति, जो दोनों गुरु प्लैनेट हैं। दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, दोनों की बड़ी भूमिका है विवाह होने के मामले में। और इन दोनों में भी शुक्र विवाह कराने के लिए और वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विवाह सफल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे होते हैं शुक्र और चंद्रमा। शुक्र आपकी भावनाओं का स्वामी है, आपके इमोशंस का मालिक है, और चंद्रमा आपके मन का मालिक है। तो जहां भावना बहुत अच्छी हो, इमोशंस बहुत अच्छे हो और चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए, मन लगाकर जीवन को चलाया जाए, वहां विवाह सफल होता है। जब कुंडली मिलाते हैं तो एक चीज पर बड़ा विचार करते हैं, उसे कहते हैं ग्रह मैत्री, यानी जो वर है लड़का है उसकी राशि और जो वधु है दुल्हन है उसकी राशि, इन दोनों की आपसी कंपेटेबिलिटी देखी जाती है, इन दोनों की आपसी स्थिति को देखा जाता है और इनकी राशियां मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं। जब आप शादी कर रहे हैं, एक की राशि का स्वामी है शनि और दूसरे की राशि का स्वामी है सूर्य, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, मानसिक संतुलन पैदा नहीं होगा। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं मेंटल बैलेंस आ सकेगा, क्योंकि दोनों राशियों का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग अलग होता है। अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन की स्थिति अलग अलग होती है। मेष राशि का वैवाहिक जीवन जैसा होगा, उसके उलट कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अपोजिट होगा, क्योंकि हर राशि के लिए विवाह का स्वामी अलग है, परिवार का स्वामी अलग है। ऐसी स्थिति में राशियों के विवाह का मामला बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप पहले ये समझ लीजिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति है क्या।
और उसके बाद अगर आप छोटे छोटे उपाय करें तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रख सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। यानी पहले तो आप ये समझिए कि आपकी राशि के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल क्या है, और जब आप उसकी मुश्किल को समझ लें तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। अब हम आपको बताते हैं कि कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्यतः कैसी रहती है। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन का स्वामी स्वयं शुक्र है। इनका परिवार और इनका विवाह दोनों शुक्र के पास है, और शुक्र अच्छी भावना, कोमल भावना, सपोर्ट सिस्टम इसको बढ़िया बना देता है। तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। मेष वालों का जो जीवन साथी होता है, यानी मेष राशि की पत्नी है तो उसका पति, या मेष राशि का पति है तो उसकी पत्नी, ये ईमानदार और समझदार दोनों होते हैं। अच्छा जीवन साथी इनको आराम से मिलता है। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत कब आती है? इनकी चंचलता के कारण। अक्सर इधर उधर भटक जाते हैं, अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, या जीवन में जरूरत से ज्यादा इनके अंदर आकर्षण पैदा हो जाता है, तो अपोजिट सेक्स की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। और उस चक्कर में होता क्या है कि इनका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अगर मेष राशि वाले इधर उधर ना भटकें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, तो सामान्यतः मेष वालों का वैवाहिक जीवन आप अच्छा देख पाएंगे। अगर आपकी राशि मेष है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो देखिए, आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम श्री सूक्तम पढ़ेंगे। श्री सूक्तम या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र मुख्यतः धन के लिए पढ़ा जाता है। आपको माता लक्ष्मी की अलग से उपासना करनी है, जैसे ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें, या एक स्तुति है लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, इसका रोज शाम को पाठ करिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब वृषभ राशि की बात कर लें। वृषभ राशि के विवाह पर दो ग्रहों का असर होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है मंगल, और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है बुध। तो जरा अलग सा मामला होता है वृषभ वालों का। और आम तौर पर होता क्या है कि वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है, तो मेंटल सेंसिटिविटी, मानसिक ताकत, जिद, क्रोध, एग्रेशन, वो थोड़ा सा वृषभ वालों के पास ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनकी राशि वृषभ है उनका वैवाहिक जीवन एवरेज है। अब इनके सप्तम भाव की विवाह की जो राशि है वो होती है वृश्चिक, और इनके जीवन साथी का स्वामी होता है मंगल।
तो इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे प्रेम तो करता है, निसंदेह प्रेम करता है, प्रेम करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है, लेकिन बुद्धि के तौर पर वो अलग होता है। वृषभ वालों की बुद्धि जिस रास्ते चलती है, उनके जीवन साथी की बुद्धि आम तौर पर उस रास्ते पर नहीं चलती है। वृषभ वाले जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो बड़ी मजबूत राशि है, मन को बड़ा मजबूत बनाती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं और इनके अंदर पजेसिव होना बहुत होता है कि मेरा पति मेरी पत्नी, ये जो पजेसिव होना है, अपने जीवन साथी को स्पेस नहीं देते, जीवन साथी के जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है, जो अति संवेदनशीलता है, छोटी छोटी बातों पर दिनों कई दिनों तक मुंह फुलाए रहते हैं, ये जो संवेदनशीलता है ये निश्चित रूप से इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती है। वृषभ वालों का ओवर डोमिनेंस और उनका मेंटल लेवल ये जीवन साथी के लिए कभी कभी मुश्किल बन जाता है। इनको नियमित रूप से मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, रोज सुबह 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए, या ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों के विवाह पर दो ग्रहों का इंपैक्ट होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है चंद्रमा, जो बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है। लेकिन मिथुन राशि में बृहस्पति का रोल अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर साधारण होता है, एवरेज होता है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, कुल मिला के जिंदगी चल जाती है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इनका जीवन चलता रहता है, लेकिन मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में आप देखेंगे कि अक्सर ऐसा लगेगा कि अब टूटी शादी कि तब टूटी शादी, लेकिन शादी टूटती नहीं है, शादी चलती रहती है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विवाह इनका चलता रहता है। इनका जो जीवन साथी होता है मिथुन वालों का, अब चूंकि विवाह का स्वामी बृहस्पति है, जीवन साथी का स्वामी बृहस्पति है, तो मिथुन वालों का जीवन साथी कभी कभी बहुत अहंकारी होता है, बड़ा इगोइस्टिक होता है, अपनी पढ़ाई अपने ज्ञान अपनी काबिलियत को लेके उसके अंदर अहंकार पैदा होता है और मिथुन वाले थोड़े सनकी टाइप के हो जाते हैं कभी कभी। अब जीवन साथी इगोइस्टिक और मिथुन वाले सन की नतीजा ये है कि बार बार वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और बार बार मुश्किलें इनको परेशान करती हैं। मिथुन वाले चाहते तो हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक चले, लेकिन कभी कभी वो इसको संभाल नहीं पाते हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले, तो आपको भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। छोटा सा तरीका है, एक लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं, रोज सुबह शिवलिंग पर चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय या कम से कम सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप जितना शिव जी की पूजा करते जाएंगे आपका वैवाहिक जीवन उतना ही बेहतर होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि, इनके वैवाहिक जीवन में झंझट होती ही है।
कर्क वालों को कम कर दीजिए, लेकिन अगर कर्क लग्न है राशि तो तब भी बच जाती है, लेकिन अगर आपका लग्न कर्क लग्न है 90% मामलों में वैवाहिक जीवन में उपद्रव होगा। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको वैवाहिक जीवन में बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता। इसीलिए कर्क वाले अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो उनकी शादी चलना असंभव है। इसीलिए कर्क वालों को सरेंडर करके अपना वैवाहिक जीवन चलाना पड़ता है। इनका जीवन साथी आम तौर पर बड़ा हाइपर होता है, किसी बात को समझता नहीं, इमोशंस पर ध्यान देता नहीं, अपने में मशगूल रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों के विचार अक्सर जीवन साथी के साथ मेल नहीं खाते। और कर्क राशि बड़ी कोमल राशि है भाई, कर्क राशि के जो लोग होते हैं उन्हें खाना कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें इमोशन भरपेट चाहिए, उन्हें समझने वाला, उन्हें प्यार करने वाला, उन्हें दुलार करने वाला, उनके संकट के समय में आंसू पोंछने वाला, ऐसा कर्क वालों को चाहिए ही चाहिए और वो इनको मिलता नहीं है। इसीलिए जीवन साथी का जब भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता तो इनको हमेशा समस्या होती है। जीवन में पैसे कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो हर भावना में, हर इमोशन में, हर तकलीफ में इनके साथ खड़ा रहे, तभी ये सुखी हो सकते हैं, और आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए कर्क वाले बेचारे बेसिकली एडजस्ट करके चलने की कोशिश करते हैं और इमोशनल लेवल पर हमेशा परेशान होते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो दो बातें याद रखिए। पहला, एडजस्टमेंट आपको ही करना होगा और अपने मन पर काबू करना होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष के हिसाब से रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि के बारे में हम जानते हैं, बड़ी डोमिनेटिंग, बड़ी ताकतवर, बड़ी मजबूत राशि मानी जाती है, और इनके विवाह का स्वामी है शनि पहले नंबर पे, और इनके परिवार का स्वामी है बुध। तो शनि और बुध का इंपैक्ट इनके वैवाहिक और इनके पारिवारिक जीवन पर रहता है। अगर आप सिंह वालों का वैवाहिक जीवन देखें, सामान्यता देखिए, तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। आम तौर पर शुरुआत में एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें होती हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन शुरू में गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर ये धैर्य बनाए रखें, अगर ये शांति बनाए रखें, तो आगे चलकर वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, धीरे धीरे बेहतर भी हो जाता है। केवल शादी के बाद पहले साल में सिंह वालों को थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर शादी के बाद शांति बनाए रखें तो आगे चल करके वैवाहिक जीवन इम्प्रूव हो जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, वो इनके ओवर डोमिनेंस से या इनके ओवर प्रोटेक्शन से परेशान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा जो ये अपने जीवन साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो जीवन साथी के साथ शुरू में इनका तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि वो बैठाता नहीं है। लेकिन अगर कुछ समय ये थोड़े माइल्ड रहें,
थोड़ा कोमल व्यवहार, शांत व्यवहार रखें, थोड़ी शांति से रहें, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बेहतर हो जाती हैं। सिंह वालों को थोड़ा धैर्य शुरुआत में रखना है, बाद में इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। अगर आपकी राशि सिंह है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो शनि देव की उपासना करिए नियमित रूप से। दो काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों की अगर बात करें तो इनके वैवाहिक जीवन का पहला स्वामी है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी है शुक्र। अब होता क्या है कि बृहस्पति वैवाहिक जीवन का स्वामी है तो वो ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में बहुत ही गड़बड़ होता है, भयंकर गड़बड़ सिंह वालों का भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है और बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक हो जाता है, इनके प्रयासों से बेहतर हो जाता है। कन्या वालों की दो प्रॉब्लम है। पहला, कन्या वाले चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, परफेक्ट हो, वो तो देखिए कहीं नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि ये जीवन साथी के साथ अपना समय काफी ज्यादा बिताना चाहते हैं। जीवन साथी अच्छा होता है कन्या वालों का लेकिन वो करता है काम, अपने काम में करियर में व्यस्त रहता है, प्रेम तो इनको बहुत करता है लेकिन जीवन में इनकी सुख सुविधा के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए वो व्यस्त रहता है, समय नहीं देता है। तो कन्या वाले ये बात समझ लें कि आपका जीवन साथी आपको प्रेम करता है, निश्चिंत रहिए, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। जीवन में चैन सुकून के लिए उसका काम करना जरूरी है, इसलिए वो काम करता है और इस वजह से आपको समय नहीं दे पाता। और दूसरा, कन्या वाले ये भी समझ लें कि दूसरे का पति दूसरे को कैसे प्रेम करता है या दूसरे की पत्नी दूसरे के साथ कैसे रहती है, उससे आपके वैवाहिक जीवन पर असर नहीं पड़ेगा कि दूसरे को देख के मन में कुढ़ रहे हैं, वो मत करिए। थोड़ा सा खुश रहिए जीवन में, अच्छा है आपका जीवन। और जब शादी हो तो शुरुआत में एकदम से जाते ही अपना डोमिनेंस दिखाना मत शुरू करिएगा कि सब कुछ बदलने की कोशिश करें, चीजें एक दिन में नहीं बदलती। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करिएगा। एक बड़ा सरल सा मंत्र है इनका, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम या केवल सुबह के समय जप करिएगा तो काफी बेहतर होगा। तुला राशि, अगर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि का जो विवाह का पहला स्वामी है वो मंगल है और दूसरा स्वामी भी मंगल है, तो तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मंगल की उग्रता होती है, मंगल का एग्रेशन होता है। आम तौर पर तुला वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, अक्सर गड़बड़ हो जाता है। कारण ये है कि ये भटकते बहुत हैं और विवाह के बाद भी इनके चक्कर, इनकी चक्करबाजियां, इनका भटकाव ये चलता रहता है और ये चाहते हैं कि जीवन में मैं स्वतंत्र रहूं, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, परिवार के लोग, मेरा पति मेरी पत्नी मेरे ऊपर अंकुश न रखे। और तुला वाले भटकते ही हैं ज्यादातर मामले में और जब इधर उधर भटकेंगे तो ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है कि समस्या तो होगी ही और समस्या होती भी है।
इनका जीवन साथी आमतौर पे अच्छा होता है। तुला वालों को लाइफ पार्टनर आमतौर पर अच्छा व्यक्ति मिलता है 90% मामलों में, और वो हर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। लेकिन तुला वाले चूंकि चंचल दिमाग के हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं। मेष राशि और तुला वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अक्सर होता है, और जिस वजह से इनका अच्छा जीवन साथी इनसे किनारा कर लेता है और वैवाहिक जीवन में झंझटें शुरू हो जाती हैं। तो तुला वाले थोड़ा सा जीवन में ईमानदार बनिए, स्वतंत्र रहना अच्छा है लेकिन स्वच्छंद मत होइए, थोड़ा सा परिवार और संबंधों को मानकर चलिए। अगर आपकी राशि तुला है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो आप अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करिएगा। छोटा सा काम है, एक बार सुबह और एक बार शाम को दोनों समय अगर हनुमान जी की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, विवाह का पहला स्वामी शुक्र सप्तम स्थान का और पारिवारिक जीवन का स्वामी बृहस्पति। तो शुक्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं और आम तौर पर ये चीजों को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है, ज्यादा खराब नहीं होता। वृश्चिक वालों के वैवाहिक जीवन में नॉर्मली दिक्कतें एवरेज होती हैं, बहुत कम आती हैं। ये और इनका जीवन साथी दोनों अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, ये भी व्यस्त रहते हैं और इनका जीवन साथी भी व्यस्त रहता है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते और एक दूसरे से अपेक्षा भी नहीं रखते। वृश्चिक वालों के जीवन में आप देखेंगे कि पति पत्नी एक घर में रहते हैं, दोस्त की तरह मिले जुले साथ में खाए पिए घूमे, लेकिन एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए कुल मिलाकर जीवन ठीक ठाक बिता लेते हैं। वृश्चिक राशि की सिर्फ एक समस्या है कि देखिए, जब आपके जीवन साथी को जरूरत है उस समय आपको उपलब्ध होना चाहिए। वैसे जिंदगी में आप जो चाहिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वतंत्र रहिए आप भी और आपका जीवन साथी भी, लेकिन जब आपके जीवन साथी

धनु राशि। धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन का स्वामी है बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। बुध की बड़ी खूबी होती है ना, वो हर स्थिति में एडजस्ट कर लेता है, डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। इसीलिए धनु वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर सामान्यतः उत्तम होता है, अच्छा होता है। हालांकि इनके जीवन साथी के साथ इनके विचार कभी नहीं मिलते। धनु वाले खुद भी बुद्धिमान होते हैं और इनका जीवन साथी अगर बुद्धिमान ना हो तो बुद्धिमान बनने का प्रयास करता है। नतीजा ये होता है कि दोनों के विचार नहीं मिलते। धनु का स्वामी बृहस्पति स्वयं और जीवन साथी का स्वामी बुध, दोनों ज्ञान बुद्धि विद्या के प्लेनेट, तो एक दूसरे के विचारों को काटते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसा देखा गया है। और धनु वाले जितने इंटेलिजेंट होते हैं आम तौर पर उनका जीवन साथी थोड़ा सा कम होता है और इस वजह से दोनों के विचार मेंटल लेवल पर नहीं मिलते। फिर भी ऐसा देखा गया है कि धनु वाले वैवाहिक जीवन सफलता से सरलता से निभा ले जाते हैं, इनका वैवाहिक जीवन आराम से चल जाता है, क्योंकि धनु बड़ी धीर गंभीर राशि है। अगर आप उसे परेशान ना करें तो वो सामान्य कठिनाइयों को भी झेल लेगा और आराम से जीवन में रहेगा बिना किसी शिकायत के। तो इसीलिए धनु वाले अपने गंभीरता की वजह से, धीर गंभीर स्वभाव की वजह से वैवाहिक जीवन सफलता से निभा लेते हैं। तो धनु वालों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धनु वालों के साथ एक ही समस्या है, बड़े क्रोधी होते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आता है और जब क्रोध आता है तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। धनु राशि के लोग अगर नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, ज्यादा कुछ ना भी करें, तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, किसी भी मंत्र का अगर जप करें तो निसंदेह लाभ होगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि में विवाह का स्वामी है चंद्रमा और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। तो मकर वालों का वैवाहिक जीवन एवरेज रहता है और एकदम शुरू में आप देखेंगे शादी हुई 6 महीने के अंदर लगता है कि शादी टूटेगी। शुरुआत में भयंकर उपद्रव कभी कभी हो जाते हैं और शादी के बाद शुरुआती 6 महीने कभी कभी बड़े कठिन होते हैं और उसमें टूटने की नौबत आ जाती है, लगता है शादी टूट जाएगी। लेकिन मकर वालों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा मिलता है। यूजुअली इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा समझदार और बड़ा संवेदनशील होता है। मकर वाले खुद थोड़े लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं, चीज़ों को लेके गंभीरता बहुत देर में आती है, लेकिन इनको जीवन साथी लाइफ पार्टनर आम तौर पर अच्छा ही मिलता है, समझदार मिलता है, संवेदनशील होता है, इनकी चीज़ों को समझता है और इनकी चीज़ों को समझने के साथ अपने रास्ते पर चलता है। तो अच्छा लाइफ पार्टनर पाने की वजह से ये गड़बड़ियां करें भी तो भी वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है और वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी हो जाती है। मकर वाले खुद लापरवाही के चक्कर में खराब करने की कोशिश भले ही करें, लेकिन इनका जीवन साथी इनके वैवाहिक जीवन को सहारा दे करके संभाल लेता है। अगर आपकी राशि मकर है तो आप नियमित रूप से चंद्र देव के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, किसी भी चंद्रमा

0: माँ के मंत्र का नियमित रूप से शाम के समय जप करें और भी बेहतर करना चाहते हैं तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें तो बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, इनके विवाह का स्वामी है सूर्य और परिवार का स्वामी है बृहस्पति। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता क्योंकि विवाह का स्वामी ही गर्म प्लेनेट है, सूर्य है। सूर्य की सबसे मजबूत राशि ही एक लौती राशि सिंह और वो आपके विवाह की राशि है, तो आम तौर पर कुंभ वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम तो अपने जीवन साथी को करते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का भयंकर अभाव होता है। होता क्या है, कुंभ बड़ी इंटेलेक्चुअल राशि है, बड़ी बुद्धिमान ज्ञानवान और दार्शनिक राशि है, तो ये ज्यादातर आध्यात्म की फिलॉसफी की ज्ञान की बातें करेंगे और इनका जीवन साथी सोचेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसी कैसी बात करते हैं। इस चक्कर में दोनों का तालमेल नहीं मिलता। कुंभ वाले इंटेलेक्चुअलिटी के बुद्धि के सबसे ऊपर लेवल पर और जीवन साथी को लगता है ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, इससे जीवन कैसे चलेगा, इसलिए तालमेल नहीं बैठ पाता। तो प्रेम तो होता है दोनों में लेकिन विचार एक पैसे के नहीं मिलते, बात एक पैसे की नहीं समझते, साथ में बैठ के बात करने पे बेवजह के झंझट भी शुरू हो जाते हैं। और कुंभ वालों के साथ होता क्या है कि अपनी पत्नी या अपना पति तो इनको लगता ही है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, और बाहर इनका अटैचमेंट किसी अपने मेंटल लेवल के पुरुष या स्त्री से हो जाता है, इसलिए कभी कभी इनकी चंचलता भी समस्या देती है। तो मेष तुला के बाद तीसरी राशि कुंभ है जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत होते हैं। इनके साथ इनका अटैचमेंट किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो इनसे उम्र में काफी बड़ा हो, यानी कोई बड़ा पुरुष हो, कोई बड़े उम्र की महिला हो, उनसे भी अटैच हो सकते हैं अगर इनका मेंटल लेवल मैच कर जाता है तो। अब करना क्या चाहिए, अगर आपकी राशि कुंभ है तो देखिए हर आदमी को बुद्धि से मत तौलिए, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग लेवल की है, सबकी बुद्धि आपके समान नहीं है, समझिए इस बात को। नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए, रोज सुबह एक लोटा जल सादा पानी प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः या तो इस मंत्र का जप करिए या एक बार रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्याष्टक का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, विवाह का स्वामी बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी मंगल। ऐसा देखा गया है कि ये जो गंभीर राशि है मीन राशि, इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली सामान्यतः अच्छा होता है। इनका जीवन साथी जो इनको जीवन में मिलता है वो इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा बुद्धिमान और इनसे ज्यादा ईमानदार होता है। मीन वालों को लाइफ पार्टनर सामान्यतः इनसे ज्यादा बेहतर मिलता है। यहां पर समस्या तब होती है इनके जीवन में जब पैसे रुपए की दिक्कत शुरू हो जाती है, जब आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं तब दिक्कत शुरू होती है कि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसे की आमदनी नहीं है, पैसा आता नहीं है, धन की मुश्किलें हैं, तब ये मुश्किल ज्यादा परेशान करती है। यानी अगर मीन वालों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर मुश्किलें दिख रही हैं तो आप आंख मूंद कर समझ लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत है, इसी वजह से तालमेल में दिक्कत आ रही है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति एवरेज भी रहे, सामान्य भी रहे, तो इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है और इनका जीवन साथी कोशिश करके हर स्थिति परिस्थिति से निपट लेता है। बस सिर्फ ये है कि मीन वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो थोड़ा आलसी होता है और इस आलस्य के चक्कर में भी कभी कभी झंझट हो जाती है। अब अगर आपकी राशि मीन है और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिए। रोज सुबह या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, टेलीविजन की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 to its signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
1: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
2: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, टेलीविजन की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
3: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, रक्षा मंत्री ने शहीद वीरों को नमन किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कारगिल के वीर शहीदों को याद किया, वाटर कंजर्वेशन पर भी बात की, खेलों में भारत के युवाओं को ये प्रदर्शन को सराहा। बारिश के बाद पहलगाम मार्ग प्रभावित, अस्थायी रूप से बंद हुआ, मरम्मत का काम जारी, बालटाल मार्ग से जारी है यात्रा। सीकर में खाटू श्याम मेले में जुट रही भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह, बाबा श्याम का हुआ अलौकिक श्रृंगार। धनबाद के IIT ISM के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, औद्योगिक कचरे से बिना सीमेंट के बनेगा हाई स्ट्रेंथ पेवर ब्लॉक, मिला पेटेंट। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, बड़ी संख्या में प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर भव्य समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को याद किया। कारगिल विजय दिवस की पूरी पूर्व संध्या पर जोजिला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन, देश की रक्षा के लिए वीर सपूतों का जताया आभार। कारगिल विजय दिवस पर थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, देशवासियों से किया राष्ट्र सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान। श्री जगन्नाथपुरी में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब, महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म, बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय। रथों पर विराजमान देवताओं को अर्पित होगा खास पेय, पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु। कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा, नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान। नीलाद्री बीजे में मां लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाते हैं महाप्रभु, मां लक्ष्मी का गुस्सा शांत कर महाप्रभु गर्भगृह में करते हैं प्रवेश। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ की यात्रा जारी, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश बरकरार। भगवती नगर यात्री निवास से 19वां जत्था रवाना हुआ, कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल रास्ते से यात्रा जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन का काम का रिव्यू किया, कैंप के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने के निर्देश दिए, यात्रियों के साथ मौसम का रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहा। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी होगी यात्रा। महाराष्ट्र के जलगांव में आषाढ़ी एकादशी पर निकाली गई भव्य रथ यात्रा, 151 साल से जारी है परंपरा। श्री विठल रुक्मिणी रथोत्सव में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल, ज्ञानोबा तुकाराम और हरि विठल के जयकारों से गूंज उठा इलाका। यूपी के बांदा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी, चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगाई रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी पर महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य भस्म आरती, देश के कोने कोने से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मन की बात के 136वां एपिसोड का प्रसारण हुआ, पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अपील की, बोले जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी का मन की बात में दिया संदेश, प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण, पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील की। मन की बात में पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा, आईएनएस महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने युवाओं को भी किया प्रोत्साहित, बोले यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला विश्व जूनियर स्क्वॉश का खिताब। कनाडा के ओंटारियो में हुए फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी, दुनिया की सबसे सफल और लोकप्रिय फुटबॉल टीमों में शुमार ब्राजील, जल्द कर सकती है भारत का दौरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा इंटरनेशनल विंडो के दौरान कोलकाता में ब्राजील का एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मुकाबला कराने की चल रही है तैयारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। थूथुकुड़ी में आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका का 444वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ, ध्वजारोहण के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। थूथुकुड़ी में 11 दिन तक चलेगा धार्मिक उत्सव, रोजाना विशेष प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। SGPGI के चिकित्सकों ने रचा इतिहास, भारत में पहली बार 6 साल की बच्ची की सफल रोबोटिक थायराइड सर्जरी। उम्मीद योजना से कश्मीरी हस्तशिल्प को मिली नई पहचान, आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को मिल रहा रोजगार। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर हुआ जलभराव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरह से जुटी, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीमें अलर्ट, लगातार लोगों को बचाने का काम जारी। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच लोगों से सतर्क रहने की सलाह, तो वहीं घरों में फंसे हुए लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। डांग जिले में हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन जारी, पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आने का निर्देश। मुगल रोड पर लगातार बारिश से हुआ भूस्खलन, कई जगहों पर गिरा मलबा। बारिश के बीच मुगल रोड पर राहत कार्य में जुटी बीआरओ की टीम, यातायात को किया बहाल। बीआरओ की टीम ने यात्रियों से की सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। पीर की गली और पोशाना के बीच हुआ भूस्खलन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़, दरहाली अट्टी इलाके में हुआ नुकसान। बारिश के चलते दिल्ली में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, पुराने लोहे के पुल और आसपास के निचले इलाकों में प्रशासन की विशेष निगरानी। हेमिंग्वे डेज की धूम देखने को मिली, तो वहीं 45वें रनिंग ऑफ द बुल्स में लकड़ी के सांडों के साथ निकाली गई अनोखी परेड। स्लोपी जोज बार से शुरू होकर ओल्ड टाउन की वेस्ट की सड़कों से गुजरा जुलूस, खिताब जीतने के लिए 24 फाइनलिस्ट आए आमने सामने। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कॉस्प्ले का जलवा देखने को मिला, दुनिया भर के प्रशंसकों ने हिस्सा लिया। फिल्मों, कॉमिक्स और गेम्स के पसंदीदा किरदारों की लोगों ने पहनी पोशाक, कॉस्प्ले कलाकारों ने महीनों की मेहनत से तैयार की ड्रेस। फिक्सिट फेलिक्स की पोशाक में लोगों की मदद करते हुए दिखे ब्रायन मैरो, कलाकारों के ड्रेस की मुफ्त में मरम्मत की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, टेलीविजन की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपा मार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
5: You hear it once and remember everything.
9: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
5: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
0: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: FHI यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। कल भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सजा कारगिल वॉर मेमोरियल, रक्षा मंत्री ने शहीद वीरों को नमन किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कारगिल के वीर शहीदों को याद किया, वाटर कंजर्वेशन पर भी बात की, खेलों में भारत के युवाओं के प्रदर्शन को सराहा। बारिश के बाद पहलगाम मार्ग प्रभावित, अस्थायी रूप से बंद, मरम्मत का काम जारी, बालटाल मार्ग से जारी है यात्रा। सीकर में खाटू श्याम मेले में जुट रही भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह, बाबा श्याम का हुआ अलौकिक श्रृंगार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: संडे का ये दिन यानी सुकून का दिन, फैमिली के साथ टाइम बिताने का दिन और अपने फेवरेट खाने को एंजॉय करने का दिन। अब पूरे हफ्ते काम करने के बाद ये दिन तो होता है रिलैक्स करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटने के लिए। और हम भी आपके संडे मूड में लेकर आते हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट, तभी तो लेकर हाजिर हैं यहाँ पर टीवी की दुनिया की सारी एंटरटेनिंग स्टोरीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, मुश्किलों में फंसेगा और अंबिका परिवार, अवंतिका चलाएगी नया षड्यंत्र। एक दूसरे के करीब आएंगे जब धात्री और शिवाय, दिखेगी दोनों की नजदीकियां।

0: माता जी ने साइन करके इस सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है।
1: राध्या और प्रथम के घर पर शुरू होगा नया बवाल, मोंटू बनेगा नया मालिक।

मातम भरेगा रूहानी की मांग। और खास मुलाकात होगी मुश्ताक खान से, मिलेंगे उनके फैन से भी, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: संडे का ये दिन दिल को सुकून देने का और अपनी फैमिली के साथ मुस्कुराने का दिन होता है और कुछ ऐसी ही पॉजिटिविटी लेकर आती है ये अगली कहानी जिसका नाम है मन अति सुंदर। तो क्या कुछ हो रहा है राधा और प्रेम की जिंदगी में आज, क्या फिर से फेस कर रहे हैं ये कोई नया चैलेंज या फिर कोई नई सिचुएशन दे रही है इनके दरवाजे पर दस्तक। वेल जो भी हो एंटरटेनमेंट तो हमारे लिए पक्का है, लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
1: माता जी ने साइन करके इस सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है।
2: मित्तल परिवार को लगा झटका, प्रथम को आया गुस्सा, सामने आई मोंटो की असलियत।
1: आप लोग बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से।
2: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में नया शुरू हो गया है, मित्तल परिवार में नया बवाल, क्योंकि प्रथम और राध्या सामने लेकर आए हैं मोंटो की असलियत जिसे मानने के लिए बुआ तैयार नहीं है। लेकिन देखिए कैसे एक लफ्ज ने ही पूरे घर को सदमे में डाल दिया।
1: प्रथम क्या

खैर शादी तो हुई नहीं, लेकिन मोंटू ने मित्तल्स की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और देखिए अब कैसे वो इन पर हुकुम चला रहे हैं। मैं हुकुम किया, वो तो इन्हें घर से निकल जाने की धमकी दे रहे हैं। प्रथम राध्या और पूरा परिवार ये जानकर ही शॉक में आ गए कि अब उन्हें इस घर में और इस प्रॉपर्टी पर, इतना ही नहीं बिजनेस पर भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मोंटू ने अपने और अपने परिवार के नाम जो कर लिया है। भाई ऐसे में देखिए कैसे मोंटू और प्रथम के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि दादी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आकर मोंटू की बहन को तमाचा लगा देती है। भाई प्रथम ने तो पूरी कोशिश की कि वो मोंटू और उसके परिवार को सबक सिखा सके, लेकिन देखिए कैसे मोंटू का भाई गुंडागर्दी पर उतर आया और प्रथम और उसके भाई को ही धमकाने लगा।

0: ऐसे में देखना होगा कि भाई आखिर क्या होगा प्रथम राध्या और उनके परिवार का, क्या वो इनके चंगुल से बाहर निकल पाएंगे या फिर पूरे मित्तल प्रॉपर्टीज को इनके नाम कर खुद लाचार हो जाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: संडे और टेस्टी खाना, ये रिश्ता बहुत पुराना है और लाफ्टर शेफ की किचन में कुकिंग के साथ साथ कॉमेडी का फुल ऑन तड़का हमारे संडे को और भी मजेदार बनाता है। तो चलिए फिर देखते हैं आज क्या कुछ खास है संडे स्पेशल में, कैसी है यहाँ पर इनकी कुकिंग और एंटरटेनमेंट तो है यहाँ पर फुल ऑन। लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास।
2: म्यूजिक प्ले करो, गाना प्ले करो, ए प्रमोशन के लिए आ गए।
3: चलिए जी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स का।

0: बहुत
1: कुछ दिक्कत तो नहीं।
2: अरे अरे
1: मैंने रोहित शर्मा से ही बोला था
2: क्या
1: कि फराना का ध्यान रखना।
0: गौरव कैसा लग रहा है कि हमारा टाइम छीन के
3: भारती, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक साइकिल है, चलता रहेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा खत्म होगा तुम लोग फिर आ जाओगे।
0: तालियां गौरव के लिए।
3: भाई एक परिवार है, ये गोल गोल घूमते रहेंगे।
0: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 आ रहा है।
3: मुझे तेजस्वी ने पूछा फराना लड़ती है क्या, मैंने कहा कभी नहीं किसी से नहीं।
0: नहीं भारती मैं लड़ती हूँ, आप बताओ। लड़ती मैंने लड़ती लड़ती मैंने लड़ती लड़ती मैंने लड़ती।
3: आगे जाना थोड़ा।
0: लड़ती हूँ मैं, सेम मेरी सास भी ऐसे पूछती है।
4: आप कहाँ लड़ती हैं, आप तो नेचर से बिल्कुल कश्मीरा की तरह।
0: अरे
5: मैं कश्मीर से हूँ, ये कश्मीरा है।
0: अरे कश्मीर हो या कश्मीरा, जानते दोनों हैं।
5: समझा, चलो हटो
3: आगे से। राइट, आज आप लोग सब बनाएंगे बेलम पुत्र कुलू।
6: कौन सा कुल्लू बाजी, किसका पुत्र किसका लुल्लू, क्या कर रहे हो ये सब आप?
4: ये क्या है बेलन पुत्र कुल्लू?
5: सर एक बड़ा सा उल्टा तवा होगा और वो जो उसके ऊपर पूरा बड़ा डोसा जैसा हाथ से बनता है।
3: क्या बात है जल्लाद भाई। अरे
6: क्या बोल दिया, क्या बोल दिया,
7: आगे नहीं बोला किसी को।
3: आइए फोटो देख लीजिए।
0: ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस,
4: ये क्या है? ये वो पेपर के लिए है, जो रैपिंग बनेगी इस पे बनेगी।
3: हाँ मेरे को तो डोसा लग रहा था वो।
0: चलिए जी, मार्केट रन में जो जो जाएगा उसके नाम है अली, अभिषेक, कश्मीरा, सुदेश जी, विक्के, तेजा, एलविश।
6: बगलो, बगलो, बगलो, बगलो। अरे गिर गया।
3: चलिए चलिए चलिए बाहर निकले। हर्ष जी चलिए बाहर, बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए।
6: अरे ये सब कैसे घुस गए अंदर?
8: बिट्टा ये मेरा अड्डा।
5: ये हमें चाहिए, थोड़ा सा बाद में दे दो।
1: क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा तुमको भेजा है क्या उन्होंने कि इससे मांग ले दे देगा?
5: नहीं दे से किसके पास है, देखो मैंने देखा आपके पास है।
1: टोटल 6 है, एक टूट गया उधर जो तुम्हारा था,
5: तो आधा दे दो ना।
1: अरे
4: तो बनाना शुरू कर दे।
0: हाँ और क्या, किसका वेट करना है?
5: तुम लोगों को पता है ना क्या बनाना है?
7: अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके किसी से पूछ के तो आओ।
5: क्या किसको पूछू, अभी रुक तो मैं जाऊंगी ना। जन्नत
4: मैंने अपनी गेम तेरे हाथ में दे दी।
7: ठीक है ट्राई करता हूँ मैं।
0: मेरे दो अनमोल रतन, एक है विकी एक गौरव। ट्रॉफी ला दो, ट्रॉफी ला दो।
7: ट्रॉफी जीतने वाला आदमी अपने साथ है, कुछ लकी होगा।
4: हमको एक स्टार नहीं 10 स्टार मिलेंगे।
0: जीत गए हर्ष तो।
7: अच्छा मतलब हमें मिलेंगे नहीं?
4: अरे क्यों नहीं मिलेंगे
5: भारती, भारती जिसको बनाना नहीं आता उसको क्या मिलेगा।

0: लगा देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड
1: दिसो
2: ये मैच हो जाएगा ना और फिर इसमें हीट होगा मुझे लगता है.
1: अच्छा वाओ सो कूल. इधर देखना भी मत और अगर देखा ना तो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी.
2: हम भी यही कह रहे हैं इधर मत देखिए.
1: हमें कोई शौक नहीं.
2: हमें थोड़ा शौक तो है क्योंकि हमें आता नहीं है.
1: हाँ, इसीलिए
3: ये मजबूरी है और कुछ नहीं है
2: भाई. मुझे पसंद है. ये पहला है जिसने एक्सेप्ट किया है. एक घंटे के लिए तो कोई बात नहीं तू आधे घंटे में तू खुद बोलेगा देखना रिजेक्टेड.
3: सॉरी.
0: एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता.
2: बेटर बन गया हमारा बेटर
1: बन गया. बहुत पतला हो गया यार.
2: है, बहुत पतला हो गया तो पीने लायक हो गया.
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये तो होता ही रहता है. यदि चाहत है दीवानी क्या कुछ को नहीं पता.
1: क्या हो गया.
3: ये अपना सही बना हुआ है.
1: हाँ वेरी नाइस.
4: हाँ परफेक्ट परफेक्ट.
5: उसमें हल्का सा नमक डाल दे तो वो सही पक. हल्का चुटकी भर.
2: नहीं जरूरत है वो बहुत मीठा डिश है.
5: नहीं टेस्ट नमक का नहीं आएगा.
2: पहले एक बार देखते हैं कि ये साला बन कैसा रहा है.
5: ठीक है ठीक.
2: इसमें मिक्स करा ना आपने.
3: हाँ
2: क्या नमक वमक सब डाल दिया ना.
5: हल्की सी चीनी डाल दो तो और ज्यादा वो क्रिस्पी बनेगा.
1: बड़ा बड़ा चीनी डालो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा.
2: मत करो कुछ.
5: वो सुनने आया है. बोलो उल्टी सीधी चीजें.
6: वो सुनने आया है. बोलो उल्टी सीधी चीजें.
5: थोड़ा इसमें चीनी डाल दी.
2: डाल दिया
5: चीनी और नमक डाल दिया.
2: नमक डाल दिया. सब डाल दिया.
5: ठीक है.
2: क्यों विक्की भाई चीनी और नमक दोनों डाल रहे.
1: हाँ क्रिस्पीनेस के लिए.
5: क्रिस्पी बोला ना. तेरे यहाँ बना कौन रहा है. लेकिन
2: पता नहीं
5: फराना बना रही है. फराना बहुत सही बनाती है.
2: वो तो
5: बहुत सही बनाती है. वो
2: देखो ना दूसरा शो है. तीसरा पे आ गई है. अभिषेक आधा आधा चम्मच नमक आधा चम्मच.
3: इन्होंने नहीं डाला.

0: सामान है
1: कुछ। अभी ये क्या पीस लिया आपने?
2: हाँ
1: ये टेस्ट कर रहे हो?
2: हाँ
1: बाद में कुछ और करोगे?
2: हाँ
1: क्या करोगे?
2: कपड़ा लेंगे, कपड़ा में होगा।
1: ठीक है चलो कर लो फिर।
2: आता बाजी हमको भरोसा, 20 स्टार का होना चाहिए था कायदे से, 10 स्टार का करवाया किसी ने, पता ना कौन है वो।
3: उठा दो ना, मैं तो उठा सकती हूँ क्या यहाँ से नीचे से? चलो कोई नहीं,

0: क्या?
1: यू वर राइट, ऐसा ही कुछ करना है.
2: और डाल थोड़ा सा.
1: इसको निकालो तुम.
0: रुको रुको,
2: मैं कम किया उसको गैस को, वरना जल जाएगा ना. ये देखिए, छोड़ रहा है. बन गया.
1: पकने दो, थोड़ा पकने दो.
2: बस हो गया, जल रहा है, क्रैक हो रहा है.
1: टू ट्राई ऐसे हाथ लगाने से
3: यार, अभी कितना टाइम है, रुक जाना 2 सेकंड.
2: बहुत देर रखेगा तो वो पहले ही टूट जाएगा, रोल नहीं होगा. अब ये चक्कर ये है, समझ, इसको फौरन डाल के निकाल ले, ये बनेगा ऐसा. हाँ. मैं बता रहा हूँ तेरे को.
1: हाँ.
0: हाँ, देखो उन्होंने बहुत पतला बना दिया है.
1: हाँ.
0: अब वो उखड़ेगा ही नहीं.
1: वाओ, वाओ,
0: अरे वाह, ये तूने बनाया?
3: हाँ.
0: तूने इतना जल्दी बना दिया?
3: हाँ, हाँ.
0: विशाल, कान खोल के सुन ले, अगर तूने मुझे आज स्टार नहीं दिलवाया. विशाल, सुन रहा है कि नहीं?
3: सुन रहा हूँ मैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है. ऐसे बताता हूँ मैं क्यों, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा और मोटा चाहिए होगा.
0: ये प्रोटीन खा के जो लड़के बॉडी बना के आते हैं ना, सुनते नहीं है.
1: अब बना
4: क्या? इतना पतला
5: यार, मुझे कुछ नहीं आता यार.
2: हाँ, बारीक मस्त है. तू बना एक तो रोल बना, मैं तब तक दूसरा बना रहा हूँ.
1: ना, अब इसको आराम से फोल्ड करो.
0: तू कर.
1: वाओ, गुड.
2: प्लेट लाइक.
1: ना, रुको, हटो एक मिनट.
3: कोई आसपास भी नहीं, देश में अपने आसपास भी नहीं है.
0: गौरव, चैनल की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि हम आपसे पूछेंगे.
2: हाँ.
0: कि खतरों के खिलाड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए और आप बता देंगे. तो बताइए फिर.
2: मैं एक ही चीज कह सकता हूँ यार, हमारे सीजन ने ना आग लगा दी है. तो इस साल 2 साल के बाद आ रहा है, तो डबल द फियर, डबल द डेंजर, डबल द खौफ, मतलब डर का नया दौर है. और आप ये समझिए कि आग लगा दी है.

0: हाँ बस ऐसे रख दे दिखाने के लिए कुछ।
1: हस्तियां लग रही किसी को।
2: Well done, my boys. Well done.
3: चलिए ले आइए।
4: यो क्या आया है?
2: हमारी मर्जी। हाँ
3: अली जन्नत से शुरू करते हैं।
4: तो लाश है इसकी लाश।
5: अरे हमसे सीख लेते।
6: क्या बोले लुखा?
5: मैंने कहा क्या बनाया?
6: 11 स्टार वाले की थी हिम्मत।

0: चलिए समर्थ अभिषेक।
1: ओ वाह बड़ा फीलिंग। ए ए आ हा हा हा क्या ही बना दिया।
2: अगर धोखा तो इससे बनाया था अभिषेक ने।
0: कृष्णा कश्मीरा जी। नेहा सुदेश जी।
3: नेहा सुदेश जी रुमाल रख के गए।
0: विक्की अंकिता जी।
1: अरे जिनके रिश्ते ही कच्चे हो, अगर उनका खाना पक भी चुका है तो ऐसे रिश्तों से भी हम पक चुके हैं सर, जाने दो।
0: तेजा एंड अर्जुन।

0: करण और एल्विश। चलिए ये देख लेते हैं।
1: ओ चुरी रो, इतना तगड़ा सामान।
2: कमान भारती, तुम थूक सकती हो, कमान।
0: चलिए जी, टेस्टिंग हो चुकी है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: अब आपके रिजल्ट्स इस एनवेलप में मुझे लिखने हैं। चलिए बढ़िया।
2: पाजी यार थोड़ा तो बता, थोड़ा हिंट दे दो सर, कमाल यार, थोड़ा तो बताइए। ये कौन था?
3: रोहित सर है।
4: मुझको लगता है शेट्टी साहब है क्या?
3: हाँ रोहित सर,
4: वही है ना, वही है ना,
3: उन्हीं की गाड़ी का ऑन है, उनकी गाड़ी।
5: बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, सब देख रहा हूँ मैं। और तुम सब ये वेट कर रहे हो ना कि रिजल्ट लेके कौन आएगा? कोई और नहीं, खुद मैं आने वाला हूँ।
6: सर आपको शो अच्छा लगा?
7: बहुत अच्छा, अगले साल से मैं होस्ट कर रहा हूँ।
8: संडे फैमिली के साथ बैठकर कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंजॉय करने का दिन है, तो चलिए हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका फेवरेट सेगमेंट, जहां हमारी टीम ने की है आपके फेवरेट सितारे से ये खास मुलाकात। कौन है ये जिनसे हुई है यहाँ पर ढेर सारी बातें? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

0: रम्मा।
1: सोचिए क्या हो जब एक कलाकार के ढेर सारे फैंस एक जगह जमा हो। भाई आजकल तो सेल्फी के जमाना है, इसे सब सेल्फी लेते हैं और कराते हैं फोटोशूट। तो आज हम आपको लेकर चले राजधानी दिल्ली, जहां पर खास मेहमान बनकर आए हैं अभिनेता मुश्ताक खान। भाई आपको फिल्म वेलकम का वो वायरल डायलॉग याद है ना,
2: मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस।
1: जी हां, हर जगह मीम से दिखने वाला ये शख्स है मुश्ताक खान, जिन्हें आपने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में देखा है, और लेकिन वेलकम में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। अजर देखिए ये नजारा, जहां पर ढेरों फैंस आज जमा हुए हैं सेलिब्रिटी फेस इंडिया के इस इवेंट में, जहां पर आज अपने फैंस से मिलेंगे मुश्ताक खान। तो मुश्ताक खान पहुंचे दिल्ली और देखिए किस अंदाज में दिल्ली वालों ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद सेलिब्रिटी फेस इंडिया और राकेश द्विवेदी की टीम तैयार है इस मीट एंड ग्रीट इवेंट के लिए, जहां देश भर के फैंस आ जाए हैं मुश्ताक खान के साथ फोटो खिंचाने, उनके साथ बातें करने। फिर चाहे छोटे बच्चे हो, लेडीज हो, यंग चेंजी हो, या फिर हो सीनियर लोग या फिर हो युवा, ये सब ये मुश्ताक खान के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं।

0: भाई कहते हैं 80s और 90s का जो दौर था वो आज भी एवरग्रीन है और मुश्ताक खान के लिए ये दीवानगी देखकर यही पता चला। वैसे मुश्ताक खान ने भी देखी पूरे जिंदा दिली से सभी के साथ फोटोज खिंचाई। हर एक के साथ पूरे दिल से और कुछ अनोखे अंदाज में फैंस का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में इस इवेंट को लेकर आए हैं राकेश द्विवेदी और उनकी सेलिब्रिटी फेस इंडिया की टीम। तो चलिए, और खासकर अपने जैनदी फैंस को लेकर मुश्ताक खान बहुत खुश हुए।
1: हर एज ग्रुप के आते हैं, ऑब्वियसली पूरे इंडिया में भी जैनदी का चल रही है बहुत सारी, और जैनदी आपके फैन फॉलोइंग है, हर एज ग्रुप के हैं, तो क्या बोलना चाहिए, इतना सारा जो आपको प्यार देते हैं उससे कैसा फील होता है सर?
2: जैनदी सबसे बड़ी ताकत मैं समझता हूँ, युवा जो है आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, और युवा अगर आपके फैन और आपके चाहने वाले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच ऑल जैनजीज, आप इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, और हमारा पूरा हक है, अधिकार है, हम जो हम करना चाहेंगे करेंगे, वो सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद ये अपने टैलेंट पे ध्यान देना और बड़ी ईमानदार के साथ, बड़ी निश्चय के साथ, बहुत ही शिद्दत से जिसको हम बोलते हैं, और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, यही एक कला मैं समझता हूँ हो रहे हैं यहाँ तक। एक टेक्निकल इंडियन देना चाहूंगा, लगे रहो बस, और अब और डेफिनेटली आपको अगर आप लगे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल जरूर मिलेगी। आप
1: एक और सवाल सर, इतना अच्छा आंसर दिया है, क्या सर इस इंडस्ट्री में आने का कोई शॉर्टकट तरीका है? जुगाड़
2: बर्फ जला दिया, या कोई जो है ट्रक चल नहीं रहा है, या कोई कार नहीं चल रही, तो जुगाड़ करके उसको यहाँ से वहां, ऐसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, ये जुगाड़ ये नहीं है, यहाँ पर ये सीरियस बिजनेस है। इंडस्ट्री जो है और एक्टिंग जो है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, कुछ भी हो इंडस्ट्री में, और मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में हर चीज जो है जिसको आपने प्रोफेशन बनाया पिछले में, वो एक सीरियस बिजनेस है, जब तक उसको सीरियस नहीं लेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर व्हाटएवर यू आर गोइंग।
0: मुश्ताक खान ने सबके साथ फोटो खिंचाई

0: उसके बाद अपने फैंस के साथ उन्होंने बात की और अपनी जिंदगी के ढेर सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। तो चाहे वो फिल्म हम हेरा ही प्यार के हो,
1: कमाल करते हैं आप।
2: दके, चलिए, हम बेवकूफ हो सकता हूँ, इडियट हो सकता हूँ, मूर्ख भी हो सकता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ, नहीं हूँ हम झूठा।
0: या फिर हो वेलकम, मुश्ताक खान ने अपनी जिंदगी का किस्सा बताया और उन लोगों के लिए जो सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें दी ढेर सारी टिप्स। तो आइए देखते हैं मुश्ताक खान के साथ उनके फैंस का ये मोमेंट।
3: आज की फिल्म इंडस्ट्री में पहले की तुलना में कितना बदल गई है?
4: देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन हमारे समाज में होता है, परिवर्तन हमारे आसपास होता है, तो और हर तरह खेलों में भी परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा, टेक्निक में भी परिवर्तन होता है, तो फिल्मों में परिवर्तन भी होना लाजमी है। तो परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होता रहेगा। फिल्में एक जैसी नहीं बनेंगी। पहले पारिवारिक फिल्में बनती थी, सामाजिक फिल्में बनती हैं, आज तक आजकल देखिए किस तरह से व्यवहारिक फिल्में बन रही हैं, रियलिस्टिक फिल्में बन रही हैं, जो जो जो जो हमारे समाज में घट रहा है उन पर फिल्में बन रही है। तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। मैं अपने सारे फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी लंबी और अच्छी सेहत वाली जिंदगी की कामना करता हूँ और वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी फिल्में देखते रहें। यही मैं चाहता हूँ, मेरा काम पसंद करें, क्योंकि मैं सबसे बड़ा प्रसाद और सबसे बड़ा पेमेंट मैं उनको वही समझता हूँ जो हमें आशीर्वाद मिलता है हमारे दर्शकों से और हमारे देखने वालों से, हमारी फिल्में देख, हमारा काम देखने वालों से, और उनसे जो बूस्टअप मिलता है, जो हमें एक एनर्जी मिलती है अच्छा काम करने की। आप जो आप लोग सभी लोग और जितने भी मेरे फैंस हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म कौन सी है जिसको आप अभी भी सोच करके आपको हंसी आ जाती है?
4: मेरी ऐसा फिल्में तो वैसे कॉमेडी फिल्म तो बहुत है, लेकिन हमें रही प्यार के वो 93 में रिलीज हुई थी, हमें रही प्यार के, अगर आप पता नहीं उस वक्त आप पैदा भी नहीं होगा शायद।
1: नहीं सर, देखिए
4: 93
1: काफी अच्छी मूवी है सर। हाँ, देखी
4: आप देखिए, जरूर देखिए वो फिल्म, अभी आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, देखेंगे आप तो। हमें रही प्यार के, आशिकी, दिल है के मानता नहीं, ये उस वक्त की फिल्म है। और अभी अगर आप बोलेंगे तो फिर ये फिल्म रिलीज हुई थी मेरी वेलकम, जो सभी लोग जो इन्होंने अभी बोला था वो डायलॉग, तो वो फिल्म काफी लोगों ने पसंद की। और मैं भी वेलकम, कभी ऐसा होता है ना तो वेलकम देखता हूँ और हमें रही प्यार के देखता हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मैं हूँ उसमें, लेकिन वो फिल्में बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी और बिल्कुल साफ सुथरी कॉमेडी है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें कि वेलकम, हमें रही प्यार के, हेरा फेरी, तो इस तरह की फिल्में।
5: कभी किसी रोल के लिए खुद को पूरी तरह से बदले हैं?
4: या डेफिनेटली, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। अगर मेरी फिल्म आपने देखी होगी हमें रही प्यार के, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया, मैंने अपनी जबान चेंज की, भाषा चेंज की, फिर अपने मैंने अपने मैनरिज्म को चेंज किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कई रोल ऐसे हो जाते हैं।
5: और मेरा दूसरा सवाल है, आप नए कलाकारों को क्या सलाह देना चाहते हो?
4: मैं कलाकारों को, नए कलाकारों को यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल अपना ध्यान अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा रखो और इमोशन पे ज़्यादा रखो, उसको आप समझो करेक्टर क्या दिया जा रहा है आपको, पहले उसको समझो, उसका ध्यान दो। और जो लाइनों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये नहीं समझना कि हमने लाइन याद कर ली, रट्टा मार लिए तो डायलॉग बोल दिया, ऐसा नहीं होना। जब तक आपके डायलॉग दिल से ना निकले, ऐसा नेचुरल लगना चाहिए, सामने वालों को लगे अरे यार ये एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि नेचुरल है। तो जब तक आप वो अपने आप अपने अंदर में वो एक्सप्रेशंस नहीं लाएंगे, वो भावनाएं नहीं लाएंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं, करेक्टर बनेगा नहीं।
3: आपका निभाया गया सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार कौन सा रहा है?
4: मेरा चुनौतीपूर्ण किरदार मैं नहीं समझता, कोई मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन ये है कि किरदार कोई भी हो, जब तक अगर वो चुनौतीपूर्ण, जब तक सरल ना हो जाए, जब तक वो इजी ना हो जाए, तो फिर वो बनता नहीं है। तो मैं किसी भी करेक्टर को, किसी भी किरदार को चुनौतीपूर्ण तो उस सामने वाले की तरफ से हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में मैं उसको जब तक इजी नहीं कर लेता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता।
5: आपकी पहली बड़ी सफलता कहाँ से मिली सर?
4: मेरी पहली बड़ी सफलता जब मैं थिएटर, एक्चुअली मेरा थिएटर कर बॉम्बे में, मैंने कम से कम 11 साल थिएटर किया है, इप्टा, और बहुत बड़ी संस्था है वो इप्टा। वो वहाँ पर जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो एक डायरेक्टर, उसका नाम था इस्माइल शरीफ, उन्होंने मुझे देखा और अपनी फिल्म में दिया मुझे, उसका नाम था थोड़ी सी बेवफाई। तो मेरी वहाँ से सफलता शुरू हुई। उसके बाद फिर सलीम खान, जो सलमान खान के फादर हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा स्टेज पे, फिर उन्होंने मुझे महेश भट्ट साहब से मिलाया। वो मेरी सफलता वहां से शुरू।
5: फिर यहाँ से आपकी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए
4: जी।
5: फिर आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी।
4: मैं अभी तक तो नहीं।
5: सही बात है सर, हम लोग यही चाहते हैं कि आपके साथ भी हम चले।
4: थैंक यू
5: बहुत ही अच्छा हमें लगे।
4: आई विश यू ऑल द बेस्ट और मेरी बस यही दुआएं आपके लिए कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें और तरक्की करें।

संडे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है फैमिली, गुड फूड एंड एंटरटेनमेंट. और आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स. यहाँ है इमोशंस, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और पेठा की एयरलाइन. यहाँ तो आपके फेवरेट शोज के सारे हाईलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान. खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार. सो गेट सेट गो.

0: एक्सप्रेस की सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में भाई रक्षित बेहोश होने के बाद देखिए कैसे अपराजिता के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन्हें तो बस मौका चाहिए अपराजिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का।
1: थोड़ी देर आराम कर लीजिए।
2: क्या जरूरत है आपको इस करने? आप किसी के भी
1: आपसे
2: बात करने मुश्किल है। मैं जा रही हूँ।

0: mucho de esa niña y dije, madre, ¿por qué está? Pues, maybe talking, maybe in Rwanda,
1: वही वैसे आने वाला वक्त दोनों के लिए ही टेंशन भरा होने वाला है, क्योंकि रक्षित के घर रखी गई है सत्यनारायण की पूजा और कहीं ना कहीं रक्षित की मम्मी करवाएगी ईरा और रक्षित की सगाई, जिससे अनजान है रक्षित और अपराजिता दोनों ही।
2: हमारे घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रखी है और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आपको सभी को लेकर आना है।
3: मेरे भाई मुबारक।
4: क्या हुआ भैया?
5: हुआ नहीं, होने वाली है सगाई। चाची ने दो रिंग्स भी ऑर्डर किए हैं। चाची कल सह परिवार सह मोहल्ला तेरी और अपराजिता की सगाई कराने वाली है।
6: अचानक क्या हुआ? जब यहाँ आई थी तो इतने गुस्से में थी और अब मैडम पूजा के लिए इन्वाइट किया। क्यों ऐसे घबराहट हो रही है, जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला।

0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई विक्रांत ने आते ही मचा दिया है बवाल और पुलिस स्टेशन लेकर आ गया है ध्रुव और उन्नति को। तो वहीं उन्हें विक्रांत के जाल से बचाने के लिए पहुंच गए हैं राघव भी।
1: लेकिन इस इंसान की दुश्मनी हमारे परिवार से पहले से है, ये मेरी बहन से बदला ले रहा और कुछ नहीं।
2: राघव जी, मैं इतना कंप्लेन एक्सीडेंट के बाद उनकी इंजरी की रिपोर्ट है, मेडिकल हिस्ट्री भी है और यहाँ तक कि उनकी याददाश्त जाने की रिपोर्ट भी है। मैंने उनकी याददाश्त वापिस आई है तो देवर अपना अभियान रख दिया है तो सफाई आपको दर्ज करनी पड़ेगी।
3: इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, झूठ बोल रहे हैं बस, बस उनसे बदला लेना चाहता हूँ कुछ नहीं।
4: बदला नहीं, मैं तो रवि सब याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो भी बोल चाहते मुझे अभी याद आई।
1: मैं अपने द्वारा कॉल कर

दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में प्रयाज रूही का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो अपने बचपन को फिर एक बार अपनी बेटी के जरिए देख पा रही है। भाई जो भी कुछ उसने अपने रंग को लेकर बचपन में सहा है, अब वही घटना उसकी बेटी के साथ हो रही है और इसी दुख को नहर के साथ शेयर कर रही है।

जो ताने मैंने सुने, जो ताने मेरी मम्मी ने अपने जीवन में सुने, वही ताने रुचिता के भी मुझसे आते हैं। आपकी दादी ने आपको मुझे जो कहा मेरे हस्बैंड सब सा और आज एक एक शब्द दिल को तोड़ रहा है। लाल जी मुझे बहुत चुप पहुंची है आज। लाल जी जो जो दादी ने आज तक मेरे साथ किया वही वही रुचिता के साथ भी हो रहा है। दुनिया में आज भी रंगभेद को लेकर ऐसी घटिया सोच, तब तो मुझे खुद के बारे में कुछ याद भी नहीं, पर फिर भी मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी उसे रंगभेद को लेकर झुकने नहीं दूंगी। पर आज मैंने वो वादा तोड़ दिया ना जी। उस मासूम को तो पता भी नहीं है कि रंगभेद का मतलब क्या होता है, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ रहा है। जी मैं अपना मन नहीं दे पा रही। ऐसा लगता है जैसे मेरी रुचिता ने तो सब सह लिया पर उसकी माँ से क्या हुआ पता नहीं।

0: تقول يا مرحبا
1: उसके बारे में हम उसे वो नहीं सिखाएंगे, हम उसे वो सिखाएंगे कि वो अपने बारे में क्या सोचती है।

ऐसे में नाहर ने रूही को समझा दिया है और ये भी कहा है कि कैसे वो अपनी बेटी की परवरिश करेंगे। तभी तो देखिए इनके बीच देखने को मिला एक हैप्पी फैमिली वाला बॉन्ड, जहाँ ये अपने दोनों बच्चों को एक साथ संभालते और सुलाते हुए नजर आ रहे हैं।

0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई आज तेजस्वी ने रूहानी की असलियत का पर्दाफाश करना चाहा, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गई हर बार की तरह, क्योंकि इस बार भी रूहानी अपने प्लान में कामयाब होती हुई नजर आई। भाई आज तेजस्वी ने अपने भाई के सामने ये शर्त रखी कि अगर वाकई रूहानी उससे प्यार करती है तो आज ही वो उसकी मांग भर दे, जिसके लिए रूहानी और तेजस्वी का भाई दोनों ही रेडी हो गए। और इसी के बाद गुरु भी तेजस्वी की मांग भरने वाला था, लेकिन तभी हुई शारदा माँ की एंट्री, जिसने तेजस्वी के इन सारे प्लान्स पर पानी फेर कर रख दिया।
1: आज तो आपने बचा ली शादी, लेकिन हर बार बीच में नहीं आ पाएंगे आप माँ शारदा। आप जानती हैं ये कौन है? ये मिस्टर जी गौतम सर, इस देश के बहुत बड़े राजनेता, पूरा देश ना इनकी फोन कॉल पे चलता है, ये चाहे तो दिन ये चाहे तो रात। मेरी बात मानी तो आप यहाँ से चले जाइए।
0: भाई इतना ही नहीं, रूहानी देखिए कैसे इन सब पर गुरु पर भड़कती हुई नजर आई।
1: मिस्टर जी मेरी बात मानो, इसके लिए तुमने तेजस्वी के सामने शर्त रखी थी ना, इसलिए तेजस्वी हमारी शादी के लिए मान गई है ना गुरु। तुमने जो घटा मेरे लिए खोदा था उसमें तो तुम खुद ही गिर गए। माँ शारदा को यहाँ बुला के तुमने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जाओ भर दो तेजस्वी की मांग। उनके पति और मेरे भैया के सामने इतनी घटिया शर्त रखी तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी तो रखो।
2: ऐसा है ना कंपाउंड, जो नियम तुम पर लागू होते हैं वो तेजस्वी पे भी लागू होते हैं। वो उसका पति खड़ा है ना, उसका इंतजार कर रहा है, क्या है उसके साथ, हम तो इन्हें रोके उसका रास्ता। वो कल भी हमारी थी, आज भी हमारी ही है, हमारी कभी नहीं होगी।
0: इतना ही नहीं, भाई तेजस्वी भी अपने भैया पर भड़कती हुई नजर आए, क्योंकि वो उसका नहीं बल्कि रूहानी का साथ दे रहे थे।
3: हम इस दो टके किलो से अपनी खुद की बहन को बेइज्जत कर रहे हैं, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं आप?
4: जबान संभाल कर बात करो तेजू, नर्स नहीं डॉक्टर रूहानी तुम्हारी होने भाभी।
5: शादी तक तो बात पहुंची ही नहीं है, बात दरअसल ऐसी है कि जैसे अब तेजू के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, आई एम श्योर अगर तेजू बताती तो आपको और बेटर वे में बताती, पर ऐसा है कि गुरु के अलावा दूसरे संदीप से शादी हो गई, तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि गुरु भी गया हाथ से। फिर उसके बाद भैया जो है वो अब रूहानी के चक्कर में है, उसके बड़े भैया, तो उसको ये लग रहा है कि पावर शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब जो प्यार भैया सिर्फ उसको करते थे या भैया के लिए रूहानी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो ये जो उसको है फोमो जो उसको हो रहा है वो उसको कुसुम निवास तक वापस ले आता है, वो अपना बैग बैग लेकर वापस आ जाती है, उसको रोकने के लिए संदीप उसके पीछे आते हैं। इस बीच में जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो बोलती है अपने भाई को कि अगर आप को लगता है कि रूहानी यू नो को आप पसंद करते हैं और वो आपके साथ खेल नहीं रही है, वो सच में आपको प्यार करती है, तो आप उसको सिंदूर लगा दीजिए, मैं अपने घर चल जाऊंगी। बिकॉज गुरु और तेजू की ये बात हुई है कि अगर वो तुम्हारे भाई से शादी कर लेगी तो मैं कर लूंगा ऐसा।
0: ऐसे में गुरु के भैया और भाभी भी एक नया प्लान लेकर आए हैं जो गुरु और रूहानी को एक साथ लेकर आएगा।
3: आज मैंने खूब देखा, जब मम्मी जी गुरु को कसम दे रही थी ना, रूहानी कैसे अपने दर्द का घुट भी नहीं थी।
6: मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो क्या है, ऐसा लगता है कि रूहान ने अपनी सारी खुशियां, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहती है। करीब में दिन ब दिन छोटा रूहानी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बचा।
3: एक रास्ता है पंडित जी,
6: क्या बात है जसलीन, बहुत अच्छा प्लान है, मजाक है। लेकिन जसलीन हमें ना जो कुछ भी आज शाम तक करना होगा, क्योंकि आज शाम को माँ पापा और दादी राठौर अपनी बेटी की सगाई में जाएंगे, तो हमें ये प्लान आज शाम तक इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है? आज हमारे छोटे को सब कुछ मिल जाएगा।
7: संडे नए सपनों को सजाने और नई दुआओं को साथ लेकर चलने का दिन है। तो क्या कुछ हो रहा है मन्नत की कहानी में आज? क्या पूरी हो जाएगी यहाँ पर मन्नत की नई मन्नत, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा? लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के सेट पर।
8: अज सजे आए वे सारा शहर।
9: शुरू हुई शादी की रस्में,

बीच मंडप से किडनैप हुई मान्यता। फिर एक बार हुई विक्रांत और मन्नत की शादी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में वही फिर एक बार हो गई मन्नत और विक्रांत की शादी। जी हाँ, आप सबको लग रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन जहाँ मन्नत है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। असल में सच गया है मान्यता और अभिमन्यु का मंडप, जहाँ इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु यानी कि विक्रांत मंडप में बैठता है तो देखिए कैसे उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे पुरानी यादें याद आने लगती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि उसे धुंधला धुंधला क्या दिख रहा है। ऐसे में होती है दुल्हनिया की एंट्री यानी कि मान्यता की, जो बड़े ही नखरीले अंदाज में अपनी वेडिंग की एंट्री कर रही है। भाई दुल्हन है, इतना स्वैग तो बनता ही है।

दुल्हन के बाद आते हैं कुछ मेहमान भी, जिनमें अपना मुंह छुपाकर मन्नत एंट्री लेती है। और देखिए कैसे अभिमन्यु और मान्यता, यानी कि विक्रांत और मान्यता को मंडप में देखकर भाई वो टेंशन में आ रही है और उसे काफी घबराहट हो रही है कि आखिर विक्रांत को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है।

0: कोशिश तो हम करते ही रहेंगे कि शादी हो जाए, और वैसे ही मन्नत और अदर लोग भी ये कोशिश करते रहेंगे कि ये शादी रुक जाए, तो लेट्स सी कौन सफल होता है इसमें।
1: नई शादी के रस्मों के बीच विक्रांत को कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है, और देखिए कैसे वो मंडप से उठ जाता है, और ये सब देखकर सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं, और इसी बात का आपको मन्नत फायदा उठाती हुई नजर आएगी। जी हाँ, वो करेगी मान्यता का किडनैप, उसे बेहोश करके और फिर खुद दुल्हन बन जाएगी।
2: यार हैप्पीनेस तो होनी चाहिए, पर असल में बात यह है कि अभी मन्नू को ना बहुत कंफ्यूजन है कि चल क्या रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस क्यों नहीं है। बार बार उसे ये कुड़ी नजर आ रही है, बार बार इसके जहन में पता नहीं क्या, जैसे ये यहाँ हो चुका है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हैप्पीनेस तो नहीं है, जरा भी नहीं है उसके जहन में, मन में कुछ नहीं।
1: भाई इन सब हंगामों के बीच विक्रांत और मन्नत की शादी संपन्न होती है, और ये पूरी शादी मन्नत घूंघट में करती है। देखिए तो जब घूंघट उठाने की बात आती है, सम्राज्ञी अपनी बहन का घूंघट उठाती है, लेकिन वहाँ मान्यता नहीं बल्कि मन्नत होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं, यहाँ तक कि विक्रांत भी। भाई जिसका डर था सम्राज्ञी को वही हुआ, लेकिन अब इन सब के बाद क्या विक्रांत की याददाश्त वापस आएगी, क्योंकि भाई यहाँ धैर्य भी मौजूद है, जो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मन्नत और विक्रांत एक हो, तो वो क्या कुछ ट्विस्ट लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं दुल्हनिया से, और जानते हैं कि वो अपने इस लुक के लिए कितनी एक्साइटेड है।
0: बहुत खुशी हो रही है दुल्हन बनकर, क्योंकि एज अ गर्ल मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, तो इतना ब्यूटीफुल आउटफिट है और एकदम डिफरेंट लुक है, कलीरे पहन रखे हैं, साथ में मैंने साड़ी पहन रखी है, तो एज अ गर्ल मुझे बहुत खुशी हो रही है दुल्हन बन के। लेकिन कहीं ना कहीं वैसे खुशी है, मान्यता उसकी शादी हो रही है, अभी मन्नू उसका प्यार हमेशा उसके उसके साथ रहने वाला है, एक होने वाला है, तो
3: प्लीज ज्वाइन। अच्छा
0: ज्वाइन
3: कर लो, ज्वाइन चलो ज्वाइन करके,
0: तो बहुत खुशी हो रही है,
3: शादी होने की बहुत खुशी हो रही है,
0: शादी होने की बहुत खुशी हो रही है मुझे।
1: तो भाई अब विक्रांत और मन्नत की जिंदगी में हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, क्या विक्रांत यानी कि अभिमन्यु इस शादी को एक्सेप्ट करेगा या फिर मन्नत को ठुकरा देगा, ये सब कुछ देखना आने वाले वक्त में काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब डॉक्टर्स के लिए तो संडे का ये दिन भी ड्यूटी वाला दिन होता है, लेकिन क्या हो रहा है हमारी डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में। Well, जैसे ही आता है इनकी जिंदगी में एक पल का सुकून, वैसे ही आ जाता है एक नया ट्विस्ट, फिर से फंस जाती हैं ये किसी नई सिचुएशन में, लेकिन कहानी सुपर एंटरटेनिंग है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में आज।
5: सलाखों के पीछे पहुंचे आरंभी के ससुराल वाले,

0: जिसके सीरियल डॉक्टर आरंभी में दहेज लेने के चक्कर में आरंभी के सभी ससुराल वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ऐसे में डॉक्टर हर्ष अपने परिवार को लेकर बेहद परेशान है। वैसे परेशान तो आरंभी भी है और वो कानून के हिसाब से अपने परिवार को सलाखों के बाहर निकालना चाहती है, लेकिन डॉक्टर हर्ष से रहा नहीं जाता और वो आरंभी पर अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर देते हैं। इसी बीच पुलिस के पास सबूत भी आते हैं, जिसे पुलिस फाइल रूम में अच्छे से रखने को कहती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पर अवंतिका भी पहुँच गई है बहरूपिया बनकर, जो उस हवलदार के पीछे पीछे निकल जाती है। और यहाँ डॉक्टर हर्ष पहुँच जाते हैं इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के लिए, ताकि उसके घर वाले सलाखों से बाहर निकल सके।
1: डिंपल को तो ये लगता है कि ये सारा जो कांड हुआ ये सब आरंभी की वजह से हुआ है। आरंभी ने ही वो वीडियो बनाया है और आरंभी ने ही पुलिस को बुलाया है, आरंभी ने ही पुलिस तक वो सारा वीडियो पहुंचाया है, तो डिंपल तो कभी उसको माफ करेगी नहीं। यहाँ पर चूंकि इतना बड़ा अपराध होता है दहेज लेना, और वो प्रूव हो चुका है अब पुलिस के सामने और पूरी सबके सामने, इतनी बड़ी टंडन फैमिली ने दहेज लिया है, तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियस उनको सजा तो मिलनी है। तो पुलिस स्टेशन में आए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी सब बंद हैं, हिरासत में हैं। यहाँ आरंभी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बचा ले सब लोगों को। अपराध तो है और वो संगीन जुर्म है, उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जो भी होगा, जिस तरह से वो निकालेगी सबको बाहर, क्या वो सबको निकालेगी या सिर्फ राज को, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसको पता नहीं था कि रिश्वत ये ली जा रही, दहेज लिया जा रहा है। तो अब देखें कि आरंभी क्या करती है अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रहने वाला है
0: भाई। यहाँ तो आरंभी ने अपने चाचा ससुर को रोक लिया, वरना वो भी सलाखों के पीछे पहुँच जाते रिश्वत देने के इल्जाम में। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ फाइल रूम में जहाँ पर सबूत रखे हुए हैं, वहाँ पर भेस बदल कर पहुँच गई है अवंतिका सबूतों को चुराने के लिए। और तो और वो सबूत चुरा भी लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही दो हवलदार उसी फाइल रूम में पहुंच जाते हैं सबूतों को लाने के लिए। लेकिन उन्हें लगता है जोरदार झटका, क्योंकि सबूत तो गायब हो जाते हैं और अवंतिका वो भी छिप जाती है।
2: पता नहीं किधर गया, पर मैं इधर ही लाकर रखा था, कभी लाकर रखा था। तू उधर देखना। हाँ, पवार, पवार लगता है सबूत गायब है। अरे क्या बात कर रहा है, मैंने इधर ही लाकर रखा था। कैसे भी साहब को बताना पड़ेगा सबूत चोरी हुआ है। चल चल चल चल।
1: नहीं अवंतिका, इस समय हम लोगों के लिए, मतलब द टंडन्स के लिए, तो हमने जब से उसको निकाला है घर से बाहर, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अवंतिका वापस आएगी। लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा सरप्राइज पूरे टंडन परिवार को मिलता है कि आरंभी ने नहीं बचाया है, और जिसने बचाया है वो थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा।
0: फिलहाल तो उन हवलदारों को वो सबूत नहीं मिले और अवंतिका वो भी बाल बाल बच गई और जैसे तैसे वो सबूत लेकर वहाँ से निकल गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि जाने से पहले ही उसकी टक्कर हो जाती है आरंभी से। अब देखना होगा कि आरंभी को वो सबूत मिले या नहीं। लेकिन आरंभी मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि अब घर वाले उससे और भी नफरत कर रहे हैं, और जो राज हमेशा आरंभी का साथ देता था, अब वो भी आरंभी से खफा खफा लग रहा है। खैर,

0: आरंभी तो परेशान है, लेकिन डिंपल उसे तो पूरा यकीन है कि ये सब आरंभी का ही कारनामा है। देखना होगा कि अब आरंभी कैसे अपने ससुराल वालों को ये बता पाएगी कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: संडे हो या मंडे, जिम्मेदारियां ना कभी छुट्टी नहीं लेती, और कुछ ऐसी है यहाँ पर जगदात्री की जिंदगी। जैसे ही आता है उनकी जिंदगी में सुकून का पल, वैसे ही आ जाता है एक नया चैलेंज। लेकिन देखिए कितने अच्छे से बैलेंस करती हैं वो अपनी जिंदगी को, फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
0: जगदात्री के प्यार में गुम हुए शिवाय। जगदात्री और शिवाय की नजदीकियाँ। क्या जानवी बनेगी मियाँ बीवी के बीच दीवार। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में जानवी और शिवाय दोनों पहुंच गए हैं अपने मिशन पर अपनी टीम के साथ। ऐसे में टीम तो निकल जाती है, लेकिन जैसे ही बारी आती है शिवाय के निकलने की, तो शिवाय की आंखों में सामने लटके मोतियों की माला की झलकियां आने लगती हैं, जिसके चलते वो परेशान होता है। और तभी उसको नजर आ जाती है जगदात्री। बस फिर क्या, जगदात्री को देखते ही शिवाय की आंखें चार हो जाती हैं, वो उसके प्यार में गुम होने लगते हैं। और जगदात्री धीरे धीरे शिवाय के करीब आती है वो मोतियों की माला निकालने के लिए, ताकि शिवाय को परेशानी ना हो।

0: वैसे बादल भी बहुत बड़े हैं, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं और लाला मोमेंट है वो भी चल रहा है। तो हम एक मिशन पे जाते हैं और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो मैं थोड़ा खोया खोया सा हूँ क्योंकि जगधात्री बैक ऑफ द माइंड चल रही है और मैं देखता हूँ राइट साइड मुझे जगधात्री दिखाई देती है और यू नो हवा चलने लगी है, फिज़ा बदलने लगी है, बटरफ्लाइज है और वो आ रही हैं आसपास। तो मैं पहले सीट बेल्ट खोलती हैं, बोलती क्या मैंने कुछ नहीं, सीट बेल्ट खोलेंगी, सीट रिक्लाइन करती हैं, की चेन टांग देती हूँ और मैं देख रहा हूँ उनको क्या चल रहा है, चल गया राय ठीक है। फिर वो बाहर जाके की चेन को वहाँ पे लगा देती हैं और चली जाती हैं और पता चलता है जानवी बोलती है क्या हुआ, मैंने क्या हुआ कुछ नहीं, कहती चेन किसने लगाया, मैंने कहा ओह ये तो सपना था हकीकत नहीं था। सो ये पूरा सीन।
1: अब क्या कर सकते हैं, शिवाय और जानवी के बीच तो एक अलग ही लव स्टोरी पहले से ही चल रही थी। शिवाय ने अपना लव जेडी के लिए बयां किया था लेकिन जेडी ने नहीं किया, अब जेडी को भी रियलाइज हो रहा है। तो इसी के बीच में आ गई हूँ मैं, तो एक्चुअली तो जानवी को इन दोनों को अलग करना है लेकिन ये एक्चुअली उन दोनों को और करीब ला रही है और शिवाय तो फुल इमेजिनेशन में है कि वो जेडी को ही देख रहा है।
2: अब जगधात्री पास हो ना हो शिवाय तो सिर्फ उसी के ही ख्वाब देखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जानवी पूरी कोशिश में लगी है कि वो शिवाय के करीब जा सके, लेकिन तभी जानवी की नज़र पड़ती है उन्हीं मोतियों पर क्योंकि उससे तो उसे भी परेशानी हो रही है। ऐसे में वो उसे उतारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी शिवाय उसे रोक लेता है।
1: जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी में एक वो क्रिस्टल लटक रहा होता है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, शायद उसने, जानवी को नहीं पता बट शायद उसने कभी शायद जेडी ने कभी किसी पॉइंट पे उस गाड़ी पे उसने लगाया था। तो शिवाय उसको देख के उसी को इमेजिन करने लगा और मैं देख रही हूँ शिवाय खोया खोया मेरी बातें ही नहीं सुन रहा है, तो मैं तो उसे सीधा निकालने की कोशिश करती हूँ बट शिवाय नहीं करने देता। तो उससे मुझे और लगता है कि ये तो वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो जितना शिवाय वियर्ड बिहेव करेगा उतना ही जानवी उसे और पास खींचने की कोशिश करेगी और उतना ही शायद शिवाय और जेडी करीब आएंगे।
2: भाई उस मोतियों के लिए शिवाय की बेचैनी देखकर जानवी को तो हैरानी हुई ही, लेकिन तभी उसने आशंका भी जता दी क्योंकि शिवाय की रिक्लाइनिंग सीट नीचे जो है, ऐसे में शिवाय ने भी अंगड़ाई लेने का बहाना कर दिया ताकि जानवी को इस बात का एहसास ना हो कि शिवाय खुली आंखों से जगधात्री के सपने देख रहा था। खैर जानवी को तो पता है कि शिवाय जगधात्री से प्यार करता है, लेकिन अब जानवी पूरी कोशिश करेगी दोनों के बीच दीवार बनने की, देखना होगा उसमें वो कामयाब होगी या नहीं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब संडे का मूड कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया तो रोजाना लेकर आती है हमारे लिए अलग अलग अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। तो कौन सी हैं वो खबरें जो करेंगी रॉक और कौन सी हैं वो खबरें जो करेंगी शॉक, चलिए लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
4: सूफी अरशद
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं इन दिनों चल रहे लॉकअप के सीजन 2 की। जी हां, खबरों की माने तो 28 जुलाई को शूट होगा इसका फिनाले। इसी के साथ साथ देख लीजिए नया प्रोमो जहां हो रही है लॉकअप में फिर एक बार योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा की री एंट्री।
6: आमतौर पर गार्ड्स आपको सिक्योर फील कराते हैं, लेकिन ये गार्ड्स आपको इनसिक्योर फील कराएंगे। इनके पीछे वो सच है जिससे आप भागने की और बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच आपके सामने खड़ा है। गार्ड्स अपने फेसेस रिवील कीजिए।
7: अरे
5: भाई, फिर एक बार आने वाला है ट्रेटर 2 और इसका ऑफिशियल टीजर सामने आया है। नया सीजन लेकर आएगा नए कलाकार।

भारती सिंह और हर्ष फिर एक बार आ रहे हैं आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने के लिए अपने नए शो इंडियन गेम के साथ, जो आएगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर।

0: शो है इंडियन गेम शो
1: विद भारती एंड हर्ष,
0: जहां दोस्तों को फंसाएंगे
1: और आपको हंसाएंगे।
2: इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष।
3: खबरें आ रही हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी नीलू वाघेला की एंट्री, जो बेहद ही अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। मैं इसके पहले शगुफ्ताली का नाम सामने आ रहा था,

भाई फाइनली हो गया लाफ्टर शेफ का दी एंड। ऐसे में अंकिता लोखंडे ने शेयर किए हैं लास्ट डे के ये कुछ खास पल।

0: going to miss my value of Flash Chefs. और ये सब जो पीछे बातें कर रहे हैं ये सब अब कहीं से मिलेंगे अगली बार. Hasta la vista. जय महाराष्ट्र. मैं अंकिता लोखंडे. मंगल आभारी नहीं मंगल आभारी है.
1: दिनों अलायंस के भी खूब चर्चे हैं. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सना सुल्तान बनेंगी कुणाल केमू की अलायंस का नया हिस्सा, यानी कि वाइल्ड कार्ड तौर पर वो लेंगी शो में एंट्री.

देख लीजिए द इंडियन स्टोरी के बिहाइंड द सीन नज़ारे, जिनमें आप काजल अग्रवाल और मुरली शर्मा को देख चुके हैं। ऐसे में सेट पर कैसे हो रही है शूटिंग और उसी के साथ मस्ती।

खबरें आ रही हैं कि अदिति शर्मा बहुत जल्द स्टार प्लस के आने वाले सुपरनैचुरल शो अप्सरा में नेगेटिव लीड के किरदार में नजर आएंगी, जिसमें पारस कलनावत भी होंगे।

उपाधि के फिनाले के मौके पर उषा उत्तप बनकर आई खास मेहमान, और साथ ही उन्होंने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सभी का दिल भी जीता।

0: Hello!
1: दुल्हन या ले आएगी में नजर आई खुशाली कुमार और इनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया।
2: दुल्हनिया ले आएगी और हमने बहुत मेहनत की है इसमें, तो अगर आप लोग सबको पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज प्लीज अपने सब फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ।
3: India has heard his music. Now it's Mumbai's turn to experience it live, where the timeless soul of the sitar meets the bold innovation of the zither. A performance that reimagines tradition with every note. Presenting Niladri Kumar live with the Ika India tour.
4: उससे ज्यादा प्यार मेरा है।
3: We are the ones chasing the light. We don't need to. We flow with ease. That is the kind of quiet that turns heads without trying.

0: संडे की ये सुकून भरी और एंटरटेनिंग मुलाकात यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी संडे हो खुशियों से भरा, आपको मौका मिले रिलैक्स करने का और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। अब कल एक नया हफ्ता शुरू होगा और फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो लेते हैं आपसे विदा, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: श्रीमती यानुंग जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: जब नाकाम हो जाता है मेडिकल साइंस का तंत्र, उम्मीद की लौ जगाता है हर्बल क्वीन का मंत्र। चरक सुश्रुत्र की परंपरा की युगीन देवी, अरुणाचल की यानुंग की चमत्कार की कहानी। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: FHI Youth Hockey 5S Asia Championship में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल. वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई. कल भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड. करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीर शहीदों को किया याद. वाटर कंजर्वेशन पर भी बातचीत की. खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को सराहा. गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिला. मानवीय मिसाल. बहाव में फंसे मासूम की स्थानीय लोगों ने बचाई जान. काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर. पहले चरण को मिली मंजूरी. 6.19 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प. बारिश के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहलगाम मार्ग प्रभावित. अस्थायी रूप से बंद. मरम्मत का काम जारी. बालटाल मार्ग से जारी है यात्रा. सीकर में खाटू श्याम मेले में जुट रही है भक्तों की भारी भीड़. श्रद्धालुओं में दिख रहा है गजब का उत्साह. बाबा श्याम का हुआ अलौकिक श्रृंगार.
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
11: जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ यात्रा जारी. खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आया. भगवती नगर यात्री निवास से 19वां जत्था हुआ रवाना. कड़ी सुरक्षा के बीच वालटाल रास्ते पर जारी है यात्रा. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम को किया रिव्यू. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने के निर्देश दिए. अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं. 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी हो जाएगी यात्रा. श्री जगन्नाथपुरी में उमड़ा आस्था भक्ति और सैलाब. महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु. आज जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म. बड़े मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय. रथों पर विराजमान देवता को अर्पित होगा खासा पेय. पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु. कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा. नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान. नीलाद्री बीजे मां लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाते हैं महाप्रभु. खाटू श्याम में आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब. देश भर से लाखों भक्त निशान अर्पित करने के लिए खाटू श्याम पहुंचे. देवशयनी एकादशी पर बाबा श्याम का सतरंगी सुगंधित फूलों से हुआ मनमोहक श्रृंगार. खाटू श्याम तक पैदल निशान यात्रा में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें. भक्त जयकारों के साथ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे. खाटू मेले में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम. मंदिर प्रशासन और मुख्य मार्गों पर पुलिस तैनात. मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए. कई राज्यों से भक्तों का आना लगातार जारी. महाराष्ट्र के जलगांव में आषाढ़ी एकादशी पर निकाली गई भव्य रथ यात्रा. 151 साल से लगातार जारी है परंपरा. श्री विट्ठल रुक्मणी रथोत्सव में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए. ज्ञानोबा तुकाराम और हरि विट्ठल के जयकारों की गूंज. उत्तर प्रदेश के बांदा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जारी कर दी एडवाइजरी. चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगाई गई रोक. श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं. वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं. ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक. आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी पर महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य भस्म आरती. देश के कोने कोने से भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु. चित्तौड़गढ़ के श्री सांवरिया सेठ मंदिर में भक्त ने दिल खोल कर दिया दान। 10.25 बीघा जमीन के साथ भेंट किया 2 मंजिला मकान भगवान ने दान किया। भगवान श्री सांवरिया सेठ के चरणों में इस अनूठी भेंट के लिए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया। देशभर से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नगद राशि सोना चांदी आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं करते हैं दान। 6 दिन के इंतजार के बाद फिर गूंजे माता के जयकारे, शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम के कारण 18 तारीख की रात से बंद कर दी गई है यात्रा, भक्तों की सुरक्षा के लिए हासिल लिया गया फैसला। आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर भव्य समारोह। रक्षा मंत्री युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी उन्होंने श्रद्धांजलि, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को याद किया। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जो जिला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन, देश की रक्षा के लिए वीर सपूतों का जताया आभार। करगिल विजय दिवस पर थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, देशवासियों से किया राष्ट्र सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान। मन की बात के 136वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अपील की, बोले जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात में उन्होंने संदेश दिया, प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा उन्होंने की, INS महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, बोले यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। औद्योगिक कचरा बनेगा निर्माण की मजबूत नींव, ITISM ने विकसित की नई तकनीक। औद्योगिक कचरे के इस्तेमाल से नींव के लिए तैयार किया जाएगा पेवर ब्लॉक। चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी, इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार, 16,000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं दीदार। करीब 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है घाटी, प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल। द्रास से सेना के जवानों ने निकाली सूर्य विजय यात्रा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने रच दिया इतिहास, भारत को दिलाया पहला विश्व जूनियर स्क्वाश खिताब। कनाडा के ओंटारियो में हुए फाइनल्स में अनाहत ने मिस्र की रोकैया को हराया। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, दुनिया की सबसे सफल और लोकप्रिय फुटबॉल टीमों में शुमार, ब्राजील जल्द कर सकती है भारत का दौरा। रिपोर्ट्स के अनुसार फीफा इंटरनेशनल विंडो के दौरान कोलकाता में ब्राजील का एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मुकाबला कराने की चल रही है तैयारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। तुतुकड़ी में आवर लेडी ऑफ स्नोस बेसिलिका का 444वां वार्षिक उत्सव का हुआ शुभारंभ। तुतुकड़ी में 11 दिन तक चलेगा यह धार्मिक उत्सव, रोजाना विशेष प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। SGPGI के चिकित्सकों ने रच दिया इतिहास, भारत में पहली बार 6 वर्ष की बच्ची के सफल रोबोटिक का थायराइड सर्जरी हुई। उम्मीद योजना से कश्मीर हस्तशिल्प को मिली नई पहचान, आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। मैनपुरी को योगी आदित्यनाथ ने विकास की नई सौगात दी, कई डेवलपमेंट योजनाओं की रखी आधारशिला। सावन में योगी सरकार देगी 24 घंटे की अतिरिक्त बस सेवाएं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: वेचाई यूथ हॉकी 5S एशिया चैंपियनशिप में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। कल भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन, वाटर कंजर्वेशन पर भी बात की, खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को सराहा। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिली, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प। बारिश के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहलगाम मार्ग हुआ प्रभावित, अस्थायी रूप से बंद, मरम्मत का काम लगातार जारी, बालटार मार्ग से जारी है यात्रा। सीकर में खाटू श्याम मेले में जुट रहे हैं भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं में दिख रहा गजब का उत्साह, बाबा श्याम का हुआ भव्य अलौकिक श्रृंगार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शुभ प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, वैदिक मान्यताओं में हर तिथि का ईश्वर से जुड़ाव माना गया है। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। आज रवि प्रदोष व्रत की तिथि है। मान्यता है कि इस दिन महादेव और सूर्य देव की संयुक्त कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। प्रदोष व्रत की महिमा इतनी विशाल है, इतनी शक्तिशाली है कि इस तिथि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे मनवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो चलिए हम आपको प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताते हैं।

0: मंगलकारी है रवि प्रदोष की तिथि, जानिए महादेव की कृपा पाने की विधि। सूर्य नारायण संग महादेव करेंगे कल्याण, दुखों संकटों से मुक्ति का मिलेगा वरदान। आस्था कहती है कि सच्चे मन से की गई आराधना हर मनोकामना को पूरा कर देती। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा उपासना के ज्ञान के अलावा कुछ खास तिथियों के बारे में भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष की तिथि।
1: रविवार को दिन जो प्रदोष पड़ता है उसको रवि प्रदोष कहते हैं, और रवि प्रदोष उसी दिन व्रत किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना अत्यंत पवित्र मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस में भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते हुए कल

0: तो ये तिथि रवि प्रदोष कहलाती है। माना जाता है कि इस तिथि पर कुछ महाप्रयोग करके आप ना सिर्फ महादेव की महाकृपा पा सकते हैं, बल्कि सूर्य संबंधी बाधाओं का भी निराकरण कर सकते हैं। प्रदोष जिस भी दिन पड़ता है उस दिन का महत्व बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ये व्रत हिंदू धर्म की सबसे शुभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है।
1: स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और शिव पुराण में इसका वर्णन है कि प्रदोष व्रत की महिमा का प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था जिसने बहुत ही गरीब था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके कहा कि तुम प्रदोष का व्रत करो, उस प्रदोष के दिन शिव की उपासना करो, इससे तुम्हें फल मिलेगा। तो उसी दिन से वह रवि प्रदोष जिस दिन आया उस दिन उसने शिव की पूजा की और सूर्य की पूजा किया और उसको सूर्य प्रदोष का व्रत पूजन करने से उसको बहुत सा फल मिलता है, शक्ति मिलती है, आध्यात्मिकता बढ़ती है।
0: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे रवि प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाली उपासना का विधान और साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं रवि प्रदोष की महिमा क्या है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने की तिथि है। जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा संध्या काल में करना उत्तम होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि प्रदोष रविवार को पड़ने पर आयु वृद्धि के संग ही अच्छी सेहत का फल मिलता है। माना जाता है कि रवि प्रदोष एक ऐसा ही व्रत है जिसे करने से व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन प्राप्त कर सकता है।
1: इस तिथि के दिन आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लाभ के लिए, अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ है, परेशानी है, कठिनाइयां हैं, अनेक प्रकार की बीमारी हैं और ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस दिन से महामृत्युंजय का जप करें। वही सवा लाख होता है, उसको करना चाहिए। भगवान श्री शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए और भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर के अर्पित करने से आप उसकी स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है।
0: ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि रवि प्रदोष का व्रत करके सूर्य से संबंधित सभी बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्रत या पूजा का फल तभी मिलता है जब विधि विधान से पूजन और ईश्वर का भजन किया जाए। तो धर्म और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार रवि प्रदोष पर भगवान शिव और सूर्य की पूजा कैसे करें, आइए अब आपको ये भी बताते हैं।
1: रवि प्रदोष में शिव साधना करने के लिए सर्वोत्तम आप सुबह प्रातःकाल शुद्ध स्नान करें, धुला हुआ वस्त्र धारण करें और भगवान शंकर पार्वती और सूर्य को जल, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, उनको माला फूल भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप दीप करें, उसके बाद ओम नमः शिवाय का एक माला जप करें, उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, महामृत्युंजय जप का पाठ करें, अंत में शिव और पार्वती जी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार रवि प्रदोष का पूजन करने से, आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है।
0: तांबे के लोटे में जल और शक्कर डालकर सूर्य को अर्घ दें। जल का छींटा अपनी दोनों आँखों पर लगाएं। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप पूरे दिन मन ही मन में करें। दिन भर निराहार रहें। प्रदोष काल में शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें। आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय के मंत्र या पंचाक्षरी स्त्रोत का 5 बार पाठ करें। माना जाता है कि रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता कहती है कि जब अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत किया जाता है तो इस तिथि के प्रभाव से आपकी वो सारी

0: मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि हर व्रत के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। आगे हम आपको प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले महा उपाय भी बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
1: शास्त्रीय मान्यता और आस्था कहते हैं कि पूजा उपासना से ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि किसी खास तिथि या दिन पर किए गए उपाय ज्यादा फलीभूत होते हैं। रवि प्रदोष की तिथि पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में किए गए उपाय आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं।

0: सभी भगवान की उपासना करते हैं, ईश्वर से फरियाद करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना को स्वीकार होने में समय लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे प्रार्थना भाव में कोई कमी रह गई है। इसे पूर्ण करने के लिए विधि की कोई योजना होती है। सनातनी विश्वास है जो मानता है कि होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसका अर्थ है कि जो कुछ भगवान राम ने पहले से ही तय कर रखा है या रचा हुआ है वो होकर रहेगा। लेकिन माना जाता है कि प्रदोष की तिथि पर भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। बस आपको समर्पण भाव से अपनी भक्ति करनी चाहिए। आस्था कहती है कि प्रदोष की तिथि इतनी चमत्कारी और मंगलकारी है कि इस तिथि पर भगवान भी अपने भक्तों को वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं।
1: इस दिन शिव का पूजन इसलिए करते हैं कि कैलाश पर्वत पर बैठ करके शिव अपनी भक्तों को वहीं से देखते हुए आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। शिव प्रदोष में, सारे प्रदोषों में शिव की ही महिमा है। शिव पार्वती को पूजन करने से ही उनका फल मिलता है। प्रदोष में शिव पार्वती की ही पूजा का पूरा विधान है, इसलिए उसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है।
0: रवि प्रदोष व्रत को करने की खास विधि तो हमने आपको पहले ही बता दी है। अब आपको बताते हैं कि अगर सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई बाधा आपके जीवन में आ रही है तो गौर से देखिए ये महा उपाय। शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराएं, गुलाब का इत्र अर्पित करें, सरकारी नौकरी से जुड़ी बाधा दूर होगी।
1: रवि प्रदोष के दिन अगर आपको रोजगार चाहिए तो उसके लिए महामृत्युंजय का 108 माला कम से कम, अधिक से अधिक जितना कर सके उसका जप करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे आपको मनचाहा रोजगार प्राप्त होगा।
0: माना जाता है कि महादेव अपने नाम की तरह ही भोले हैं। जलाभिषेक के साथ बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही वो अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना से जीवन के हर कष्टों का अंत होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि रवि प्रदोष रविवार और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग है। ये व्रत भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। चलिए आपको इस तिथि से जुड़े महाप्रयोग भी बताते हैं। प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितृ दोष दूर होने की मान्यता है। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आत्मविश्वास और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में सभी संकटों के नाश की मान्यता है।
1: स्थिति से जुड़ा हुआ महा उपाय यह है कि आओ शिवलिंग पर जल, गंगा जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, अभिषेक करें, 11 बेलपत्र में श्री राम लिख करके अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और उसके बाद हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करें।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भोलेनाथ की उपासना से मोक्ष तो मिलता ही है, साथ ही जीवन की प्रगति में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि इन्हीं दिक्कतों को जीवन से दूर करने की परम फलकारी तिथि है प्रदोष की। प्रदोष की महिमा ऐसी मानी गई है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है।
1: रवि प्रदोष का व्रत करने से सुख शांति सौहार्द की भावना मिलती है, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, रोजगार प्राप्त होता है, व्यवसाय और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और अनेक प्रकार के पापों का क्षय होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है।
0: मान्यता है कि रवि प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी हासिल होती है। सूर्य से संबंधित सभी रोग जैसे आँखों की और हड्डियों की समस्या को आप इस पावन तिथि पर दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रोग परेशान कर रहे हैं तो भी आज आप कर सकते हैं ये विशेष प्रयोग। महादेव देंगे सेहत का वरदान। सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप बनाएं। ये लेप रवि प्रदोष के दिन शाम के समय शिवलिंग पर लगाएं। रोग ठीक हो जाने पर जरूरतमंद लोगों को दवा और भोजन का दान करें। दोष व्रत के साथ ही जुड़े हैं ये नियम और सावधानियां भी। भगवान की आराधना में पूजन के कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ज्योतिषी कहते हैं कि विधि विधान से पूजन करने पर भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको रवि प्रदोष से जुड़ी सावधानियां और नियम भी बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हम आपको रवि प्रदोष की महिमा और इसका महत्व बता रहे थे, साथ ही हमने आपको मनोकामना पूर्ति के उपाय भी बताए। तो चलिए अब आपको बताते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी सावधानियां। देखिए, कहते हैं यदि आप प्रदोष काल के शुभ योग पर साधना और महाप्रयोग करते हैं तो इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं।

0: महादेव और सूर्य देव की कृपा पाने की सबसे उत्तम तिथि है रवि प्रदोष। इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन प्राप्त कर सकता है। रवि प्रदोष की तिथि पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। रवि प्रदोष का शुभ मुहूर्त 26 जुलाई को आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। ये तिथि दोपहर 1:57 पर शुरू होगी। इसका समापन 27 जुलाई को शाम 4:14 पर होगा। रवि प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:14 पर शुरू होगा, जो रात 9:21 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में व्रत रखने वाले साधक को पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करते हैं। अगर प्रदोष मुहूर्त में आप पूजा नहीं करते हैं और लापरवाही करते हैं तो आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है, क्योंकि इस काल में कई शुभ योगों का निर्माण होता है जो आपके पूजन और कामना को सफल बनाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि खास नियमों के आधार पर की गई उपासना से महादेव की कृपा पाई जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं रवि प्रदोष से जुड़ी सावधानियां क्या हैं।
1: रवि प्रदोष के व्रत में सर्वोत्तम यह है कि उस दिन आप सात्विक भोजन करें, किसी प्रकार का क्रोध न करें, असत्य न करें, निंद्रा से बचें, आलस से बचें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से निर्जल होकर के बिना जल पानी भोजन के आप उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप उनको अपनी इच्छानुसार भोग लगाएं और उस प्रसाद को ग्रहण करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
0: घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव और सूर्य की पूजा करें। व्रत विधान में मन में किसी तरीके का गलत विचार न आने दें। काले नीले वस्त्र बिल्कुल न पहनें। व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दें। तो ज्योतिषियों के बताए महा उपाय आप भी कीजिए और इन बातों को ध्यान में रखिए, जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अब खबर अमेरिका के सैन डिएगो में दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट यानी कॉमिक कॉन की, जहां इस बार भी सुपर हीरोज, फिल्मी किरदारों और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की दुनिया जीवंत नजर आई। यहां पर हजारों लोग महीनों की मेहनत और सैकड़ों डॉलर खर्च करके अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धर कर पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट।
8: अखबार पढ़ता स्पाइडरमैन, डॉक्टर डोम की दमदार एंट्री, समुराई हेलो किटी, रोबोट और द विज़ार्ड ऑफ ओज़ का टिन मैन। ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है जिसमें एक साथ इतने कार्टून किरदार मौजूद हों। ये तो अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित कॉमिक कॉन का नजारा है। यहाँ कॉमिक्स, फिल्मों, वीडियो गेम्स और फैंटेसी की दुनिया के हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धारण कर पहुँचे हैं। सबके कॉस्ट्यूम अपने आप में अलग है और हर किसी के पीछे महीनों की मेहनत छिपी हुई है। इसमें 27 साल की सारा लू फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के मशहूर ड्रैगन टूथलेस का रूप धर कर पहुँची। इस कॉस्ट्यूम की तैयारी उन्होंने जनवरी से शुरू की थी और इसे बनाने में करीब
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: श्रीमती यानु जमो लेगो हर्बल कृषि
10: जब नाकाम हो जाता है मेडिकल साइंस का तंत्र, उम्मीद की लौ जगाता है हर्बल क्वीन का मंत्र। चरक सुश्रुत्र की परंपरा की युगीन देवी, अरुणाचल की यानुंग के चमत्कार की कहानी। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: No.
13: Oh no.
14: Welcome to Get Real.
13: I got something to say.
14: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh my god.
15: It's got to be deliciously desperate.
16: Why do these girls forgive him?
17: Well, she has a soft spot for troubled men.
15: Boo bloody hoo.
14: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
16: Love runs deeper than we know.
14: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
18: पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: आसमान से आने वाले खतरे अब युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। भविष्य की जंग में दुश्मन एक साथ सैकड़ों ड्रोन के झुंड यानी स्वार्म ड्रोन के जरिए हमला कर सकता है, लेकिन भारत ने भी इस चुनौती का जवाब तैयार कर लिया है। सरहद पर दुश्मन के ड्रोन स्वार्म का काल बनने जा रहा है स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भारद्वाज, जो न सिर्फ ड्रोन की पहचान करता है बल्कि उन्हें हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट देखिए।

0: अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल यानी ड्रोन मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक हथियार। टैंक से लेकर बंकर तक को तबाह करने की ताकत है इसके पास। दुश्मन के कमांड सेंटर से लेकर रनवे तक को बर्बाद कर देता है ड्रोन। अगर ये झुंड में हो तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इस चुनौती को चकनाचूर करने के लिए भारत ने एक बड़ा पावरफुल हथियार तैयार कर लिया है। नाम है भार्गवास्त्र। नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने इसका सफल प्रदर्शन किया। मेक टू प्रोजेक्ट की समीक्षा के तहत किए गए इस ट्रायल में भार्गवास्त्र की एडवांस्ड स्ट्राइक क्षमता और सटीक ट्रैकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया गया। जहां ट्रायल के दौरान SDAL टीम ने असल हालात दिखाने के लिए ड्रोन का एक झुंड तैनात किया। जैसे ही भार्गवास्त्र सिस्टम के रडार, इलेक्ट्रो इंफ्रारेड सेंसर और RF सेंसर ने पास आते ड्रोन को डिटेक्ट किया, उन्होंने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया। ये सिस्टम 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है और दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को रोकने में सक्षम है। भार्गवास्त्र स्वदेशी मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो रडार, EOIR और RF सेंसर से लैस है। इसकी मदद से ये ड्रोन के लोकेशन सिग्नल की पहचान करता है। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाई किल क्षमता, यानी ये दुश्मन के ड्रोन को जैम करने के साथ साथ उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ये सिस्टम भारतीय सेना के C4I नेटवर्क के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विकसित किया गया है, जिससे युद्ध के मैदान में खतरे की पहचान, उसकी निगरानी और जवाबी कार्रवाई का पूरा सिस्टम तेज और सटीक हो जाता है। ये करीब 10 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगा सकता है और लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। दावा है कि ये महज 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट दाग कर बड़े स्वार्म ड्रोन हमले को नाकाम कर सकता है। भार्गवास्त्र 10 किलोमीटर तक UAV पहचानने की क्षमता रखता है। इसकी मदद से ये 2.5 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को तबाह कर सकता है। खास बात यह है कि महज 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट दागने की अद्भुत क्षमता है इसके पास। ड्रोन युद्ध के बदलते दौर में भार्गवास्त्र भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। दुश्मन के ड्रोन स्वार्म हमलों के खिलाफ ये स्वदेशी सिस्टम भारतीय सेना को नई सुरक्षा क्षमता देगा। भविष्य की जंग में तकनीक ही ताकत होगी और भार्गवास्त्र इस ताकत का भारत का स्वदेशी जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। कल भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीर शहीदों को किया याद, वाटर कंजर्वेशन पर भी बातचीत की, खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को सराहा। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिली, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प। बारिश के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा का बेलगाम मार्ग प्रभावित, अस्थायी रूप से बंद, मरम्मत का काम जारी, बालटाल मार्ग से जारी है यात्रा। सीकर में खाटू श्याम मेले में जुड़ रहे हैं भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालु में दिख रहा गजब का उत्साह, बाबा श्याम का हुआ अलौकिक श्रृंगार।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में करीब 3-4 दशक से चल रही सबसे बड़ी समस्या का अंत करीब आ गया है। दरअसल सीमा पार से घुसपैठ कई दशकों से देश की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के सरहदी इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे मुफीद पैसेज बने हुए थे। सीमा के कुछ इलाकों में फेंसिंग ना होने की वजह से घुसपैठियों को सरहद पार करने का मौका मिल जाता था, लेकिन बीएसएफ की निगरानी में अब ऐसी सरहदी इलाकों में स्मार्ट फेंसिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है। ये काम जैसे ही पूरा होगा, भारत की सरहद में दाखिल होना घुसपैठियों के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदली तो सूबे की सूरत बदलने का काम भी शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 3 दशक से पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की थी। एक ऐसी विकराल समस्या जिसका ओरिजिन तो मुख्यतः पश्चिम बंगाल के रास्ते होता था, लेकिन खामियाजा पूरा देश भुगतता था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2272 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है और ज्यादातर हिस्से पर स्मार्ट फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन करीब 172 किलोमीटर के बॉर्डर पर फेंसिंग अब तक हो नहीं पाई थी, क्योंकि बीएसएफ को इसके लिए सरकार से जितनी जमीन चाहिए थी वो उसे मिल नहीं पाई। लेकिन सूबे की नई सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही हाई प्रायोरिटी के साथ स्मार्ट फेंसिंग के लिए 1024 एकड़ जमीन बीएसएफ को आवंटित कर दी और बीएसएफ ने भी जमीन मिलते ही बगैर वक्त गवाए स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू कर दिया।
1: सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के इस इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फेंसिंग बनाने का काम चल रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो लंबाई मुर्शिदाबाद में फेंसिंग बनाने का जो पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था, पिछली सरकारें यहां पर जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद यहां मुर्शिदाबाद के इलाके में करीब 45 किलोमीटर लंबी फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें 337 एकड़ जमीन जो है वो पूरी तरीके से दी गई है। बीएसएफ की निगरानी में यहाँ पर ये स्मार्ट फेंसिंग बनाया जा रहा है। मकसद ये है कि सीमा के उस पार से यानी कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती थी उसको पूरी तरीके से रोका जाए। इसके साथ ही स्मगलिंग का एक बड़ा रास्ता इस पूरे रास्ते के जरिए होता था मुर्शिदाबाद से, उसको रोकने के लिए बड़ा प्रयास बीएसएफ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड पर खुदाई चल रही है और नई फेंसिंग बनाने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि अलग अलग जगहों पर ऐसे ही जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उन जिलों को पूरी तरीके से जमीन राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें बीएसएफ जो है अब फेंसिंग बनाने का काम तेजी से कर रही है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का काम तेजी से जारी है। अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुरू किए गए इस अभियान को बीएसएफ ने नाम दिया है ऑपरेशन घुसपैठ दी एंड। इस ऑपरेशन के तहत मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और सुंदरबन तक भारत बांग्लादेश सीमा पर जल, जमीन और आसमान की मुकम्मल निगहबानी सुनिश्चित करने के साथ स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए 9 जिलों में 1024 एकड़ जमीन बीएसएफ को आवंटित की है। बता दें कि मुर्शिदाबाद का जालंगी इलाका घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया है। इस इलाके में अब बीएसएफ की निगरानी में 45 किलोमीटर लंबी फेंसिंग बनाने का काम जोरों शोर से चल रहा है।
1: अभी इस वक्त मैं मुर्शिदाबाद के 0 पॉइंट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं, जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर है, और यहां से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश मौजूद है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले फेंसिंग यहां पर नहीं थी, कई राजनीतिक कारणों की वजह से इस पूरे इलाके में फेंसिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे इलाके में फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो लोग हैं, यहाँ भारत का गांव है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश का गांव है। भारत के गांव के लोग क्या सोचते हैं जब यहाँ पर नई फेंसिंग बनाई जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण चल रहा है? जमीन आवंटित कर दी गई है, नई फेंसिंग मुर्शिदाबाद इलाके में बन रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा घुसपैठ होती थी, खतरा बहुत रहता था, अब इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं?
2: अभी बहुत अच्छा तरीके से देख रहा हूँ। हम लोग गांव वाला बहुत खुश है, तारकाड़ा जितना फेंसिंग होगा उसलिए गांव वाला का भी सुविधा है, हमारा फसल, हमारा इंडियन जो जमीन है वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग गांव वाला भी सुरक्षित रहेगा, और उसका साथ साथ जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता भी हमका चलने फिरने के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा।
0: साफ है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। क्योंकि स्थानीय लोगों की समस्या घुसपैठिए नहीं थे बल्कि बांग्लादेश के वो उठाएगीर और चोर उचक्के थे जो मौके का फायदा उठाकर इस पार आ जाते थे और लोगों का सामान वगैरह चुराकर उस पार भाग जाते थे। स्थानीय लोगों की माने तो बांग्लादेशी उठाएगीर लोगों की खड़ी फसल भी चुरा ले जाते थे। यही वजह है कि स्मार्ट फेंसिंग बनने से स्थानीय लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं।
2: पहले मुश्किल तो था, इधर बांग्लादेशी बंदा घुसपैठ करते थे हमारे गांव में, आते थे और चोरी छपाई कुछ हमारा चीज चुरा के लेके जाता था, फसल भी चुरा के लेके जाता था। अब भी जब तारकाटा बन जाएगा तब हम लोग को तो सुख शांति से रहेगा और बिना टेंशन भी हमारे गांव वाले का कोई टेंशन दिक्कत भी नहीं रहेगा।
0: आपको बता दें कि सरहद पर स्टील के तारों से की जा रही ये फेंसिंग सिंगल लेयर है और इसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। खास बात यह है कि हाईटेक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही ये फेंसिंग इतनी फुल प्रूफ है कि घुसपैठियों के लिए इसे ब्रीच कर पाना लगभग नामुमकिन होगा।
1: एक तरफ जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ ने ग्राउंड पर आकर के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुर्शिदाबाद में जो सिंगल लेयर्ड स्टील फेंसिंग ये बनाना शुरू कर दिया है, ये स्मार्ट फेंसिंग होगी जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 फीट के आसपास होगी। और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जवान जो है उनकी निगरानी में इस तरीके की ये स्टील फेंसिंग तैयार की जा रही है। ये स्मार्ट फेंसिंग वैसी होगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई भी घुसपैठिया यहां से सीमा के उस पार से अंदर की तरफ भारत के अंदर ना आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती थी वो मुर्शिदाबाद के इलाके से होती थी। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद से इस तरीके के कड़े कदम उठाए गए और आप तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत तेजी से यहां पर काम चल रहा है। ये जो लेबर हैं ये लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और सीधा मकसद यही है कि इस पूरे इलाके से किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। ये जो स्मार्ट फेंसिंग है ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, इसके साथ साथ जो CIBMS यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको इसमें पूरी तरीके से लगाया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड जो है सर्विलांस भी इसमें लगाया जाएगा कि अगर कोई तार काट करके घुसने की कोशिश करता है तो कंट्रोल रूम तक उसकी पूरी जानकारी मिल सके।
0: फेंसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम क्यों लग जाएगा ये भी जान लेते हैं। दरअसल इस हाई लेवल परियोजना के तहत कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों को एकीकृत किया जा रहा है जिसमें हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन निगरानी, सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क शामिल होंगे। कहने की जरूरत नहीं कि केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने को लेकर बेहद संजीदा है, क्योंकि घुसपैठ की वजह से पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक बदलाव आया है। इस डेमोग्राफिक बदलाव का सबसे ज्यादा खामियाजा स्थानीय लोग ही भुगत रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए उनके संसाधनों की हकमारी करते हैं। घुसपैठियों को सबसे आसान पैसेज वहां से मिला जहां फेंसिंग नहीं हो पाई थी। मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के सीमावर्ती इलाके घुसपैठ के लिए सबसे मुफीद रास्ते बन गए थे।
1: मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ यहां पर हुई है, जिसके चलते डेमोग्राफिक चेंजेस भी इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से अब केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर इस तरीके की एक बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है जिसका मकसद यह है कि जीरो घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से इस इंटरनेशनल बॉर्डर से किया जा सके और उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। यहां पर बीएसएफ के जवान मौजूद हैं। ये सिंगल लेयर्ड जो फेंसिंग बनाई गई है ये खास तरीके की फेंसिंग है और पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर जमीन नहीं पहले दी गई थी यहां पर अब जमीन का आवंटन हो चुका है। और इस तरीके से आप देखिए कि इन कटीले तारों को यहां पर लगाया जा रहा है कि जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो।
0: काबिले गौर है कि मालदा और मुर्शिदाबाद के अलावा सुंदरबन के इलाके से भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती थी। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच फैला दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ जमीन कम और पानी ज्यादा है। सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ, दलदली भूमि और घने जंगल सीमा की पहचान को बेहद जटिल बना देते हैं। कई जगह तो सीमा नदी के बीच से गुजरती है और नदी का जल स्तर बढ़ने पर पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। जाहिर है सुंदरबन का ये इलाका घुसपैठियों को काफी रास आता रहा है। लेकिन इस इलाके में भी अब 90 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है।
1: मैं इस वक्त सुंदरबन के एरिया में मौजूद हूं और यहां पर सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं मैप के जरिए कि जो नई फेंसिंग यहां पर बन रही है, न्यू डिजाइन फेंसिंग, जिसको कि स्मार्ट फेंसिंग बोला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को ऐलान कई बार वो कर चुके हैं कि कोई भी घुसपैठ अब बांग्लादेश से भारत के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो न्यू डिजाइन फेंसिंग सुंदरबन एरिया में SS नगर से इसकी शुरुआत होगी और करीब 90 किलोमीटर के आसपास ये पूरी फेंसिंग है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है ये भारत का हिस्सा है और यहां से ताकि यहां से भी आगे की तरफ जा करके वो पूरी जो है नई डिजाइन की फेंसिंग उसको बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये नई डिजाइन की फेंसिंग एक हाईटेक तरीके की होगी। यहां पर BSF के तमाम लोग मौजूद हैं। इसमें हाईटेक इस तरीके से होगा कि इसमें HSTI भी लगाए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी इसमें लगाई जाएंगी, साथ ही यहां पर जो BSF के पास रडार मौजूद हैं उनको भी लगाया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर यहां पर मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को समझा जा सके और देखा जा सके। क्योंकि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरे इलाके से किसी भी तरीके से ना तो घुसपैठ होगी और ना ही किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके से ड्रग्स को भी लाया जा सकता है। इस स्मगलिंग को भी पूरी तरीके से रोका जाएगा, यानी कि क्राइम को पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाएगा इस पूरे इलाके में।
0: कहने की जरूरत नहीं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ को लेकर जिस तरह से संजीदा है और BSF फेंसिंग के काम में जिस तेजी से जुटी है, दशकों पुरानी इस समस्या का अंत करीब नजर आ रहा है। बॉर्डर पर 172 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग का काम जब पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत की सरजमी में दाखिल होना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग यानी तारबंदी का काम तो चल ही रहा है, लेकिन BSF के जवान बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की कोशिश पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। जहां फेंसिंग नहीं हो सकती वहां भी BSF के जवान सतर्क हैं। फ्लोटिंग बोट के जरिए घुसपैठ पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए BSF ने 8 BOP यानी पानी में चलती फिरती बॉर्डर आउटपोस्ट तैनात कर रखी है, जिसके जरिए सीमा सुरक्षा बल के जवान सुंदरबन इलाके में छोटी से बड़ी हर हरकत पर नजर रखते हैं और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं।
4: जमीन और जंगल में स्मार्ट फेंसिंग यानी बाड़ लगाने का काम तो चल ही रहा है। इन सब के बीच BSF सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों पर लगाम लगाने में भी जुटी हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां फेंसिंग नहीं हो सकती यानी पानी में, लिहाजा पानी में BSF फ्लोटिंग आउट पोस्ट के जरिए घुसपैठ पर नजर रखती है। सुंदरबन में BSF की 8 फ्लोटिंग BOP यानी बॉर्डर आउट पोस्ट भी तैनात है। ये पानी में तैरती और जरूरत के मुताबिक स्थान बदलने वाली सुरक्षा चौकियां हैं। इनमें BSF को मैंग्रोव के बीच मौजूद क्रीक और जलमार्गों की निगरानी में मदद मिलती है।
1: जी हाँ, ये चलती फिरती सीमा चौकी है जिसका की इस्तेमाल BSF इन इलाकों में करता है जहां पर वाटरवेज होते हैं, यानी कि पानी बहुतायत में होता है और यहाँ पर रास्ता नहीं बनाया जा सकता। ये सुंदरबन का इलाका है, चारों तरफ आप मैंग्रोव देख रहे हैं जो कि झाड़ियां होती हैं इस सुंदरबन के इलाके में। और इस तरीके से सीमा प्रहरी, आप तस्वीरों में देखिए, सीधे सीमा प्रहरी साबरमती, ये फ्लोटिंग BOP है और इस तरीके की 8 फ्लोटिंग BOPs को BSF के द्वारा इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहां पर निगहबानी BSF के द्वारा की जाती है। गुड न्यूज टुडे पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख रहे हैं पूरी तरीके से, और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर इसलिए क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए जो BSF है वो पूरी तरीके से यहां पर भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। किसी भी तरीके से कोई भी परिंदा पर न मार पाए, इसलिए इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि बांग्लादेश बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और ये जो सीमा प्रहरी साबरमती, ये फ्लोटिंग बीओपी यहाँ पर इसको लगाया गया है। आगे आप तस्वीर जो देख रहे हैं हमारे बाई तरफ, ये सामने का जो पूरा इलाका है ये बांग्लादेश नदी के उस पार है और यहां से घुसपैठ की आशंका हमेशा रहती है। ऐसे में बीएसएफ के जो जवान हैं वो ये नीचे आपको जो बोट दिखाई पड़ रही है, जब भी इनको कंट्रोल रूम से किसी भी तरीके की जानकारी मिलती है कि कोई घुसपैठिया जो है उस पार से अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये लोग पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं और यहां से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये पूरा बीएसएफ का एक तरीके का हम ये कह सकते हैं चलता फिरता कंट्रोल रूम भी इसमें है, एक बॉर्डर आउटपोस्ट है जो कि ये दर्शाता है कि कोई भी घुसपैठिया भारत के अंदर किसी भी तरीके से घुसपैठ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के फ्लोटिंग बीओपी इस पूरे इलाके में 8 की संख्या में तैनात किए गए हैं।
4: भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा के लिहाज से सुंदरबन सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। यहाँ घने मैंग्रोव जंगल, छोटी बड़ी क्रिक नदियाँ, दलदली जमीन और ज्वार भाटा के कारण जमीन के रास्ते निगरानी करना बेहद मुश्किल है। कई जगह सीमा नदी के बीच से गुजरती है और ज्वार के दौरान पूरा इलाका पानी से घिर जाता है। ऐसे में इन इलाकों की निगरानी बीएसएफ स्पीड बोट के जरिए करती है। यहाँ संदिग्ध नावों पर भी नजर रखी जाती है और संवेदनशील इलाकों में गश्त भी की जाती है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और तस्करी को रोकना बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौती रहा है। अब यहाँ करीब 90 किलोमीटर लंबे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में स्मार्ट फेंसिंग तैयार करने की योजना है। ये फेंसिंग शमशेर नगर से आगे के इलाकों तक विकसित किए जाने की तैयारी है।
1: भारत बांग्लादेश बॉर्डर के शमशेर नगर जीरो प्वाइंट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि बीएसएफ के जवान निगहबानी कर रहे हैं। बीएसएफ की जो बोट है वो पूरी तरीके से इस पूरे सुंदरबन के इलाके में मौजूद रहती हैं 24 घंटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो फेंसिंग लगाने का काम यहाँ से ही सबसे पहले शुरू होगा। 90 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो यहाँ से लेकर के आगे की तरफ पूरा इसको लगाया जाएगा। बीएसएफ के जवान यहाँ पर हर एक चीजों को देख रहे हैं।
2: नहीं, मैं बांग्लादेश आदमी को अच्छा नहीं बोला यार, इधर आएगा तो मैं नहीं पता देंगे। वो मैं इंडियन वासी है, इंडियन को आदमी है मैं। वो इधर बीएसएफ फोर्स मेरा को दोस्त है, ये गांव में बीएसएफ मिल जल कर मैं बीएसएफ के साथ काम करता है। वो फिनिशिंग लगा तो मेरा को आश्चर्य हो गया।
1: बहुत अच्छा होगा, यानी कि जब यहाँ पर फेंसिंग इस पूरे इलाके में अभी तक नहीं बनी थी, अब बनेगी तो अच्छा होगा।
4: इस परियोजना का मदद सिर्फ सीमा पर तारबंदी करना नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए एक मजबूत स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करना है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजर, नाइट विजन, ड्रोन और सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम को निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है।
1: दिखा रहे हैं कि ये वही रास्ता है जहां पूरे रास्ते भर में एक सिंगल लेयर्ड स्मार्ट फेंसिंग तैयार की जाएगी और इसकी खासियत ये होगी कि यहां पर हाईटेक तरीके से यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, यहां पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट होगा और इसके साथ ही इस पूरे इलाके में यहां पर जो एचएसटीआई कैमरे लगा करके हाई लेवल में यहां जो है पूरी सिक्योरिटी की जाएगी। अभी इस दौरान बीएसएफ जो है इस पूरे इलाके में जो सुरक्षा करती है उसके लिए जो मैंग्रोव का इलाका है और यहाँ पर पानी हमेशा हाई टाइड की वजह से भर जाता है, तो बीएसएफ के जवान बोट के जरिए यहाँ पर निगरानी करते हैं। इसके साथ ही बीएसएफ भी फिजिकली यहाँ पर मौजूद रहती है। अब इस पूरे इलाके में जो वो फेंसिंग बना करके पूरी तरीके से यहाँ पर निगहबानी की जाएगी।
4: केंद्र सरकार और बीएसएफ की रणनीति सिर्फ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीक और निगरानी तंत्र के समावेश से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे, सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने और क्विक रिएक्शन टीम को सक्रिय करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है ताकि सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा सके। जितेंद्र बहादुर सिंह, सुंदरबन, गुड न्यूज।
3: घुसपैठ की समस्या कोई नई बात नहीं, ये दशकों पुरानी समस्या है। बांग्लादेश से पूरे प्लान के साथ घुसपैठिए हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, उनके कागजात बनाए जाते हैं और फिर नौकरी दिलवाई जाती है। वैसे घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में देखी जाती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के करीब 17 राज्यों से पकड़ा गया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि घुसपैठ की वजह से देश के कई सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी तक बदल दी गई। इन हालात पर समय रहते काबू के लिए तेजी से बाड़बंदी भी की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।

बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या दशकों पुराना है। दावा किया जाता है कि बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ की वजह से असम, पश्चिम बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी भी बदल गई है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच देश के करीब 17 राज्यों में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में 2007 में आया था। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि भारत में 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़े के स्रोतों को गलत बताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। फिर दूसरी बार इस पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने 2014 में एक आंकड़ा रखा। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि देश में करीब 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हालांकि इस आंकड़े की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि हर शहर में बनाए गए ज्यादातर अवैध झुग्गियों का कनेक्शन इन बांग्लादेशियों से रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल में 57 लाख से ज्यादा और असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी हैं। असम के 33 जिलों में से बारपेटा, धुबरी, दरांग, नौगांव, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, बोगाईगांव, धुबरी, गोलपारा और लाकांडी में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक आंकी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित तौर से बढ़ी है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.58% और हिंदू आबादी 31.43% है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और इसी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। बेंगलुरु, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों से बांग्लादेशी लोग पकड़े जा चुके हैं और जहां भी इनकी संख्या बढ़ती है ऐसा माना जाता है कि आपराधिक वारदात में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि खबरें भी आती हैं कि अधिकतर वारदातों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल होते हैं। वैसे बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ का कोई सटीक और निश्चित वार्षिक आंकड़ा आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकारी रिपोर्टों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर हर साल 1000 से ज्यादा घुसपैठ के प्रयास पकड़े जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2025 में बांग्लादेश सीमा पर 1104 घुसपैठ के प्रयासों का पता लगाया था, तो 2024 में यह संख्या 977 थी। त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में ऐसे बिचौलियों की भरमार है जो बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से लगने वाली 2272 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में कई लूप होल भी हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा, दिनेशपुर, छपली, नौबादगंज, मुर्शिदाबाद और 24 परगना घुसपैठ के लिए बदनाम है। इसके अलावा हुगली नदी और जंगल के रास्ते से भी घुसपैठ होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस कराने वाले एजेंट हर घुसपैठिए से 4 से 15 हजार रुपए वसूलता है, फिर उन्हें नकली दस्तावेज और नौकरी के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक रैकेट का खुलासा किया था जिसमें पता चला कि एजेंटों ने घुसपैठ से लेकर नौकरी दिलाने तक के रेट तय कर रखे हैं। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाले एजेंट बॉर्डर से लेकर देश के सभी शहरों में फैले हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी काफी लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इस सीमा का लगभग 79 से 80% हिस्सा यानी 3240 किलोमीटर से ज्यादा फेंस किया जा चुका है। कुल लंबाई का करीब 20% यानी करीब 856 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग होनी बाकी है, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर पड़ता है, ये करीब 2216 किलोमीटर है, जिसके 569 किलोमीटर के हिस्से में फेंसिंग नहीं है। असम में लगभग 267 किलोमीटर के बॉर्डर में से करीब 86% फेंसिंग पूरी हो चुकी है और करीब 39 किलोमीटर का हिस्सा अनफेंस्ड है। मेघालय में 443 किलोमीटर के बॉर्डर में 90% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है और तेजी से फेंसिंग का काम चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी PSF चौकसी और बाड़ लगाने का काम कर रहा है।
सीमावर्ती इलाके में वॉच टावर की संख्या भी बढ़ाई गई है। इन्हें आधुनिक तकनीक से निर्मित किया गया है ताकि सीमा की सुरक्षा को और अधिक मजबूत और अभेद्य बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीर शहीदों को किया याद, खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को सराहा, जल संरक्षण पर भी की बात। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिला, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिल गई मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प। सीकर में खाटू

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, गुड न्यूज टुडे पर महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। गुड न्यूज टुडे पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं महाप्रभु की महागाथा। जगन्नाथपुरी में ये महाप्रभु की वार्षिक रथ यात्रा अंतिम पड़ाव में देखने को मिल रही है। आज इस यात्रा में एक और खास अनुष्ठान की घड़ी आ चुकी है। कल भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा देवी का सोना वेश श्रृंगार किया गया, जिसके बाद सोने के गहनों से सजे भगवान ने राजाधिराज के स्वरूप में दर्शन दिए और उसके बाद आज भगवान का अधर पाना अनुष्ठान हो रहा है। यात्रा का समापन जो है कल भगवान के श्री मंदिर में प्रवेश से पहले नीलाद्री बीजे के अनुष्ठान के साथ किया जाएगा। लाखों श्रद्धालु इस अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए पुरी में मौजूद हैं। तस्वीरें तमाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवी जी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु की महागाथा इस कड़ी में आज हम आपको भगवान के आधार पाना के अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। देवी को भगवान के दर्शन ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, प्रवेश की अनुमति किस प्रकार से होती है, ये तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जब से रथ यात्रा शुरू हुई थी, लाखों लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालुओं के जुटने का जो सिलसिला है ओडिशा के पुरी में वो शुरू हो गया था और ये सिलसिला अब लगातार जारी है। सोने के भेष में प्रभु अब दर्शन दे रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम पुजारी भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ जाएंगे। सोना वेश ईश्वर की, ब्रह्मांड के राजा उनको ऐसा कहा जाता है, और उसी वेशभूषा में सज धज कर श्रृंगार उनका किया जाता है। कई घंटों तक इस क्रिया को किया जाता है। आपको बता दें, लगभग 208 किलो सोने के गहनों से उनको सजाया जाता है। सोना, हीरा, चांदी, तमाम बेशकीमती धातुओं से उनका श्रृंगार किया जाता है। अद्भुत अलौकिक दृश्य यहां पर देखने को मिलता है, जब ईश्वर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रकट हो गए हों। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं हजारों की संख्या में मौजूद हैं महोत्सव में जुटने के लिए। लाखों की संख्या में आप देखेंगे, आपको सिर्फ नतमस्तक नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपको सीधे हम दर्शन करा रहे हैं पुरी से, और जगन्नाथ यानी जग के नाथ के आपको दर्शन सीधे गुड न्यूज टुडे लगातार करा रहा है, और ये जो महा कवरेज है वो लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के हिस्से के तौर पर कल, जैसा कि आपको बता था, सोना वेशा रस्म निभाई गई थी और सोने से विशिष्ट श्रृंगार किया गया था। आज भी इस सिलसिले को लगातार जारी किया जाएगा। आधार पाना की रस्म निभाई जाएगी और ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। प्रेम, सादगी, पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक ये पल, ये क्षण इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी जो है आस्थामयी इस वक्त नजर आ रहा है। और क्या बच्चा, क्या बूढ़े, क्या जवान, बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। और आपको बता दें, देखिए, सुनहरे रूप में जो हैं जगत के नाथ यानी जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने बताया, देखिए, कि देवताओं को लगभग 30 अलग अलग तरीके के गहनाएं पहनाए जाते हैं, जैसे कि ये सोना है, हीरा, चांदी और अन्य बेशकीमती धातुओं से प्रभु का श्रृंगार किया जाता है, और उसी पल में अलौकिक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं, चाहे देश से हों या विदेशों से भी, आपको बता दें बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़कर पूरी जगन्नाथ में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और प्रेम पूर्वक कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगकर, क्योंकि आपको पता है कि सुरक्षा का भी कड़ा पहरा वहां पर होता है। इतनी बड़ी संख्या में जो तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, सबको दर्शन प्राप्त हो जाएं और कतारबद्ध तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा है, इसके लिए सुनिश्चित प्रयास किए जाते हैं, चाहे मंदिर प्रशासन हो या फिर अधिकारी आला अधिकारी हो। ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हुई इस सुंदर क्षण को गुड न्यूज टुडे पर आप सीधे देख पा रहे हैं। लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पात्रों को तोड़ा जाता है पूजा करने के बाद, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, और नीलाद्री बीजे की परंपरा किस प्रकार से होती है वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये जो तस्वीरें हैं इससे एक एक बात आप समझ सकते हैं कि जो आस्था है, जो करुणा है, वो हर साल क्यों प्रतीक्षा करते हैं हजारों भक्त, क्यों इस वार्षिक रथ यात्रा के लिए पूरा साल इंतजार करते हैं तमाम भक्त। क्योंकि देखिए, ये इकलौती ऐसी परंपरा, एक ऐसी यात्रा है जिसमें भक्त जो है ईश्वर के पास नहीं जाता, ईश्वर जो है भक्तों के पास पहुंचते हैं।

देखिए, ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ देव जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी की वार्षिक रथ यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। इस रथ यात्रा में हर दिन खास अनुष्ठान होते हैं। अब भाई बहन सहित महाप्रभु के श्री मंदिर में वापस विराजमान होने की घड़ी आ चुकी है। इससे पहले आज वहां विशेष अधर पाना अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, तो आपको बताते हैं इस खास अनुष्ठान के बारे में। आपको बताते हैं इसमें क्या क्या रस्में निभाई जाती हैं और इसका महत्व क्या होता है, इस अनुष्ठान से जुड़े कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते होंगे। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ देव जी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इसमें अब एक और खास घड़ी आ चुकी है। पहले मौसी के घर से लौटे महाप्रभु, फिर राजा धीराज के सुना वेश श्रृंगार में दिए अलौकिक दर्शन। इसके बाद अब इस महोत्सव में अधर पाना का अत्यंत विशिष्ट और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान का पल आया है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन भर तीनों रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मंगला आरती और पूजा अर्चना से जुड़ी दैनिक नीतियां पूरी की जाती हैं। इसके बाद उनके दिव्य दर्शन होते हैं, फिर शाम ढलते ही अधर पाना का खास अनुष्ठान शुरू होता है। रथ यात्रा के अंतिम चरण में अधर पाना का अनुष्ठान नीलाद्री बीजे से एक दिन पहले किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों पर विशाल मिट्टी के पात्रों में विशेष मीठा पेय भरकर उनके अधरों यानी होठों तक अर्पित किया जाता है। इस विशेष मीठे पेय को दूध, चीनी, केला, जायफल और कई सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस पेय को मिट्टी के घड़ों जैसे तीन विशालकाय बेलन आकार पात्रों में भरा जाता है। ये घड़े इतने ऊंचे होते हैं कि भगवान के होठों यानी अधरों तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि ये पेय भगवान के दिव्य होठों को मिठास प्रदान करता है। भगवान जगन्नाथ के अधर पाना अनुष्ठान से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। स्कंद पुराण, मंदिर से जुड़ी परंपराओं और उड़ीसा की धार्मिक कहानियों में इनका उल्लेख है। लिहाजा पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं की अपार आस्था और विश्वास का इनसे गहरा संबंध है। पूजा संपन्न होने के बाद पेय से भरे पात्रों को जानबूझकर रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इस पेय को रथों पर मौजूद सूक्ष्म जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहा दिया जाता है। भक्त इस गिरे हुए पेय को छूने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ केवल भक्त ही नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियां भी चलती हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य शक्तियां भगवान की सेवा और रक्षा में लगी रहती हैं। अधर पाना के माध्यम से उन्हें प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि पात्र टूटने पर पेय चारों ओर फैल जाता है जिसे ये अदृश्य शक्तियां ग्रहण करती हैं और तृप्त होकर अपने लोक लौट जाती हैं। माना जाता है कि अधर पाना के प्रसाद को अगर आम लोग ग्रहण कर लें तो जिन अदृश्य शक्तियों के लिए ये अर्पित किया गया है वो उससे वंचित रहेंगे। इसलिए पूजा के बाद पात्र को तोड़ दिया जाता है ताकि पाना भूमि पर फैल जाए और अदृश्य देवगण उसे स्वीकार कर सके। भगवान की अधर तक ही पाना भरने का खास प्रतीकात्मक अर्थ भी इससे जुड़ा है। इससे जुड़ी ये भी मान्यता है कि रथ यात्रा सम्पन्न होने पर भगवान अपने साथ आई समस्त अदृश्य शक्तियों को सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। अधर पाना उसी विदाई का प्रतीक है। अगर यह अनुष्ठान ना हो तो वो शक्तियाँ वहीं रुक सकती हैं। विशाल पात्रों से भरा पेय भगवान के अधरों तक पहुँचाया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये माना जाता है कि भगवान पहले स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और फिर अपने साथ आई अदृश्य शक्तियों को उसका भोग प्रदान करते हैं। अधर पाना का अनुष्ठान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसका आयोजन मंदिर की रीति नीति से जुड़ा है, लिहाजा लोगों की गहरी श्रद्धा इससे जुड़ी होती है। इसे रथ यात्रा की सबसे रहस्यमय और अनोखे अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ये अधर पाना का अनुष्ठान ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 9 शक्तियों को संतुलित करने के लिए संपन्न किया जाता है। इस लिहाज से तंत्र साधना से भी इसका संबंध माना जाता है। इस अनुष्ठान में 9 के अंक का विशेष महत्व है। पेय तैयार करने के लिए 9 प्रकार की सामग्रियों दूध, मलाई, छेना, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के 9 बड़े पात्रों में इसे तैयार किया जाता है। तीनों रथों पर 3-3 पात्र रखे जाते हैं। इसे बनाने में 9 रसोइये और 9 पानी ढोने वाले सेवक शामिल होते हैं। अधर पाना के बाद नीलाद्री बीजे की रस्म होगी और फिर भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। इससे पहले आज रात भर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर ही विराजमान रहेंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लौटने से पहले रथों पर भगवान के दिव्य दर्शन करने का ये श्रद्धालुओं के लिए अंतिम अवसर है। भगवान की अलौकिक छवि और रथ यात्रा के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पुरी के बड़ा डंडा यानी ग्रैंड रोड पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल सोमवार को नीलाद्री बीजे का अनुष्ठान होगा। रथों पर भगवान की अंतिम पूजा कल दोपहर के बाद संपन्न होगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य पहंडी यानी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। फिर देव विग्रहों को रथों से उतारकर मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन की ओर ले जाया जाएगा। इस बीच मंदिर के प्रवेश द्वार पर मान मनोवल की रस्म होगी और रसगुल्ला उत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाएंगे। इसके बाद रात तक तीनों देवता अपने मुख्य आसन पर विराजमान हो जाएंगे। 10 दिनों के महोत्सव का ये अंतिम चरण संपन्न होने के साथ ही भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में वापस लौट जाएंगे। इसी के साथ इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, पुरी में भगवान जगन्नाथ का पावन धाम है, जहां पर विराजते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के मुताबिक यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहां भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रदुम्न को एक सपना आया था। देखिए,

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का वैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप, नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
2: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखे तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले, वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था, लेकिन हाथ पांव नहीं था।
1: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
2: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं, हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
1: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है, लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है, जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुँचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचाबाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरुष 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांति है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक जैसा मंदिर है, जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर जैसा वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल, और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
4: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
3: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
5: Williams keeps it. First down. Touchdown.
3: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: यूपी में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीर शहीदों को किया याद, खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को सराहा, जल संरक्षण पर भी की बात। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए आई गुड न्यूज, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज मेडल्स पर होगी देश की नजर। FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिली, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिल गई मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
6: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानू जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानू जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानू जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविंग चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही है, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्राकृतिक का साथ सलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं, और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग का स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है। हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती है।
1: यूट्यूब का द्वारा कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बांट जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कालिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ। आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार, बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना छोड़ के जितना कच्चा चीज नींबू आमला इमली और तेंगा रबाब तेंगा चटनी तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कच्चा फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बढ़ने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस हो जाता है।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की कार्ड बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वो लुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस ये सूता हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमिस्टिक का सिरका लेना है ड्रमिस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये लिकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक हमारा आदि में ये भी गलत है, और ये मेहंदी का पत्ता असमिस में जेतु का बोलता है ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमोहलेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती है। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग चमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग चमोलेओ पर्पल विजन।
0: यानुंग चमोलेओ को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग चमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था, वो खाने वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो ये है कि यानुंग चमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती है।
4: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। और मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ है। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग चमोलेओ बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा चमोलेओ खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग चमोलेओ बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जबोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेगो के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
5: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन तोर पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ यह बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेगो के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनुष्यों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
6: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
8: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
7: More top sports.
9: And he's gonna go! There's the tying goal!
7: And everything in between.
9: This game is over!
7: Upgrade now for the premium listening experience.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

0: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल, और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: यूपी में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का युवाओं से संवाद, गांवों को विकसित बनाने पर हुई चर्चा, देश के 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे हैं 400 युवा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए गुड न्यूज, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज कई मेडल्स पर रहेगी नजर। FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। ICC T20 रैंकिंग में फिर नंबर वन बना भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतते ही हासिल की टॉप पोजीशन, 15 दिनों में ही इंग्लैंड की बादशाह खत्म। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में फंसे मासूम का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, अहमदाबाद में भी बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: आज देश

प्रवेश द्वारों पर लगाए गए हैं जलपात्र। श्रावण और भादो मास में निकलेगी भगवान महाकाल की कुल 6 पारंपरिक सवारियां, 3 अगस्त को निकलेगी पहली सवारी। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में महाकाल के दरबार करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु विधि विधान के साथ महाकाल को अर्पित करते हैं जल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी बढ़ी कांवड़ यात्रा का क्रेज, इस बार एआई और कंप्यूटर से तैयार किए जा रहे हैं कांवड़ ड्रेस। सहारनपुर में खिले कारोबारियों के चेहरे, इस बार 50 से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रही है ड्रेस सप्लाई, बच्चों में बढ़ा कांवड़ का क्रेज। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए चलाएगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। कांवड़ मार्ग पर स्थित बस स्टेशनों पर कांवड़ियों के लिए किए जाएंगे विशेष इंतजाम, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की रहेगी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ यात्रा लगातार जारी, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए। भगवती नगर यात्री निवास से 19वां जत्था हुआ रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच वालटाल रास्ते से यात्रा जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक का मरम्मत और रेस्टोरेशन का रिव्यू किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने के निर्देश दिए। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी हो जाएगी यात्रा। श्री जगन्नाथपुरी में उमड़ा आस्था भक्ति का जनसैलाब, महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म, बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय। रथों पर विराजमान देवताओं को अर्पित होगा खास पेय, पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु। कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा, नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान। नीलाद्री बीजे में मां लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाते हैं महाप्रभु। खाटूशाह में आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, देश भर से लाखों भक्त निशान अर्पित करने के लिए पहुंचे खाटू। देवशयनी एकादशी पर बाबा श्याम का सतरंगी सुगंधित फूलों से हुआ भव्य श्रृंगार, अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने के लिए भाव विभोर हुए श्रद्धालु। खाटू धाम तक पैदल निशान यात्रा में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें, भक्त जयकारों के साथ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे रहे हैं बाबा श्याम के दरबार। खाटू मेले में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात। मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, कई राज्यों से भक्तों का आना लगातार जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में आषाढ़ी एकादशी पर निकाली गई भव्य रथ यात्रा, 151 साल से लगातार जारी है परंपरा। श्री विट्ठल रुक्मणी रथोत्सव में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल, ज्ञानोबा, तुकाराम और हरि विट्ठल के जयकारों की गूंज। उत्तर प्रदेश के माधव में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस बल ने जारी कर दी एडवाइजरी, चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगाई रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी पर महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य भस्म आरती हुई, देश के कोने कोने से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवरिया सेठ मंदिर में भक्त ने दिल खोलकर दान किया, 10.25 बीघा जमीन के साथ पेंट किया 2 मंजिला मकान भगवान के दान। भगवान श्री सांवलिया सेठ के चरणों में इस अनूठी भेंट के लिए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया। देशभर से आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नगद राशि, सोना, चांदी, आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं करते हैं दान। 6 दिन के इंतजार के बाद फिर गूंजे माता के जयकारे,

0: शुरू हो गई वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम के कारण 18 तारीख को रात से बंद कर दी गई थी यात्रा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शानदार खबर, श्रीकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत फिर बना T20 क्रिकेट का किंग, ICC की मेंस T20 रैंकिंग में नंबर वन। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। इटावा को 604 करोड़ रुपए की विकसित विकास की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण शिलान्यास किया। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिला, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम के स्थानीय लोगों ने जान बचाई। मन की बात के 136वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अपील की, बोले जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात का संदेश, प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देना अपील। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की, NS महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, बोले यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरीके से तैनात, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट मोड में, लगातार लोगों को बचाने के लिए काम जारी। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई, घरों में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। डांग जिले पर हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें, पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आगे आने के निर्देश दिए। औद्योगिक कचरा बनेगा निर्माण की मजबूत नींव, ISM ने विकसित की नई तकनीक। औद्योगिक कचरे के इस्तेमाल से नींव के लिए तैयार किया जाएगा पेपर ब्लॉक, तकनीक को जुलाई 2026 में मिल चुका है भारतीय पेटेंट। चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार। करीब 3,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है यह घाटी, प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल। राष्ट्रीय सेना के जवानों ने निकाली सूर्य विजय यात्रा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थूथुकुड़ी में आवर लेडी ऑफ स्नोस बेसिलिका का 444वां वार्षिक उत्सव का हुआ शुभारंभ। थूथुकुड़ी में 11 दिन तक चले गए धार्मिक उत्सव, रोजाना विशेष प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। आवर लेडी ऑफ स्नोस बेसिलिका समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। SGPGI के चिकित्सकों ने रच दिया इतिहास, भारत में पहली बार 6 वर्ष की बच्ची की सफल रोबोटिक का थायराइड सर्जरी हुई। उम्मीद योजना से कश्मीरी हस्तशिल्प को मिली नई पहचान, आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। मैनपुरी को योगी आदित्यनाथ ने दी विकास की नई सौगात, कई डेवलपमेंट योजनाओं की आधारशिला रखी। सावन में योगी सरकार देगी 24 घंटे की अतिरिक्त बस सेवाएं, कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला। नागपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। ग्वालियर में सरकारी स्कूलों के नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यक्रम में मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ का कॉरिडोर, पहले चरण को मिल चुकी है मंजूरी। करगिल में रेस्क्यू का एक शानदार वीडियो निकलकर सामने आया, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की तेजी और फुर्ती की बदौलत युवती की जान बची। करगिल की असुरू नदी में युवती ने गुस्से में लगा दी थी छलांग, का पास में खड़े पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने बाहर निकाला। कटरा के सलाल डैम में रात को देखा शानदार नजारा, तिरंगे की रोशनी के बीच निकाला बांध का पानी। भारी बारिश के चलते बढ़ा चुनाव नदी का जलस्तर, जलस्तर को नियंत्रित करने और बांध को सुरक्षित करने के लिए खोले गए कपाट। टिहरी गढ़वाल में सियासू पुल के पास फिर से भूस्खलन, जॉर्डन में रंगारंग सेराश फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। लोक संस्कृति के रंग में रंगा जेराश फेस्टिवल, पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए लोग। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सांस्कृतिक समारोह को का बने हिस्सा, स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाया। जॉर्डन में देखा कला संस्कृति और हस्तशिल्प गानों का संगम, हस्तशिल्प की दुकानें भी लोगों को कर रही आकर्षित। जेराश फेस्टिवल बना पर्यटन की आकर्षण का मुख्य केंद्र, कारोबारियों के खिले चेहरे। चीन के हाबिन पोलर पार्क में जानवरों के लिए समर स्पेशल मेन्यू। रेड पांडा, रैकून और कैपीबारा बर्फीले फ्रूट और चिल्ड ट्रीट से हुए सराबोर। अलग अलग प्रजातियों की जरूरत के हिसाब से उन्हें परोसे जा रहे हैं ठंडे फल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कैंसर रिसर्च के लिए पानी में उतरे 1000 तैराक। 10 किलोमीटर तैरकर कैंसर के खिलाफ जंग का संदेश, हजारों दर्शकों ने बढ़ाया हौसला। चीन के नाक्शू शहर में रंगारंग उत्सव 5 दिनों तक चलेगा भव्य आयोजन। लोकगीत लोक नृत्य से सजा सांस्कृतिक मंच, पारंपरिक तिब्बती वेशभूषा में कलाकारों ने जमाया रंग। पर्यटन और व्यापार को एक मंच पर लाने की पहल, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चीन के खेतों में उतरा 108 हाथों वाला रोबोट, कपास की खेती हुई हाईटेक। चीन के शिनजियांग में एक रोबोट कर रहा है 120 मजदूरों के बराबर का काम, टैबलेट से हो रहा है कंट्रोल। चीन के नानजिंग में एक एआई पावर्ड रेस्टोरेंट की हो गई शुरुआत, लोगों के लिए बना आकर्षण। इस खास रेस्टोरेंट में रोबोट बना रहे हैं खाना, ऑर्डर से लेकर सर्विसिंग तक पूरा काम। एक बार में परोसा जा सकता है 2000 लोगों का खाना, मेन्यू में 3000 से ज्यादा डिश। दक्षिण चीन सागर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 45 लोगों की बचाई गई जान। दक्षिण चीन सागर में बचाव के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात, राहत बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी। कीवेस्ट में हेमिंग्वे टेज की धूम, 45वें रेनिंग ऑफ द बोल्ट्स में लकड़ी के सांडों के साथ निकाली गई अनोखी परेड। स्लोपी जूस बार से शुरू होकर ओल्ड टाउन की वेस्ट की सड़कों तक गुजरी। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कौसल्पे का जलवा देखने को मिला, दुनिया भर के प्रशंसकों ने हिस्सा लिया। फिल्मों, कॉमिक्स और गेम्स के पसंदीदा किरदारों की लोगों ने पहनी पोशाक। फिक्सिट फेलिक्स की पोशाक में लोगों की मदद करते हुए नजर आए ब्रायन मैरो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अब खबर अमेरिका के सैन डिएगो में दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट यानी कॉमिक कॉन की, जहां इस बार भी सुपर हीरोज, फिल्मी किरदारों और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की दुनिया जीवंत नजर आई। यहां पर हजारों लोग महीनों की मेहनत और सैकड़ों डॉलर खर्च करके अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धर कर पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट।
8: सड़क पर अखबार पढ़ता स्पाइडरमैन, डॉक्टर डोम की दमदार एंट्री, समुराई हेलो किटी, रोबोट और द विज़ार्ड ऑफ ओज़ का टिन मैन। ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है जिसमें एक साथ इतने कार्टून किरदार मौजूद हों, ये तो अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित कॉमिक कॉन का नजारा है। यहाँ कॉमिक्स, फिल्मों, वीडियो गेम्स और फैंटेसी की दुनिया के हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धारण कर पहुँचे हैं। सबके कॉस्ट्यूम अपने आप में अलग है और हर किसी के पीछे महीनों की मेहनत छिपी हुई है। इसमें 27 साल की सारा लू फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के मशहूर ड्रैगन टूथलेस का रूप धर कर पहुंची। इस कॉस्ट्यूम की तैयारी उन्होंने जनवरी से शुरू की थी और इसे बनाने में करीब $400 खर्च हुए हैं।
9: At least for me, it's like an intersection between theater and music and dance as well. So I kind of use all these skills to kind of like bring a character to life. I think there's just some sort of magic to that. And as well as building a community, because I've gotten so many kids that come up and be like, oh my god, it's Toothless! And I'm like, I know, I love Toothless too, and that's why I'm doing him, just for the community.
8: कॉमिक कॉन में हर साल हजारों लोग अपने पसंदीदा किरदारों के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉस्ट्यूम ही मायने नहीं रखता बल्कि उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।
10: Okay, dudes, make sure it's cool. Like, be confident in yourself. Because if you're not confident in your own cosplay, you're gonna give off like a really bad aura and no one's gonna like you. All right, like if you just don't like how you're dressing, then your outfit's awful. You know what I mean? But if you love yourself and you like how you dress, boom, outfits peak. Don't forget sunscreen.
8: कॉमिक कॉन का आयोजन हर साल गर्मियों के दौरान होता है। ऐसे में अपने किरदारों को पेश करने वाले लोगों के लिए भी मास्क, भारी भरकम ड्रेस और बड़े प्रॉप्स पहनकर घंटों घूमना आसान नहीं होता। मौसम को देखते हुए उन्हें तेज गर्मी में अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है।
7: How do you stay cool? hydrate. I carry bottled waters here in my backpack and try to take as many breaks as possible. I try not to drink too much through the mask because you can waterboard yourself.
8: कॉमिक कॉन में अनोखी किरदारों को पेश करने वाले लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर महीनों की मेहनत से तैयार किए गए कॉस्ट्यूम या प्रॉप्स खराब हो जाते हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं ब्रायन बैरो, जिन्हें यहाँ कॉस्प्ले रेस्क्यू मैन के नाम से जाना जाता है। अपने बैग में तमाम औजार और सामान लेकर वो इन आर्टिस्ट की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि किसी के खराब हुए कॉस्ट्यूम को कुछ ही मिनटों में फिर से ठीक किया जा सके।
10: Hopefully I can fix what they have and then they can enjoy the rest of their con, because they're always on their way to a photo shoot or on their way to a panel and they want to be photo ready. And ready to go, and that's kind of what I provide, and I do it for free, only because I'm just asking people to kind of pay it forward.
8: कॉमिक कॉन सिर्फ फिल्मों और कॉमिक्स का उत्सव नहीं, बल्कि ये कल्पना, रचनात्मकता और अपने पसंदीदा किरदारों के प्रति लोगों के जुनून को दर्शाने का सबसे बड़ा और बेहतरीन मंच भी है। इसमें शामिल हो रहे लोग महीनों मेहनत करते हैं। उनके मन में बारीक कारीगरी से अपने पसंदीदा किरदार को जीवंत बनाने के लिए हर कॉस्ट्यूम को बेहद शानदार और आकर्षक बनाने का सपना होता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से हजारों लोग सैन डिएगो पहुंचते हैं और कुछ दिनों के लिए कल्पना की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
13: कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: यूपी में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का युवाओं से संवाद, गांवों को विकसित बनाने पर हुई चर्चा, देश के 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे हैं 400 युवा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से भारत के लिए गुड न्यूज, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज कई मेडल्स पर रहेगी नजर। FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। ICC T20 रैंकिंग में फिर नंबर वन बना भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतते ही हासिल की टॉप पोजीशन, 15 दिन में ही इंग्लैंड की बादशाहत खत्म। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में फंसे मासूम का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, अहमदाबाद में भी बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सुना तो होगा आपने, मजाक में बहुत सारे लोग जेल को ससुराल बोलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सचमुच जेल किसी का ससुराल हो तो आप क्या कहेंगे? ससुराल तो ससुराल, अगर वही जेल किसी का मायका भी बन जाए तो क्या कहेंगे? ये मजाक नहीं है बल्कि सचमुच ऐसा हो चुका है। जोधपुर की मंडोर जेल एक दूल्हा दुल्हन का मायका भी है और ससुराल भी। अब क्या करें, दूल्हा दुल्हन दोनों ही इसी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और ऊपर से इसी जेल में दोनों ने शादी भी कर ली। बाकायदा जेल में बारात निकली, मंडप सजा, पंडित आए, फेरे हुए, यहाँ तक कि जेल के बंदी, पुलिस, वकील सब बाराती भी बने। और ये सब कुछ हुआ राजस्थान हाई कोर्ट की इजाजत से। तो चलिए, आपको भी ससुराल, माफ कीजिएगा, उसी जेल में उस शादी में लिए चलते हैं।

0: बाराते तो आपने बहुत देखी होंगी, शादी घर, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गांव, शहर, घर में होने वाली शादियां, आजकल वाली डेस्टिनेशन मैरिज भी। जाहिर है बैंड बाजा बाराती भी देखे होंगे, लेकिन आज जिस बारात का मैं आपको बाराती बनाने जा रही हूँ, शर्तिया ऐसी बारात ना आपने देखी होगी, ना ऐसी बारात का कभी हिस्सा बने होंगे। बाकी छोड़िए, एक छोटी सी झलक से शुरुआत करती हूँ। ये एक इशारा होगा आपको पकड़ने के लिए कि ये बारात कैसी और किसकी है। दूल्हे के साथ साथ ये शख्स बैंड बाजा नहीं बल्कि कुछ और बजा रहा है। अब गौर से देखिए, इसके हाथ में एक थाली है और एक चम्मच। अब इस दूल्हे को देखिए, बारातियों में शामिल पुलिस वाले भी हैं, वकील भी और सरकारी अफसर भी। ऐसा नहीं है कि पुलिस या वकीलों का शादियों में जाना कोई अजीब बात है, आखिर वो भी खाकी और काले कोट के पीछे है तो हमारे और आपके जैसे इंसान ही। अलबत्ता शादियों में वर्दी की जगह पुलिस वाले भी शादियों वाले कपड़े में ही आते हैं, पर ये शादी बहुत खास है। इतनी खास कि इन्हें शादी में शिरकत भी करनी थी और वर्दी भी पहननी थी, क्योंकि ये इस वक्त यहाँ एक साथ दो दो फर्ज निभा रहे हैं। अब चलिए दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं। मंत्रोच्चार के बीच बाकायदा शादी की सारी रस्में निभाई जा रही हैं, सात फेरे लिए जा रही हैं। गिनकर दूल्हा दुल्हन की तरफ से कुल 21 रिश्तेदार भी इस शादी का गवाह बनने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब गिनकर कुल 21 ही रिश्तेदार क्यों, ये आगे आप समझ जाएंगे। शादी संपन्न हुई। अब दूल्हा और बाराती लौट रहे हैं, लौट कर वही वापस जा रहे हैं जहाँ से ये आए थे। अब जब सब कुछ देख ही लिया तो चलिए शादी के मंडप के बाहर निकलकर शादी की पूरी जगह भी देख लीजिए। देख लीजिए कि आखिर ये शादी हो कहाँ रही थी। अमूमन मैरिज हॉल में जहाँ शादियाँ होती है वहाँ उस मैरिज हॉल या रिजॉर्ट के बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं। अभी अभी जहाँ शादी हुई इस शादी की जगह पर भी इस जगह के नाम का एक बोर्ड है। ये रहा वो बोर्ड, पढ़ा खुला बंदी शिविर, अंग्रेजी में इसे ओपन जेल कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला दे तो आम बोलचाल में इसे जेल ही कहते हैं। अब चौके ना आप, जाने अनजाने आज आप भी एक जेल में होने वाली शादी का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जेल तो सजा के लिए है, जेल में तो खूंखार कैदी होते हैं, जेल में तो ये होता है वो होता है, तो क्या जेल में शादी भी होती है? तो अब शुरू से शुरू करते हुए पूरी कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले बस एक लाइन में दूल्हा दुल्हन का परिचय करा दूं। दूल्हे का नाम मूलाराम है और दुल्हन का सीमा। अब जाहिर है शौक में बाहर आकर डेस्टिनेशन मैरिज के तौर पर शादी के लिए दोनों जेल तो चुनेंगे नहीं, चुन भी ले तो जेल इन्हें अपने यहाँ शादी की इजाजत देने से तो रही, तो मतलब साफ है कि ये दोनों इसी जेल के कैदी हैं। अब कैदी हैं तो कुछ जुर्म भी किया होगा। तो इत्तेफाक ये है कि दूल्हा दुल्हन बने मूलाराम और सीमा दोनों एक ही जुर्म में इस जेल में आए। दोनों ने कत्ल किए, मूलाराम ने अपने पड़ोसी का और सीमा ने अपने पति का। और इसी कत्ल के इल्जाम में ये भी इत्तेफाक देखिए कि दोनों को उम्र कैद की ही सजा मिली, यानी ये दूल्हा दुल्हन कायदे से इस जेल में उम्र कैद की सजा काटने आए हैं। लेकिन उम्र कैद की सजा काटते काटते इसी जेल में अब दोनों उम्र भर के लिए एक दूसरे के हो गए, साथ फेरे लेकर। राजस्थान के जोधपुर में मौजूद ये मंडोर ओपन जेल है, यानी खुला बंदी शिविर। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमारे देश में दो तरह की जेलें होती हैं, एक तिहाड़ जैसी वो जेल जिसके बारे में आप सब जानते हैं और दूसरी ओपन जेल। अब आप कहेंगे इन दोनों जेलों में फर्क क्या है, तो उस फर्क को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि मुजरिमों को जेल भेजने का मकसद क्या है। पुलिस मुजरिमों को पकड़ती है और अदालत उन्हें सजा के तौर पर जेल भेजती है ताकि जेल जाकर वो सुधर सके। इसी का एक्सटेंशन है ओपन जेल। जो कैदी या मुजरिम जेल में अच्छा बर्ताव करते हैं उनका चाल चलन अच्छा होता है, और जो एक खास मुद्दत जेल में काट चुके होते हैं उन्हें उनके बर्ताव के हिसाब से ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ओपन जेल होती तो जेल है, लेकिन जेल जैसी नहीं। ओपन जेल में आप एक तरह से आजाद होते हैं। आप यहां अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। यहां रहते हुए आप सुबह से शाम तक बाहर निकलकर नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, हर त्योहार परिवार के साथ मना सकते हैं। पर शर्त इतनी है कि सुबह सूरज निकलने के बाद काम पर जाकर सूरज डूबने से पहले यहां लौट आना होता है। इस जेल में आप अपनी कमाई की गाड़ी भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं।
1: जैसे बंदी जिसका आचरण बढ़िया होता है उसको ओपन कैंप पे भेजा जाता है, वो बंदी है मूलाराम और सीमा महिला।
0: ये मंडोर की वही ओपन जेल है। ये जो छोटे छोटे कमरे क्वार्टर जैसे दिख रहे हैं, असल में ये कैदियों के घर हैं। इस जेल के चारों तरफ खेती की जमीन है। इस जेल में रहने वाले ज्यादातर कैदी इसी जमीन पर खेती का काम करते हैं। यह जमीन दरअसल जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के हिस्से में आती है और उसी में एक हिस्सा इस ओपन जेल का आता है। अब वापस शादी में चलते हैं और दूल्हा और दुल्हन से आपका पूरा परिचय कराते हैं। ये जो दूल्हा है मूला राम, इसके हाथों करीब 14 साल पहले जमीन के झगड़े में अपने ही पड़ोसी का कत्ल हो गया था। जनवरी 2017 में अदालत ने मूला राम को उस कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद मूला राम को अजमेर जेल भेज दिया गया। जेल में उसका चाल चलन अच्छा था। उसके इसी अच्छे बर्ताव को देखते हुए 2 साल पहले ही उसे अजमेर जेल से इस मंडोर ओपन जेल में भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद वो इसी जेल परिसर के अंदर खेती कर पैसे कमाने लगा।
2: यहाँ सर सारा काम सीख गया, खेती बाड़ी का, ट्रैक्टर चलाना सारा काम सीख गया। अच्छे आचरण से हम रह रहे यहाँ और हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। और छूट जाएंगे, 1-2 साल बाद छूट जाएंगे यहाँ से।
3: जो मुलजिम है मूला राम, ये नागौर जिले का अड़सिंगा गांव का है और इसको एक मर्डर के केस में सजा हुई थी और वहां से अजमेर जेल में इसको शिफ्ट किया गया था। अजमेर से फिर इसका आचरण को अच्छा देखते हुए इसको जोधपुर मंडोर ओपन एयर कैंप में भेज दिया गया था और ये पिछले 2 साल से ओपन एयर कैंप में अपनी सजा भुगत रहा था। इस दौरान ये अजमेर से यहाँ आने के बाद में ओपन एयर कैंप में अपना आचरण अच्छा था और ओपन एयर कैंप की जो व्यवस्था है वहां पे एक बंदिया का पंचायत होती है, उस पंचायत का इसको सरपंच बनाया हुआ, पंच बनाया होता है, तो ये उस पूरे कैंप का मैनेजमेंट देखता है और ये अपना कार्य करता है खेती का और सारा कार्य।
0: उधर लगभग उसी दौर में सीमा के हाथों उसके पति का कत्ल हो गया। सीमा को भी अदालत ने इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई।
3: एक महिला बंदी जो होती है सीमा, जो महाराष्ट्र की होती है और उसको उसकी बेटी मतलब उसकी माँ का द्वारा उसका विवाह यहाँ जोधपुर में कर दिया जाता है, घंटाघर में, एक कौशल राज अरोड़ा के साथ में। उस विवाह के कुछ दिनों बाद जब उसको उस विवाह से नाराजगी रहती है क्योंकि उसकी वो पसंद से शादी होती नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका वो रात को मर्डर कर देती है और उसको उस मर्डर के अंदर जोधपुर सेशन कोर्ट में उसको आजीवन सजा दे देते हैं।
0: तब सीमा को जोधपुर जेल में रखा गया। जेल में सीमा का बर्ताव भी काफी अच्छा था। जेल के जेलर और बाकी कमेटी मेंबर की सिफारिश पर 2024 में सीमा को भी मंडोर के इसी ओपन जेल में भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद सीमा भी जेल परिसर के अंदर खेती का काम करने लगी।
4: ये जो महिला बंदी है सीमा और मूला राम, ये दोनों हमारे यहाँ कृषि कार्य करते हैं और ये मतलब 2-3 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए और ये मतलब निष्ठा से कृषि कार्य करते हैं।
5: कितना वेतन इनको मिलता था, क्या टाइमिंग रहता था, क्या खेती करते थे, कैसे मिले?
4: इनका वेतन जो राजस्थान गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेज है जो 285 अनस्किल्ड लेबर का, वो इनको मिलता है और ये सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक 8 घंटे कृषि कार्य करते हैं।
0: इसी जेल में एक लव स्टोरी जन्म लेती है। लव स्टोरी मूला राम और सीमा की। एक साथ खेत में काम करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। ओपन जेल इनके प्यार को और आगे बढ़ाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों अपने इसी प्यार को एक नाम देने का फैसला करते हैं। इसी के बाद शादी करने के लिए दोनों राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी लगा देते हैं।
3: ये दोनों मूलाराम और सीमा का आपस में मुलाकात होती है और ये वही अपना कार्य करते हैं खेती का, और इन दोनों के बीच में कुछ अच्छे संबंध बनते हैं और इन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि अपन शादी करेंगे। लेकिन इनकी शादी में एक सबसे बड़ी बाधा आती है कि इस ओपन एयर कैंप में सिर्फ मैरिज किया हुआ बंदी रह सकता है और दूसरे बंदी जो भी रहेंगे वो अपने अपने क्वार्टर्स में रहेंगे। तो इनके लिए एक बड़ी विडंबना थी कि ये दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन कानून में इसकी कोई प्रावधान नहीं था कि वो शादी कैसे करें।
5: जो मूलाराम है अपने पड़ोसी की हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहे थे, जिन्हें अच्छे आचरण के चलते यहाँ शिफ्ट किया गया, लेकिन जो बंदी सीमा है जिन्होंने जोधपुर में अपने पति की हत्या की थी जिसके बाद अच्छा आचरण के चलते इन दोनों ने जोधपुर स्थित मंडोर जो कृषि विश्वविद्यालय के है वहां पर खेती कर रहे थे, अच्छे आचरण के चलते इन दोनों के बीच में आपसी समन्वय बैठा जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई।
0: अमूमन कोर्ट में लोग तलाक लेने, जमानत मांगने या मुकदमों से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, पर खुद राजस्थान हाई कोर्ट के लिए एक अजीब मामला था। अजीब हो भी क्यों ना, दो कत्ल के सजायाफ्ता कैदी जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है वो कोर्ट से फरियाद कर रहे हैं कि उनकी शादी करा दे। अब जाहिर है शादी संविधान के हिसाब से हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, शादी परिवार की बातें संविधान में साफ साफ लिखी है, लिहाजा अब हरेक की नजर राजस्थान हाई कोर्ट पर थी। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी ये पहला मामला था जब उम्र कैद की सजा पाए दो कैदी ओपन जेल के अंदर शादी की मंजूरी मांग रहे थे। कोर्ट में मूलाराम और सीमा के वकील पहुंचे तो दूसरी तरफ सरकार के वकील खड़े थे। तमाम दलील और बहस के बाद हुआ ये कि खुद सरकारी वकील ने भी इन दोनों की शादी पर कोई आपत्ति नहीं की। फिर क्या था, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दोनों की शादी को मंजूरी दे दी।
6: जी 15 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मूलाराम और सीमा के शादी के लिए ओपन एयर कैंप में शादी के लिए निर्देश दिए गए। मूलाराम और सीमा हत्या के आरोप में अंदर है। मूलाराम और सीमा के एक ओपन एयर कैंप में रहते हुए भी आपस में प्यार हो गया और इसके चलते ये हमारे पास आए थे और हमने कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी जिसके तहत कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे और इसकी पैरवी की थी एडवोकेट कालूराम भाटी जी ने और मैं स्वयं स्वप्न चौहान ने। और ये कहीं ना कहीं संविधान की खूबसूरती को दिखाता है, कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी है, रिहैबिलिटेशन रिफॉर्मेटरी थ्योरी, उसका एक अच्छा उदाहरण है, जो सुधारात्मक सिद्धांत है उसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया।
3: इस तरह का एक अनोखा और एक मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधिपति उच्च न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया था, ये महिला बंदी के लिए एक पुनः समाज में स्थापित होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजीर के रूप में स्थापित हुई है।
0: शादी की तारीख खुद अदालत ने तय की 22 जुलाई। अब चूंकि शादी ओपन जेल में होनी थी तो कोर्ट ने बारातियों की गिनती भी खुद की। दूल्हा दुल्हन की तरफ से कुल 21 मेहमानों को इस अनोखी शादी में शामिल होने की इजाजत दी गई। साथ ही कोर्ट के नुमाइंदे और पुलिस को भी इस शादी का गवाह बन शादी संपन्न हो जाने की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का हुक्म दिया।
2: ये बिल्कुल खुशी है सब शादी की, तो मतलब हम ऊपर से तो जोड़ी बनाते नहीं है लेकिन हम यहाँ नीचे आके बनाई है जोड़ी, बिल्कुल यहाँ बनाई है जोड़ी। परिवार वाले करा रहे शादी, हम तो करवा रहे नहीं है शादी, परिवार वाले करवा रहे। 21 आदमी आएंगे घर से तो कराएंगे शादी।
1: शादी के होगा क्या,
2: शादी के बाद अच्छा चौका सुधर जाता है, मेरी तो औकात ही क्या।
7: शादी हो रही है और ये दोनों ही आजीवन सजा के वो व्यक्ति हैं और इनमें दोनों में मेल हो गया तो इनके घर वालों ने खुशी होकर के ये शादी की है, कोर्ट से इजाजत ली है इसके लिए और ये बात है।
5: आपने क्या धर्म निभाया आज?
7: मैंने तो, मेरा तो एक बच्चे की तरह है ये, मैं भी इसके साथ रहा हूँ, कोई जमाना था अच्छा। इसी ओपन जी कैंप में मैं था, आज मैं फ्री हूँ।
5: आज आप बारात में बाराती
7: बन? मैं बाराती बन के आया हूँ, हाँ स्वतंत्र हूँ मैं।
0: 22 जुलाई को दिन में बाकायदा ओपन जेल के अंदर ही मंडप सजा, जेल के अंदर ही रिश्तेदारों और जेल में मौजूद कैदी बाराती बने। इकलौते ही सही, बाराती नाचा भी। एक ने बैंड बाजे की कमी, जेल में खाने के लिए मिलने वाली इस चम्मच और थाली को बजाकर ही कसर पूरी करने की कोशिश की। पंडित बाहर से आए, मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे के साथ शादी संपन्न।
8: सर्वदेव साक्षी सूर्य देव समस्त परिवारस्य राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक मानवीय निर्णय देते हुए नागौर निवासी मूलाराम और मुंबई की निवासी सीमा जो है आज है जो इस खुली जेल है जोधपुर के मंडोर स्थित खुली जेल में आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं और इस समय इनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है। आपको बता दें कि देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने तकरीबन 21 लोगों को अनुमति दी है, जो 21 लोग हैं वो है इस शादी में शरीक होंगे। आप देख सकते हैं पंडित भी है, लेकिन जो सीमा की है जिन्होंने गोद ले रखा है सीमा के जो पिता हैं राधा कृष्ण जी वो आज कन्यादान कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से शादी हो रही है और ये देखिए तो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और कन्यादान किया जा रहा है, लेकिन ये एक इतना राजस्थान हाईकोर्ट का मानवीय फैसला है जिसके चलते है पहली बार जोधपुर की जो मंडोर स्थित खुली जेल है जिस जेल के अंदर ये शादी हो रही है।
9: सीमा और मूलाराम की शादी है, वो शादी मतलब कम्प्लीट हो चुकी है अभी और उन दोनों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, भगवान उनको अच्छी तरह से।
8: आप भी यहाँ पे इनके बाराती हैं?
9: जी हम बाराती भी हैं और बंदी भी हैं।
8: कैसे है आचरण इन दोनों का?
9: ठीक है साहब, जब भी तो अच्छा था तभी तो ऐसे जेल के यहाँ ओपन फार्म में मिला, फिर यहाँ भी काफी समय से एक साथ रह रहे हैं तो शादी भी उनकी बात हुई है। उन लड़की के परिवार वाले भी है, हमारे लड़के भी परिवार वाले है, दोनों सहमत है, ऐसे कुछ नहीं, अपनी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवा दी। ठीक है सर।
0: शादी संपन्न होने के बाद लिफाफा देने की भी रस्म अदा की गई। शगुन का लिफाफा देने वालों में वकील और पुलिस वाले भी थे।
10: ओम विष्णु लक्ष्मणाभ्यो स्वाहा।
11: न्यायालय के आदेश अनुसार, न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार ये बंदी मूलाराम निवासी नागौर का रहने वाला है और महिला सीमा ये बम्बई की रहने वाली है। दो स्टेट के अलग अलग बंदी दूल्हा और दुल्हन जिसकी आज शादी हुई है और न्यायालय आदेश अनुसार, न्यायालय की पालना के अनुसार उसकी शादी हुई है और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वापस समाज से जुड़े।
0: इसके बाद जेल के बाहर के बाराती वापस लौट गए और दूल्हा दुल्हन जेल में ही रह गए क्योंकि फिलहाल दोनों का घर यही है। वैसे शादी से पहले दुल्हन सीमा ने ओपन जेल से बाहर जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने सीमा को 40 दिन की पेरोल पर बाहर जाने की इजाजत भी दे दी, यानी जिस दिन शादी हुई तब सीमा बाहर से जेल के अंदर आई थी, यानी तकनीकी रूप से बाहर से बारात लेकर दूल्हा नहीं दुल्हन आई थी। सीमा की पेरोल की म्याद अभी भी बची हुई है, यानी वो चाहे तो हनीमून पर बाहर जा सकती है पर जा नहीं पाएगी क्योंकि पति मूलाराम इस ओपन जेल के बाहर सिर्फ सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज ढलने तक ही रह सकता है। तो बताइए कैसी लगी ये शादी? अशोक कुमार शर्मा के साथ मनीषा झा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे।
10: समस्त परिवार
0: तो अगली बार मजाक में ही सही, अगर कोई कहे कि जेल ससुराल है तो इसे मजाक मत समझिएगा क्योंकि अब जेल सिर्फ ससुराल ही नहीं मायका भी बन चुका है। तो पूरी जेएनटी टीम की तरफ से दूल्हा दुल्हन को हार्दिक बधाई। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: पर असर डालती है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: बात करेंगे सावन की तैयारियों की। देखिए आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व अब शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी सावन से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां हर साल लाखों भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव के चरणों में चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। सावन से पहले मंदिर में 18 दान पात्रों को खोला गया है।

0: सावन आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। कंधे पर कावड़, मन में विश्वास और जुबा पर भोले बाबा का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ने की तैयारी में है। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि शिव भक्ति किसी एक महीने या किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती, भोलेनाथ के प्रति आस्था ही भक्तों को उनकी चौखट तक खींच लाती है। झारखंड का देवघर, जहां विराजते हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ। सावन शुरू होते ही यहां आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई राज्यों से कांवड़िए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। गंगा जल लेकर लंबी यात्रा तय करने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन शुरू होने से पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार भगवान को चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। भक्तों की इसी श्रद्धा का प्रमाण बाबा मंदिर में रखे दान पात्रों से भी मिला है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को खोला गया। मंदिर प्रशासन की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दान राशि को प्रशासनिक भवन में ले जाकर उसकी गिनती की गई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। 24 जुलाई को बाबा मंदिर परिसर में रखे सभी दान पात्र मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोले गए। दान पात्रों से प्राप्त राशि की गिनती प्रशासनिक भवन में की गई। गिनती पूरी होने के बाद कुल 17,67,086 रुपए के अलावा 1,630 नेपाली रुपए, $21 और 17 रियाल प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा कराया। सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण का पर्व है। आने वाले दिनों में देवघर की गलियां कांवड़ियों के जयकारों से गूंजेगी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय होगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: यूपी में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का युवाओं से संवाद, गांवों को विकसित बनाने पर हुई चर्चा, देश के 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे हैं 400 युवा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए गुड न्यूज, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज कई मेडल्स पर रहेगी नजर। FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। ICC T20 रैंकिंग में फिर नंबर वन बना भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतते ही हासिल की टॉप पोजीशन, 15 दिन में ही इंग्लैंड की बादशाहत खैर। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव में फंसे मासूम का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, अहमदाबाद में भी बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: अलवर में भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह, हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। जयकारों से गूंजा अलवर, इंद्र विमान में पहुंचे भगवान जगन्नाथ। अलवर में वरमाला के बाद हुई आरती और फेरे, उमड़ा आस्था का सैलाब। अलवर में आस्था के साथ देखा संस्कृति का संगम, 5 दिन तक चलेगा जगन्नाथ मेला। जगन्नाथ मेले में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से पहुंचे हजारों संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ और जानकी जी के कर रहे हैं दर्शन। देश भर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, उज्जैन का महाकाल दरबार विशेष इंतजाम। 30 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना, मंदिर में महाकाल को जल अर्पित करने के लिए विशेष इंतजाम। कांवड़ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड में, सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए गए हैं जलपात। श्रावण और भादु मास में निकलेगी भगवान महाकाल की कुल 6 पारंपरिक सवारी। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में महाकाल दरबार में पहुंचते हैं श्रद्धालु, विधि विधान के साथ महाकाल को अर्पित करते हैं जल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी बढ़ा कांवड़ यात्रा का क्रेज, इस बार एआई और कंप्यूटर से तैयार किए गए हैं डिजाइन वाली कांवड़ ड्रेस। सहारनपुर में खिले कारोबारियों के चेहरे, इस बार 50 से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रही है ड्रेस सप्लाई। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए चलाएगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। कांवड़ मार्ग पर स्थित बस स्टेशनों पर कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम, पेयजल, स्वच्छ शौचालय की भी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ यात्रा लगातार जारी, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए। भगवती नगर यात्रा निवास से 19वां जत्था हुआ रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल रास्ते से यात्रा जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम का रिव्यू किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने के निर्देश दिए। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर यात्रा संपूर्ण हो जाएगी।

की आवाजाही पर लगाई गई रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी पर महाकालेश्वर मंदिर में दिव्य भस्म आरती हुई, देश के कोने कोने से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सेना का शक्ति प्रदर्शन, स्वदेशी हथियारों की नुमाइश। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अलग अलग क्षमताओं के ड्रोन की नुमाइश। अलग झपकते दुश्मन से नापाक इरादों को निस्तनाबूद करने में सक्षम है ड्रोन। द्रास में रफ टेरेन व्हीकल की क्षमताओं की भी प्रदर्शनी, ये गाड़ी कंकड़ पत्थरों और गड्ढों वाले रास्तों पर बिना रुके चल सकती है। स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल की भी नुमाइश, जवानों ने हथियारों के साथ किया युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शानदार खबर, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर जीता। भारत पर बना T20 क्रिकेट का किंग, ICC मैंस T20 रैंकिंग में नंबर 1। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इटावा को 604 करोड़ रुपए की विकास सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिली, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। मन की बात के 136वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अपील की, बोले जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात में दिया गया संदेश, प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण, पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा, NS महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, बोले यंग इनोवेटर्स ने वो कर दिया जो असंभव लगता था। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरीके से मुस्तैद, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट मोड में, लगातार लोगों को बचाने का काम जारी। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, घरों में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। डांग जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन जैसी स्थिति, पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आगे आने के निर्देश दिए। औद्योगिक कचरा निर्माण बनेगा मजबूत नींव, ISM ने विकसित की नई तकनीक। औद्योगिक कचरे के इस्तेमाल से नींव के लिए तैयार किया जाएगा पेवर ब्लॉक, तकनीक को जुलाई 2026 में मिल चुका है भारतीय पेटेंट। चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी, इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार, 16,000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं दीदार। करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है घाटी, प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल। द्रास सेना के जवानों ने निकाली सूर्य विजय यात्रा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। तूतुकुड़ी में आवर लेडी आवर स्नोस बेसिलिका का 444वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ। तूतुकुड़ी में 11 दिन तक चले गए धार्मिक उत्सव, रोजाना विशेष प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। आवर लेडी ऑफ स्नोस बेसिलिका समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। SGPGI के चिकित्सकों ने रच दिया इतिहास, भारत में पहली बार 6 वर्ष की बच्ची की सफल रोबोटिक

0: سرجري. उम्मीद योजना से कश्मीरी हस्तकुशल को मिल रही है नई पहचान, आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। मैनपुरी को योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात दी, कई डेवलपमेंट योजनाओं की आधारशिला। सावन में योगी सरकार देगी 24 घंटे की अतिरिक्त बस सेवाएं, कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला। नागपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। मोहाली में सरकारी स्कूलों के नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिल गई मंजूरी। करगिल में रेस्क्यू का एक शानदार वीडियो निकलकर सामने आया, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की तेजी और फुर्ती की बदौलत युवती की जान बची। करगिल की सुरू नदी में युवती ने गुस्से में लगा दी थी छलांग, स्थानीय लोगों ने बचाया। कटरा के सलाल डैम में रात को देखा शानदार नजारा, तिरंगे की रोशनी से नहाया बांध। बारिश के चलते बाढ़ पड़ा चुनाब नदी का जलस्तर, जलस्तर को नियंत्रित करने और बांध को सुरक्षित बनाने के लिए खुले गए कपाट। टिहरी गढ़वाल में सियासू पुल के पास फिर भूस्खलन, मार्ग अस्थायी रूप से बंद, प्रशासन ने जारी कर दी एडवाइजरी। मुगल रोड पर लगातार बारिश से भूस्खलन, कई जगह जलजमाव। बारिश के बीच मुगल रोड पर राहत कार्य के लिए जुटी बीआरओ की टीम, यातायात को बहाल करने में जुटे तमाम। बीआरओ की टीम ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की और गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़, दरहाली अट्टी इलाके में हुआ नुकसान। बारिश के चलते दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, पुराने लोहे के पुल और आसपास के इलाकों में प्रशासन की विशेष निगरानी। जॉर्डन में रंगारंग ज़ेराश फेस्टिवल की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोक संस्कृति के रंग रंगा हुआ नजर आया ज़ेराश फेस्टिवल, पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए लोग। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सांस्कृतिक समारोह का बन रहे हिस्सा, स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लाभ। जॉर्डन में देखा कला संस्कृति और हस्तशिल्प कानों का संगम, हस्तशिल्प की दुकानें भी लोगों को कर रही हैं आकर्षित। ज़ेराश फेस्टिवल बना पर्यटकों का बड़ा आकर्षण, कारोबारियों के खिले चेहरे। चीन के हॉर्बिन पोलर पार्क में जानवरों के लिए समर स्पेशल मेन्यू, गर्मी से बचाने के लिए अनोखा इंतजाम। रेड पांडा, रैकून और कैपिबारा बर्फीले फ्रूट चखते हुए नजर आए। अलग अलग प्रजातियों की जरूरत के हिसाब से उन्हें परोसे जा रहे हैं ठंडे फल, चिल्ड सब्जियां। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कैंसर रिसर्च के लिए पानी में उतरे 1000 तैराक। दस किलोग्राम तैरकर रा कैंसर के खिलाफ जंग का संदेश दिया, हजारों दर्शकों ने बढ़ाया हौसला। चीन के नांगशू शहर में रंगारंग उत्सव, 5 दिनों तक चलेगा भव्य आयोजन। लोकगीत लोक नृत्य से सजा सांस्कृतिक मंच। पर्यटन और व्यापार को एक मंच पर लाने की पहल, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चीन के खेतों में उतरा 108 हाथों वाला रोबोट, कपास की खेती हुई हाईटेक। चीन के शिनजियांग में एक रोबोट कर रहा 120 मजदूरों के बराबर काम, टैबलेट से हो रहा है कंट्रोल। चीन के नानजिंग में एक एआई पावर्ड रेस्टोरेंट की हो गई शुरुआत, लोगों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। इस खास रेस्टोरेंट में रोबोट बना रहा है खाना, ऑर्डर से लेकर सर्विसिंग तक पूरा काम। एक बार में परोसा जा सकता है 2000 लोगों का खाना, मेन्यू में 3000 से ज्यादा डिश। दक्षिण चीन सागर में बढ़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 45 लोगों की बचाई की जान। दक्षिण चीन सागर में बचाव करने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात, राहत बचाव मिशन तेज। की वेस्ट में हेमिंगवे रेस की धूम, 45वें रनिंग ऑफ द बुल्स में लकड़ी के सांडों के साथ निकाली गई अरों की परेड। स्लोपी जूस बार से शुरू होकर ओल्ड टाउन की वेस्ट से सड़कों पर गुजरा। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कॉस्प्ले का जलवा, जबरदस्त पहुंचे दर्शक। फिल्मों, कॉमिक्स और गेम्स के पसंदीदा किरदारों के लोगों को बनी पोशाक, कॉस्प्ले कलाकारों ने महीनों की मेहनत करके तैयार की ड्रेस। फिक्सेट फेलिक्स की पोशाक में लोगों की मदद करते हुए नजर आए ब्रायन मैरो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल, और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देखिए रक्षाबंधन यानी प्यार, विश्वास और सुरक्षा के वचन का पर्व, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से इस त्योहार की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने राखी को नया अर्थ दे दिया है। यहां बहनों ने ऐसी इको फ्रेंडली बीज राखियां बनाई हैं जो रिश्तों की डोर मजबूत करने के साथ साथ धरती को भी हरा भरा बनाने का संदेश दे रही है। देखिए रिपोर्ट।
11: रक्षाबंधन का त्योहार
7: हर साल भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इस पर्व को एक नई सोच से जोड़ा गया है। यहाँ बहनों ने दरअसल ऐसी राखियाँ बनाई हैं जो सिर्फ कलाई की शोभा नहीं बढ़ाएंगी बल्कि धरती पर नई हरियाली भी उगाएंगी। बीजों से तैयार इन अनोखी राखियों के जरिए प्यार के साथ प्रकृति को बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। रंग, अपनापन और पर्यावरण की चिंता, इन तीनों का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस बार बीज वाली इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं।
9: बीज का राखी को जो भी भाई बहन है अगर वो दो दिन चार दिन के बाद कहीं फेंक भी दे तो उसमें से पौधा उत्पन्न हो और उसमें से फल का भी हम लोग किए हैं, सब्जी का भी किए हैं, तो आगे चल के अच्छा से पर्यावरण भी अच्छा रहे।
7: धान, मक्का, सेमी, करेला, बरबट्टी, लौकी, भिंडी, मसूर, चना, तिल, सरसों और कई स्थानीय बीजों से बनी इन राखियों को रंग, धागे और स्टिकर की मदद से आकर्षक रूप दिया गया है। सबसे खास बात ये कि त्योहार के बाद इन्हें मिट्टी में दबाने पर इनमें लगे बीज अंकुरित होकर पौधे बन सकते हैं।
11: कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार भी बीज का राखी बना रहे हैं। बरबट्टी का बीज है, भिंडी का बीज है, लौकी का बीज है, कद्दू का बीज है, मतलब सब्जी आइटम में से सभी बीज में से बना रहे हैं।
7: जिले के सभी 7 विकास खंडों में ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़ी हैं। यहाँ रह रही सुनंदा चौहान और प्रतिमा कुर्रे जैसी सदस्य इस पहल को गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं। लोगों का मानना है कि इससे पर्यावरण को फायदा होगा और एनजीओस की आय भी बढ़ेगी। तो इस बार राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं सजेगी बल्कि आने वाले समय में खेल आंगन और बगीचों में हरियाली भी उगाएगी। यही संदेश दे रही है रायगढ़ की ये बीज राखियां कि रिश्तों की मिठास तब और बढ़ सकती है जब उसमें प्रकृति का सम्मान भी शामिल हो। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
12: वायरल तस्वीरों में बच्ची को मिला है साइकिल का तोहफा, लेकिन ये महज तोहफा नहीं, ये खुशियों का मौका है, खुशियों के जश्न का मौका है। सो इस तोहफे का यानी साइकिल का स्वागत भी कन्या के हाथों ही हुआ। बकायदा वहाँ पर घोल कर उसमें बच्ची के पैरों को भिगो कर साइकिल पर पैरों की छाप लगाई गई, मानो घर में किसी नई दुल्हन का प्रवेश हो रहा हो। ये तस्वीरें देखकर यही लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियाँ कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जो खुश रहना जानते हैं वो खुश हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इस बच्ची की तो तारीफ कर ही रहे हैं, उसके पेरेंट्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। इन तस्वीरों में ये बच्चा अपने पसंदीदा होम डिपो कर्मचारियों के लिए उनके जन्मदिन पर फूल लाया। महिला कर्मचारी को अंदाजा नहीं था कि बच्चा ऐसा करेगा, वो भावुक होती है, अपनी सीट से उठती है और बच्चे को गले लगाकर धन्यवाद करती है। जाहिर है कि तस्वीरें अच्छा महसूस करा रही हैं। लोग बच्चे को तो दुआएं दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके माता पिता ने जरूर बहुत अच्छा काम किया होगा। इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही से जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी की नुमाइश। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का हुआ युवाओं से संवाद, गांवों को विकसित बनाने पर हुई चर्चा, देश के 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे हैं 400 युवा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत के लिए गुड न्यूज थी, श्रीकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज कई मेडल्स पर देश की नजरें। FHI यूथ हॉकी 5S एशिया चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। ICC T20 रैंकिंग में फिर नंबर वन बना भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतते ही हासिल की टॉप पोजीशन, 15 दिन में ही इंग्लैंड की बादशाहत खत्म। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में फंसे मासूम का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, अहमदाबाद में भी बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य कायाकल्प।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: स्वाभिमान वाली शादी, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सत्य घटना पर आधारित एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी पर एक बहस भी छिड़ गई है। इस पोस्ट में लड़की ने फुल टाइम बहू बनने से इनकार कर दिया। दावा यह है कि लड़की ने 48 लाख पैकेज वाले दूल्हे को रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आई, लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। तो क्या अब सोच बदलने का समय आ गया है? क्या लड़की ने अपने फैसले से गहरा संदेश दिया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली की एक कामकाजी महिला है जिन्होंने एक पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। उन्होंने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर ये पोस्ट शेयर किया है। लिखा क्या है वो भी बताते हैं आपको। दिल्ली की वर्किंग लेडी की ये पोस्ट शादी के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकराने के बारे में है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस वायरल पोस्ट में करियर, जेंडर एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न रिलेशनशिप को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सत्य घटना पर आधारित टाइटल वाली इस पोस्ट में महिला ने बताया कि उसने क्यों 48 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लड़के से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला के मुताबिक दोनों परिवार शुरुआती दौर पर शादी को लेकर तैयार लग रहे थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से आई एक डिमांड ने सब कुछ पलट दिया। दरअसल लड़के के घर वालों ने ये मांग रखी कि शादी के बाद लड़की को अपनी जॉब छोड़नी होगी, लेकिन महिला ने खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और अपने करियर के प्रति लगाव का हवाला देकर शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला ने पोस्ट में लिखा है कि वो 48 लाख रुपए सालाना कमाता है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दूं, लिहाजा मैंने पूरी विनम्रता के साथ उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पोस्ट में महिला ने तर्क दिया है कि उसके लिए जॉब कोई हॉबी नहीं है जिसे वो किसी के कहने पर बदल दे। महिला ने साफ किया है कि फैसला लड़के की सैलरी या फिर आर्थिक सुरक्षा को लेकर अभी नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर था। लिंक्डइन पर शेयर किया गया ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिस पर हजारों यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्यादातर यूजर्स ने अपने रुख पर कायम रहने और मूल्यों के साथ समझौता न करने के लिए इस कामकाजी महिला की तारीफ भी की है। कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के युवा पेशेवर लोगों में शादी को लेकर सोच बदल रही है। आज के दौर में पार्टनर्स एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ावा देते हैं।
1: अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना है, तो मैं वो शादी नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा फर्स्ट मोटिव इज़ टू बी इंडिपेंडेंट। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि क्योंकि ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको हर चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी तो ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और खुद अर्न करो, ताकि किसी से मांगना नहीं पड़े।
2: वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने अपना पैशन इतने फॉलो करा है तो ऑब्वियसली मेरे को करना पड़ेगा, और मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो मैं खुद के लिए अर्न कर रही हूँ। मेरे को अपने इन लॉस से बार बार पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा करा है, तो मैं पढ़ाया लिखा है, तो ऑब्वियसली मेरे को भी उनको कुछ देना पड़ेगा। खुद के ऊपर आइडेंटिटी ऑब्वियसली एक लड़की की होनी चाहिए, कहीं पता चले आगे चल के उनके इन लॉज ने उसके साथ कुछ करा तो वो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है एक लड़की।
3: मेरे हिसाब से लड़कियों को काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं, घर पर रहती हैं स्पेशली, तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नहीं, अगर शादी के बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है, तो आई विल प्रेफर कि मैं उसे छोड़ दूँ इंस्टेड ऑफ लीविंग माई जॉब, क्योंकि वो जॉब मुझे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस दे रहा है, एंड अगर मुझे कुछ लेना है या फिर मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है तो वो मुझे अच्छा इंडिपेंडेंस देता है। एंड कल को अगर मेरा हस्बैंड अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ करता है या फिर मेरे साथ कुछ गलत करता है, तो एंड अगर मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट ना करें, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं खुद के पैसे कमा रही हूँ तो खुद का स्टैंड ले सकती हूँ।
4: नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज शी सेड, एंड ऑल्सो कि अगर आप 45 लाख भी कमा रहे हो, अगर लड़की है वो अगर अपने जीने के लिए, अपनी लिविंग के लिए अगर वो 30,000 या 40,000 भी कमा रही है, वो भी इनफ है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो ये चीज़ तो नहीं, बहुत आई वुड से ये बहुत गलत हुआ। मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है, जो मतलब अपना बनाना, अपना वो करना, काम करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग के भी फैमिली वाले क्या कहते हैं कि हमारा शादी होना इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारा मतलब काम करना। अगर पति हम लोग का जो हस्बैंड है अगर वो हम लोग को नहीं चाहता कि मैं काम करूं तो मेरे पेरेंट्स ये कहेंगे कि आप फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ ये डूइंग जॉब। तो अपना नाम कमाना वे हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
0: तो स्वाभिमान वाली शादी आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आम जनता आम लोगों की राय आपने सुन ली है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। मनीषा सिंघल जी मैरिज काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रियंका राणा लॉयर भी हैं और वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ ज्योति तिवारी जी मेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं, आप लोगों का इस पोस्ट को लेकर क्या कहना है?
5: देखिए नवजोत, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही आत्मविश्वास भी होना जरूरी है और यही एक सोच है जो आज महिलाएं लेकर के आगे चल रही हैं। हर एक हम भी आजकल जो है चाहे लड़का हो चाहे लड़की है दोनों को यही सिखाते हैं ना कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और जिससे कि आपको आगे आने वाली जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। बाकी आजकल मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में होते तो सबसे जरूरी है आपका आत्मनिर्भर होना। पैसा होगा तो आप उससे उभर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम आज भी जो हमारा समाज है वो उसी सोच के साथ चलता है कि अगर शादी हो गई है तो सारी जिम्मेदारी जो है वो एक औरत की हो जाती है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि जब किसी मर्द की शादी होती है तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती है, कोई उसे ये नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन भी सिर्फ महिलाओं के ऊपर ज्यादा होती है कि भाई अगर छोड़ना है तो सिर्फ महिलाएं छोड़ें।
0: यानी आप इस महिला के फैसले से सहमत हैं?
5: बिल्कुल सहमत है।
0: ठीक है, ज्योति तिवारी जी।
6: मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बोली वो, जो भी है वो पहले से बता देना बहुत सही रहता है। जिस तरह के अभी क्योंकि आप मैरिज काउंसलर भी हैं, मैं भी बहुत बार जो है हमारे पास भी आते हैं लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में आप कहें कि अरे आप पहले तो बोला नहीं फिर मैं अब जॉब नहीं छोड़ूंगी और वो टसल लो, इट्स गुड कि आपने पहले से बोल दिया और सब कुछ क्लियर है नहीं करनी है नहीं करिए। उनकी शर्तें भी ठीक थी, लड़के वालों की भी, इनकी भी ठीक थी, दोनों ने पहले से क्लैरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है। इतने समझदार लोगों की अभी जरूरत है।
0: ठीक है, चलिए इस लाइन पर तो कम से कम चीजें क्लियर हैं कि बाद में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है उससे बचने के लिए पहले ही आप चीजें क्लियर कर ले, एक अच्छा वाइज डिसीजन आपको लग रहा है। मीनल आपकी राय?
7: फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी ये जितने भी टीयर वन या टीयर टू सिटीज है हमारे मेट्रोपॉलिटन भी, चाहे जयपुर हो चाहे उससे, यू नो एवरीबॉडी हैज अ सेम ओपिनियन एंड द गर्ल्स नाउ नो दिस कि उनका इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है और उनका अपनी ओपिनियन को वॉइस करना भी कितना जरूरी है एंड नोबडी एल्स कैन डिफाइन देयर लाइफ फॉर देम। आप किसी को ये बताओ कि आपको हमसे शादी करनी है और उसके बाद आपकी जॉब छोड़नी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी और का लाइफ ट्रैक डिसाइड कर रहे हैं, मतलब उसकी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट वो किस तरह से आगे से रहेगी वो उसका शादी वाले लोग डिसाइड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसी मैरिज में कभी भी वॉक इन नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्यार नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, बट वो एक लड़की का जीवन डिफाइन नहीं कर सकते। आप कोई बैल या गाय से शादी नहीं कर रहे हैं जिसको बस उठा के अपने घर के खूंटे पे बांधेंगे, वो घर से बाहर भी तभी जाएगी जब आप चाहेंगे, वो जॉब भी तभी करेगी जब आप चाहेंगे, नहीं तो वो घर में ही रहेगी चाहे आपके पास। एंड वट अबाउट द मनी? मनी कैन नॉट बाय दैट हैप्पीनेस, मनी इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर योर बेसिक फैसिलिटीज। लेकिन आपके आप किस तरह से हर दिन पास करेंगे, एवरीवन हैज दोस 24 आवर्स, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते अपनी वाइफ के लिए। और आपकी वाइफ किससे मिलेगी, क्या उसका फ्रेंड सर्कल होगा, क्या उसका कलीग सर्कल होगा, आप इस तरह से हर चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डिफाइन द एंटायर लाइफ ऑफ द टू बी वाइफ।
0: जी
7: एब्सोल्युटली नेवर वॉक इन टू अ रिलेशनशिप लाइक दैट।
0: ठीक है, मनीषा जी आपकी राय इसको लेकर क्या है? आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं, आपकी राय क्या है इसको लेकर?
8: बिल्कुल इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एक तो जहां तक हमारे इंडिया की बात है तो लड़की अपना घर छोड़ के, बाहर के कई और देशों में भी ऐसा होता है, तो पहले तो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रही है और उसके बाद उस पे बहुत सारे कंडीशंस लग रही हैं, स्पेशली उसके करियर के लिए. और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो उसको इमोशंस का भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इमोशनल उसको सिक्योरिटी कितनी मिलने वाली है, कितना उसको सपोर्ट मिलने वाला है. अगर उसकी ही राय जो एक हर ह्यूमन का राइट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि वो करियर में क्या चाहता है, किस तरह से अपनी लाइफ को वो आगे ले जाना चाहता है, अगर इसी चीज में उसको फ्रीडम नहीं है तो उस घर में उसकी लाइफ आगे क्या होने वाली है उसे कुछ पता ही नहीं है. तो बिल्कुल ये तो एकदम ठीक नहीं है. और मैं तो ये बोलूंगी कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत बहुत जरूरी है किसी भी एक इंडिविजुअल को. सबसे पहले फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़कियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता एक नए इंसान के घर में आप जा रहे हैं, एक नए घर में आप जा रहे हैं, वहां पे क्या कल को चैलेंजेस आएंगे. तो एटलीस्ट किसी भी वर्स्ट कंडीशन में, किसी भी ऐसे सिनेरियो में जहां पे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो आप कम से कम आप तो अपने साथ हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, आप किसी भी मोमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. तो 100% करियर एक होना चाहिए
0: ठीक
8: किसी
0: है
8: फीमेल
0: प्रियंका
8: के
0: जी।
8: लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: प्रियंका जी देखिए, हम कह सकते हैं कि चलिए आज की तारीख में आप सभी ने एक राय दी है कि लड़की का जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है। अब इसको परिवार के नजरिए से भी देख लेते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, कहने को हम सब आज की तारीख में 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी है, भारत में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी है, इक्वल राइट्स देने की बात होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू महिला के अपने राइट्स, वो राइट्स आज की तारीख में भी परिवार डिसाइड करता है। क्या वो नौकरी करेगी नहीं करेगी ये परिवार डिसाइड करेगा। अब यहां पर दोनों चीजें आती हैं। अगर लड़के के परिवार ने यह कहा कि आप शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दीजिए क्योंकि लड़का बहुत अच्छे से कमाता है, ये भी हो सकता है कि उनकी सोच ये हो कि वो परिवार की तरफ ध्यान दे। लड़की की बात अपनी जगह इसलिए सही हो जाती कि वो नहीं चाहती, जैसा मनीषा जी ने अभी कहा, उन्होंने कहा कि आगे आप जा रहे हैं किस तरह का परिवार होगा आप नहीं जानते, तो इसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो ऐसे में बहुत थिन लाइन डिफरेंस रह जाता है, किस तरीके से परिवार और अपना करियर बैलेंस कर सकती हैं लड़कियां, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे डिवोर्सेस का कारण ये भी हो रहा है कि लड़कियां भी चाह रही हैं कि हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, लड़का भी चाह रहा है, तो ऐसे में बीच में परिवार आ जाता है।
5: देखिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सीधा सी मतलब ये साफ है कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर अपनी ये सोच रखते हैं कि भाई एक जो आदमी है वो काम करे और एक जो आदमी है वो परिवार संभाले। हालांकि ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है या कुछ करता है तो हम संस्कारों के नाम पर ये कह देते हैं कि महिला ने ठीक नहीं किया होगा, माँ ने क्या संस्कार दिए हैं या कुछ है। कभी भी पुरुषों पर इस तरह की उंगली नहीं उठाई जाती है, ज्यादातर महिलाओं पर उठाई जाती है। जब भी कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो भी महिला के ऊपर आती है कि भाई नहीं, पति है क्योंकि मेल है तो वो काम करेगा, आप अपनी जो है जॉब को सेक्रीफाइस कर दो। मुझे लगता है परिवारों को अपनी जो सोच है वो बदलना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि परिवार सही से चले, दोनों लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और खुशहाल जिंदगी जिए, तो मुझे लगता है परिवार, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार ये सोचे कि अगर आगे परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, तो आप लोग उनका साथ दें, और जो जितना साथ आप अपने बेटे का देते हैं उतना ही बहू का भी दें। तो अगर इस तरह की सोच हमारे समाज में बढ़ेगी और सिर्फ जिम्मेदारी एक महिला पर नहीं रहेगी, आज भी एक सोच होती है कि अगर महिला जॉब करती है और वो घर वापस आएगी तो सारे खाने की जिम्मेदारी या घर में कुछ कमी रह गई है उसकी जिम्मेदारी वो महिला की है। हालांकि कुछ पुरुषों की जो मानसिकता है वो बदली है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, आज जितनी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की है मैं भी उतना ही जिम्मेदार
0: हूं। वो शायद ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में हुआ, हालांकि ज्वाइंट फैमिली में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, ज्योति जी आप इस पर भी अपनी बात रखिएगा जो मैंने सवाल अभी प्रियंका जी से किया था। दूसरी बात यह है कि ये डिसाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, एक लड़का और लड़की की आपस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या फिर परिवार की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ऐसा भी देखा गया चाहे वो लड़की का परिवार हो या लड़के का परिवार हो, उनकी एक अपनी सोच रहती है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं, या फिर ये छोड़ देना चाहिए लड़के और लड़की पे।
6: बिल्कुल ठीक बोला मैम आपने कि ये लड़के और लड़की को सोचना चाहिए कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो अब हम दोनों देखेंगे कि अच्छा ठीक है किसकी जॉब ज्यादा अच्छी है, तो किसको ज्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना, मान लीजिए दोनों में से एक को छोड़ना भी है तो, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहां लड़के भी जॉब छोड़ते हैं अगर लड़की अच्छी पोजिशन पे है तो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियली कौन ज्यादा साउंड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज
0: ऐसी
6: है।
0: रेशो हमारे देश में बहुत कम है
6: इसमें
0: वैसे।
6: परिवार ऐसे ऐसे परिवार बीच में, मैं किसी के भी नहीं बोल रही हूँ, तो आई वुड से कि बीच में मत बोलिए,
0: नहीं नहीं मैं
6: तो
0: आपको बता रही थी
6: फैमिली
0: कि ऐसी
6: फैमिली
0: रेशो
6: आप
0: कम
6: मुझे,
0: है।
6: हाँ हाँ जी बता रही हैं आप, ठीक है आप अपने टाइम पे बताइएगा। तो फैमिलीज जब बीच में आती हैं तब प्रॉब्लम होती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दोनों साइड की फैमिलीज आती हैं, उनको लगेगा जैसे हम रहते थे वैसे ही रहो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे तुम लैपटॉप लेके बैठी हो और तुम्हारा हस्बैंड जो है वो चाय बना रहा है। तो ये दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन जब आता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पर हाँ ज्यादातर मामलों में प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि लड़के ज्यादा अच्छा कमा रहे होते हैं तो लड़कियों से कहा जाता है कि भाई आप देख लो कि आप जॉब छोड़ सकती हो क्या। नाउ वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर ज्वाइंट फैमिलीज है। मुझे नहीं पता कि कितने घरों में ऐसे माँ बाप हैं जो संभाल सकते होंगे बच्चों को या बाकी चीजें। हम अभी ना हम बच्चे तो बीच में लाए ही नहीं है कि अगर वो होते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो माओ पे जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा आती है, प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे माएं बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। आप नेनी की हेल्प ले सकते हैं, आप डे केयर्स के हाल जानते हैं हमारे देश में क्या है, बहुत बढ़िया भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। तो हम अपने बच्चों को ऐसे डेलीगेट नहीं कर सकते, दादी दादा नानी नाना पर भी नहीं कर सकते। आई डोंट नो उनका क्या जो है हाल होगा या उनके बॉडी के क्या हालात हैं, वो संभाल पाएंगे या नहीं, हम नैनीज पर भी नहीं डाल सकते। तो घर चलाना एक बहुत अलग चीज है। इसमें और एक चीज है जो हमने साइडलाइन कर दिया ना, जो घर चलाती थी लड़कियां ये बोल करके कि तुम घर में करती ही क्या हो, वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। 24/7 का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जो अभी जब आनंदी बेन ने कहा था तो बहुत हल्ला मचा था, थोड़े उनके शब्द गलत थे, उनको सही तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ का डिसीजन होना चाहिए कि ये हम दोनों की लाइफ है, अब इसमें हम आगे कैसे चलेंगे, हम दोनों काम करेंगे या फिर हमें से एक कोई ब्रेक लेगा, तो ये इनका डिसीजन होना चाहिए परिवार का नहीं,
0: ठीक है। मीनल मीनल ये इसी से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए और एक और चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हाउसवाइफ की टर्म बदल दी गई है, उसको एक हाउसमेकर के तौर पर देखा जाता है और कहा जाता है कि भाई एक एक बच्चों को अगर वो पढ़ाती है, घर को अगर वो संभालती है, तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी की एक कामकाजी महिला की।
7: बिल्कुल, सी द पॉइंट हियर इज दोनों वुमेन इज समथिंग विच शी शुड डिसाइड फॉर हरसेल्फ। अगर यू नो देर वॉज अ टाइम जब मैंने अपने लिए काम किया, मुझे काम करना था, आई वॉज एवीपी इन अ कॉर्पोरेट बैंकिंग और मैंने खूब लंबा 13-14 ईयर्स तक अपनी शादी के बाद काम किया, बट देन दो बच्चों के बाद मुझे समझ आया कि मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान देना है एंड आई वॉन्ट टू बी होम फॉर माई किड्स। तो अगेन वो मेरा डिसीजन था कि मैंने खुद डिसाइड किया कि अब मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ को आई विल टेक अ लिटिल सबैटिकल एंड आई विल स्टे बैक एट होम। That's another thing कि फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट आई एम saying कि वो दोनों टाइम मेरा डिसीजन है और जस्ट बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली हैप्पीली विदाउट एनी बडीज यू नो नेट पिकिंग कि नहीं अब तुम्हें घर रहना चाहिए या नहीं अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए। अगर उस टाइम पे कोई मुझे फोर्सफुली ये बोले कि अगर तुम इतनी अच्छी सैलरी कमा रही हो और इस लेवल पे आकर अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए, अब तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करो, तो वो भी नहीं एक्सपेक्टेड है ना। इट इज माई लाइफ, आई विल डिफाइन कि मुझे अपनी लाइफ को किस तरह से लेना है। जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने घर में रहना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, उनकी ग्रोथ के लिए मेरा वहां होना जरूरी है, देन आई स्टे बैक, आई आई एम हैप्पीली स्टेइंग बैक फॉर माय किड्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आल्सो। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई कौन लड़की क्या डिसीजन ले रही है, लेकिन सिमिलरली आप बाहर से भी एज अ आउट यू नो एज अ फैमिली या उसके पेरेंट्स या कोई वो भी डिफाइन नहीं कर सकता रहा। उसके अलावा अगर एक लड़की ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, शी इज मैनेज्ड विद अ जॉब, उसके हाथ में अच्छी जॉब भी है, बट देन ऑल्सो आफ्टर हर मैरिज शी डिसाइड्स कि अगर उसको ब्रेक लेना है और उसको घर संभालना है, तो इट्स हर डिसीजन, वी शुड ऑल यू नो वेलकम एंड रिस्पेक्ट इट।
0: मनीषा जी,
7: दैट्स माय होल पॉइंट।
0: मनीषा जी, मीनल की बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक एग्जाम्पल है मीनल का, हम जानते हैं मीनल को भी, उन्होंने बहुत समय तक, बहुत सालों तक, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि जॉब करती हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि नहीं अभी परिवार को हमारी जरूरत है, वो चाहे किसी भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन क्या इतना आसान होता है अपना प्रोफेशन छोड़ देना? क्या कंपनी प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर नहीं होता है? हालांकि परिवार की तरफ से तो जाहिर सी बात है कि हमेशा डिमांड्स रहती ही हैं। और अगर हम इसी केस की बात करें जहां इन-लॉज पहले से, जिस लड़के से शादी हो रही है वो परिवार पहले से ही कह दे रहा है कि आप नौकरी नहीं कीजिएगा, क्या उनको भी थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था कि दोनों हस्बैंड वाइफ आगे जाकर खुद डिसाइड करें कि कौन जॉब करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन घर पे कितना समय देगा, कौन नहीं देगा?
8: आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं नवजोत जी, और शादी दो लोगों की, दो दो जो लड़का लड़की की शादी होती है उसमें जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है या उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है शादी फिक्स होने के बाद, वो क्यों दिया जाता है, उसका रीजन क्या है, किस वजह से उनको टाइम दिया जा रहा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो वो एक दूसरे के बारे में समझ पाए, और उसमें करियर और एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में किस तरह के क्या उनके घर का एनवायरनमेंट है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कितनी उनको लिबर्टी दी जाती है, क्या इक्वेशंस हैं आपस में सब फैमिली मेंबर्स के बीच में, और क्या अगर सेम कास्ट सेम रिलीजन में भी मैरिज हो रही है तो भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सब चीजों को, एक दूसरे की फैमिली, एक दूसरे को समझने के लिए वो समय दिया जाता है कि अगर लग रहा है पॉसिबल है तो इस शादी में इस शादी को करना चाहिए, अदरवाइज फ्रीडम होती है पूरी। ऑल्दो हमारे सोसाइटी में एक ये पहले से समाज में चला आ रहा है कि भाई शादी पक्की हुई लेकिन अगर शादी किसी भी वजह से कैंसिल हो गई है तो उसमें कहीं ना कहीं लड़के पे भी आता है और लड़की पे तो आता ही आता है कि अरे भाई लड़की इस शादी इसकी तो लड़की की शादी कैंसिल हो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट ग्लासेस के थ्रू देखना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखें कि जो आज के टाइम में मैरिजेस कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं और कितनी मैरिजेस में सेपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल सेपरेशन है चाहे वो अनऑफिशियल सेपरेशन है, उसके रीजन क्या है, वजह क्या है, और आज के टाइम में जहां पे लड़का लड़की दोनों बच्चों को सामान्य तरीके से एजुकेशन उनकी दी जा रही है और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं पेरेंट्स, तो क्यों वो बच्चा जो लड़की है वो ये चाहेगी कि मेरे करियर की डोर किसी और ऐसे फैमिली के हाथ में चली जाए जो मतलब सडनली उसकी लाइफ में आए हैं। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, ठीक है अगर जो शादी होके जिस लड़के के घर में वो जा रही है वहां पर शुरू से कंडीशंस उन्होंने नहीं रखी, बाद में अगर उनके उनके मन मिलते हैं, उनको समझ आता है कि हाँ भाई कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है कभी लड़के को जॉब अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़े और कभी लड़की को भी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, इस तरह की अगर चीज इस तरह के फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक यू नो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन अगर केवल लड़की को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि नहीं आप शादी के बाद आप अपना करियर नहीं आप परस्यू कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो लड़की के मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे उस लड़के की फैमिली के बारे में, तो ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट हैं और पेरेंट्स जो डावरी सिस्टम भी है अगर उसको चलाना है तो वो डावरी का नाम अगर हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसी डावरी के नाम पे हम वो एक जो अपनी लड़की है उसके लिए एक चाहे तो 1 BHK ही दे दें जितना भी हमारी हैसियत है, लेकिन एक घर लड़की के नाम पर उन्हें देना चाहिए शादी में, या लड़की को अपने नाम पर एक घर रखना चाहिए जिससे किसी भी तरह के डिफिकल्ट टाइम में उसको कहीं ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि ओ मैं घर में अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहाँ जाऊंगी, उसके पास अपना एक घर है जहाँ पे वो अपना एक करियर है जहाँ पे वो रह सकती है और अपना सब वो आराम से।
0: जल्दी से एक बार ज्योति तिवारी जी, यहाँ पर करियर को प्राथमिकता देना कितना सही है, और यहाँ पर इसी केस की अगर बात करें लड़के के पेरेंट्स की तरफ से या लड़के की तरफ से भी हो सकता है, उन्होंने जैसे कहा कि आप शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती, क्या ये सही है, क्या आप किसी को ऐसे कह सकते हैं?
6: बिल्कुल गलत है। मैं तो खुद अगर मेरे पास कोई भी सलाह लेने आएगा तो मैं उसको मना करूंगी कि नहीं आपको कामकाजी लड़की ही लानी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपका डिवोर्स भी होता है तो भी हेल्प करता है जो जिस तरह के एलिमनी और मेंटल हेल्थ के बाद में आते हैं, क्योंकि वकील भी हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूं अभी, तो मुझे पता है कि किस तरह से डबल लिख के दिया जाता है। और जब इस तरह के घर पर अगर गिफ्ट में दिए जाए तो प्रीनप साइन होने चाहिए कि ये घर अपनी मर्जी से दिया गया है, दहेज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी माओं को और बहनों को परेशान देखा है जो मैरिड है जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारी परेशान होती हैं कि दहेज मांगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो प्लीज काम करने दीजिए उनको, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और बैकअप सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की बातें अलग हमेशा रहेंगी, उनके इमोशंस, उनके सोचने का ढंग, साइकी, सब कुछ अलग होती है। लड़कों को ये समझने की जरूरत है, लड़कियों को भी ये समझने की एक दूसरे में जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी एक लड़की ही दूसरी लड़की का सपोर्ट करने के लिए नहीं आती, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो तब समझ में नहीं आता है क्या करें। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये गलत था, उनको काम करने देना चाहिए। बिजी
0: ठीक
6: रहना बहुत अच्छा होता है
0: है।
6: और एक घर में एक समन्वय बना रहता है, क्योंकि क्या होता है फिर आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब आपको
0: हाँ
6: एक दूसरे की जरूरतें खत्म हो जाती हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रिलेशनशिप में। ये भी एक आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि
0: ठीक है,
6: हम
0: तो
6: हर चीज
0: करियर को
6: सॉल्व नहीं कर
0: प्राथमिकता
6: पाए,
0: देना भी सही है,
6: डेफिनेटली
0: लेकिन
6: देना
0: यहाँ
6: चाहिए।
0: पर
6: हाँ
0: परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसका डिसीजन किसे लेना चाहिए, यहीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
0: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल? और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: स्वागत है। चर्चा आज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला ने एक शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और जो लड़का था 48 लाख उसका सालाना पैकेज था, बावजूद इसके क्योंकि परिवार का ये प्रश्न था कि महिला शादी के बाद नौकरी नहीं कर पाएगी। करियर को चुनना एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मीनल आप खुद का एग्जाम्पल भी दे रही थी, करियर चुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि आप नौकरी कब तक करेंगी, करियर कहां तक आगे बढ़ाएंगी? ये कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी देखा जाए तो आपके फैमिली पर ही डिपेंड करता है, यानी कि इन लॉज फैमिली हो या फिर आपके हस्बैंड हो, ये एक कॉमन सी धारणा आज की तारीख में भी है।
6: तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम इन अ बिग जॉइंट फैमिली सेटअप, तो अभी कुछ टाइम तक मेरे मदर लॉ फादर लॉ भी है मेरे साथ, और मेरे परदादा मतलब मेरे हस्बैंड के परदादा परदादी भी हमारे साथ थे, सो वी हैड दिस वेरी बिग जॉइंट फैमिली। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि आई कैन नॉट लीव किड्स अलोन, मेरे बच्चे बहुत आराम से।
5: सो दैट वेज यू आर ब्लेस्ड।
6: यस आई एम ब्लेस्ड कि एक नहीं, आई हैव टू सेट ऑफ इन लॉज एट होम जो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, तो आई नेवर रियली हैड अ क्वेश्चन इन माइंड कि बच्चे सुरक्षित नहीं है या ऐसे। बट इन यू नो इट्स जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट योर कॉलिंग समटाइम्स दैट यू फील कि अब मुझे पर्सनली मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा इस टाइप से ही हो कि फैमिली के थ्रू आए, या लाइक आई सेड कि ये आपकी अपना डिसीजन होना चाहिए, आपकी अपनी इंटरनल कॉल होनी चाहिए कि अब आई वांट टू गिव अ ब्रेक टू दिस। एंड समवेयर वो जो आपकी एक मेटरनल इंस्टिंक्ट होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है। यू फील लाइक नाउ आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माय किड्स, बिकॉज शायद ये करियर मैं ये वीपी से आगे स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन ये बच्चों का टाइम आई डोंट वांट टू वेस्ट, उनकी वो सारी छोटी छोटी हरकतें, वो स्कूल से आने के बाद की वो स्टोरीज। आई एक्चुअली
5: ये चीज मीनल क्योंकि आप एंजॉय कर रही है, देखिए एज लॉन्ग एज एंड ऑफ द डे आपका हैप्पीनेस मैटर करता है, यू डिसाइड, आपने ये सब कुछ डिसाइड किया, क्योंकि पहली बात तो यू आर ब्लेस्ड, आपके पास एक अच्छी ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि मैं तो आज भी इस बात को मानती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा बेटर ज्वाइंट फैमिली होती है, स्पेशली अगर एक महिला वर्किंग है तो उसके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपके पास एक ज्वाइंट फैमिली है, पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, स्पेशली क्योंकि देखिए सवाल यहीं पर आता है जहां न्यूक्लियर फैमिली शुरू होती हैं, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, दोनों को बच्चों का ख्याल रखना है, दोनों का करियर इंपॉर्टेंट है, ईगो क्लैशेस वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं, कम्युनिकेशन गैप सबसे ज्यादा वहां पर आता है, डिफरेंसेस वहां पर शुरू होते हैं, और वहां एंड ऑफ द डे वही बात जो हम सभी बात कर रहे थे, किसको करियर छोड़ना पड़ता है ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, महिला को।
6: Yeah, that's right. कि बहुत मतलब in my career time also I have seen lot of times it's a woman who decides to step down because obviously ladies feel कि somewhere taking care of the kids and home is their prime responsibility. But I totally agree with that as well because ये हमारी primarily instinct है, अगर हम बच्चों को क्रेच में भी डाल दें या बच्चों के लिए एक नैनी भी रख लें, then also you know we are constantly in that kind of a juggle कि मतलब बच्चे घर में क्या कर रहे हैं और हम ऑफिस में है, हमें कहीं ना कहीं किसी टाइप का एक गिल्ट भी है जो खींचता रहता है, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस यू नो लाइक वी आर मदर्स। बट अगेन माई पॉइंट हियर इज कि आप एकदम से अपनी जॉब छोड़ने से पहले कुछ स्थिरता का एक यू नो जरिया ढूंढ सकते हैं। लाइक आई सेड दैट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई हैड रियली नथिंग इन माइंड, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि देयर सर्टेन थिंग्स विच आई कैन डू फ्रॉम माई होम, एंड आई स्टार्टेड माई you know fitness venture and hope, you know god bless it just turned out great. But I'm just saying that agar aap kabil hain aur aapne kuch time corporate life mein apne aap ko prove kiya hua hai, so you kind of generate those skills और आप वो स्किल्स कहीं पर भी प्रूव कर सकते हैं आगे जाकर. बट एकदम से ये डिसाइड करना कि जस्ट बिकॉज अब मेरी शादी हो रही है अब मैं कुछ और नहीं करूंगी, दैट इज अ बिग डिसीजन. बिकॉज शादी के बाद ना सिर्फ प्यार और ये सब काफी नहीं है, एक रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत जरूरी है. और आप चाहे माने या ना माने, अंटी अनलेस यू आर नॉट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली और आप खुद अर्न नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ही नहीं आती
5: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. और वो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो वो जरा डिस्कस कीजिए यहाँ पर, हमें बताइए इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके पास है. आप लॉयर भी हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, परेशानी सबसे ज्यादा कहाँ पर आती है? क्या आज की तारीख में भी महिला आजाद है अपना करियर चुनने को?
7: देखिए नहीं, अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं, तो आप भी इससे सहमत होंगी कि हमारे देश के अंदर अभी भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिला है, वो सम्मान नहीं मिला है. तभी हमारी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे आज भी देती है. और वो कितने अमल होते हैं देश के अंदर ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं दहेज से जो है पीड़ित महिलाएं मर रही हैं, कई कोर्ट के आगे अपने आप को आग भी लगाती हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलता है. महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ आज भी वो भेदभाव है, पुरुष प्रधान देश आज भी हमारे देश को कहा जाता है. तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नकार नहीं सकते हैं. हाँ, बहुत सी मानसिकता में बदलाव आया है लेकिन अभी भी उतना नहीं आया है. कई केसेस ऐसे आते हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारी इच्छा है कि हम बच्चे जो है शादी के बाद खुद संभालते हैं, नहीं संभालते हैं, नैनी रखते हैं या कुछ है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आखिरकार हमारे समाज जो है, जो समाज समाज के ठेकेदार बनते हैं वो किस पर रखते हैं. कई बार महिलाएं ऐसी होती हैं जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, और आज इसके ऊपर भी महिलाएं जो है आवाज उठाने लगी हैं. कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, इवन सेलिब्रिटीज भी हैं जो मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं क्योंकि उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं आखिरकार. तो ये आप अगर आम जनता की बात करते हैं और जो आपके निचले स्तर पे बात करेंगे, जो बिलो पॉवर्टी भी है वो भी आप देखिए, अगर महिलाएं काम करती हैं तो अपना जीवन अच्छे से निकाल सकती हैं, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है तो आपको आखिरकार हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना आप किसी भी चीज के लिए. यहाँ पे आत्मनिर्भर होना इसलिए जरूरी है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है आपके आत्मसम्मान की, आपके अभिमान की. तो आप हर चीज के लिए दूसरे के सामने क्यों किसी का मुंह देखें, क्यों परिवार का भी आप मुंह देखें, क्यों हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कल को ये ना हो कि आपके पास घर है कि नहीं है. आपके अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए इस समाज से लड़ने की, इस अपने आप को अपना घर दिलवाने की. आपको जो दुनिया में चाहिए, आपकी इच्छाएं क्या है वो पूरा करने की आपके अंदर खुद काबिलियत होनी चाहिए, ना कि दूसरों को ये हक देना चाहिए कि भाई वो डिसाइड करे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम क्या पहनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या किस तरह से हमें अब अपना जीवन व्यापन करना है. ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये दूसरों की सोच हमारे ऊपर थोपना नहीं होना चाहिए.
5: बिल्कुल मनीषा जी, मैं लौटती हूं प्रियंका. मनीषा जी, इसको लेकर आपको याद होगा, मीनल भी यहाँ पर है इस पैनल में, हम बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर करते हैं, वुमेन मेन इक्वल राइट्स को लेकर हमने बहुत चर्चाएं की, लेकिन बावजूद इसके सोच अभी भी बिल्कुल वैसी है सरकार की तरफ से. अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम नारे दिए जाते हैं, इसको लेकर काम किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, लेकिन बात जब फैमिली की आती है, फैमिली में बैलेंस बनाने की आती है, तो आज की तारीख में भी सोच बदली नहीं. आप खुद एक मैरिज काउंसलर हैं, कोई ऐसे केसेस आपके पास आए हैं, आप किस तरीके से बैलेंस बनाती हैं?
8: काफी केसेस आते हैं और स्पेशली कोविड के बाद से इस तरह के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था, पेंडेमिक में लोगों को आजकल जैसे ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की हम बात कर रहे थे, तो ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत थोड़ी खत्म हो गई है. और न्यूक्लियर फैमिली में भी अगर चार मेंबर्स हैं, दो बच्चे पेरेंट्स या फिर एक बच्चा है दो पेरेंट्स हैं, वो लोग भी आपस में हार्डली एक दूसरे से बात करते हैं. और पेंडेमिक का टाइम ऐसा था जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, आप घर में कन्फाइंड थे, और आप लोग का जो जो जो फैमिली का आपस में जो इंटरेक्शन था वही इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो गया था जिसमें उनकी आदत नहीं थी, और उसकी वजह से क्लैशेस काफी हुए हैं, काफी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए. और ये तो खैर एक स्पेसिफिक केस था, लेकिन उस समय से जो केसेस बढ़े हैं उसमें मेंटल हेल्थ के लिए की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लोग इसके प्रति जागरूक हुए और उनको समझ आया. और इसमें जो ज्वाइंट फैमिलीज या मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो प्रिटी कॉमन नाउडेज, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज कि लड़की भाई उसने इतनी पढ़ाई करी है, वो अपना करियर वो अपने आप डिसाइड करना चाहती है और उसको पूरे राइट्स हैं, क्यों हम लड़कों पे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं कि भाई आप जॉब नहीं करोगे? क्या कभी आपने कोई फैमिली ऐसी देखी है जिसमें लड़के पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, लड़के को बोला जा रहा है, उसको एक कमांड दिया जा रहा है कि भाई शादी करनी है तो जॉब नहीं करनी है? तो ऐसा तो कभी रेयरली ऐसा हुआ है. तो यहाँ पे सामंजस्य ऐसे बैठाया जाता है, अगर शादी नहीं हुई है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग, और अगर शादी हो चुकी है तब इस तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उनमें हम सेपरेट सेशंस देते हैं, देन फैमिली सेशंस भी होते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशंस होते हैं, जिसमें असस ये किया जाता है कि भाई कितना चांसेस हैं अंडरस्टैंडिंग के, और अगर पॉसिबिलिटीज कम है तो आप ज्वाइंट फैमिली सेटअप में एक तो कोई पॉइंट नहीं है अगर डेली कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो रहे हैं, और अगर साथ में रहते हुए हस्बैंड वाइफ भी उन दोनों में भी अगर क्लैश है तो फिर उसमें हम कैसे मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हैं. तो दोनों से हस्बैंड वाइफ को टारगेट किया जाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स को हम थोड़ा सा आउट करके पहले हम हस्बैंड वाइफ पे ही टारगेट करते हैं. एटलीस्ट उन दोनों के बीच में तो फ्रिक्वेंसी मैच हो कहीं ना कहीं. अगर 10 चीजें मैच नहीं हो रही हैं ठीक है, एटलीस्ट 5 चीजें 6 चीजें मैच होनी चाहिए. और कौन कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि मैरिज लव रिलेशनशिप कहा जाता है लेकिन अभी डेफिनेशन काफी चेंज हो गई है. ये एक कॉम्प्रोमाइज है और डेफिनेशन एक्चुअली अब समझ आने लग गई है लोगों को, क्योंकि आज के बच्चे थोड़े अवेयर हैं. वो हमारी

0: अपने पैसे अपने अपने घर पे खर्च करूंगी। बाद में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए, पहले से आप काउंसलिंग करा लीजिए, पहले से आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। मेरे हिसाब से प्रीनप आना इस देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बातें बदल जाती हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं उनसे बहुत बातें बिगड़ती हैं, और उसमें महिलाएं घर की बहुत ज्यादा सफर करती हैं। पुरुषों को तो आप छोड़ दीजिए, वो सफर करने के लिए ही बने हैं। कि लड़कों के ऊपर अगर आता है, लोग बोलते हैं कि लड़कों से कोई नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि लड़कों के पास ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो करिए, तब आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर कितनी। जैसे ही एक लड़का अगर कह दे कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मैं घर पर बैठूंगा, आप देखिए रिएक्शन क्या आता है समाज से। देखिए हमारी जो है इतनी बड़ी बॉक्सर थी, उन्होंने ही मैरी कॉम ने आखिरकार बोल ही दिया कि मेरी कमाई पे पलता था। तो ये सब सुनना पड़ता है ना लड़कों को। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जड़ों में और डीएनए में जाके ये चीज बैठ गई है कि ये बाहर जाएगा कमाने और ये घर पे रहेगी, और ये तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में। सारी चीजें पहले से बता दीजिए कि मैं अपने पैसे कमाऊंगी और मैं अपने पैसे अपने माँ बाप को दूंगी। अगर लड़के वाला एग्री करता है तो आप शादी करिए, नहीं एग्री करता है तो मत करिए। फिर आरोप प्रत्यारोप बाद में नहीं आना चाहिए, दैट इज द
1: तो ये
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट
1: कंपैटिबिलिटी एक
0: थिंग।
1: लड़के लड़की की आपस में नहीं होनी चाहिए, इसमें पेरेंट्स अगर अगर पीछे रहे तो बेटर नहीं है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर पेरेंट्स पीछे रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर लड़का भी तो कहेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स किसे रहेगी, मैं भी अपने पेरेंट्स को के ऊपर खर्च करूंगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अभी ना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। जॉइंट फैमिली
1: नहीं,
0: क्या
1: ठीक है,
0: अपने
1: ऐसे
0: माँ बाप
1: बहुत
0: के साथ
1: सारे
0: भी रहना
1: केसेस हाल
0: पड़ेगा?
1: फिलहाल में आ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन
0: हाँ जी
1: प्रियंका जी इस पर आपका क्या कहना है?
2: नहीं देखिए, पहले तो कौन ज्यादा कमाता है कौन कम कमाता है बात कमाने की है ही नहीं। कोई भी जितना भी कमाता है वो अपने लिए कमा रहा है, वो अपनी इच्छाओं के लिए कमा रहा है, वो अपने तरीके से जिंदगी जीवन कैसे व्यापन करना है उसके लिए कमा रहा है। किसी के सामने कोई हाथ फैलाएगा? अभी जो कहा कि जैसे पुरुषों के ऊपर पहले से जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहती हैं, वो जिम्मेदारी दोनों तरीके से संभालने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ये पहले से ही ये कह रहा है कि भैया एक को काम करना पड़ेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो इससे इसकी मानसिकता दिखाई देती है। ये पता चलता है कि आप भी इस पहले से ही ये क्लियर करके चल रहे हो कि आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है, आपको तो सेक्रीफाइस करना ही है। तो ऐसे में कहां पर आप ये इसको डिपेंड करेंगे कि भाई जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर भी आज प्रेशर है। आज जितना पैसा खर्च लड़के की पढ़ाई में हो रहा है उतना ही माँ बाप जो है वो लड़कियों की शादी में भी कर रहे हैं। फिर दहेज और ये सब चीजें तो आती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज जो है दहेज प्रताड़ना भी सह रही है महिलाएं। बहुत सारी केसेस ऐसे हाल फिलहाल में भी आप ग्रेटर नोएडा में देखिए, आसपास के एनसीआर एरिया में देखिए कितने सामने आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब बदलने चाहिए, और जो महिलाओं के अधिकार हैं वो भी समझने पड़ेंगे कि अब जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं,
1: बिल्कुल
2: उनको अपनी स्वेच्छा से जो भी वो करना चाहती हैं उनको करने दिया जाना चाहिए।
1: और जैसे कि हमने अपने शो कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने अपने शो में भी कहा है, स्वाभिमान वाली शादी। और यहाँ पर जैसे मीनल कह रही थी कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, वो महिला को भी उतनी ही मिलनी चाहिए, पुरुष को भी उतनी ही मिलनी चाहिए, और एंड ऑफ द डे आप दोनों आपस में ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन काम करेगा, कब तक काम करेगा, कौन घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों जगह पे बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम

0: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बप्पा के आगमन में अभी लगभग 50 दिन से ज्यादा शेष रह रहे हैं, लेकिन अभी से ही गणेशोत्सव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। गणपति के श्रृंगार के लिए आभूषणों का बाजार सज चुका है, एक से बढ़कर एक आभूषण मिलने लगे हैं, तरह तरह के जेवर बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
7: एक से बढ़कर एक आभूषण, अलग अलग डिजाइन, कोई बड़ा तो किसी में अनमोल कारीगरी, स्टाइल भी सबसे जुदा, कंगन से लेकर चरण पादुका तक हर तरह के आभूषण सबका मन मोह रहे हैं। गणेशोत्सव की धूम मुंबई के बाजारों में अभी से ही देखने को मिल रही है। गणेश जी को चढ़ने वाले आभूषणों का बाजार सज चुका है। मुंबई के लालबाग इलाके में ये आभूषण फिलहाल बेचे जा रहे हैं। यहाँ से या तो लोग गणेश जी के लिए आभूषण खरीद रहे हैं या फिर दुकानदार भी यहाँ से बप्पा के लिए जेवर खरीद कर ले जा रहे हैं। यहाँ पर कई दुकानें ऐसी हैं जो सालों पुरानी हैं।
8: जो भी आभूषण गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं वो सभी एक से बढ़कर एक डिजाइन के साथ इस समय यहाँ पर लगाए गए हैं। फिर वो चाहे कान की बाली हो, फिर चाहे वो मुकुट हो, फिर चाहे वो गज आभूषण हो, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा इस तरह की भी एक ये तस्वीर देखें, एक से बढ़कर एक जो मुकुट हैं जो गणेश जी को पहनाए जाते हैं वो भी यहाँ पर किस डिजाइन में मिल रहे हैं और क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, किस तरह की डिमांड लोगों में आ रही है, ये सारी चीजें यहाँ देखी जा सकती है।
7: यहाँ पर कई तरह के ट्रेंडिंग एंड डिमांडिंग ज्वेलरी मौजूद है, खासकर हार, कड़ा, मुकुट, सुंदपत्र, बाजूबंद, कानफूल, चरण आशीर्वाद, चरण पादुका जैसे आभूषणों की श्रृंखला है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर 1 फुट से लेकर 14 फुट तक के बप्पा के लिए आभूषण बनाए जाते हैं, जिसका काम गणेशोत्सव से 3 से 4 महीने पहले से शुरू हो जाता है।
9: अपन बनाते हैं 1 फुट बप्पा से लेकर 14 फुट 15 फुट जो मंडल के जो मूर्तिज है उनका भी अपना काम चालू रहता है। कस्टमाइज डिजाइन भी हम लोग बहुत सारे बनाते हैं, स्केच के ऊपर अपना डिजाइन होता है, तो वो स्केच के ऊपर जब भी डिजाइन होता है वो तो 4-5 महीने ही पहले ही अपन को करना पड़ता है। उसके बाद जाके जब भी मंडल का आगमन रहता है, मतलब कौन से भी बप्पा जब भी बाहर निकलते हैं कार्यशाला से, तो वो दागिने आभूषण तभी लगाए जाते हैं। तो ऐसा अपना काम है 1 फुट से 14 फुट बप्पा के लिए।
7: यहाँ पर ऑर्डर पर भी काम किया जाता है। मान लीजिए किसी गणेश मंडल ने मुकुट का ऑर्डर दिया तो उस मंडल में गणेश जी की प्रतिमा के मुताबिक मुकुट तैयार किया जाएगा। जब बप्पा की प्रतिमा कार्यशाला से बाहर निकलने को होगी उससे पहले ही मुकुट पहनाकर देखा जाएगा, अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो वो भी समय रहते कर दिया जाएगा।
9: अभी इसके ऊपर प्लेटिंग बाकी है, मतलब ये ना पहले जैसे हैंडक्राफ्ट होता है ये कॉपर में होता है, कॉपर एंड ब्रास में, और ये जो है गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, मतलब इसको इसके बाद का प्रोसेस ये गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। तो हमारे पास कैसा रहता है, ये साइजिंग के लिए अभी आया हुआ है, जैसे हमने कस्टमाइज़ किया है एक मंडल के लिए, तो उनके पप्पा को अभी पहना के दिखाएंगे उनको, फिर उसके बाद कुछ अगर 19-20 हो तो अपन उसको करेक्शन करेंगे, या अगर प्रॉपर बैठ गया तो फिर प्रॉपर उसको सजाया जाएगा।
7: सामान्य तौर पर गणेश मंडलों को लालबाग का राजा की तरह आभूषण ही भा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके गणपति बप्पा आभूषण पहनकर हूबहू लालबाग के राजा की तरह ही दिखें। इसके अलावा चिंतामणि गणेश जी वाला हार भी बड़े मंडल ऑर्डर कर रहे हैं।
9: लालबाग का राजा जो मंडल का बहुत बड़ा मूर्ति रहता है अपना, सेम अपने रेप्लिका ज्वेलरी में बनाए हुए है, देख सकते हो। जो लालबाग का राजा का जो हार रहता है वो, फिर सोनपट्टा, फिर अपना कड़ा हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण, जिसके लिए अपन बहुत, मतलब चरण दर्शन के लिए ये होता है, लाइन लगता है, भीड़ लगता है, वो चरण अपन ने छोटे पप्पा के लिए बनाए हुए हैं। ये घरभूति गणपति है। अभी ऐसे अगर समझो बड़े बड़े अगर मंडल के मूर्ति हो तो मंडल का भी काम अपन करते हैं। लाल बकर राजा का बहुत ज़्यादा डिमांड है ज्वेलरी का, तो अपन ने ये अपन ने जो सैंपल लगाया वो लाल बकर राजा का ही लगाया हुआ है। जैसे कड़ा हो गया, ये लाल बकर राजा का ही कड़ा है जो अपन ने लगाया हुआ है वहाँ पर, सेम लाल बकर राजा जैसा रिप्ले का बना
4: है।
9: ये कड़ा है, कड़ा है, जो इसको राजदंड बोलते हैं, ये यहाँ पर मतलब पप्पा के आगे वाले हाथ पे लगता है। ऐसे अपने पास 1 फुट से 14 फुट के लिए सेम साइज अवेलेबल है, सेम डिजाइन अवेलेबल है। जैसे बड़ा चिंतामणि जो रहता है ना पप्पा अपना, चिंसपोकली का चिंतामणि, उसका सोनपट्टा है,
4: सोनपट्टा मतलब
9: सूंड पर, यस यस यस, जो ट्रंक रहता है उसके ऊपर रहता है, इसको अपन सोनपट्टा बोलते हैं। इसमें अपना कर्णफूल भी होता है, दंत भी होता है, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है अभी, मतलब दादा की मंडल वाले
4: अलग अलग साइज का यहाँ पे है।
9: जी जी जी, अपन ने लिखा हुआ है ये 16-7 फीट बॉडी को जाता है, मतलब जैसे 25-30 फुट पप्पा रहते हैं बट उनकी जो बॉडी रहती है वो 6 फीट 16 फीट 7 फीट ऐसे होते, तो ये
4: 12 से 14 फीट
9: फिर 10-11 फीट, ये सब मंडल के मूर्तिज के लिए है। इसमें अपने पास डिजाइन बहुत सारे है, देख सकते हो आप, ये सब पूरा डिजाइन अपने हैंडक्राफ्ट किया हुआ है।
4: इसमें सबसे ज्यादा क्या मांग रहे हैं लोग आपसे?
9: अभी सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है वो चिंतामणि सोनपट्टा है।
4: हाँ,
9: चिंतामणि सोनपट्टा।
7: आमतौर पर गणेश मंडलों में सोना या फिर चांदी के आभूषण ही बप्पा को पहनाए जाते हैं, लेकिन छोटे मंडल या घरों के लिए बजट फ्रेंडली आभूषण भी यहाँ मिलते हैं।
9: सिल्वर और गोल्ड में कभी कभी अफोर्डेबल नहीं हो जाता है, तो उसके लिए अभी एक सेकेंड ऑप्शन आया हुआ है, कॉपर एंड ब्रास, जो कि अफोर्डेबल रहता है और वो दिखने के लिए भी सोने जैसा रहता है।
7: बप्पा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बप्पा की मूर्तियां स्थापित होंगी।
8: 14 सितंबर को गणेश उत्सव न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और ये पूरा देश मनाने वाला है, और जिस तरीके से एक से बढ़कर एक आभूषण इस समय बाजारों में उपलब्ध हैं, उन्हें देख करके लगता है कि इस बार वाकई में गणपति बप्पा और भी ज्यादा प्यारे नजर आने वाले हैं। वीटी जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
6: देखिए, आज की दुनिया में तकनीक हर दिन नई उड़ान भर रही है और अब बारी है इंसानों के सफर को बदलने की। जिस फ्लाइंग टैक्सी को अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा जा सकता था, उसने अब हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में पहली बार बिना पायलट उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी ने सफल प्रदर्शन करके दिखाया है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं है बल्कि आने वाले समय के स्मार्ट और तेज परिवहन की नई शुरुआत मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए।

0: कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार ऐसी फ्लाइंग टैक्सी ने उड़ान भरी जिसने आने वाले कल की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। बिना पायलट, पूरी तरह आधुनिक तकनीक के भरोसे, इस उड़ान ने भविष्य के परिवहन को नई दिशा दिखा दी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के आसमान में पहली बार बड़े इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी EVTOL एयरक्राफ्ट ने सफल डेमो उड़ान पूरी की। इस फ्लाइंग टैक्सी को चीन के शंघाई की ऑटो फ्लाइट कंपनी ने विकसित किया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित है। खास बात यह है कि ये विमान सीधे ऊपर उठ सकता है और कम जगह में सुरक्षित तरीके से उतर भी सकता है। इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें कम समय में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना आसान होगा। यही वजह है कि इसे शहरों में भविष्य के परिवहन का मजबूत विकल्प माना जा रहा है। ये प्रदर्शन गेम्स ऑफ द फ्यूचर 2026 से पहले आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है जिसमें पारंपरिक खेलों के साथ डिजिटल गेमिंग और आधुनिक तकनीक का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। ये आयोजन 29 जुलाई से 9 अगस्त तक अस्ताना में होगा और दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए इस परीक्षण के दौरान विमान में ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई यात्री। पूरी उड़ान का उद्देश्य केवल इसकी तकनीक, नियंत्रण प्रणाली और उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना था। डेमो के दौरान एयरक्राफ्ट ने तय योजना के अनुसार सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है। इस नई तकनीक को लोगों के करीब लाने के लिए 29 और 30 जुलाई को फ्लाइंग टैक्सी को अस्ताना में सार्वजनिक प्रदर्शनी में भी रखा जाएगा। यहां आने वाले लोग इसे नजदीक से देख सकेंगे और भविष्य के इस नए परिवहन माध्यम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: वायरल तस्वीरों में बच्ची को मिला है साइकिल का तोहफा, लेकिन ये महज तोहफा नहीं, ये खुशियों का मौका है, खुशियों के जश्न का मौका है। सो इस तोहफे का यानी साइकिल का स्वागत भी कन्या के हाथों ही हुआ। बकायदा वहाँ पर घोल कर उसमें बच्ची के पैरों को भिगो कर साइकिल पर पैरों की छाप लगाई गई, मानो घर में किसी नई दुल्हन का प्रवेश हो रहा हो। ये तस्वीरें देखकर यही लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियाँ कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जो खुश रहना जानते हैं वो खुश हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इस बच्ची की तो तारीफ कर ही रहे हैं, उसके पेरेंट्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। इन तस्वीरों में ये बच्चा अपने पसंदीदा होम डिपो कर्मचारियों के लिए उनके जन्मदिन पर फूल लाया। महिला कर्मचारी को अंदाजा नहीं था कि बच्चा ऐसा करेगा, वो भावुक होती है, अपनी सीट से उठती है और बच्चे को गले लगाकर धन्यवाद करती है। जाहिर है कि तस्वीरें अच्छा महसूस करा रही हैं। लोग बच्चे को तो दुआएं दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके माता पिता ने जरूर बहुत अच्छा काम किया होगा। इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी ना गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग ना जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्चे के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, नंदन नीले कणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हुआ, पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी टास्क फोर्स में शामिल। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां, हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए आई गुड न्यूज, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में जीता सिल्वर मेडल, आज कई मेडल्स पर होगी देश की नजर। FHI यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, पुरुष टीम ने कल पाकिस्तान को हराकर जीता था गोल्ड। ICC T20 रैंकिंग में फिर नंबर वन बना भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतते ही हासिल की टॉप पोजीशन, 15 दिन में ही इंग्लैंड की बादशाह खत्म।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ पुरी में श्री मंदिर के बाहर अपने रथों में मौजूद हैं। अब इंतजार उस दिव्य पल का है जब भगवान श्री मंदिर में दाखिल होंगे, लेकिन उससे पहले पुरी मंदिर के बाहर भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हर कोई महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आशीर्वाद करना चाहता है और इस दौरान पारंपरिक रस्मों और अनुष्ठान लगातार जारी हैं। आज वहां विशेष अधर पान अनुष्ठान का आयोजन किया गया, तो कल नीलाद्री विजय नाम की रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे।

0: ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ देव जी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इसमें अब एक और खास घड़ी आ चुकी है। पहले मौसी के घर से लौटे महाप्रभु, फिर राजा धीराज के सुना वेश श्रृंगार में दिए अलौकिक दर्शन। इसके बाद अब इस महोत्सव में अधर पाना का अत्यंत विशिष्ट और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान का पल आया है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन भर तीनों रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मंगला आरती और पूजा अर्चना से जुड़ी दैनिक नीतियां पूरी की जाती हैं। इसके बाद उनके दिव्य दर्शन होते हैं, फिर शाम ढलते ही अधर पाना का खास अनुष्ठान शुरू होता है। रथ यात्रा के अंतिम चरण में अधर पाना का अनुष्ठान नीलाद्री बीजे से एक दिन पहले किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों पर विशाल मिट्टी के पात्रों में विशेष मीठा पेय भरकर उनके अधरों यानी होठों तक अर्पित किया जाता है। इस विशेष मीठे पेय को दूध, चीनी, केला, जायफल और कई सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस पेय को मिट्टी के घड़ों जैसे तीन विशालकाय बेलन आकार पात्रों में भरा जाता है। ये घड़े इतने ऊंचे होते हैं कि भगवान के होठों यानी अधरों तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि ये पेय भगवान के दिव्य होठों को मिठास प्रदान करता है। भगवान जगन्नाथ के अधर पाना अनुष्ठान से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। स्कंद पुराण, मंदिर से जुड़ी परंपराओं और उड़ीसा की धार्मिक कहानियों में इनका उल्लेख है। लिहाजा पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं की अपार आस्था और विश्वास का इनसे गहरा संबंध है। पूजा सम्पन्न होने के बाद पेय से भरे पात्रों को जानबूझकर रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इस पेय को रथों पर मौजूद सूक्ष्म जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहा दिया जाता है। भक्त इस गिरे हुए पेय को छूने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ केवल भक्त ही नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियाँ भी चलती हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य शक्तियाँ भगवान की सेवा और रक्षा में लगी रहती हैं। अधर पाना के माध्यम से उन्हें प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि पात्र टूटने पर पेय चारों ओर फैल जाता है, जिसे ये अदृश्य शक्तियाँ ग्रहण करती हैं और तृप्त होकर अपने लोक लौट जाती हैं। माना जाता है कि अधर पाना के प्रसाद को अगर आम लोग ग्रहण कर लें तो जिन अदृश्य शक्तियों के लिए ये अर्पित किया गया है वो उससे वंचित रहेंगे। इसलिए पूजा के बाद पात्र को तोड़ दिया जाता है ताकि पाना भूमि पर फैल जाए और अदृश्य देवगण उसे स्वीकार कर सके। भगवान की अधर तक ही पाना भरने का खास प्रतीकात्मक अर्थ भी इससे जुड़ा है। इससे जुड़ी ये भी मान्यता है कि रथ यात्रा सम्पन्न होने पर भगवान अपने साथ आई समस्त अदृश्य शक्तियों को सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। अधर पाना उसी विदाई का प्रतीक है। अगर यह अनुष्ठान ना हो तो वो शक्तियाँ वहीं रुक सकती हैं। विशाल पात्रों से भरा पेय भगवान के अधरों तक पहुँचाया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये माना जाता है कि भगवान पहले स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और फिर अपने साथ आई अदृश्य शक्तियों को उसका भोग प्रदान करते हैं। अधर पाना का अनुष्ठान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसका आयोजन मंदिर की रीति नीति से जुड़ा है, लिहाजा लोगों की गहरी श्रद्धा इससे जुड़ी होती है। इसे रथ यात्रा की सबसे रहस्यमय और अनोखे अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ये अधर पाना का अनुष्ठान ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 9 शक्तियों को संतुलित करने के लिए संपन्न किया जाता है। इस लिहाज से तंत्र साधना से भी इसका संबंध माना जाता है। इस अनुष्ठान में 9 के अंक का विशेष महत्व है। पेय तैयार करने के लिए 9 प्रकार की सामग्रियों दूध, मलाई, छेना, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के 9 बड़े पात्रों में इसे तैयार किया जाता है। तीनों रथों पर 3-3 पात्र रखे जाते हैं। इसे बनाने में 9 रसोइये और 9 पानी ढोने वाले सेवक शामिल होते हैं। अधर पाना के बाद नीलाद्री बीजे की रस्म होगी और फिर भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। इससे पहले आज रात भर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर ही विराजमान रहेंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लौटने से पहले रथों पर भगवान के दिव्य दर्शन करने का ये श्रद्धालुओं के लिए अंतिम अवसर है। भगवान की अलौकिक छवि और रथ यात्रा के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पुरी के बड़ा डंडा यानी ग्रैंड रोड पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल सोमवार को नीलाद्री बीजे का अनुष्ठान होगा। रथों पर भगवान की अंतिम पूजा कल दोपहर के बाद संपन्न होगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य पहंडी यानी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। फिर देव विग्रहों को रथों से उतारकर मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन की ओर ले जाया जाएगा। इस बीच मंदिर के प्रवेश द्वार पर मान मनोवल की रस्म होगी और रसगुल्ला उत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाएंगे। इसके बाद रात तक तीनों देवता अपने मुख्य आसन पर विराजमान हो जाएंगे। 10 दिनों के महोत्सव का ये अंतिम चरण संपन्न होने के साथ ही भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में वापस लौट जाएंगे। इसी के साथ इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, एक तरफ भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ सावन के पावन महीने की शुरुआत से पहले बाजारों में रौनक जबरदस्त देखने को मिल रही है। सहारनपुर के बाजार से केसरिया रंग से रंग चुके हैं पूरी तरीके से। कांवड़ यात्रा से पहले सहारनपुर में भगवा और महाकाल टी शर्ट की भारी डिमांड है। वहीं पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सावन से पहले विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट खुलने और महाकाल की दिव्य भस्म आरती का समय भी बदल दिया गया है।

0: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था का समंदर होगा, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। भले ही सावन की शुरुआत 30 जुलाई से है, लेकिन सावन की रौनक बाजारों में अभी से नजर आने लगी है। बाजार पर गेरुआ रंग छा रहा है, कहीं भगवान शिव के फोटो वाली टी शर्ट मौजूद है तो कहीं हनुमान जी की तस्वीर वाली टी शर्ट की डिमांड है। महाकाल टी शर्ट तो कावड़ियों की पहली पसंद बनी हुई है। सिर्फ टी शर्ट ही नहीं, बल्कि कावड़ियों के लिए छोटे छोटे स्लिंग बैग और छोटे छोटे डमरू भी बाजार की रौनक को दोगुना कर रहे हैं। सावन से पहले सहारनपुर का बाजार जैसे कावड़ के रंग में पूरी तरह रंगा है। इस बार आस्था के इस पावन पर्व में सहारनपुर का होजरी उद्योग अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। AI और कंप्यूटर डिजाइनिंग के दम पर सहारनपुर के कारोबारियों ने कावड़ के बाजार को नया अवतार दे दिया है। सहारनपुर होजरी मार्केट कावड़ के मौके पर हर साल लगभग 40 से 50 करोड़ का कारोबार करता है, लेकिन इस बार ये कारोबार लगभग 50 से 70 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है।
1: देखिए, हम ये मान के चलते कि औसतन सहारनपुर होजरी उद्योग जो है, जो कांवड़ के सीजन के दौरान हमारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 से 50 करोड़ का अमूमन कारोबार यहाँ पे कांवड़ के दौरान होता रहा है, पर इस बार हमारी अपेक्षाएं और अधिक है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि ये 50 से 70 करोड़ से ऊपर तक हो सकता है इसका कारोबार।
0: सहारनपुर में तैयार हो रही इन ड्रेसेस का जादू सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक से ऑर्डर आ रहे हैं। आस्था, आधुनिक तकनीक और कारोबार के इस अनूठे संगम ने सहारनपुर के होजरी उद्योग को एक नई ऊंचाई दे दी है। सहारनपुर के बाजार में रौनक है तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। श्रावण मास में देश के कोने कोने से आने वाले लाखों कावड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने सुगम और सुरक्षित दर्शन का इंतजाम किया है। साथ ही बाबा महाकाल की भस्म आरती के समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट तड़के 3 बजे खोल दिए जाएंगे और भस्म आरती सुबह 3 से 5 बजे तक होगी। वहीं प्रत्येक सोमवार को मंदिर के पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए जाएंगे, ताकि भस्म आरती 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न हो सके। साथ ही भगवान महाकाल की कुल 6 पारंपरिक सवारियां निकाली जाएंगी। प्रथम सवारी 3 अगस्त को और अंतिम राजसी यानी शाही सवारी 7 सितंबर को निकलेगी।
2: सावन के माह में अत्यधिक संख्या में कांवड़ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए एवं जल अर्पण करने के लिए आते हैं, इसलिए सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक दिन पूर्व अनुमति प्राप्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्री बिना अनुमति के आते हैं उन्हें मानसरोवर से प्रवेश दिया जाता है, और जिनकी पूर्व में सूचना मिल जाती है उन्हें विशेष हर सिद्धि एवं एक नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता है।
0: जय बाबा महाकाल स्वयं नगर भ्रमण पर निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानेंगे, तब उज्जैन की सड़कें जय श्री महाकाल के उद्घोष से गुंजायमान हो उठेंगी। हर साल सावन में हजारों कांवड़िए पैदल चलकर दूर दूर से गंगा जल लेने आते हैं और वहां से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करते हुए ही अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटते हैं। इसी गंगा जल से महादेव भोले भंडारी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। सावन का ये पावन महीना अपने आराध्य के प्रति आस्था का पर्व है। एक तरफ होजरी उद्योग कांवड़ यात्रा को नया रंग और नई पहचान दे रहा है, तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ इंतजार है तो सावन के पावन महीने के शुभारंभ का। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
3: आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल को भव्य रूप से सजाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पहुंचकर ऑपरेशन विजय के शहीदों को बाकायदा श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। उनके बाद उन्होंने जोजिला में तैनात सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। विजय दिवस के मौके पर द्रास में भारत की ड्रोन शक्ति का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग क्षमताओं वाले ड्रोन्स को उनका डेमो देखा गया और इसके अलावा द्रास में रफ टेरेन व्हीकल और स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल की भी नुमाइश देखने को मिली। देखिए तस्वीर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से भारत के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के ऋषिकांत सिंह सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया। ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किलोग्राम उठाकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया, जबकि क्लीन एंड जर्क राउंड में ऋषिकांत ने अपने पहले प्रयास में 143 किलोग्राम का भार आसानी से उठा लिया। ऋषिकांत ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 264 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि मलेशिया के कासदान मोहम्मद ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 273 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीत लिया। ऋषिकांत महज 9 किलोग्राम से गोल्ड से चूक गए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत की झोली में 2 मेडल आ चुके हैं।
4: पहले मैं बहुत खुशी हूं सभी मिलके, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर एंड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन सभी ना हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इधर मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था। बहुत खुशी हूँ, सभी को क्रेडिट देना चाहता हूँ। पहले आगे के लिए हम और जो कमीशन में जो मेडल लेके आऊंगा।
3: बात करेंगे भारतीय ब्राइडल फैशन की, जो अब सिर्फ पारंपरिक लाल लहंगों तक सीमित नहीं रहा। फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली मसावा गुप्ता ने पहली बार ब्राइडल फैशन रेंज लॉन्च कर दिया है और ब्राइडल फैशन को एक नई परिभाषा दे दी है, जबकि दूसरी तरफ जाने माने डिजाइनर जे वालाया ने इतिहास और शाही परंपरा का रंग बिखेर दिया है। क्या खास रहा दोनों डिजाइनरों के इस शो में, हमारी खास रिपोर्ट देखिए।

0: भारतीय शादियों में दुल्हन को भारी भरकम लाल जोड़ा, घूंघट और हैवी वर्क वाले गोटेदार किनारियों में ही देखते आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज की दुल्हन सिर्फ परंपरा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को भी अपने लिबास में फ्लॉन्ट करती है। इसी बदलते मूड और ट्रेंड को परखने के लिए इस बार भारतीय फैशन रनवे पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक तरफ नए जमाने की मशहूर डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने पहली बार ब्राइडल फैशन में कदम रखा है, तो दूसरी तरफ फैशन कुटोर बादशाह जेजे वलाया ने अपनी शाही कारीगरी से जिंदगी के पन्नों को जैसे नई जिंदगी दे दी हो।
1: दिल्ली एक बार फिर से फैशन की राजधानी बनने चली है। इंडिया कुटियर वीक 2026 में देश के सबसे बड़े डिजाइनर्स अपना कलेक्शन पेश करने चले हैं। देखिए, आज डे टू है और मसाबा गुप्ता ने अपना वेडिंग्स में डेब्यू किया है। जी हाँ, उन्होंने पहली बार वेडिंग कलेक्शन लॉन्च किया है और क्या ही सुंदर कलेक्शन था।
0: बात जब मॉडर्न और ट्रेंडी फैशन की आती है तो मसाबा गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। अपने अनूठे स्टाइल के लिए जानी जाने वाली मसाबा ने पहली बार ब्राइडल कुटोर की दुनिया में कदम रखा है। हाउस ऑफ मसाबा की ये डेब्यू ब्राइडल कलेक्शन आज की न्यू एज ब्राइड यानी नए जमाने की दुल्हन के नाम है, जो बेबाक है और अपनी भारी भरकम ड्रेस के साथ अपनी शादी को एंजॉय करना चाहती है। मसाबा ने इस कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय डिजाइन को ब्राइट कलर्स और कैरेबियाई ब्राइडल स्टाइल के साथ जोड़ा है। यानी ये कलेक्शन दुल्हन को सिर्फ फेरों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि सगाई से लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग और आफ्टर पार्टीज तक हर मौके के लिए एक परफेक्ट लुक देती है। जहां मसाबा गुप्ता ने भविष्य की सोच वाली दुल्हन को ध्यान में रखा, तो वही भारतीय कुटोर के दिग्गज डिजाइनर जेजे वलाया ने अपनी कला में हमें सीधा अतीत के शाही गलियारों में पहुँचा दिया। जेजे वलाया के इस नई कलेक्शन का नाम है सिद्धि। ये संग्रह भारत के ऐतिहासिक सिद्धि समुदाय की संस्कृति, यात्रा और पहचान से प्रेरित है। जेजे वलाया के शो में रॉयल्टी, बारीक कारीगरी और हैवी जरदोजी वर्क का ऐसा ताना बाना दिखा कि हर कोई देखता रह गया।
2: मेरी इंस्पिरेशन तो हमेशा जिंदगी ही रही है, एंड द फैक्ट कि मैं हर दिन अपने स्टूडियो जा सकता हूँ एंड मीट विद माई टीम। और मेरे हिसाब से आई थिंक आई नाउ 34 ईयर्स लेटर ऑल्सो मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग चीज मेरी लाइफ की है वो इज वर्किंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट। सो आई थिंक जब वो एक कहते हैं ना, व्हेन यू हैव दैट पैशन, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस।
0: अपने ब्रांड के 35 साल पूरे करने के ऐतिहासिक पड़ाव से ठीक पहले जेजे वलाया ने एक नया हाई कुटोर ब्राइडल ब्रांड भी लॉन्च किया, जो रॉयल और क्लासिक शादियों के शौकीनों के लिए एक नया ठिकाना बनने जा रहा है।
2: 2027 is 35 years of Jeje Wallaya, so we have something very magical planned. In fact, we are already working on that collection. लेकिन मैं अभी थोड़ी बताऊंगा आपको।
1: तो हमें फिर अगले साल के लिए वेट करना।
2: बिल्कुल, वो एक बहुत ही special, बहुत ही sentimental show होने वाला है। 35 साल, always special.
0: एक तरफ जहां मसाबा ने आज के दौर की बिंदास दुल्हन का जश्न मनाया, तो वहीं जेजे वलाया ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। दो अलग अलग कहानियां, दो अलग सोच, लेकिन एक ही रनवे, जो ये साबित करता है कि इंडियन फैशन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी लगातार नए आयाम छू रहा है। क्षितिजा गोस्वामी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: अब खबर अमेरिका के सैन डियागो में दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट यानी कॉमिक कॉन की कर ली जाए, जहां इस बार भी सुपर हीरोज, फिल्मी किरदारों और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की दुनिया जीवंत बिल्कुल नजर आई। यहां हजारों की संख्या में महीनों की मेहनत और सैकड़ों डॉलर खर्च करके अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धरकर लोग पहुंचे। रिपोर्ट देखिए।
4: सड़क पर अखबार पढ़ता स्पाइडरमैन, डॉक्टर डोम की दमदार एंट्री, समुराई हेलो किटी, रोबोट और द विज़ार्ड ऑफ ओज़ का टिन मैन। ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है जिसमें एक साथ इतने कार्टून किरदार मौजूद हों। ये तो अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित कॉमिक कॉन का नजारा है। यहाँ कॉमिक्स, फिल्मों, वीडियो गेम्स और फैंटेसी की दुनिया के हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धारण कर पहुंचे हैं। सबके कॉस्ट्यूम अपने आप में अलग है और हर किसी के पीछे महीनों की मेहनत छिपी हुई है। इसमें 27 साल की सारा लू फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के मशहूर ड्रैगन टूथलेस का रूप धर कर पहुँचे। इस कॉस्ट्यूम की तैयारी उन्होंने जनवरी से शुरू की थी और इसे बनाने में करीब $400 खर्च हुए हैं।
5: At least for me, it's like an intersection between theater, music, and dance as well. So I kind of use all these skills to kind of like bring a character to life. I think there's just some sort of magic to that. And as well as building a community, because I've gotten so many kids that come up and be like, oh my god, it's Toothless. And I'm like, I know, I love Toothless too, and that's why I'm doing it, just for the community.
4: कॉमिक कॉन में हर साल हजारों लोग अपने पसंदीदा किरदारों के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉस्ट्यूम ही मायने नहीं रखता बल्कि उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।
6: Okay, dudes, make sure it's cool. Like, be confident in yourself. Because if you're not confident in your own cosplay, you're gonna give off like a really bad aura and no one's gonna like you. All right, like if you just don't like how you're dressing, then your outfit's awful. You know what I mean? But if you love yourself and you like how you dress, boom, outfits peak. Don't make sure you don't forget sunscreen.
4: कॉमिक कॉन का आयोजन हर साल गर्मियों के दौरान होता है, ऐसे में अपने किरदारों को पेश करने वाले लोगों के लिए भी मास्क, भारी भरकम ड्रेस और बड़े प्रॉप्स पहनकर घंटों घूमना आसान नहीं होता। मौसम को देखते हुए उन्हें तेज गर्मी में अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है।
7: How do you stay cool? Hydrate. I carry bottled waters here in my backpack and try to take as many breaks as possible. I try not to drink too much through the mask because you can waterboard yourself.
4: कॉमिक कॉन में अनोखी किरदारों को पेश करने वाले लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर महीनों की मेहनत से तैयार किए गए कॉस्ट्यूम या प्रॉप्स खराब हो जाते हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं ब्रायन बैरो, जिन्हें यहाँ कॉस्प्ले रेस्क्यू मैन के नाम से जाना जाता है। अपने बैग में तमाम औजार और सामान लेकर वो इन आर्टिस्ट की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि किसी के खराब हुए कॉस्ट्यूम को कुछ ही मिनटों में फिर से ठीक किया जा सके।
6: Hopefully I can fix what they have and then they can enjoy the rest of their con, because they're always on their way to a photo shoot or on their way to a panel and they want to be photo ready. And ready to go, and that's kind of what I provide, and I do it for free, only because I'm just asking people to kind of pay it forward.
4: कॉमिक कॉन सिर्फ फिल्मों और कॉमिक्स का उत्सव नहीं, बल्कि ये कल्पना, रचनात्मकता और अपने पसंदीदा किरदारों के प्रति लोगों के जुनून को दर्शाने का सबसे बड़ा और बेहतरीन मंच भी है। इसमें शामिल हो रहे लोग महीनों मेहनत करते हैं। उनके मन में बारीक कारीगरी से अपने पसंदीदा किरदार को जीवंत बनाने के लिए हर कॉस्ट्यूम को बेहद शानदार और आकर्षक बनाने का सपना होता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से हजारों लोग सैन डिएगो पहुंचते हैं और कुछ दिनों के लिए कल्पना की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: क्या है शनिदेव की उल्टी चाल का हाल? शनिदेव की उल्टी चाल से कौन होगा मालामाल और शनिदेव की चाल से कौन होगा बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
11: आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनिदेव की चाल उल्टी होने जा रही है और शनि की इस उल्टी चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं, चलिए आज का पंचांग। दिनांक 27 जुलाई 2026, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र प्रातः 10:28 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की उल्टी चाल के बारे में। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव के वक्री होने की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, शनिदेव अभी तक मीन राशि में विद्यमान हैं। अब वो 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। शनि की ये स्थिति 11 दिसंबर तक बनी रहेगी। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनि की ये चाल बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के वक्री होने पर ये जहां बैठे हैं उससे पिछले भाव में भी असर डालने लगेंगे और इससे 7.5, ढैया और गोचर की स्थिति बदल जाएगी। शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तेज प्रभाव पड़ेगा और इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी। लगभग 8 राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो शनि का ये जो उल्टी चाल की स्थिति है, ये बड़ी ताकतवर है और आप देखेंगे कि 11 दिसंबर के पहले बहुत सारे लोगों के करियर में, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए शनि की उल्टी चाल की जो स्थिति है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 7.5 के ऊपर और ढैया के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर इस समय 7.5 चल रही है। अब पुनः दोबारा मकर राशि पर 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी। सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया चल रही है। दोबारा कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। कुल मिलाकर 8 राशियां इससे प्रभावित हो जाएंगी। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के अलावा मकर राशि पर प्रभाव पड़ेगा और सिंह राशि और धनु राशि के अलावा कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्यतः 8 राशियां शनि के इस परिवर्तन से दोबारा 7.5 और ढैया के प्रभाव में आ जाएंगी। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, ऑफिस में तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार की चिंता दूर होगी, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि की उल्टी चाल का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा 11 दिसंबर तक, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए करियर में थोड़ा बदलाव इस समय हो सकता है और करियर के मामले में, पैसे के मामले में लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। वृषभ राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है और आपके स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। मिथुन राशि, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बेवजह के विवाद आपके परिवार में हो सकते हैं, ये संभावना आपके जीवन में बन सकती है। कर्क राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से जो आपके

0: महत्वपूर्ण काम है वो महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। सिंह राशि, शनि की उल्टी चाल का फायदा होगा आपको, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। कन्या राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से आपके करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है और धन का लाभ होने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, इस समय आपको करियर की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक के लोगों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा। तुला राशि की बात करें तो आपको इस समय अपने करियर का ध्यान रखना चाहिए, इस समय आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि विवाह होने के और संतान होने के जो तमाम मामले हैं वो इस समय आपके हल होंगे। वृश्चिक राशि, शनि की उल्टी चाल से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर नए काम का आरंभ करते हैं तो नए काम में लाभ की संभावनाएं बनती हैं आपके लिए। धनु राशि, शनि की उल्टी चाल से आपको करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, चिंताएं और तनाव की स्थितियां दूर हो जाएंगी। मकर राशि, शनि की उल्टी चाल से आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में समस्याओं से बचिए और इस समय किसी भी मामले में विवाद मत करिए, इस समय शांति बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, शनि की उल्टी चाल आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय आपको करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि, शनि की उल्टी चाल से आपके करियर में बदलाव की स्थिति बन रही है। इस समय बेवजह के विवादों से, बेवजह की समस्याओं से बचाव करिए। शनि जो है वो लोकतंत्र का स्वामी है और मंगल निरंकुशता का स्वामी है। अब अभी तो शनि मंगल का संबंध बना हुआ है और शनि के वक्री होने से भारतवर्ष में उपद्रव बढ़ेंगे, झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, स्थितियाँ और खराब हो सकती हैं, जनता और सरकार के बीच में तनाव बढ़ सकता है। ये उपद्रव केवल भारत वर्ष तक सीमित नहीं है, ये उपद्रव आगे भी जा सकता है और दुनिया भर में फैल सकता है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम देखें, कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो शनि का वक्री होना 11 दिसंबर तक देश और दुनिया में तमाम हलचल और तमाम उपद्रव पैदा करेगा। अगर नौकरी संबंधी किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, नौकरी का कोई केस या मुकदमा चल रहा है, तो हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। हर शनिवार की शाम को अगर सुंदर कांड का पाठ करें तो नौकरी की मुकदमे की समस्या हल हो जाएगी। अगर शनि की उल्टी चाल का प्रभाव अच्छा ना हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और शनिवार को दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना,
8: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: देखिए, आज की दुनिया में तकनीक हर दिन नई उड़ान भर रही है और अब बारी है इंसानों के सफर को बदलने की। जिस फ्लाइंग टैक्सी को अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा जा सकता था, उसने अब हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में पहली बार बिना पायलट उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी ने सफल प्रदर्शन करके दिखाया है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है बल्कि आने वाले समय के स्मार्ट और तेज परिवहन की नई शुरुआत मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए।

0: कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार ऐसी फ्लाइंग टैक्सी ने उड़ान भरी जिसने आने वाले कल की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। बिना पायलट, पूरी तरह आधुनिक तकनीक के भरोसे, इस उड़ान ने भविष्य के परिवहन को नई दिशा दिखा दी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के आसमान में पहली बार बड़े इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी EVTOL एयरक्राफ्ट ने सफल डेमो उड़ान पूरी की। इस फ्लाइंग टैक्सी को चीन के शंघाई की ऑटो फ्लाइट कंपनी ने विकसित किया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित है। खास बात यह है कि ये विमान सीधे ऊपर उठ सकता है और कम जगह में सुरक्षित तरीके से उतर भी सकता है। इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें कम समय में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना आसान होगा। यही वजह है कि इसे शहरों में भविष्य के परिवहन का मजबूत विकल्प माना जा रहा है। ये प्रदर्शन गेम्स ऑफ द फ्यूचर 2026 से पहले आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है जिसमें पारंपरिक खेलों के साथ डिजिटल गेमिंग और आधुनिक तकनीक का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। ये आयोजन 29 जुलाई से 9 अगस्त तक अस्ताना में होगा और दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए इस परीक्षण के दौरान विमान में ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई यात्री। पूरी उड़ान का उद्देश्य केवल इसकी तकनीक, नियंत्रण प्रणाली और उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना था। डेमो के दौरान एयरक्राफ्ट ने तय योजना के अनुसार सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है। इस नई तकनीक को लोगों के करीब लाने के लिए 29 और 30 जुलाई को फ्लाइंग टैक्सी को अस्ताना में सार्वजनिक प्रदर्शनी में भी रखा जाएगा। यहां आने वाले लोग इसे नजदीक से देख सकेंगे और भविष्य के इस नए परिवहन माध्यम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से दीमात। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी की नुमाइश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
4: बात करेंगे मुग्धर मैन की, जिन्होंने बच्चों के हाथों से मोबाइल हटाकर मुग्धर थमाने का प्रण लिया है। इसके लिए दिल्ली के खेड़ा गांव के रहने वाले पहलवान हवा सिंह ने अभियान ये चला रखा है। वो बच्चों को फ्री में मुग्धर भी दे रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, हर घर मुग्धर। उनकी कोशिश है कि वे बच्चों के हाथ में जो है स्मार्टफोन चुड़ाकर उनके हाथों में पारंपरिक मुग्धर थमा सकें, ताकि देश का भविष्य मजबूत और स्वस्थ बन सके।

0: जब से स्मार्टफोन का आगमन हुआ है तब से वो सभी को अपनी ओर खींचता है। बच्चों की हालत तो ये है कि मोबाइल के बिना उनका खाना उनका पढ़ना तक नहीं हो पाता। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए हवा सिंह नाम के पहलवान ने अनोखी मुहिम चलाई है। हवा सिंह का एक ही लक्ष्य है, हर घर मुखदर। वे नई पीढ़ी के हाथों से स्मार्टफोन छुड़ाकर महाभारत कालीन पारंपरिक मुखदर थमा रहे हैं, जिससे देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। हवा सिंह ने बच्चों को मुफ्त में मुखदर बांटना शुरू किया है ताकि बच्चे मोबाइल की लत छोड़े और बचपन से ही फिट और सेहतमंद रहे। हवा सिंह अब तक 4,000 से ज्यादा बच्चों को मुखदर गिफ्ट कर चुके हैं।
1: बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, बहुत बढ़िया।
2: आजकल बच्चे हरदम फोन पे चिपके रहते हैं, किसी को भी देख लो कितनी उम्र हो जाए। और मैं खासकर देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के, 1 साल का भी बच्चा है वो भी फोन के अंदर घुस रहा है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो। पहले तो उनके माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, उसके बाद वही माँ बाप उन बच्चों को फोन छुटवाने के लिए आदत। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसमें परेशानी उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं, हम मुखदर देंगे।
0: हवा सिंह पहलवान रह चुके हैं और अभी उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन आज भी भारी से भारी मुखदर वो चंद सेकंड में घुमा लेते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर घर का बच्चा मजबूत बने और स्वस्थ रहे। इस अभियान के लिए भी 2 नारे बनाए गए हैं, हर घर मुखदर, घर घर मुखदर।
2: ये हमारा मकसद है कि हर एक घर के अंदर एक मुखदर हो। मुखदर एक ऐसी चीज है कि एक ही मुखदर से पूरा परिवार एक्सरसाइज कर सकता है। इसीलिए हमने नारा दिया है हर घर मुखदर, घर घर मुखदर का। और दूसरा हमारा नारा है कि मुखदर घुमाओ और स्वस्थ भारत बनाओ।
0: दिल्ली के रिठाला के रहने वाले पहलवान हवा सिंह के पास कई माता पिता उनसे सलाह लेने आते थे कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाए। शिकायतें सुन सुनकर हवा सिंह थक चुके थे, तब उन्होंने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना बच्चों को बचपन से ही फिटनेस की आदत डाली जाए।
2: ऐसे बहुत अच्छा।
0: इसलिए उन्होंने बच्चों को मुखदर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। खास तौर पर उन सभी के बच्चों को इसमें शामिल किया गया जो शिकायत लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को बुलाकर मुखदर चलाना सिखाना शुरू किया। अब बच्चों ने मुखदर चलाना शुरू किया और उसी में वो बिजी रहने लगे और उन्हें इतना मजा आने लगा कि मोबाइल की लत करीब करीब छूट ही गई। और बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों के मुखदर से जुड़ने से खुश हैं।
3: इनसे कॉन्टेक्ट किया और मैंने बच्चे यहाँ खेड़ा में भेजने शुरू किए, तो तब से डेली मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे, वो ना के बराबर हो चुका है। वो तो पहले हम किसी के भी बच्चे को अपने देते थे, खाना खाते हुए मोबाइल हाथ में दे देते, वो खाना नहीं खा रहे, वो मोबाइल में जो देख रहे हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें ही खा रहे हैं, खाने का स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोन में घुसे रहते थे। अब बच्चे जाते हैं यहाँ से मेहनत करने के बाद, थकने के बाद अच्छी नींद आती है, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं।
4: पहले ये फ़ोन में लगा रहता था 3-3, 4-4 घंटे तक, ना तो कुछ खाना कुछ किसी और एक्टिविटी में कुछ वो नहीं था। लेकिन जब से हवा सिंह जी ने यह मुखदर की मुहिम चलाई है, जब से मेरा बच्चा थोड़ा एक्टिव हुआ है, इसने फोन देखना बंद कर दिया, ढंग से ये खाना खा रहा है, 2-2, 3-3 घंटे तक अभी रोज एक्सरसाइज भी करता है, मुखदर भी घुमाता है और घर में भी बहुत एक्टिव रहता है अभी। और अब इसने फोन बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ जी, और बड़े हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
0: रोजाना 10 से 15 मिनट सही तरीके से मुखदर घुमाया जाए तो पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। ऐसे में मुखदर से बच्चों के जुड़ने से पेरेंट्स भी राहत की सांस ले रहे हैं।
1: दोनों हाथों में ऐसे।
0: उनका तो ये भी कहना है कि मोबाइल की लत से बच्चों का विकास लगभग रुक सा गया था, लेकिन जब से बच्चे ने मुखदर थामा है तब से हालात बदल से गए हैं।
4: बहुत परेशानी है, एक तो बच्चों की आंखें बहुत कमजोर होती है इससे, बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, फोन उनसे ले लो चिल्लाना मारना बहुत वो होता है। लेकिन जब से अब इस उसमें में हमारा बच्चा हुआ है, इसमें बहुत सुधार हुआ है।
0: मुहिम चलने लगी तो कारवा बनता गया और लोग भी इस अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई भारत के भविष्य की सेहत के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि बच्चे अक्सर घर में ही रहते हैं, ना वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं और ना ही धूप में वक्त गुजारते हैं। ऐसे में उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता, शायद इसीलिए मुग्धर अभियान को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
1: बहुत अच्छे कर रहे हैं सभी बच्चे, शाबाश।
5: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है, बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, अच्छा खाना खाता है, और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है, तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा। बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा।
6: बच्चे इस तरह से भटक रहे थे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं था, खान पान का भी बहुत। और ये इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है, देखो इतने बच्चे एकदम से आ जाते हैं पे, तो बहुत अच्छी मुहिम है।
7: वो जरूरी है बच्चों की ये मुहिम,
6: वही हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख कहते हैं निरोगी काया, अगर निरोगी काया है तो सब कुछ सुख है फिर, तो ये बहुत जरूरी है। ये
0: मुग्धर का इतिहास कोई नया नहीं, इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले महाबली भीम मुग्धर गदा से ही अभ्यास किया करते थे। ये विशुद्ध रूप से भारतीय पारंपरिक व्यायाम पद्धति की देन है, जिसका जन्म व उदय भारत की पावन मिट्टी में हुआ। इसके इस्तेमाल से कलाई, कोहनी, कंधे और उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है। इसका खास डिजाइन शरीर का संतुलन और पोस्चर शानदार बनाता है। मुग्धर एक ऐसा संपूर्ण और जादुई टूल है जिसके इस्तेमाल से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन आपको बता दें कि मुग्धर बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। इसके लिए शीशम या बबूल की लकड़ी को सबसे उपयुक्त और मजबूत माना जाता है। इसके निर्माण का मुख्य काम हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में किया जाता है। यह बच्चों के लिए 250 ग्राम से लेकर पहलवानों के लिए 30 किलो तक बनता है। ऐसा नहीं कि मुग्धर की चर्चा सिर्फ भारत में होती है, अमेरिका समेत कई देशों ने इस भारतीय कला को अपनाया है। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों और कई वैश्विक खेल मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। विदेशों में इसे इंडियन क्लब्स के नाम से माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
8: और आइए बात करते हैं भारत के पुशअप मैन की। रोहताश चौधरी के नाम ये विश्व रिकॉर्ड है जिन्होंने अपना और देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। रोहताश ने अपनी पीठ पर 27 किलो से ज्यादा वजन रखकर एक घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। हालांकि रोहताश ने ये रिकॉर्ड पिछले साल नवंबर में बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। रोहताश का ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस रिकॉर्ड को भारतीय सेना को समर्पित किया है। वैसे रोहताश के नाम ये अकेला रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं।

0: पीठ पर भारी भरकम 27 किलो से ज्यादा का वजन, 847 पुशअप्स और सिर्फ 60 मिनट का समय, ये कोई आम बात नहीं बल्कि इंसान की ताकत और जुनून की वो इंतहा है जिसने इतिहास रच डाला है। ये वो चमत्कार है जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। ये फौलादी इरादों का वो जुनून है जिसके बल पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया इतिहास दर्ज हो गया। जरा सोचिए, एक घंटे तक लगातार पीठ पर 27 किलो का बोझ उठाकर पुशअप्स लगाना क्या आसान है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत के एक जाबाज ने इस असंभव से दिखने वाले कारनामे को न सिर्फ संभव बनाया है बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पन्नों पर भारत का नाम एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है।
1: नया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से आपके नाम आया है, 27 किलो 200 ग्राम।
2: मिडल इसका रिकॉर्ड था 27 केजी 600 ग्राम के साथ में, 820 पुशअप का रिकॉर्ड था, मैंने 28 केजी लिया था और 844 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था।
1: नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये
2: नया रिकॉर्ड है नया रिकॉर्ड है ये मैंने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ में नेहरू स्टेडियम में रिकॉर्ड ब्रेक किया था।
0: मिलिए दिल्ली के रहने वाले और पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहताश चौधरी से, जिन्होंने इस अनोखे और हैरान कर देने वाले कारनामे को अंजाम दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रोहताश चौधरी ने इस तरह का कारनामा किया हो। इससे पहले भी रोहताश अलग अलग रिकॉर्ड बना और तोड़ चुके हैं। सही कहें तो ये अब रोहताश की एक आदत सी बन गई है। जून 2016 में रोहताश ने 36.6 किलो वजन के साथ एक मिनट में 51 पुशअप्स किए और इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा। जनवरी 2024 में उन्होंने 37 किलो वजन के साथ एक घंटे में 744 पुशअप्स किए और स्पेन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। नवंबर 2024 में रोहताश ने 28 किलो वजन के साथ एक घंटे में 721 वन लेग पुशअप्स कर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने 27.6 किलो के साथ एक घंटे में 847 पुशअप्स की और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। हालांकि ये रिकॉर्ड अब जाकर आधिकारिक रूप से गिनीज बुक में दर्ज हुआ है।
1: अभी जो रिकॉर्ड बनाया हमने वो 27.5 केजी का,
2: 27.5 केजी के साथ में मिडल इसका रिकॉर्ड था, 820 पुशअप का रिकॉर्ड था, मैंने 28 केजी लिया, 600 ग्राम वेट फालतू लिया था और जो 820 पुशअप का रिकॉर्ड था एक घंटे में वो 847 पुशअप कर वो ब्रेक किया मैंने। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिकॉर्ड मैंने भारतीय सेनाओं को समर्पित किया अपना रिकॉर्ड।
0: रोहताश के इस विश्व रिकॉर्ड की चमक के पीछे सालों की तपस्या, दर्द और अटूट संघर्ष की दास्तान छिपी है। एक वक्त ऐसा भी था जब रोहताश एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हालात इतने गंभीर थे कि वो करीब 2 सालों तक तो सामान्य रूप से चल फिर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है। रोहताश ने भी ऐसा ही किया। पिछले 10 सालों से वो रोजाना घंटों कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी डाइट पर सख्त ध्यान देते हैं और मानसिक मजबूती के लिए ध्यान भी लगाते हैं।
1: कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन बात सिर्फ पुशअप की नहीं है। पुशअप तक पहुंचने के लिए ओवरऑल आपको फिट रहना पड़ता है, कई तरह की हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी रोहताश जी प्लैंक करने जा रहे हैं और वेट रखा है, आप देख रहे हैं 20-20 केजी की 5 प्लेट है, यानी कि 100 किलो। कितनी हार्ड ट्रेनिंग आप खुद को देते हैं?
2: डेली का मेरा चार घंटे का वर्कआउट रहता है। चार घंटे का डेली वर्कआउट होता है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे मैं जिम में आ जाता हूँ और 5 बजे से मेरा 9 बजे तक 10 बजे तक वर्कआउट रहता है।
0: देखने और सुनने में ये भले ही आसान लगता हो लेकिन ये कितना मुश्किल है इसकी हकीकत तब पता चलती है जब कोई शख्स उसे खुद करता है। हमारे संवाददाता ने भी रोहताश के साथ कमर पर वजन रखकर पुशअप्स की।
1: रोहताश भाई ने इंग्लैंड, स्पेन, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है पुशअप मारने में, उस पर भी पीठ पर वजन रखकर। लेकिन आज मैं भी इनके साथ ट्राई करने जा रहा हूँ। जब ऐसे किसी महारथी से मिला हूँ तो मैं खुद को एक चैलेंज देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि मैं रोहताश भाई के साथ कितने पुशअप मार सकता हूँ। और इससे पहले मैंने कभी भी खुद पर वेट रख के पुशअप नहीं मारे हैं, लेकिन आज ट्राई करते हैं कि रोहताश भाई आप कितना का वेट रख रहे हो?
2: 20 केजी
1: का वेट वो रख रहे हैं, 10 का मैं रख लेता हूँ।
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इज्जत वाली बात नहीं है, जज्बा बहुत है, भले ही ताकत हो चाहे ना हो, चेक करते हैं। चलिए

0: सड़क हादसे से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के मंच तक का ये सफर साबित करता है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके अटूट संकल्प में छिपी होती है। रोहताश ने न सिर्फ दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि भारत का परचम भी पूरी दुनिया में लहराया है।
1: 2 साल तक अस्पताल में बेड पर रहे, डॉक्टर ने कहा चल लोगे इतना ही बहुत है। इन खड़े हुए, जिम गए और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। मैंने आज इनके साथ यहां से शुरुआत की है। आप सोचिए कि आपको कहां से शुरू करना है, लेकिन शुरू जरूर करिए। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
2: आइए आपको मिलवाते हैं विनीता कुमारी से, जिन्होंने गांवों की कच्ची दीवारों और गोबर मिट्टी तक सीमित रहने वाली लुप्त होती कला को कागज, कपड़ों और कैनवस पर उतेर कर आधुनिक रूप दे दिया और देश दुनिया तक पहुंचा दिया। इस लोक कला का नाम पीड़िया लेखन है। पीड़िया लेखन एक तरह की पेंटिंग है जो बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आमतौर पर इस चित्रकारी को गांव की दीवारों पर भाई दूज के अवसर पर बनाया जाता है, लेकिन विनीता कुमारी ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर लोक कला को इस नई पहचान दी है। देखिए।

कभी ये पेंटिंग गांव की दीवारों तक सीमित थी, लेकिन अब ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये पेंटिंग गांव की दीवारों से निकलकर कैनवास के रास्ते शहर महानगर होते हुए विदेशों तक पहुंच गई है। इसका नाम है पीडिया लेखन या पीडिया पेंटिंग, जो बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले में खास तौर पर बनाई जाती है। लोक कलाओं में शुमार पीडिया पेंटिंग को असली पहचान दिलवाया है रोहतास की विनीता कुमारी ने। उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष का ही परिणाम है कि सदियों पुरानी पीडिया पेंटिंग को नया आसमान मिला है और इसे देश दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है।

0: हमारे गांव देहात की परंपरा, लोकगीत, लोक कला जाती हुई पीढ़ियों के साथ वो भी चली गई हैं। हमारी दादी नानी पहले दीवारों पर जो लोक कलाएं, जो अलग अलग चित्र उकेर दिया करती थीं मिट्टी की दीवारों पर, ना वो मिट्टी की दीवारें हैं, ना वो दादी नानी है, और ना ही कहीं ना कहीं वो लोक कला बची हुई है। लेकिन क्या हो अगर दीवार पर उकेरे जाने वाली उसी लोक कला को कोई कैनवस पर ले आए, कोई कागज़ पर ले आए, तब उसके ज़िंदा रहने के जो दिन है वो शायद बढ़ जाते हैं या फिर उसे एक नया जीवन मिल जाता है।
1: पहले भाई दूज त्योहार के वक्त पीढ़िया पेंटिंग को मिट्टी से बने घरों की दीवारों पर बनाया जाता था, जो भाई बहन के अटूट प्रेम, पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन विनीता ने इस पेंटिंग को कैनवास पर उतारा, तब जाकर इसे असली पहचान मिली। विनीता ने इस पेंटिंग से लोगों को रूबरू कराने के लिए बहुत मेहनत की, तब जाकर पीढ़िया पेंटिंग को सही मायने में मुकाम हासिल हुआ।
2: पहले हम लोग त्योहार के रूप में ही केवल मनाते थे इसे। पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि पीढ़िया मेरी इतनी मतलब स्थान तक पहुंचेगी, यहाँ मतलब एग्जीबिशन लगेंगे और इसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, मुझे नहीं ये उम्मीद थी। लेकिन अब ये मतलब जब मैं करने लगी पेपर और कैनवास पे, जब से मैंने करना शुरू किया तब से पीढ़िया मतलब कैनवास पे की, पेपर पर की और एग्जीबिशन में भी इसको ले गई और काफ़ी लोगों ने सराहा।
1: पीढ़िया पेंटिंग को भोजपुर क्षेत्र के गांव देहात में पीढ़िया लेखन कहते हैं, जिसे महिलाएं या लड़कियां ही भाई दूज पर प्राकृतिक रंगों से बनाती हैं। गोबर और मिट्टी से लीपी दीवारों पर प्रकृति, देवी देवताओं और लोक जीवन से जुड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें पीढ़िया की एक बड़ी हरे रंग की आकृति बनाई जाती है, जिनकी देवी माता के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें रक्षा करने वाली माना जाता है। विनीता ने इसकी शुरुआत महज 12 साल की उम्र में ही कर दी थी।
2: बारह साल की जब मैं थी तो हालांकि मैं पढ़ती थी उस समय गांव के स्कूल में, तो फिर मम्मी को देखते थे कि मम्मी मेरी दीवार पे कर रही हैं पीढ़िया लेखन और गीत भी गा रही हैं, तो मुझे भी धीरे धीरे लगा कि मैं भी करूं। तो फिर मम्मी बोलती थी कि छोटी हो बाद में करना, लेकिन मैं मतलब और लड़कियाँ करती थी तो साथ में मैं भी करने लगी, करते करते मतलब इसको दीवार पे पूरा करने लगी, इसको चित्र बना करके। हालांकि मैं जब शादी से पहले इसको जब बनाती थी तो सिंदूर से नहीं टिका जाता है, कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं छूती हैं। अच्छा। तो हम लोग घी से टिक देते थे, डबल लाइन करते थे, इसका मतलब बेस मिट्टी का देते थे और सेम का पत्ता का रस निकाल करके और इसका ग्रीन ये बेस मारते थे। इसके बाद फिर डबल लाइन के लिए चावल खूब उत्सुकता से मतलब शाम में ही भिगो देंगे और सुबह में उसको पीस देंगे सिलबट्टा पे, पीस कर कपड़ा में छान लेंगे और फिर बांस का दो फकिया ब्रश जो होता है ना, तो उसको हम लोग मतलब एक छोटा सा दातुन की तरह तोड़ लेंगे, छोटा सा बाती, और उसको बीच में फाड़ देंगे और दोनों तरफ कपड़ा लपेट देंगे तो डबल ब्रश हो जाएगा, तो दीवार पे आसानी से बन जाता था डबल लाइन। तो ये हम लोग इतना तक करते थे, बाकी मम्मी करती थी वो सिंदूर से टिकती थी।
1: विनीता के इस मिशन की शुरुआत उनके दिवंगत पति भुवनेश्वर भास्कर के सपने से हुई थी। पति के निधन के बाद भी उन्होंने इस अभियान को नहीं रोका। उनके पति ने ही उन्हें सबसे पहले पीढ़िया पेंटिंग को कैनवास पर उतारने की सलाह दी थी।
2: तो हमें दिल्ली आना पड़ा और जब त्योहार आता था तो मुझे लगता था कि पीढ़िया का त्योहार अब छूट जाएगा लग रहा है, तब ये बोलते थे कि निराश मत हो, इसको पेपर पर करो, इसको दीवार तो नहीं मिलेगा यहाँ मगर इसको पेपर पर तुम करो, और गोधन भी यहाँ मनाया जाता है, हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं अगल बगल में तो ये त्योहार लोग करते हैं, गोधन का तो करते ही हैं, पीढ़िया का भले नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सारी घर नहीं रहा, गाय बैल जो बांधते हैं ना सारी घर वो नहीं रहा और शहरों में ये उपलब्ध भी नहीं है, ना मिट्टी का दीवार है, तो वो उन्होंने बोला पेपर पर करो, तो फिर मैं पेपर पर शुरू कर दी। एक दो बार की तो खराब हो गया क्योंकि लाइन खींचने में ही मुझे दिक्कत होती थी,
0: क्या आदत नहीं रही होगी।
2: जी, दीवार पर करके आई थी काम और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें इसको पेपर पर, क्योंकि मतलब इसको उतारना तो था दीवार पर से, काफ़ी कष्ट हुआ। कुछ दिन तक तो मैं लाइन खींचते रही, 3-4 महीना लग गया लाइन खींचने में, सीधी लाइन नहीं होती मुझसे। इसके बाद फिर कैनवास पे पेपर पर करने लगी, फिर कैनवास पे करने लगी, सब फिर बढ़िया होने लगा।
1: विनीता कुमारी की कोशिशों का ही नतीजा है कि पीड़िया पेंटिंग को जून में भारत की सरकार ने GI टैग से नवाजा है। विनीता को पीड़िया लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। विनीता पीड़िया लेखन की कला का प्रसार भी करना चाहती हैं। तभी तो पीड़िया पेंटिंग के सफर में विनीता अभी तक 50 से अधिक ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं को ये कला सिखा चुकी है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब खबर उस चमकदार हीरे की जो अंतरिक्ष की सैर पर है। जी हां, भारत में तैयार हीरे से बनी ज्वेलरी अंतरिक्ष में भेजी गई। ये खबर तो 18 जुलाई को आई थी जब विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च हुआ और अब उस खास हीरे का वीडियो निकलकर सामने आया है। कमल के आकार में तैयार किया गया ये हीरा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनकर अंतरिक्ष में पहुंचा।
4: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.

0: अब तक अंतरिक्ष मिशनों के जरिए इंसानों से लेकर जानवरों, पौधों के बीज, वैज्ञानिक उपकरण और तमाम प्रयोगों से जुड़ी वस्तुएं अंतरिक्ष में भेजी जाती रही हैं। लेकिन पहली बार भारत ने अंतरिक्ष में एक नायाब हीरा भेजकर इतिहास रच दिया। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 1 रॉकेट के साथ एक खास लैब ग्रोन डायमंड को अंतरिक्ष तक पहुंचाया। सबसे गर्व की बात ये है कि ये रॉकेट भी भारत का था और उसके साथ भेजा गया ये अनमोल हीरा भी भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 18 जुलाई 2026 को दोपहर 12:05 पर देश में निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम 1 ने उड़ान भरी तो एक नहीं बल्कि कई नए इतिहास रचे गए। विक्रम 1 की लॉन्चिंग तो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके साथ ही रॉकेट से पहली बार अंतरिक्ष में एक हीरा भेजकर इतिहास रचा गया। पहली बार एक नायाब हीरे को भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। जिस हीरे को अंतरिक्ष में भेजा गया उसका नाम है कॉस्मिक ब्लूम। ये लैब ग्रोन यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया हीरा है। देश में हीरो के निर्माता कॉस्मोस ब्रांड ने इसकी परिकल्पना की, वही इसके क्यूरेटर हैं और इसकी डिजाइनिंग, पॉलिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग सूरत की नित्या जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड ने की है।
1: विक्रम 1 में जो डायमंड की एक ज्वेलरी बना के भेजी हुई है उसके अंदर बहुत मेहनत लगी, बहुत लोगों का इसमें सहयोग हुआ है और बहुत लोगों ने मेहनत की है। साउथ बे से कॉस्मोस ब्रांड थी, उन लोगों ने ये प्रपोजल रखा था और हमारी टीम ने एक कलेक्शन लॉन्च किया था और उसका नाम लोगों ने लोटस कलेक्शन दिया हुआ था।
0: इस नायाब हीरे का निर्माण, पॉलिशिंग और ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा सारा काम सूरत की डायमंड फैक्ट्री में हुआ है। यानी रॉकेट भी भारत का और उसके साथ भेजा गया हीरा भी भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है।
1: हर कोई डायमंड बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो एम्प्लॉय है, जो बॉस है, एक एक ख्वाहिश होती है कि हमको ये डायमंड हर घर तक पहुंचाना है। पर इस बार ऐसा हुआ है, हर घर तक तो पहुंच रहा है पर पेस में भी पहुंच रहा है। तो अपने लिए, ये भारत के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक रोजगार के लिए बहुत बड़ी चीज हासिल होने लग आगे जाके हो रही होगी।
0: अब आपको इस खास हीरे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। इसे कंपनी की ओर से लॉन्च खास लोटस कलेक्शन में लगाया गया है। इसे कमल के फूल के शक्ल की डायमंड गोल्ड लोटस ज्वेलरी में इस्तेमाल किया गया है। इसमें 18 कैरेट येलो गोल्ड लगा है और 16.16 कैरेट के पियर शेप सॉलिटेयर लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग किया गया है। इसमें हीरे के कुल 32 पीस लगे हुए हैं। इसका कट पियर शेप का है क्योंकि कमल की पंखुड़ियां पियर शेप डायमंड से मैच करती हैं। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। जब इसे अंतरिक्ष में भेजे जाने की बात चली तो कई बार बदलाव किए गए और पैरामीटर्स के हिसाब से इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके पीछे आइडिया भी बेहद खास है। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में कमल होता है और कमल ही उनका आसन है, इसीलिए इसे लोटस कलेक्शन नाम से तैयार किया गया। इसका डिजाइन बनाने में हमें पूरा 1 महीना लगा था। उसके बाद इसे पूरी तरह तैयार करने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगा।
1: ये लैब में बना हुआ डायमंड है, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट डायमंड है। अगर डुप्लीकेट डायमंड होता तो वहाँ तक पहले तो पहुँचता ही नहीं है। जैसे टेस्ट ट्यूब से अगर कोई संतान प्राप्त होती है और नेचुरल गर्भ से संतान प्राप्त होती है तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि टेस्ट ट्यूब से हुआ डुप्लीकेट बच्चा है। दोनों के स्ट्रेंथ सेम है। वो माइंड के अंदर से जो डायमंड बनता है वही प्रोसेस से, वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लैब से डायमंड बना हुआ, बनाने की प्रोसेस, पॉलिश करने की जो प्रोसेस है वो दोनों सेम है।
0: इस हीरे को आंध्र प्रदेश के तेनाली की रहने वाली और कॉस्मोस डायमंड्स की फाउंडर संजना त्रिपुर मल्लू ने डिजाइन किया है।
2: सो दिस इज द डायमंड दैट इज ट्रैवलिंग टू स्पेस। सो सेंडिंग अ डायमंड टू स्पेस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज मेकिंग हिस्ट्री। एनीथिंग वी पुट ऑन दैट रॉकेट इज अ मैसेज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड।
0: बीटेक पूरा करने के बाद संजना गुजरात के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।
2: आई वाजंट श्योर व्हाट टू पुट देयर, इट हैज टू बी परफेक्ट, इट हैज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट हैज टू हैव अ मीनिंग, इट शुड हैव अ पर्पस।
0: संजना चाहती थी कि हीरा भारत की संस्कृति और विरासत को दिखाए। वह प्रेरणा के लिए कई मंदिरों में गईं और मूर्तियों, पेंटिंग और आर्किटेक्चर में कमल का डिजाइन बार बार देखा। इस पवित्र निशान से प्रेरित होकर उन्होंने कमल के आकार का हीरा डिजाइन किया।
2: In most temples, gods are usually seen with lotus. So if you see Buddha, Buddha is holding a lotus. If you see Vishnu is sitting on a lotus, Lakshmi is on a lotus, Brahma is on a lotus, Saraswati is on a lotus. So we understood that this simple flower, which is India's national flower, is the oldest representation of the country.
0: इस हीरे को अंतरिक्ष में भेजने का मकसद सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष के बेहद कठिन वातावरण में इसकी मजबूती, ताप सहने की क्षमता और अन्य गुणों का अध्ययन भविष्य में अंतरिक्ष तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों के विकास में मददगार साबित हो सकता है। वही कमल के आकार में तैयार किया गया ये कॉस्मिक ब्लूम भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक बनकर अंतरिक्ष तक पहुँचा है। यानी ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक सोच, निजी अंतरिक्ष क्रांति, विश्व स्तरीय शिल्प कौशल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इन चारों का चमकता हुआ प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जिसने ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया कि अब भारत सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंच नहीं रहा, बल्कि अपनी पहचान, अपनी कला और अपनी संस्कृति को भी सितारों तक ले जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
4: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, वेटलिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया, मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा, वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन, टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। शानदार खबर आपको बता दें, देखिए भारत की स्टार वेटलिफ्टर और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने एक बार फिर से पूरे देश का दिल जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन दिखाया, उनके दमदार खेल की बदौलत भारत की झोली में गोल्ड मेडल अब आ गिरा है। इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने इस खेलों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी गोल्डन हैट्रिक भी पूरी कर ली, यानी लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रगान गूंजा है। देखिए महिलाओं के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने 85 किलोग्राम वर्ग का वजन उठाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। मीराबाई ने अपनी तीसरी कोशिश में बहुत आसानी से 85 किलोग्राम वजन उठा लिया और एक नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड कायम कर लिया है। अपने आपको बता दें उन्होंने 82 किलोग्राम उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाया और फिर 85 किलोग्राम उठाकर नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। देखिए ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अगर हम देखें तो आज तक किसी भी खिलाड़ी द्वारा उठाया गया सबसे ज्यादा वजन है। ये केवल राष्ट्रमंडल खेलों तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रमंडल खेलों यानी राष्ट्रमंडल देशों के किसी भी खिलाड़ी द्वारा दुनिया की किसी भी बड़ी इंटरनेशनल प्रतियोगिता जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक में बनाया गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम गोल्ड मेडल करने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि मीराबाई ने देश का मान बढ़ाया।
7: मैं बहुत ज्यादा खुश खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए और बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊंगी पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
6: और आइए आगे देखते हैं हमारी खास पेशकश बंदे में है दम।
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कैंसर के साथ लीवर किडनी हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविंग चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया

0: साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान, धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही है, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर, नहीं विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्रकृतिक का साथ चलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3,00,000 से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं, और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोह लेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती हैं।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं अब लोग को उस

0: करना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बांट जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
1: आपको बता दें कि यानुंग जमो लेबो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
0: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कलिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार, बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना सौर के जितना कत्ता चीज नींबू आमला इमली और टेंगा रबक टेंगा चटनी टेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कत्ता फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है, और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बनने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाएगा।
1: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमो लेबो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की काट बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमो लेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
0: ये सब पत्थरी गलाता है, कोई कोई पत्थरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पत्थरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वो लुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस छोटा हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमिस्टिक का सिरका लेना है, ड्रमिस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये लिकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक ही सीपियत हमारा आदि में ये भी गलत है, और ये मेहंदी का पत्ता असामिस में जेतू का बोलता है ये भी गलत है।
1: साफ है कि यानुंग जमो लेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमो लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करते हैं। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमोह लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग जमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जनजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग जमोलेगो हर्बल कृषि।
0: यानुंग जमोलेगो को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग जमोलेगो को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व तो पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था वो खाने, वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो यह है कि यानुंग जमोलेगो के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती हैं।
4: 2 साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के, वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग जमोलेगो बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग जमोलेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थी और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थी। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जबोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेगो के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
5: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोम पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ यह बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों, किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेगो के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांट कर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
6: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. from pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से दी मात। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है।
1: अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
2: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
2: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाथी काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस कारबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
1: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
2: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे पर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। आप अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
1: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ही साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
1: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक इसी सीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका इसी सीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वही एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्रेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5-4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा।
4: डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है।
0: आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है।
4: डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
5: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
4: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है। साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
0: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
11: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने बिखेरी चमक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान नंदन नीले कणि के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल है पुरी में नीलाद्री पीजे के साथ कल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारी। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य हुआ तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से ही बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी की नुमाइश।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड। चानू ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। मीराबाई ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच राउंड में 85 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाया रिकॉर्ड। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 का कब्जा। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रनों की खेली शानदार पारी। मयंक ने पहली गेंद पर झटका विकेट। अंतिम पड़ाव में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी की सड़कों पर दिखा आस्था का मेला। महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। निभाई जा रही विशेष रस्म। पारंपरिक रस्मों को साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया गया विशेष मीठा पेय। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गूंजा पूरी। कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा। नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारियां। कोलकाता में मूर्तियां बनाने का काम तेज। मूर्तिकार बना रहे हैं मां दुर्गा की अनोखी मूर्तियां। 16 अक्टूबर से शुरू होगा शक्ति उत्सव। कोलकाता के कारीगरों को मिल रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर। व्यापारियों में खुशी की लहर। कारीगरों के हाथों से करते हैं भव्य प्रतिमाओं का निर्माण। न्यूजर्सी फ्लोरिडा टेक्सास से मिल रहे हैं ऑर्डर। इस साल मूर्तिकारों को अच्छी व्यापार की उम्मीद है। अलवर में भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह। हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। जयकारों से गुंजायमान हुआ अलवर। इंद्र विमान में पहुंचे भगवान जगन्नाथ।

काल दरबार विशेष इंतजाम। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना, मंदिर में महाकाल को जल अर्पित करने के लिए विशेष इंतजाम। कांवड़ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड में, सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए गए हैं जलपात्र। श्रावण और भादो मास में निकलेगी भगवान महाकाल की कुल 6 पारंपरिक सवारियां। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में महाकाल दरबार में पहुंचते हैं श्रद्धालु, विधि विधान के साथ महाकाल को अर्पित करते हैं जल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी बढ़ा कांवड़ यात्रा का क्रेज, इस बार एआई और कंप्यूटर से तैयार किए गए हैं नए डिजाइन वाली कांवड़ ड्रेस। सहारनपुर में खिले कारोबारियों के चेहरे, इस बार 50 से 70 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रही है ड्रेस की सप्लाई, बच्चों में बढ़ा कांवड़ का क्रेज। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए चलाई अतिरिक्त बसें, निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। कांवड़ मार्ग पर स्थित बस स्टेशनों में कांवड़ियों के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम, पेयजल, स्वच्छ शौचालय का निर्माण। आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में सेना का शक्ति प्रदर्शन, स्वदेशी हथियारों की नुमाइश। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति, अलग अलग क्षमताओं की ड्रोन की नुमाइश। पलक जबत के दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है ड्रोन, स्वदेशी सैन्य शक्ति की दिखी अद्भुत झलक। द्रास में रफ टेरेन व्हीकल की क्षमताओं की भी प्रदर्शनी, ये गाड़ी कंकड़ पत्थरों और गड्ढों वाले रास्तों पर बिना रुके चल सकती है। स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल की भी नुमाइश, जवानों ने हथियारों के साथ किया युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शानदार खबर, ऋषिकांत सिंह ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत फिर बना T20 क्रिकेट का किंग, ICC की मेंस T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। इटावा को 604 करोड़ रुपए की विकास सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिला, मानवता की मिसाल, बहाव में फंसे मासूम की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर्स टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, फोर्स परीक्षा पद्धति को भरोसेमंद, पारदर्शी और एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त बनाने का काम। हाई पावर टास्क फोर्स में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ भी शामिल हुए, पूर्व IB निदेशक तपन टेका भी शामिल। करगिल विजय दिवस के मौके पर बंगाल के दुर्गापुर में देशभक्ति का अनोखा नजारा, मां भारती के वीर सपूतों के लिए निकाली गई भव्य तिरंगा बाइक रैली। दिल्ली में करगिल विजय दिवस के अवसर पर लक्ष्मी तरुआ फाउंडेशन की ओर से निकाली गई भव्य तिरंगा बाइक रैली। मन की बात के 136वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर अपील की, बोले जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात में दिया संदेश, उन्होंने प्लास्टिक निस्तारण, जल संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देना मकसद। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा, NS महेंद्रगिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, बोले यंग इनोवेटर्स ने वो करके दिखाया जो असंभव लगता था। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरीके से मुस्तैद, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीमें लगातार अलर्ट मोड में, लगातार लोगों को बचाने का सिलसिला। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह, घरों में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री।

0: रोहतांग जिले में हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन लगातार जारी, पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आदेश। औद्योगिक कचरा बनेगा निर्माण की मजबूत नींव, ITISM ने विकसित की नई तकनीक। औद्योगिक कचरे के इस्तेमाल से नींव के लिए तैयार किया गया पेवर ब्लॉक, तकनीक को जुलाई 2026 में मिल चुका है पेटेंट। चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी, इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार, 16,000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं दीदार। करीब 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित घाटी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। द्रास से सेना के जवानों ने निकाली सूर्य विजय रक्षा यात्रा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। थूथुकुड़ी में आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका का 444वां वार्षिक उत्सव शुभारंभ। थूथुकुड़ी में 11 दिन तक चले गए धार्मिक उत्सव, रोजाना विशेष प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। SGPGI के चिकित्सकों ने रच दिया इतिहास, भारत में पहली बार 6 वर्ष की बच्ची की सफल रोबोटिक थायराइड सर्जरी। उम्मीद योजना से कश्मीरी हस्तशिल्प को मिली नई पहचान, आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को मिल रहा है रोजाना। मैनपुर की योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात दी, कई डेवलपमेंट योजनाओं की रखी आधारशिला। सावन में योगी सरकार देगी 24 घंटे की अतिरिक्त बस सेवाएं, कावड़ यात्रा को देखते हुए फैसला। नागपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इवेंट में शामिल हुए। मोहाली में सरकारी स्कूलों के नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर, पहले चरण को मिली मंजूरी। चीन की खूबसूरती पर फिदा हुए मलेशियाई पर्यटक, यूनेस्को स्थलों का किया दीदार। झांगजियाजी लैंगशान गुइलिन रूट बना पर्यटकों की पहली पसंद। होनान के लैंगशान माउंटेन क्षेत्र में पर्यटकों ने पहाड़, नदियां और हरियाली का किया दीदार। गर्मी से राहत का ठिकाना बना चीन का झांगजियांजी, विदेशी पर्यटकों की बड़ी आमद। 98% जंगल वाला नेशनल पार्क बना नेचुरल एयर कंडीशनर। जॉर्डन में रंगारंग जेराश फेस्टिवल की शुरुआत, बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। लोक संस्कृति के रंग में रंगा जेराश फेस्टिवल, पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए लोग। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सांस्कृतिक समारोह का बने हिस्सा, स्वादिष्ट व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। जॉर्डन ने देखा कला संस्कृति और हस्तशिल्प का अनोखा संगम। जराश फेस्टिवल वन पर्यटन का पहला आकर्षण, कारोबारियों के खिले चेहरे। चीन के अर्बन पोलर पार्क में जानवरों के लिए समर स्पेशल मेन्यू, गर्मी से बचाने का अनोखा इंतजाम। रेड पांडा, रैकून और कैपीबारा बर्फीले फ्रूट और चिल ट्रीट्स ले रहे हैं मजा। अलग अलग प्रजातियों की जरूरत के मुताबिक उन्हें परोसे जा रहे हैं ठंडे पकवान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कैंसर रिसर्च के लिए पानी में उतरे 1,000 तैराक, चैरिटी स्विम के जरिए कैंसर रिसर्च के लिए $25,00,000 से ज्यादा की जुटाई गई धनराशि। 10 किलोमीटर तैराक कर कैंसर के खिलाफ जंग का संदेश। चीन के नाक्शू शहर में रंगारंग उत्सव, 5 दिनों तक चलेगा भव्य आयोजन। लोकगीत लोकनृत्य से सजा सांस्कृतिक मंच, पारंपरिक तिब्बती वेशभूषा में कलाकारों ने जमाया रंग। पर्यटन और व्यापार को एक मंच पर लाने की पहल, लोग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। चीन के खेतों में उतरा 108 हाथों वाला रोबोट। चीन के शिनजियांग में एक रोबोट कर रहा 120 मजदूरों को बराबर से काम। चीन के नानजिंग में एक एआई पावर्ड रेस्टोरेंट की हो गई शुरुआत, लोगों के लिए बना आकर्षण। इस खास रेस्टोरेंट में रोबोट बन रहा है खाना, ऑर्डर से लेकर सर्विंग तक पूरा काम। एक बार में परोसा जा सकता है 2000 लोगों का खाना, मेन्यू में 3000 से ज्यादा डिश। दक्षिण सागर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 45 लोगों की बचाई जान। दक्षिण चीन सागर में बचाव के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात करेंगे भारतीय ब्राइडल फैशन की, जो अब सिर्फ पारंपरिक लाल लहंगों तक सीमित नहीं रहा। फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली मसावा गुप्ता ने पहली बार ब्राइडल फैशन रेंज लॉन्च कर दिया है और ब्राइडल फैशन को एक नई परिभाषा दे दी है। जबकि दूसरी तरफ जाने माने डिजाइनर जे वालाया ने इतिहास और शाही परंपरा का रंग बिखेर दिया है। क्या खास रहा दोनों डिजाइनरों के इस शो में, हमारी खास रिपोर्ट देखिए।

0: भारतीय शादियों में दुल्हन को भारी भरकम लाल जोड़ा, घूंघट और हैवी वर्क वाले गोटेदार किनारियों में ही देखते आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज की दुल्हन सिर्फ परंपरा नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को भी अपने लिबास में फ्लॉन्ट करती है। इसी बदलते मूड और ट्रेंड को परखने के लिए इस बार भारतीय फैशन रनवे पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक तरफ नए जमाने की मशहूर डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने पहली बार ब्राइडल फैशन में कदम रखा है, तो दूसरी तरफ फैशन कुटोर बादशाह जेजे वलाया ने अपनी शाही कारीगरी से जिंदगी के पन्नों को जैसे नई जिंदगी दे दी हो।
1: दिल्ली एक बार फिर से फैशन की राजधानी बनने चली है। इंडिया कुटियर वीक 2026 में देश के सबसे बड़े डिजाइनर्स अपना कलेक्शन पेश करने चले हैं। देखिए, आज डे टू है और मसाबा गुप्ता ने अपना वेडिंग्स में डेब्यू किया है। जी हाँ, उन्होंने पहली बार वेडिंग कलेक्शन लॉन्च किया है और क्या ही सुंदर कलेक्शन था।
0: बात जब मॉडर्न और ट्रेंडी फैशन की आती है तो मसाबा गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। अपने अनूठे स्टाइल के लिए जानी जाने वाली मसाबा ने पहली बार ब्राइडल कुटोर की दुनिया में कदम रखा है। हाउस ऑफ मसाबा की ये डेब्यू ब्राइडल कलेक्शन आज की न्यू एज ब्राइड यानी नए जमाने की दुल्हन के नाम है, जो बेबाक है और अपनी भारी भरकम ड्रेस के साथ अपनी शादी को एंजॉय करना चाहती है। मसाबा ने इस कलेक्शन में पारंपरिक भारतीय डिजाइन्स को ब्राइट कलर्स और कैरेबियाई ब्राइडल स्टाइल के साथ जोड़ा है। यानी ये कलेक्शन दुल्हन को सिर्फ फेरों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि सगाई से लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग और आफ्टर पार्टीज तक हर मौके के लिए एक परफेक्ट लुक देती है। जहां मसाबा गुप्ता ने भविष्य की सोच वाली दुल्हन को ध्यान में रखा, तो वही भारतीय कुटोर के दिग्गज डिजाइनर जेजे वलाया ने अपनी कला में हमें सीधा अतीत के शाही गलियारों में पहुँचा दिया। जेजे वलाया की इस नई कलेक्शन का नाम है सिद्धि। ये संग्रह भारत के ऐतिहासिक सिद्धि समुदाय की संस्कृति, यात्रा और पहचान से प्रेरित है। जेजे वलाया के शो में रॉयल्टी, बारीक कारीगरी और हैवी जरदोजी वर्क का ऐसा ताना बाना दिखा कि हर कोई देखता रह गया।
2: मेरी इंस्पिरेशन तो हमेशा जिंदगी ही रही है, एंड द फैक्ट कि मैं हर दिन अपने स्टूडियो जा सकता हूँ एंड मीट विद माय टीम। और मेरे हिसाब से आई थिंक आई नाउ 34 इयर्स लेटर आल्सो, मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग चीज मेरी लाइफ की है वो इज वर्किंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट। सो आई थिंक जब वो एक कहते हैं ना, व्हेन यू हैव दैट पैशन, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस।
0: अपने ब्रांड के 35 साल पूरे करने के ऐतिहासिक पड़ाव से ठीक पहले जेजे वलाया ने एक नया हाई कुटोर ब्राइडल ब्रांड भी लॉन्च किया, जो रॉयल और क्लासिक शादियों के शौकीनों के लिए एक नया ठिकाना बनने जा रहा है।
2: 2027 is 35 years of Jeje Vilaya, so we have something very magical planned. In fact, we are already working on that collection. लेकिन मैं अभी थोड़ी बताऊंगा आपको।
1: तो हमें फिर अगले साल के लिए वेट करना।
2: बिल्कुल, वो एक बहुत ही special, बहुत ही sentimental show होने वाला है। 35 साल, always special.
0: एक तरफ जहां मसाबा ने आज के दौर की बिंदास दुल्हन का जश्न मनाया, तो वहीं जेजे वलाया ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। दो अलग अलग कहानियां, दो अलग सोच, लेकिन एक ही रनवे, जो ये साबित करता है कि इंडियन फैशन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी लगातार नए आयाम छू रहा है। क्षितिजा गोस्वामी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: टनी की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे, मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. Sage University, transforming your passion into profession.
12: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल. वेटलिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण. ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर. तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी. मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा. वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव ने बिखेरी चमक. परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान. नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन. टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल. पुरी में नीलाद्री विजय के साथ कल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन. माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु. दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा. उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां. हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें. निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम. आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज. देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं ऑर्डर्स. कारीगर हाथों से ही बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं. कारगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन. द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति. अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश.

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो अब हम जानेंगे शनि की उल्टी चाल के बारे में। आपको बता दें, शनि अब उल्टी चाल चलने वाले हैं। इससे आपकी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में पंडित जी से आज हम इस शो में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
2: अगर आप नौकरी संबंधी किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो हर शनिवार की शाम को नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर ऐसा निरंतर लगातार करते रहेंगे तो नौकरी के विवादों से, मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र प्रातः 10:28 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आप पंडित जी से ले लेते हैं अपना पहला सवाल। क्या है शनि की उल्टी चाल का मामला? शनि अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं, इसका अर्थ क्या है?
2: आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की उल्टी चाल के बारे में। शनि देव वक्री होने जा रहे हैं और शनि देव के वक्री होने की पूरी स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, शनि देव अभी तक मीन राशि में विद्यमान हैं। अब वो 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। शनि की ये स्थिति 11 दिसंबर तक बनी रहेगी। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनि की ये चाल बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के वक्री होने पर ये जहां बैठे हैं उससे पिछले भाव में भी असर डालने लगेंगे और इससे 7.5, ढैया और गोचर की स्थिति बदल जाएगी। शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तेज प्रभाव पड़ेगा और इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी। लगभग 8 राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो शनि का ये जो उल्टी चाल की स्थिति है ये बड़ी ताकतवर है और आप देखेंगे कि 11 दिसंबर के पहले बहुत सारे लोगों के करियर में, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: मेष राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, करियर के लिए अभी धैर्य बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि की उल्टी चाल से साढ़े साथी और ढैया का क्या प्रभाव होने वाला है।
2: देखिए, शनि की उल्टी चाल की जो स्थिति है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा साढ़े साथी के ऊपर और ढैया के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर इस समय साढ़े साथी चल रही है। अब पुनः दोबारा मकर राशि पर साढ़े साथी जैसी स्थिति बन जाएगी। सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया चल रही है। दोबारा कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। कुल मिलाकर 8 राशियां इससे प्रभावित हो जाएंगी। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के अलावा मकर राशि पर प्रभाव पड़ेगा और सिंह राशि और धनु राशि के अलावा कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्यतः 8 राशियां शनि के इस परिवर्तन से दोबारा साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव में आ जाएंगी।
0: और चलिए अब जान लेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, संपत्ति का लाभ होगा, नए काम की शुरुआत होगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल किसका रहने वाला है।
2: जी, आज का पहला प्रश्न रामेश्वर जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 26 मार्च 2002। जन्म का समय सुबह के 11:45। जन्म स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहती है, उसके लिए सरकारी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए रामेश्वर जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर आपकी पुत्री बैंकिंग में, फाइनेंस में या अकाउंट्स आदि क्षेत्रों में जाना चाहें तो उन क्षेत्रों में जाने पर इनको सफलता अवश्य मिलेगी। साल 2028 और 29 का समय इनके लिए उपयुक्त दिखाई दे रहा है, उस समय सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। आप अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और अपनी बेटी को बोलें कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
2: जी, अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण जी ने हमें लिखा है और गोपाल कृष्ण जी हमें मेल लिखते हैं हाथरस से। इनकी जन्म की तारीख है 25 जून 1960। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है हाथरस। गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि इतनी उम्र तक भी मैं अपना मकान नहीं बनवा पाया हूं, अभी तक मैं किराए के मकान में ही रहता हूं। पहले एक प्रॉपर्टी थी जो बिक चुकी है, तो क्या आगे मेरे जीवन में अपना मकान कभी बन सकेगा? क्या उसकी संभावना मेरे जीवन में बनती है? गोपाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके संतानों के भाग्य से, आपके संतानों के सहयोग से प्रॉपर्टी बनने की संभावना दिख रही है। साल 2027 में आपकी संतान प्रॉपर्टी बनाएगी जिसमें आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि की इस उल्टी चाल का राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है।
2: शनि की उल्टी चाल का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 11 दिसंबर तक आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए करियर में थोड़ा बदलाव इस समय हो सकता है और करियर के मामले में, पैसे के मामले में लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। वृषभ राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है और आपके स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। मिथुन राशि, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बेवजह के विवाद आपके परिवार में हो सकते हैं, ये संभावना आपके जीवन में बन सकती है। कर्क राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, वो महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। सिंह राशि, शनि की उल्टी चाल का फायदा होगा आपको, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। कन्या राशि, शनि की उल्टी चाल की वजह से आपके करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है और धन का लाभ होने की संभावना आपके लिए बनी हुई है।
0: और चलिए आप जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: तुला राशि, मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार की चिंता दूर होगी, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि बाकी बची हुई राशियों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा।
2: तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक के लोगों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा। तुला राशि की बात करें तो आपको इस समय अपने करियर का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि विवाह होने के और संतान होने के जो तमाम मामले हैं वो इस समय आपके हल होंगे। वृश्चिक राशि, शनि की उल्टी चाल से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर नए काम का आरंभ करते हैं तो नए काम में लाभ की संभावनाएं बनती हैं आपके लिए। धनु राशि, शनि की उल्टी चाल से आपको करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, चिंताएं और तनाव की स्थितियां दूर हो जाएंगी। मकर राशि, शनि की उल्टी चाल से आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। करियर में समस्याओं से बचिए और इस समय किसी भी मामले में विवाद मत करिए। इस समय शांति बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, शनि की उल्टी चाल आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय आपको करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि, शनि की उल्टी चाल से आपके करियर में बदलाव की स्थिति बन रही है। इस समय बेवजह के विवादों से, बेवजह की समस्याओं से बचाव करिए।
0: और अब वक्त हो चला है जानने का कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: मकर राशि, इस समय आपको करियर की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: बना रहेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने ईमेल आईडी फ्लैश की है, आप उस पर मेल कीजिए, पंडित जी तक अपना सवाल आप पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं आप?
0: जी, अगला प्रश्न हमें उमा जी ने लिखा है। उमा जी लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1987, 1987। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। उमा कह रही हैं कि पिछले 6 साल से मैं अपने बच्चे के साथ अपने पति से अलग रहती हूं और डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस मुकदमे में कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो मुकदमे में निपटारा कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? उमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में अप्रैल के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आपके वैवाहिक मुकदमे का निपटारा हो जाएगा। चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां तक आपके भविष्य की बात है, दूसरी शादी मत करिएगा, दूसरे विवाह के चक्कर में मत पड़िएगा, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। करियर आपका अच्छा रहेगा और भविष्य में अच्छे करियर के साथ आप अपना और अपनी संतान का जीवन बेहतर तरीके से चला लेंगी। फिलहाल एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। एक मोती बनवा करके पहनिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी,

0: प्रश्न सारिका जी ने हमें लिखा है और सारिका जी हमें हैदराबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1980, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है इंदौर। मेल लिखती हैं हैदराबाद से। सारिका कह रही हैं कि मेरे पति का ट्रांसफर नौकरी में हो गया है, तो क्या मैं उनके साथ जा करके रह सकती हूँ? क्या नौकरी बदल करके मेरा पति के पास जाने की संभावना बनती है? सारिका जी, आपको अभी नौकरी बदलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। फरवरी 2027 के बाद आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए। आपकी नौकरी और आपका स्थान दोनों बदलेगा और अपने पति के साथ जा करके आप रह सकेंगी। आपकी कुंडली में अभी नौकरी में थोड़ा कठिन समय चल रहा है, इसलिए नौकरी के मामले में फरवरी 2027 तक किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि की उल्टी चाल का दुनिया पर जहां पर काफी हलचल मची हुई है, क्या इस पर भी कोई असर पड़ने वाला है?
0: जी देखिए दीपाली, शनि जो है वो लोकतंत्र का स्वामी है और मंगल निरंकुशता का स्वामी है। अब अभी तो शनि मंगल का संबंध बना हुआ है और शनि के वक्री होने से भारतवर्ष में उपद्रव बढ़ेंगे, झगड़े लड़ाइयां बढ़ेंगी, स्थितियां और खराब हो सकती हैं, जनता और सरकार के बीच में तनाव बढ़ सकता है। ये उपद्रव केवल भारत वर्ष तक सीमित नहीं है, ये उपद्रव आगे भी जा सकता है और दुनिया भर में फैल सकता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम देखें, कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें तो शनि का वक्री होना 11 दिसंबर तक देश और दुनिया में तमाम हलचल और तमाम उपद्रव पैदा करेगा।
1: और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 27 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 27 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, संपत्ति और वाहन का लाभ आपको हो सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि प्रातः काल अगर हम कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी पूजा कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः सुबह के समय स्नान करके बिना कुछ खाए निराहार पूजा करना उत्तम होता है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपको सुबह दवाई खानी है, उसके पहले कुछ खाना है, तो आप बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन भी ग्रहण मत करिएगा उठने के साथ, कुछ सात्विक आहार ग्रहण करिए, दवाई खाइए और उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं।
1: और अब जान लेते हैं कि 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब इस शो के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन से मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो अच्छा होगा। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। आप नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा रेगुलर करें तो जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी।
1: और चलिए आप पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या रहने वाला है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर शनि की उल्टी चाल का प्रभाव अच्छा ना हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और शनिवार को दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिएगा।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरों में बात भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की करेंगे जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ पुरी में श्री मंदिर के बाहर अपने रथों में मौजूद हैं। अब इंतजार उस दिव्य पल का है जब भगवान श्री मंदिर में दाखिल होंगे, लेकिन उससे पहले पुरी मंदिर के बाहर भक्तों का हुजूम है। हर कोई महाप्रभु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहता है। इस दौरान पारंपरिक रस्मों और अनुष्ठान लगातार जारी हैं। आज वहाँ विशेष आधार पाना अनुष्ठान का आयोजन किया गया तो कल नीलाद्री बीजे नाम की रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे।

पाना का खास अनुष्ठान शुरू होता है। रथ यात्रा के अंतिम चरण में अधरपाना का अनुष्ठान नीलाद्री बीजे से एक दिन पहले किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों पर विशाल मिट्टी के पात्रों में विशेष मीठा पेय भरकर उनके अधरों यानी होठों तक अर्पित किया जाता है। इस विशेष मीठे पेय को दूध, चीनी, केला, जायफल और कई सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस पेय को मिट्टी के घड़ों जैसे तीन विशालकाय बेलन आकार पात्रों में भरा जाता है। ये घड़े इतने ऊंचे होते हैं कि भगवान के होठों यानी अधरों तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि ये पेय भगवान के दिव्य होठों को मिठास प्रदान करता है। भगवान जगन्नाथ के अधर पाना अनुष्ठान से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। स्कंद पुराण, मंदिर से जुड़ी परंपराओं और उड़ीसा की धार्मिक कहानियों में इनका उल्लेख है। लिहाजा पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं की अपार आस्था और विश्वास का इनसे गहरा संबंध है। पूजा संपन्न होने के बाद पेय से भरे पात्रों को जानबूझकर रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इस पेय को रथों पर मौजूद सूक्ष्म जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहा दिया जाता है। भक्त इस गिरे हुए पेय को छूने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ केवल भक्त ही नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियां भी चलती हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य शक्तियां भगवान की सेवा और रक्षा में लगी रहती हैं। अधरपाना के माध्यम से उन्हें प्रसाद दिया जाता है। माना जाता है कि पात्र टूटने पर पेय चारों ओर फैल जाता है जिसे ये अदृश्य शक्तियां ग्रहण करती हैं और तृप्त होकर अपने लोक लौट जाती हैं। माना जाता है कि अधरपाना के प्रसाद को अगर आम लोग ग्रहण कर लें तो जिन अदृश्य शक्तियों के लिए ये अर्पित किया गया है वो उससे वंचित रहेंगे। इसलिए पूजा के बाद पात्र को तोड़ दिया जाता है ताकि पाना भूमि पर फैल जाए और अदृश्य देवगण उसे स्वीकार कर सके। भगवान की अधर तक ही पाना भरने का खास प्रतीकात्मक अर्थ भी इससे जुड़ा है। इससे जुड़ी ये भी मान्यता है कि रथ यात्रा सम्पन्न होने पर भगवान अपने साथ आई समस्त अदृश्य शक्तियों को सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। अधर पाना उसी विदाई का प्रतीक है। अगर यह अनुष्ठान ना हो तो वो शक्तियाँ वहीं रुक सकती हैं। विशाल पात्रों से भरा पेय भगवान के अधरों तक पहुँचाया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये माना जाता है कि भगवान पहले स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और फिर अपने साथ आई अदृश्य शक्तियों को उसका भोग प्रदान करते हैं। अधर पाना का अनुष्ठान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसका आयोजन मंदिर की रीति नीति से जुड़ा है, लिहाजा लोगों की गहरी श्रद्धा इससे जुड़ी होती है। इसे रथ यात्रा की सबसे रहस्यमय और अनोखे अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ये अधर पाना का अनुष्ठान ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 9 शक्तियों को संतुलित करने के लिए संपन्न किया जाता है। इस लिहाज से तंत्र साधना से भी इसका संबंध माना जाता है। इस अनुष्ठान में 9 के अंक का विशेष महत्व है। पेय तैयार करने के लिए 9 प्रकार की सामग्रियों दूध, मलाई, छेना, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के 9 बड़े पात्रों में इसे तैयार किया जाता है। तीनों रथों पर 3-3 पात्र रखे जाते हैं। इसे बनाने में 9 रसोइये और 9 पानी ढोने वाले सेवक शामिल होते हैं। अधर पाना के बाद नीलाद्री बीजे की रस्म होगी और फिर भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। इससे पहले आज रात भर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर ही विराजमान रहेंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लौटने से पहले रथों पर भगवान के दिव्य दर्शन करने का ये श्रद्धालुओं के लिए अंतिम अवसर है। भगवान की अलौकिक छवि और रथ यात्रा के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पुरी के बड़ा डंडा यानी ग्रैंड रोड पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल सोमवार को नीलाद्री बीजे का अनुष्ठान होगा। रथों पर भगवान की अंतिम पूजा कल दोपहर के बाद संपन्न होगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य पहंडी यानी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। फिर देव विग्रहों को रथों से उतारकर मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन की ओर ले जाया जाएगा। इस बीच मंदिर के प्रवेश द्वार

0: द्वार पर मान मनोवल की रस्म होगी और रसगुल्ला उत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाएंगे। इसके बाद रात तक तीनों देवता अपने मुख्य आसन पर विराजमान हो जाएंगे। 10 दिनों के महोत्सव का ये अंतिम चरण संपन्न होने के साथ ही भगवान श्री मंदिर के गर्भगृह में वापस लौट जाएंगे। इसी के साथ इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, एक तरफ भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं तो दूसरी तरफ सावन के पावन महीने की शुरुआत से पहले बाजारों में रौनक जबरदस्त देखने को मिल रही है। सहारनपुर के बाजार से केसरिया रंग से रंग चुके हैं पूरी तरीके से। कांवड़ यात्रा से पहले सहारनपुर में भगवा और महाकाल टी शर्ट की भारी डिमांड है। वहीं पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सावन से पहले विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट खुलने और महाकाल की दिव्य भस्म आरती का समय भी बदल दिया गया है।

0: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था का समंदर होगा, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। भले ही सावन की शुरुआत 30 जुलाई से है, लेकिन सावन की रौनक बाजारों में अभी से नजर आने लगी है। बाजार पर गेरुआ रंग छा रहा है, कहीं भगवान शिव के फोटो वाली टी शर्ट मौजूद है तो कहीं हनुमान जी की तस्वीर वाली टी शर्ट की डिमांड है। महाकाल टी शर्ट तो कावड़ियों की पहली पसंद बनी हुई है। सिर्फ टी शर्ट ही नहीं, बल्कि कावड़ियों के लिए छोटे छोटे स्लिंग बैग और छोटे छोटे डमरू भी बाजार की रौनक को दोगुना कर रहे हैं। सावन से पहले सहारनपुर का बाजार जैसे कावड़ के रंग में पूरी तरह रंगा है। इस बार आस्था के इस पावन पर्व में सहारनपुर का होजरी उद्योग अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। AI और कंप्यूटर डिजाइनिंग के दम पर सहारनपुर के कारोबारियों ने कावड़ के बाजार को नया अवतार दे दिया है। सहारनपुर होजरी मार्केट कावड़ के मौके पर हर साल लगभग 40 से 50 करोड़ का कारोबार करता है, लेकिन इस बार ये कारोबार लगभग 50 से 70 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है।
1: देखिए, हम ये मान के चलते कि औसतन सहारनपुर हौजरी उद्योग जो है, जो कांवड़ के सीजन के दौरान हमारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 से 50 करोड़ का अमूमन कारोबार यहाँ पे कांवड़ के दौरान होता रहा है, पर इस बार हमारी अपेक्षाएं और अधिक है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि ये 50 से 70 करोड़ से ऊपर तक हो सकता है इसका कारोबार।
0: सहारनपुर में तैयार हो रही इन ड्रेसेस का जादू सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक से ऑर्डर आ रहे हैं। आस्था, आधुनिक तकनीक और कारोबार के इस अनूठे संगम ने सहारनपुर के होजरी उद्योग को एक नई ऊंचाई दे दी है। सहारनपुर के बाजार में रौनक है तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। श्रावण मास में देश के कोने कोने से आने वाले लाखों कावड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने सुगम और सुरक्षित दर्शन का इंतजाम किया है। साथ ही बाबा महाकाल की भस्म आरती के समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट तड़के 3 बजे खोल दिए जाएंगे और भस्म आरती सुबह 3 से 5 बजे तक होगी। वहीं प्रत्येक सोमवार को मंदिर के पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए जाएंगे, ताकि भस्म आरती 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सम्पन्न हो सके। साथ ही भगवान महाकाल की कुल 6 पारंपरिक सवारियां निकाली जाएंगी। प्रथम सवारी 3 अगस्त को और अंतिम राजसी यानी शाही सवारी 7 सितंबर को निकलेगी।
2: सावन के माह में अत्यधिक संख्या में कावड़ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए एवं जल अर्पण करने के लिए आते हैं, इसलिए सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक दिन पूर्व अनुमति प्राप्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्री बिना अनुमति के आते हैं उन्हें मानसरोवर से प्रवेश दिया जाता है, और जिनकी पूर्व में सूचना मिल जाती है उन्हें विशेष हर सिद्धि एवं एक नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता है।
0: जय बाबा महाकाल स्वयं नगर भ्रमण पर निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानेंगे, तब उज्जैन की सड़कें जय श्री महाकाल के उद्घोष से गुंजायमान हो उठेंगी। हर साल सावन में हजारों कांवड़िए पैदल चलकर दूर दूर से गंगा जल लेने आते हैं और वहां से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करते हुए ही अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटते हैं। इसी गंगा जल से महादेव भोले भंडारी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। सावन का ये पावन महीना अपने आराध्य के प्रति आस्था का पर्व है। एक तरफ होजरी उद्योग कावड़ यात्रा को नया रंग और नई पहचान दे रहा है, तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लाखों श्रद्धालुओं और कावड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ इंतजार है तो सावन के पावन महीने के शुभारंभ का। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
3: आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल को भव्य रूप से सजाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पहुंचकर ऑपरेशन विजय के शहीदों को बाकायदा श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। उनके बाद उन्होंने जोजिला में तैनात सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। विजय दिवस के मौके पर द्रास में भारत की ड्रोन शक्ति का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग क्षमताओं वाले ड्रोन्स को उनका डेमो देखा गया और इसके अलावा द्रास में रफ टेरेन व्हीकल और स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल की भी नुमाइश देखने को मिली। देखिए तस्वीर। अब खबर अमेरिका के सैन डियागो में दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट यानी कॉमिक कॉन की कर ली जाए, जहां इस बार भी सुपर हीरोज, फिल्मी किरदारों और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की दुनिया जीवंत बिल्कुल नजर आई। यहां हजारों की संख्या में महीनों की मेहनत और सैकड़ों डॉलर खर्च करके अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धरकर लोग पहुंचे। रिपोर्ट देखिए।
4: सड़क पर अखबार पढ़ता स्पाइडरमैन, डॉक्टर डोम की दमदार एंट्री, समुराई हेलो किटी, रोबोट और द विज़ार्ड ऑफ ओज का टिन मैन। ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है जिसमें एक साथ इतने कार्टून किरदार मौजूद हों। ये तो अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित कॉमिक कॉन का नजारा है। यहाँ कॉमिक्स, फिल्मों, वीडियो गेम्स और फैंटेसी की दुनिया के हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धारण कर पहुंचे हैं। सबके कॉस्ट्यूम अपने आप में अलग है और हर किसी के पीछे महीनों की मेहनत छिपी हुई है। इसमें 27 साल की सारा लू फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के मशहूर ड्रैगन टूथलेस का रूप धर कर पहुंची। इस कॉस्ट्यूम की तैयारी उन्होंने जनवरी से शुरू की थी और इसे बनाने में करीब $400 खर्च हुए हैं।
5: At least for me, it's like an intersection between theater and music and dance as well. So I kind of use all these skills to kind of like bring a character to life. I think there's just some sort of magic to that. And as well as building a community, because I've gotten so many kids that come up and be like, oh my god, it's Toothless! And I'm like, I know, I love Toothless too, and that's why I'm doing him, just for the community.
4: कॉमिक कॉन में हर साल हजारों लोग अपने पसंदीदा किरदारों के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉस्ट्यूम ही मायने नहीं रखता बल्कि उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।
6: Okay, dudes, make sure it's cool. Like be confident in yourself. Because if you're not confident in your own cosplay, you're going to give off like a really bad aura and no one's going to like you. All right? Like if you just don't like how you're dressing, then your outfit's awful. You know what I mean? But if you love yourself and you like how you dress, boom, outfit's peak. Don't make sure don't forget sunscreen.
4: कॉमिक कॉन का आयोजन हर साल गर्मियों के दौरान होता है। ऐसे में अपने किरदारों को पेश करने वाले लोगों के लिए भी मास्क, भारी भरकम ड्रेस और बड़े प्रॉप्स पहनकर घंटों घूमना आसान नहीं होता। मौसम को देखते हुए उन्हें तेज गर्मी में अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है।
7: How do you stay cool? Hydrate. I carry bottled waters here in my backpack and try to take as many breaks as possible. I try not to drink too much through the mask because you can waterboard yourself.
4: कॉमिक कॉन में अनोखी किरदारों को पेश करने वाले लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर महीनों की मेहनत से तैयार किए गए कॉस्ट्यूम या प्रॉप्स खराब हो जाते हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं ब्रायन बैरो, जिन्हें यहाँ कॉस्प्ले रेस्क्यू मैन के नाम से जाना जाता है। अपने बैग में तमाम औजार और सामान लेकर वो इन आर्टिस्ट की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि किसी के खराब हुए कॉस्ट्यूम को कुछ ही मिनटों में फिर से ठीक किया जा सके।
6: Hopefully I can fix what they have and then they can enjoy the rest of their con, because they're always on their way to a photo shoot or on their way to a panel and they want to be photo ready. And ready to go, and that's kind of what I provide, and I do it for free, only because I'm just asking people to kind of pay it forward.
4: कॉमिक कॉन सिर्फ फिल्मों और कॉमिक्स का उत्सव नहीं, बल्कि ये कल्पना, रचनात्मकता और अपने पसंदीदा किरदारों के प्रति लोगों के जुनून को दर्शाने का सबसे बड़ा और बेहतरीन मंच भी है। इसमें शामिल हो रहे लोग महीनों मेहनत करते हैं। उनके मन में बारीक कारीगरी से अपने पसंदीदा किरदार को जीवंत बनाने के लिए हर कॉस्ट्यूम को बेहद शानदार और आकर्षक बनाने का सपना होता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से हजारों लोग सैन डिएगो पहुंचते हैं और कुछ दिनों के लिए कल्पना की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: The world keeps moving, changing. You need an education that keeps up. WGU prepares you for where work is going and fits your busy life. Your turn starts now. Learn more at wgu.edu.
10: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
12: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।

0: खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज।
2: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण। ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारे इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाथी काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस काराबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया है, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे पर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। अब अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को। पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ECM के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक ECM से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका ECM सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वही एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्रेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5-4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है।
4: डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
5: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
4: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है। साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कॉम्पिटिशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देख कर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्चे के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा, वैभव सूर्यवंशी मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन, टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानू जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानू जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानू जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्रकृति का साथ चलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है? जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती है।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बांट जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कलिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना छोड़ के जितना कच्चा चीज नींबू आमला इमली और टेंगा रबक टेंगा चटनी टेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कच्चा फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है, और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बनने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाएगा।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की कार्ड बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: सब पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वो लुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस छोटा हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमस्टिक का सिरका लेना है ड्रमस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है।

0: इसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
1: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती हैं। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग चमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग चमोलेओ हर्बल मिशन।
0: यानुंग चमोलेओ को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके, कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग चमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था, वो खाने वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ये 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का

0: प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
1: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो यह है कि अनु जमोलेवो के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती हैं।
2: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। वो मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़ अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के वो गल ब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
1: यानु जमोले को बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग जमोलेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जमोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेवो के लिए ये सम्मान अहंकार नहीं, जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
3: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन तोर पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपना परिवार में दुख तकलीफ अपना में तो दुख तकलीफ यह बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल 1 रुपया नहीं लेता हूँ।
1: यानुंग जमोलेओ के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती। अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
4: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कंपनी की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: वायरल तस्वीरों में बच्ची को मिला है साइकिल का तोहफा, लेकिन ये महज तोहफा नहीं, ये खुशियों का मौका है, खुशियों के जश्न का मौका है। सो इस तोहफे का यानी साइकिल का स्वागत भी कन्या के हाथों ही हुआ, बकायदा महावर घोलकर उसमें बच्ची के पैरों को भिगोकर साइकिल पर पैरों की छाप लगाई गई, मानो घर में किसी नई दुल्हन का प्रवेश हो रहा हो। ये तस्वीरें देखकर यही लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियां कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जो खुश रहना जानते हैं वो खुश हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इस बच्ची की तो तारीफ कर ही रहे हैं, उसके पेरेंट्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। इन तस्वीरों में ये बच्चा अपने पसंदीदा होम डिपो कर्मचारियों के लिए उनके जन्मदिन पर फूल लाया। महिला कर्मचारी को अंदाजा नहीं था कि बच्चा ऐसा करेगा, वो भावुक होती है, अपनी सीट से उठती है और बच्चे को गले लगाकर धन्यवाद करती है। जाहिर है कि तस्वीरें अच्छा महसूस करा रही हैं। लोग बच्चे को तो दुआएं दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके माता पिता ने जरूर बहुत अच्छा काम किया होगा। इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही से जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है, लेकिन ये तस्वीरें बताते हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है, जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है, खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
0: की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: You hear it once and remember everything.
8: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
7: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण। ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारे इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाथी काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से हैं, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस काराबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया है, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। अब अस्त्रा, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को। पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक ईसीसीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका ईसीसीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचे तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहां पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को मिग 21 ने मार गिराया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: जब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्लेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरे मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने Sea Harrier जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
4: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
5: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है, साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कॉम्पिटिशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है, खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती यानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानू जमो लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानू जमो लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानू जमो लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविंग चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान, धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्रकृति का साथ चलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3,00,000 से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोह लेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती हैं।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं आप लोग को कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बढ़ जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकना ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोह लेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कलिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ। आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार, बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना सौर के जितना कत्ता चीज नींबू आमला इमली और तेंगा रबक तेंगा तेतली तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कत्ता फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है, और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बनने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाएगा।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोह लेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की काट बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोह लेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: ये सब पत्री गलाता है, कोई कोई पत्री को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पत्री को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वो लोग है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस छोटा हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमस्टिक का सिरका लेना है, ड्रमस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये लिकस एस्पेरा ये

0: भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
1: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती हैं। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग जमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग जमोलेगो हर्बल कृषि।
0: यानुंग जमोलेगो को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग जमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था, वो खाने वो दवा लेने के लिए।

0: आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
1: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो यह है कि अनु जमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती हैं।
2: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। और मैंने बहुत जगह पे इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के, वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
1: यानू जमोलेगो बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानोंग जमोलेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थी और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थी। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लेगो ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानोंग जमोलेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानोंग जमोलेओ के लिए ये सम्मान अहंकार नहीं, जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
3: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का पोगलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोम पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वेलू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ, अपने में तो दुख तकलीफ या बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी, पेड़ पौधा को भी, मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों, किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल 1 रुपया नहीं लेता हूँ।
1: यानुंग जमोलेओ के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती। अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमो लेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
4: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमो लेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
6: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही से जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देख कर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: Shani ki badal rahi hai chaal, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael, to Hall & Oates, and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں بھارت نے زمبابوے کو 35 رنوں سے مات دی. میچ کے ساتھ ٹیم انڈیا نے سیریز پر 3-0 سے جمایا قبضہ. ویبھو سوریہ مائنک یادو نے بکھیری چمک. پریکشا پرنالی میں سدھار کے لیے پردھان منتری نریندر مودی کا بڑا اعلان. نندن نیلے کنی کے نیتتو میں 6 سدسیہ ہائی پاور ٹاسک فورس کا گٹھن. ٹیم میں پورو اسرو چیف ایس سومناتھ بھی شامل. پوری میں نیلادری وجے کے ساتھ آج بھگوان جگناتھ رتھ یاترا کا ہوگا سماپن. ماتا لکشمی کو رسگلا بھینٹ کر رتن سنگھاسن پر وراجتے ہیں مہا پربھو. درشن کے لیے بھکتوں کا جماوڑا. اتر پردیش میں سگم اور سرکشت کانوڑ یاترا کی زوردار تیاریاں. ہریدوار سہت مکھیہ مارگوں پر چلائی جائیں گی اترکت بسیں. نگرانی کے لیے 24 گھنٹے ایکٹیو رہے گا کنٹرول روم. آگامی درگا پوجا کے لیے کولکاتہ میں مورتی نرمان کاریہ تیز. دیش ہی نہیں دنیا بھر سے بڑے پیمانے پر مل رہے ہیں آرڈرز. کاریگر ہاتھوں سے بناتے ہیں بھویہ اور آکرشک پرتیمائیں. کرگل وجے دیوس پر سینا کا شکتی پردرشن. دراز سے دنیا نے دیکھی بھارت کی ڈرون شکتی. اتیادھونک ہتھیاروں کے ساتھ کوئک ریسپانس کیپیبلٹی کی نمائش.
3: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے. کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے.

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है।
1: अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BBR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
2: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है।
3: विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
2: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाति काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस कारबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
1: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
2: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया, 80 से ज़्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे पर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। आप अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
1: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
3: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ही साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
1: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एस्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक ईसीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका ईसीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहां पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: जब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्लेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई, और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है। डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
4: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
0: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
5: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है, साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
0: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
10: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
9: More top sports.
11: And he's gonna go! There's the tying goal!
9: And everything in between.
11: This game is over!
9: Upgrade now for the premium listening experience.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी, मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा, वैभव सूर्यवंशी मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानुम जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानुम जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानुम जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ, उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान, धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर, नहीं विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्रकृतिक का साथ चलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है? जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती है।
1: यूट्यूब का द्वारा कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बच जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कालिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार, बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना सौर के जितना कत्तासीस नींबू आमला इमली और तेंगा रबक तेंगा चटनी तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कत्ता फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कालिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बढ़ने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कालिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाएगा।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की कार्ड बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: पतरी गलाता है, कोई कोई पतरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पतरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओलुक है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस ये सूता हो या बड़ा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमिस्टिक का सिरका लेना है ड्रमिस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीव हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये लिकस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक ही सीपिया हमारा आदि में ये भी गलत है, और ये मेहंदी का पत्ता असमिश में जेतु का बोलता है ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमोहलेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें

किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती है। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमोह लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: प्रकृति की गोद में स्थित मनमोहक अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के एक दूरस्थ गांव में 9 जुलाई 1963 को जन्मी यानुंग चमोलेओ का जीवन निस्वार्थ मानव सेवा की अनुपम मिसाल है। ईस्ट सियांग जिले के एक गुमनाम से सीका टोडे गांव में जन्मी लेगो ने अपनी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर दूर स्थित पासी घाट को कर्मभूमि बनाकर अपनी जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा, निष्काम कर्म और मुसलसल मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है उसकी मुनादी आज पूरे विश्व में हो रही है। न पब्लिसिटी, न प्रमोशन, न ही कोई लॉबिंग, फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग चमोलेओ अर्पण विश्व।
0: यानुंग चमोलेओ को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया, मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद, तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग चमोलेओ को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था वो खाने वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो ये है कि यानुंग चमोलेओ के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती है।
4: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आँख का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। और मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़, अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ। तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग चमोलेओ बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी।

0: दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानोंग जमो लेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थी और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थी। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लेगो ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानोंग जमो लेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानोंग जमो लेगो के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
1: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का फोकलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमन टेम्पल पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ अपने में तो दुख तकलीफ ये बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्तर भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लेता हूँ।
0: यानोंग जमो लेगो के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात ये है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती, अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमो लेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमो लेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कंपनी की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
7: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही से जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कॉम्पिटिशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्ची के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BBR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाथी काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से है, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस कारबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे पर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। आप अस्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
2: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक्स्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक इसी सीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका इसी सीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वही एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्रेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5-4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा।
4: डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है।
0: आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है।
4: डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
5: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
4: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है, साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्चे के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण। ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का संवेदनशील सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कैंसर के साथ लीवर, किडनी, हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए आरोग्य की साक्षात मूर्ति है। विधाता ने इस शख्सियत को वनस्पतियों में मौजूद औषधीय शक्ति की पहचान कर गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देने की अलौकिक शक्ति से नवाजा है।

0: श्रीमती जानू जमो लेगो हर्बल कृषि।
1: मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि देश की हर्बल क्वीन के नाम से विख्यात यानुम जमोह लेगो है। जी हाँ, एक ऐसी संवेदनशील और मानवीय गुणों से संपन्न महिला जिसने मरीजों की निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। अरुणाचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद यानुम जमोह लेगो का आरोग्य धाम आज उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जिनकी बीमारी को मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में लाइलाज करार कर दिया गया है। हर ओर से निराश मरीज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित लेगो के आरोग्य धाम में पहुंचते हैं और यानुम जमोह लेगो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पर वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका सफल इलाज कर देती है।

0: हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और सार्वभौमिक ज्ञान धरोहर का ज्ञात इतिहास इस वैज्ञानिक युग में भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के आलोक में पहली सफल सर्जरी 16 अक्टूबर 1846 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में की गई थी। तब डॉक्टर विलियम टीजी मॉर्टन ने एनेस्थेसिया के लिए ईथर का इस्तेमाल कर मरीज के गले से ट्यूमर निकाला था। पर महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले 125 तरह के सर्जिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट समेत 300 तरह के ऑपरेशन कर देते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इरविन चिकित्सा केंद्र के सर्जरी विभाग ने 28 मई 2015 को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन शीर्षक से छपे लेख में साफ तौर पर स्वीकार किया कि सुश्रुत ने न सिर्फ मेडिकल साइंस और सर्जरी साइंस की पहली किताब लिखी बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आश्चर्यजनक रूप से 2600 साल पहले लिखी सुश्रुत संहिता में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। दरअसल मेडिकल साइंस का जो क्रमिक विकास वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में हुआ उसका सम्यक ज्ञान हमारे मनीषी ध्यान धारणा और साधना के बल पर हासिल कर लेते थे। यही वजह है कि 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत और चरक संहिताओं में रोग और उपचार के जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में पूरी तरह मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं। चिकित्सा विज्ञान की गौरवशाली सनातन ज्ञान परंपरा के अक्ष आज भी हिंदुस्तान की पावन धरती पर किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। धन्वंतरी सुश्रुत और चरक के रूप में चिकित्सा विज्ञान की सनातन ज्ञान परंपरा की मौजूदा संवाहक हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सीका टोडे गांव की यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें हिंदुस्तान का हर्बल क्वीन भी कहा जाता है। यानुंग जमोह लेगो पिछले 30 साल से हजारों हजार लोगों की असाध्य बीमारियों का सफल उपचार जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से कर रही हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसों में।
1: हम लोग दूसरा देश को विदेशी को नकल कर नहीं, विदेशी हमें नकल करे। हिंदुस्तान में ज्ञानी का देश है, ऋषि मुनि का, साधु संतों का देश है, देवी देवता का देश है। तो और देश में धरती भी पावन होता है, पेड़ पौधा भी पावन होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, प्राकृतिक का साथ सलना सीखो, सीजन का शीश को खाते जा, मिथुन का, गाय गोरु का, बकरी का जैसा, तो आपका ये कैंसर, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कुछ भी बीमार, आपको मेडिकल में एक रुपया भी फेंकना नहीं पड़ेगा।
0: साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा, साधारण परिवेश में रहने वाली इस अद्भुत महिला को देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बीते 30 साल में 3 लाख से अधिक लोगों का जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के माध्यम से सफल इलाज कर चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वो मरीज भी आते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जवाब दे चुके होते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के साथ ही शुगर, बीपी, स्टोन, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट इनके पास न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी आते हैं। यानुंग जमोह लेगो ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली से देखती हैं, मेडिकल हिस्ट्री को सुनती और समझती हैं और उसके बाद कई तरह के पत्तों, फूलों, डालियों, डंठलों और जड़ों के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार करती हैं और फिर उन दवाओं के सेवन का विशेष तरीका बताती हैं। साथ ही वो मरीज को कुछ परहेज भी बताती हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मरीज को निश्चित रूप से फायदा होता है। यानुंग जमोह लेगो की चिकित्सा शैली और जीवन के प्रति उनका नजरिया देखकर लग जाता है कि कुछ तो इनर इनलाइटमेंट है इनके भीतर। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा में इनकी गहरी आस्था बहुत कुछ कहानी बयां कर जाती है।
1: कहते हैं इंडिया जो साइंटिस्ट लोग का देश है, ज्ञानी लोग का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, तभी भी हम लोग क्यों अज्ञान का तरह रहता है। जो विदेशी है, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग स्टाइल, रहन सहन, खान पान को हम लोग स्टाइल को नकल करके हम लोग शायद बेवकूफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग का खान पान में ही गड़बड़ है, रहन सहन में ही गड़बड़ है, हम लोग का बीमारी का कारण, गरीबी का कारण वही में हमको नजर आता है।
0: यानुंग जमोहलेगो ने एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी और एमएससी किया है। जाहिर है प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका अध्ययन बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुण के बारे में उनकी जानकारी एकेडमिक नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव यानी सहज स्वाभाविक है। यही वजह है कि उनके इलाज के तौर तरीकों की ख्याति आज हिंदुस्तान की सरहदों के पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों के हेल्थ रिसर्चर्स उनके गांव सीका टोडे आकर बतौर छात्र उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। लेगो भी विधाता से मिले अपने विशेष चिकित्सकीय गुण को बांटने में खुशी महसूस करती हैं। यहां तक कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ साझा करती है।
1: यूट्यूब का द्वारा मैं कुछ सिखाना मांगता हूँ ताकि मेरा ज्ञान सारा संसार में बच जाए, दूसरा को मदद मिले। जो लोग रुपया पैसा नहीं है तो वो लोग का भी आराम से बिना रुपया से इलाज हो सके, बड़ा बड़ा बीमार में इतना रुपया फेंकने ना पड़े।
0: आपको बता दें कि यानुंग जमोहलेगो करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट्स का हॉर्टिकल्चर खुद करती हैं। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे करनी है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। कह सकते हैं कि इनके अंदर इस विधा का इनबिल्ट दैवीय गुण है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के कारण और निदान की जैसी गहरी समझ इनके अंदर है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: कैंसर भी डरपोक है। कैंसर क्या क्या को डरता है? कैंसर ना एल्कलिन खान पान को डरता है, जैसे कि लाओ मतलब बोतल गोट लंबा लंबा लाओ, आजकल उसको भी इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग विचार करो। और पानी कुमड़ा एस गोट और क्यूकुम्बार बोतल गोट एस गोट रीस गोट और टमाटर गाजर धनिया पुदीना जितना पत्ता सब्जी पपीता हल्दी जितना दाल मसूर दाल को सेट करो सब दाल, और इसके बाद में मशरूम ये सब, इसके बाद जितना फ्रूट एक्सेप्ट बनाना सौर के जितना कत्ता चीज नींबू आमला इमली और तेंगा रबक तेंगा चटनी तेंगा कोल्डो स्टार फ्रूट एनी कत्ता फ्रूट, क्योंकि वो बाहर का जो एसिड है ना अंदर के एसिड को एल्कलिन में कन्वर्ट कर देता है और विटामिन सी होगा तो अंदर में कैल्शियम बनने लगता है, जितना आपका बॉडी में एल्कलिन बढ़ेगा उतना कैंसर माइनस होने जाता है।
0: कैंसर के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों को लेकर भी यानुंग जमोहलेगो का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इनका साफ मानना है कि आजकल की ज्यादातर प्रचलित बीमारियों का कारण अनहेल्दी फूड हैबिट है। यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी वो प्रकृति से मिले उन हर्ब्स या फ्लोरा का इस्तेमाल करती हैं जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से डेवलप हुए कॉम्प्लिकेशन की कार्ड बन सके। किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना आज कॉमन समस्या बन चुकी है। एलोपैथ में इसका प्रचलित इलाज ऑपरेशन है, लेकिन यानुंग जमोहलेगो को पता है कि किस प्लांट में स्टोन को गला देने या उसे हवा कर देने की क्षमता है।
1: सब पथरी गलाता है, कोई कोई पथरी को हवा में कन्वर्ट करता है, कोई कोई पथरी को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वो लोग है ये ऑक्जालिस, ये ऑक्जालिस सूता हो या बोरा हो दो वैरायटी होता है ऑक्जालिस का होल प्लांट, और ये ड्रमस्टिक का सिरका लेना है ड्रमस्टिक सजना, और ये जामुन जामुन जामुन का सिरका लेना है वो भी गलत है, और ये अर्जुन का सिरका भी गलत है, अर्जुन का सीट है ये, और ये फाइन ट्री भी गलत है, फाइन ट्री का लीफ हो या बार्क हो या स्टेम हो गलत है फाइन ट्री, और ये हिली का बोलता है बेहरा ये भी गलत है, और ये लिकोस एस्पेरा ये दुरुन फूल और एक ही सीपिया हमारा आदि में ये भी गलत है, और ये मेहंदी का पत्ता असमिस में जेतु का बोलता है ये भी गलत है।
0: साफ है कि यानुंग जमोहलेगो के पास किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने या खत्म करने के बेशुमार उपाय हैं। इनके इलाज का खर्चा भी इतना कम है कि गरीब से गरीब इंसान भी कोई बोझ महसूस नहीं करता। फिर भी मुफलिसी के मारे इंसान का इलाज लेगो मुफ्त में कर देती हैं। ये बात आपके दिल को छू लेगी कि लेगो ने साल 1995 से 2019 तक यानी 24 साल तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो इन्हें स्टाफ्स रखने पड़े, साथ ही प्लांटेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने मरीजों से नॉमिनल पैसा लेना शुरू कर दिया। आज पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। हर दिन इनके पास अमूमन 20 से 25 पेशेंट आते हैं जिन्हें ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देखती हैं। इतनी ख्याति होने, इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेगो की खुद की जिंदगी सादगी और सदाशयता की अनूठी मिसाल है। इनके पास आने पर सादगी का ऐश्वर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
2: मरीजों का मातृभाव से इलाज करने वाली यानुंग जमू लेगो किसी भी तरह के प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन से दूर रहती है। ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें इलाज की जो सलाहियत बख्शी है उसका इस्तेमाल वो सेवा भाव से करती है। ये मरीजों से पैसे भी उतना ही लेती हैं जितने में उनके आरोग्य धाम का गुजारा चल जाए। इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसका मुफ्त में इलाज करती हैं। दरअसल मानव सेवा का निस्वार्थ भाव सनातन संस्कृति की अनादि पहचान रही है। आप कह सकते हैं कि परमार्थ में आत्मिक सुख की अनुभूति करने वाली सनातन परंपरा की यानुंग जमू लेगो मौजूदा कड़ी है।

0: फिर भी मानवता की आरोग्य मूर्ति की ख्याति सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने साल 2024 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: श्रीमती यानुंग जमो लेगो हर्बल मिशन।
0: यानुंग जमो लेगो को ये सम्मान प्रकृति के दामन में छिपे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधों जड़ी बूटियों की मदद से लाखों मरीजों का मुफ्त या बिल्कुल कम पैसों में इलाज करने के लिए दिया गया।
2: मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, जब मिला तो मुझे खुशी हुआ, खुशी मतलब ऐसा महसूस नहीं लगा कि मेरा काम को लोग ऐसा सोचने लगा कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, और मैंने टाइम को जैसा इस्तेमाल किया मेहनत करके कठिन तप करके यहाँ तक आ पहुँचा हो, करोड़ करोड़ तकलीफ मिलने के बाद तप करने के बाद ये पद्मश्री मिला जाता है, कोई आसान काम नहीं था। मैं इतना साल से 1995 से मैं अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम हीलिंग सिस्टम को रिवाइव करने में मैं अपना जीवन मैंने दे दिया हूँ।
0: दरअसल प्रकृति ने धरती को कई औषधीय वनस्पतियों की सौगात दी है। हालांकि इन बेशुमार वनस्पतियों में किसके अंदर कौन सा औषधीय गुण है इसकी पहचान आसान नहीं होती। ऐसा लगता है कि विधाता ने यानुंग जमो लेगो को वनस्पतियों के औषधीय गुणों की नैसर्गिक पहचान की शक्ति के साथ ही धरती पर भेजा है। लेगो को प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का महत्व पता है, इसीलिए उन्होंने इस उपहार का इस्तेमाल कभी भी व्यक्तिगत उत्थान या सांसारिक ऐश्वर्य हासिल करने के लिए नहीं किया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का जड़ी बूटियों या वनस्पतियों से उपचार कर आरोग्य प्रदान करने में इन्हें आत्मिक सुख मिलता है। अरुणाचल के पासीघाट में स्थित उनके हर्बल क्लिनिक में आज देश और दुनिया के मरीज आते हैं और उपचार के बाद फायदा होने की बात कहते हैं।
3: मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था, पहले आया था मैडम के पास दवा लेने के लिए, वो खा के बहुत बड़ा आराम मिला है, तो फिर दूसरा बार आया हूँ आज दवा लेने के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, और मेरा नर्व का प्रॉब्लम था वो दवा लेने के लिए आया हूँ। और एक बात, मेरे माँ जो है उसका ईयर 67 ईयर्स का होगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी दवा पहले लिया था, वो खा के वो बहुत आराम मिला, तो फिर दूसरा बार आया हूँ उसके लिए दवा लाने के लिए।
0: बीते दो दशक में पिंकी मेक की तरह 3 लाख से ज्यादा मरीज पासीघाट के हर्बल क्लिनिक में आकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कमाल तो यह है कि यानुंग जमो लेगो के पास हर तरह के मर्ज के इलाज का औषधीय फॉर्मूला है। आपका रोग चाहे कितना ही असाध्य हो, ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से दवा तैयार कर उसका इलाज कर देती है।
4: दो साल पहले हम मैडम के पास आया था वो आग का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ठीक हो गया है। मैंने बहुत जगह इससे पहले दिखाया था आपका डिब्रूगढ़ अभी पासीघाट, लेकिन नहीं हुआ है, तो मैडम के पास आया था तो हमने 3 महीने दवाई कोर्स किया तो ठीक हो गया। तो आज मैं आया हूँ अपना मिसेस के वो गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए इलाज के लिए दवाई लेने के लिए।
0: यानुंग जमो लेगो बचपन से ही वनस्पतियों में मौजूद औषधीय गुणों को जानने समझने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल इनके पिता ताबा जमो खुद एक लोक वैद्य थे और आसपास के इलाकों के परेशान मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। यानुंग जमो लेगो बचपन से ही अपने पिता के इस काम में जुट गई थीं और गहराई से मर्ज और इलाज की बारीकियों को समझने की कोशिश करती थीं। करीब 15 साल से लेगो ने पिता से वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में मौजूद औषधीय गुणों को शिद्दत से जाना समझा और पूरी तरह पारंगत हो जाने के बाद साल 1995 से खुद ही लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले लोगों ने जोरहाट स्थित असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करने के बाद साल 1988 में अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर इंस्पेक्टर सेवा देनी शुरू की। विभाग में अपनी 35 साल लंबी सेवा के दौरान वो डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंची और साल 2023 में रिटायर हुई। 35 साल के अपने सर्विस पीरियड में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए भी यानुंग जमो लेगो अपने मूल काम से कभी विमुख नहीं हुई और लगातार गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करती रहीं। कर्तव्य निष्ठा के साथ मानव सेवा के उनके भाव को देखते हुए अलग अलग मौके पर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता रहा। साल 2007 में लेगो को पारंपरिक

0: ज्ञान रखने और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सृष्टि सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि साल 2023 में इन्हें पारंपरिका वैद्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का व्रत लेने के लिए इन्हें और भी कई अलंकारों से विभूषित किया गया। भूमि पुत्री यानुंग जमोलेओ के लिए यह सम्मान अहंकार नहीं जिम्मेदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं। इन्हें सच्चा सुख तब मिलता है जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश होकर मरीज नई उम्मीद के साथ इनके पास पहुंचता है और ये औषधीय वनस्पतियों में छिपे निदान की पहचान कर उसके जरिए मरीज के असाध्य रोग को भी ठीक कर देती हैं। मानवता की सेवा का इनका संकल्प कितना उदार और संवेदनशील है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इनके पास कोई गरीब मरीज आ जाए तो ये उससे दवा की लागत का खर्च तक नहीं लेती। गरीबों का ये बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं।
1: जड़ी बूटी के बारे में हम लोग बचपन से हम लोग को कहानी में बताता था पिताजी माँ लोग, और हम लोग का फोकलोर में वही गाना गाता है, कौन पेड़ पौधा कहा किसका देवी देवता का बॉडी से निकलता है, वो तो गाना गाता है सोलोमतर पूजा में, वही तो गाना गाता है पिताजी लोग तो, और उन लोग का वैल्यू को जानता था, इसलिए लोगों का दुख तकलीफ देख देख के मैंने अपने परिवार में दुख तकलीफ, अपने में तो दुख तकलीफ या बीमारियों का ज्यादा होता है, और कोई कोई गरीब लोग तो रुपया पैसा नहीं है मेडिकल जाने के लिए, तो ये सब सारा सोच के लोगों को मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इंसान को नहीं जानवर को भी पेड़ पौधा को भी मैं सबको प्यार करती हूँ। इसका वजह से शायद मेरा ये ड्राइव आ गया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। हाँ, और बिना रुपया से बिना पैसा नहीं लिया हम लोगों, किसी को भी हम पैसा नहीं लिया 1995 से लेके 2019 जून तक, तो मैं अपना पैसा फेंका उसमें, देखा तो मेरा दवाई डिमांड होने लगा, लोग पेशेंट बढ़ने लगा, फिर मेरा स्टाफ भी बढ़ने लगा, सामान इतना महंगा होने लगा, तो आजकल मैं नॉमिनल पी लेता हूँ, तभी भी मैं गरीब को बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लेता हूँ।
0: यानुंग जमोलेओ के बारे में सबसे ज्यादा सुखद एहसास कराने वाली बात यह है कि पारिवारिक संस्कार और परमात्मा की कृपा से मिले अपने औषधीय वरदान को ये छिपा कर नहीं रखती। अलबत्ता अपने इस दैवीय गुण को बांटकर इसका विस्तार करना उन्हें अच्छा लगता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 2009 में लेगो ने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस संस्था के तहत लेगो ने लोगों को किचन गार्डन के लिए प्रेरित किया। लेगो ने आम लोगों को औषधीय पौधों के गुणों के बारे में न सिर्फ प्रशिक्षित किया बल्कि अपने अपने घरों में उसके प्लांटेशन और इस्तेमाल की भी जानकारी साझा की। इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज संस्था के तहत लेगो 1,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। परमार्थ का ऐसा निर्मल निश्चल भाव आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। परोपकार के बदले कृतज्ञ आंखों में झांक कर अपनी आत्मा को तृप्त करने की उपासना भारत के मनीषियों की अतुल्य धरोहर रही है। यानुंग जमोलेगो भारत की अनादि ऋषि परंपरा की योगीन प्रमाण है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने हर्बल क्वीन यानुंग जमोलेगो के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tunein's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: वायरल तस्वीरों में बच्ची को मिला है साइकिल का तोहफा, लेकिन ये महज तोहफा नहीं, ये खुशियों का मौका है, खुशियों के जश्न का मौका है। सो इस तोहफे का यानी साइकिल का स्वागत भी कन्या के हाथों ही हुआ, बकायदा महावर घोलकर उसमें बच्ची के पैरों को भिगोकर साइकिल पर पैरों की छाप लगाई गई, मानो घर में किसी नई दुल्हन का प्रवेश हो रहा हो। ये तस्वीरें देखकर यही लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियां कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जो खुश रहना जानते हैं वो खुश हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इस बच्ची की तो तारीफ कर ही रहे हैं, उसके पेरेंट्स की भी जमकर तारीफ हो रही है। इन तस्वीरों में ये बच्चा अपने पसंदीदा होम डिपो कर्मचारियों के लिए उनके जन्मदिन पर फूल लाया। महिला कर्मचारी को अंदाजा नहीं था कि बच्चा ऐसा करेगा, वो भावुक होती है, अपनी सीट से उठती है और बच्चे को गले लगाकर धन्यवाद करती है। जाहिर है कि तस्वीरें अच्छा महसूस करा रही हैं। लोग बच्चे को तो दुआएं दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके माता पिता ने जरूर बहुत अच्छा काम किया होगा। इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है, खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी न गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग न जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्चे के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: Shani ki badal rahi hai chaal, kiski badhne wali hai mushkilein, kiske jeevan mein hone wala hai kamaal, kya hai Shani ki ulti chaal ka pura haal, janiye mere saath sirf good luck today mein.
6: और आपको समझाएंगे। देखिए
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण। ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टीम में पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल। पुरी में नीलाद्री विजय के साथ आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का होगा समापन। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट कर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं महाप्रभु। दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की जोरदार तैयारियां। हरिद्वार सहित मुख्य मार्गों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। निगरानी के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम। आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में मूर्ति निर्माण कार्य तेज। देश ही नहीं दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मिल रहे ऑर्डर्स। कारीगर हाथों से बनाते हैं भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं। करगिल विजय दिवस पर सेना का शक्ति प्रदर्शन। द्रास से दुनिया ने देखी भारत की ड्रोन शक्ति। अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की नुमाइश।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मेड इन इंडिया वेपन की ताकत, तकनीक और भरोसे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल के दिनों में भारतीय हथियारों के खरीदार तेजी से बढ़े हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा देशों में हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस समझौते ने स्वदेशी हथियार अस्त्र मिसाइल में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की डिमांड इस वक्त हर जगह पर है। दरअसल ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का ही नतीजा है कि हम अस्त्र मिसाइल बना रहे हैं और दुनिया इसकी दीवानी हो रही है। सऊदी अरब के बाद अब आर्मेनिया भी इसे खरीदने का इच्छुक हो गया है और भारत और आर्मेनिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर डील तकरीबन आखिरी चरणों में है। ये ऐसे समय में हुआ है जब 2026 में भारत का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। अस्त्र मिसाइल पहले से ही सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत हो रही है। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत में अस्त्र मिसाइल को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस दिया गया। आर्मेनिया ने अपने Su-30SM लड़ाकू विमानों में अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ तेजी से बातचीत शुरू कर दी है।
1: आर्मेनिया समेत 6 देश तकरीबन भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की एक रणनीतिक जीत है। इसको हम खाली एक व्यापार के एंगल से ना देखें, यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारी जो तकनीक है, जो हमारे इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल आज सुखोई के Su-30 के ऊपर फिट करने में सक्षम है, जिसके द्वारा जिन जिन देशों के पास ये जहाज हैं उनके जहाजों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन चुका है, जिसने साल 2020 से साल 2026 के बीच भारत के साथ करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा सौदा किया है। दोनों देशों के बीच ये सहयोग महज एक व्यापार नहीं बल्कि साउथ कॉकस इलाके की भू राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा रणनीतिक कदम है। विश्लेषक बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी कश्मीर को लेकर एकजुट होती नजर आती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत आर्मेनिया के साथ साठगांठ कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्मेनिया को एक नया साथी भी मिल रहा है भारत के रूप में, जो कि उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हाल ही में खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 अजरबैजान को दिए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत भी आर्मेनिया के साथ अपनी इस दोस्ती और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो साउथ कैकस में गेम चेंजर साबित होगा, जरूर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्मेनिया को हम पिनाका, आकाश, स्वाथी काफ़ी सिस्टम दे रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनको भारत के ऊपर भरोसा है और वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अजरबैजान उनके लिए खतरा है और उनके पास सुखोई Su-30 जहाज पहले से हैं, उसके ऊपर अगर अस्त्र लग जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा टैक्टिकल लेवल पर। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है, पिनाका लिया हुआ है और साथ साथ में अगर ये अस्त्र आ जाता है तो एक तरह से काफ़ी हद तक उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा गेम चेंजर के तौर पे देखें तो फिर इनको रडार सिस्टम, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, पूरा ही सिस्टम जब होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तब वो गेम चेंजर होता है। लेकिन इस अस्त्र को मिलने से आर्मेनिया की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
0: नारगोस काराबाख संघर्ष के बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने का फैसला किया।
2: रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उसने भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर भरोसा जताया। इसी के साथ भारत आर्मेनिया के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार, ATAGS 155mm तोप, गोला बारूद और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। भारत से मिले रक्षा उपकरणों और हथियारों की बदौलत आर्मेनिया की एयर डिफेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तोपखाना नेटवर्क को नई मजबूती मिली है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस अपनी पुरानी कस्मों के बावजूद आर्मेनिया को हथियार की समय पर डिलीवरी देने में असमर्थ रहा। ऐसे में नाजुक समय में भारत ने एक विश्वसनीय और समयबद्ध रिलायबल सप्लायर बनकर रूस की जगह ली, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।
1: देखा जाए तो समय पर भरोसेमंद हथियार की सप्लाई भारत की साख को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा रही है। आज हम देखते हैं ब्रह्मोस हमने सप्लाई किया है, 80 से ज्यादा देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हमको रीऑर्डर मिले, दोबारा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर किसी देश से हमको दोबारा ऑर्डर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारी साख है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है, उनको पता है टाइम से डिलीवरी कर देंगे, उनको पता है इनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ही वो दोबारा ऑर्डर करते हैं और उन्हें पता है क्वालिटी भी आज यहाँ से मिल रही है और हाई टेक इक्विपमेंट मिल रहा है। अब अस्त्रा, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे वेपन सिस्टम जब हम सप्लाई करते हैं तो ये दिखाता है कि आज हमारा भारत का लेवल अलग हो चुका है, जिसके कारण से आज हम 80 से ज्यादा देशों में 39,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
2: भारत के लिए ये साझेदारी सिर्फ एक रक्षा निर्यात तक सीमित नहीं है, इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय रक्षा उद्योगों की तकनीकी क्षमता और विश्वसनीयता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
0: भारत की रक्षा तकनीक अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत के हथियारों को दुनिया भी मानती है। आर्मेनिया के साथ हुई डील ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से दुनिया भारत के हथियार खरीदने के लिए बेचैन है। और वैसे कहा जाए तो वैश्विक बाजार में भी भारत की धमक बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्वदेशीकरण की नीति को।
2: पहले ब्रह्मोस, फिर अस्त्र की ग्लोबल होती पहचान ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और चीनी मूल के हवाई खतरों को खदेड़कर इस मिसाइल ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

0: स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है।
1: आज के युद्ध में देखा जाए तो जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को भी पता और उसके काउंटर मेजर करते हैं, वो उसको जैम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तरह तरह का ईसीएम के द्वारा जैम करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एस्ट्रा मिसाइल को काफ़ी हद तक ईसीएम से लैस किया गया है, ताकि इनिशियली जब ये इनिशियल गाइडेंस के थ्रू जाते हैं और लास्ट में सीकर के द्वारा अपने टारगेट पर जाते हैं, उस समय में जो उनका ईसीएम सिस्टम है वो जो दुश्मन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है उसको साफ करते हुए सीकर को सीधा टारगेट पर ले जाता है।
0: अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले।
1: ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर में क्या फर्क है। बिल्कुल एक सादे शब्दों में सोचें तो सीकर एक आंख है जो टारगेट को पहचानता है, ढूंढता है और उस पर लॉक ऑन कर देता है। अस्त्र मिसाइल पहले इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू जाती है, बाद में उसके अंदर जो फेड होता है डाटा उसको खुद उस पर लॉक ऑन हो जाता है। और क्योंकि रडार ऐसा है कि अगर वो मोशन में भी है, मान लीजिए कोई जहाज है, ड्रोन है, मिसाइल है, वो चल रही है उसके ऊपर, वो चलते हुए कैलकुलेट करके वहां पे उसको लॉक ऑन कर देता है। और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वो है कि मिसाइल को टकराने की जरूरत नहीं है टारगेट से, जब पास में आता है तो फट जाता है, उससे वो टारगेट को बर्बाद कर देता है। जैसे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, जहाज हो, तो उससे ही उसको काफी नुकसान हो जाता है।
0: बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर अमर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि अस्त्र मिसाइल फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुकी है। दरअसल साल 2020 में अस्त्र मिसाइल को सुखोई के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इसे सुखोई MK-1 के साथ अटैच किया जा रहा है, जिसके बाद से इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA MK2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है।
2: जब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है, या दुश्मन का खराब मौसम है, या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है।
0: आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्लेस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है, ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरे मिसाइलों के मामले में काफी छोटा है और ये काफी हल्की भी है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में अटैच किया जा सकता है। तेजस के साथ हुआ इसका सफल ट्रायल बताता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ी है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है।
3: ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है, और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई, और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये Mach 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
0: सेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इसराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट को राफेल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को अटैच करने के लिए कहा है। दरअसल ये भारत के लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही हो रहा है, जिसके तहत अब भारत अपने यहाँ की मिसाइलों और हथियारों को इन विमानों के साथ अटैच करेगा।
4: डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है।
0: आज भारत तोप से लेकर गोले तक, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सब कुछ भारत में ही बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन वक्त बदला, भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और आज भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि भारत न सिर्फ खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, बल्कि भारत एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभरा है।
4: डिफेंस सेक्टर में दिनों दिन भारत की तेज होती धमक ये बताने के लिए काफी है कि रक्षा क्षेत्र में आने वाला वक्त हमारा होगा।
5: अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है।
0: हिंदुस्तान अब खुद की हिफाजत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। छोटे बॉम्ब से लेकर बड़ी मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही बन रहा है और ये एक तरीके से भारत की ताकत को भी दिखाता है।
4: भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था, यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है।
0: दुनिया में भारत के हथियारों पर भरोसा काफी बड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज की तारीख में भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है। ये भरोसा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के मामले में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त था जब 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही बाहर से आता है। सिप्रियानी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है। साल 2016 से 2020 की तुलना में साल 2021 से 2025 के दौरान भारत के रक्षा आयात में 4% की कमी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी रक्षा प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोज। कुछ वीडियोज आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोज आपको इमोशनल कर देंगे।
4: इस नवजात को देखिए जरा, जिस डॉक्टर ने गर्भ से बाहर निकाला, इसने उन्हीं का स्टेथोस्कोप इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि मानो डॉक्टर साहब से मसल पावर का कोई कंपटीशन कर रहा हो, या फिर मानो कह रही हो कि गर्भ से बाहर आ गई हूँ और बाहर की दुनिया से लड़ने में सक्षम हूँ। और आखिरकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप छोड़ देते हैं तो नन्ही सी जान भी स्टेथोस्कोप छोड़ देती है। लोगों को ये बेबी वर्सेस डॉक्टर वाला कंपटीशन खूब लुभा रहा है और सब मासूम पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बारिश का मौसम यूं तो सबके लिए सुहावना होता है, खासकर बच्चों के लिए तो ये खुशी और एंजॉयमेंट का दूसरा मौका होता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमेशा ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो बारिश का मौसम एक जिम्मेदारी है जिसमें उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। खाना बनाते हुए कहीं चूल्हे में पानी ना गिर जाए या फिर माँ कहीं भीग ना जाए। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने की भावना को भी काफी सराह रहे हैं। बरसात के सीजन में ऐसी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर ये जनाब बारिश में फुटपाथ पर सामान बेचती इस बच्ची को देखकर रुकते हैं, उसे थोड़ा सा सामान लेते हैं और बदले में उसे छाता दे देते हैं और सामान का भुगतान भी करते हैं। थोड़े से सामान के बदले ये सब पाकर बच्चे के चेहरे पर जो संतोष दिखता है और जिस भाव से बच्ची उनको देखती है, लगता है कि उनमें ईश्वर का ही एक रूप उसे नजर आ रहा है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: Right field, and it will...
9: From the first pitch of the season to the stretch run.
10: And that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: शनि की बदल रही है चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, किसके जीवन में होने वाला है कमाल, क्या है शनि की उल्टी चाल का पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड। वेट लिफ्टिंग के 48 किलो वर्ग में मीराबाई चानू को मिला स्वर्ण, ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से मात दी। मैच के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव ने बिखेरी चमक। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र